0: सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
1: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, एसडीएम आए, जो भी आए, पांच लोग थे, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
2: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
0: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था। डिसअपॉइंटेड है उनसे?
3: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
0: हबीबी
3: कम टू रांची।
0: कुछ कुछ नहीं,
3: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची,
0: हबीबी कम टू रांची। पर डिसअपॉइंटेड है?
3: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
2: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
0: जब आप
4: 10th में थे,
0: आप 10th
4: का तैयारी करने आया था मैं रांची, और लाइब्रेरी में पढ़ता था। भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे हैं। इनका ये 30 प्लस हो गया, बताइए।
0: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
5: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
0: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
5: की एग्जाम
0: कब से?
5: 8 साल से।
0: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
5: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, बीडीओ सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, वो रेट का भी कॉलम खोल दे।
2: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
0: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
6: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
0: सारे रद्द हुए हैं?
6: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
0: पेपर लीक हुआ है सर?
6: पेपर लीक हुआ इसके लिए।
0: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
6: मैंने तो मेरा ये 35 इयर्स हो रहा है, ये एज 35 इयर्स है।
0: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
6: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
0: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
6: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है।
0: कट ऑफ जारी नहीं।
2: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
7: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहां पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहां से वैकेंसी जारी होती है। यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, यहां जाते हैं तो यहां बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।

0: यादव नए सिरे से समझा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया, तब कहा था कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताने लगे थे।
1: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
2: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया।
1: पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीड़ी और मजबूत दिखाई देगा।
2: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
3: प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
2: जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
4: दिन भर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
5: राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
1: राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
2: संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहाँ किए गए, इस सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है।
6: उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में दो से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्त्रोत होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं।
1: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान ले कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीड़ी और मजबूत दिखाई देगा।
6: जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता

0: 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं।
1: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। कब की है, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे आप हमारी पौराणिक कहा पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो, कृष्ण सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
2: समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ और इनका ब्राह्मण समाज से सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कन्फ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है।
3: यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी के आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को वो जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज, प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं, तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत, चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए, और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती है अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका। गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई, तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई अराजकता दंगे फसाद सर्व समाज का अपमान सनातन संस्कृत को ध्वस्त करना ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला, इस अपमान का बदला कब लोगे।
5: बड़ा असमंजस में है लोग, असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर खाना तो जेल में कैदियों को भी खिलाया जाता है, लेकिन मिड डे मील की तरह तहत सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में ऐसा खाना परोसा गया जो किसी हालत में बच्चों को खिलाने लायक तो बिल्कुल नहीं था। अब कार्रवाई की बात कलेक्टर ने की है।
0: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जली रोटी पनिहल सब्जी और सरकारों के गुणगान। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसलिए देखिएगा क्योंकि मजाक भी बहुत हल्का शब्द साबित होता है। कुकर में दो गिलास पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, स्वादानुसार नमक डालकर आलू के चंद टुकड़े और परवल के छींटे मारकर सीटी लगा दी गई। जानवरों को भी जैसे रोटी नहीं फेंकी जाती, उस तरह से फेंक कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी स्कूल का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। ऐसा मिड डे मील खाकर पढ़ेंगे बच्चे तो सोचिए कैसे बढ़ेंगे बच्चे। सीतापुर के छंगापुर का सरकारी प्राइमरी स्कूल इस बात की गवाही देता है कि मिड डे मील के नाम पर जो दावे सरकार करती है, हकीकत में उसमें बहुत पानी मिला हुआ है। दावा है ये वीडियो मंगलवार का है, जब नियम कहता है कि बच्चों को चावल और सब्जी युक्त दाल दी जानी चाहिए। नियम कहता है चना या अरहर की दाल में मौसमी सब्जी मिलाकर चावल के साथ दिया जाए, लेकिन सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बना मिड डे मील कहता है नियम गया पानी लेने और उसी पानी वाली सब्जी को परस देंगे, ताकि बच्चे को इसी बहाने थाली में कल कल बहती पानी वाली सब्जी के बहाने नदियों के बहाव का पाठ भी पढ़ा दिया जाए। वो तो गनीमत रहे, एक शख्स ने ये वीडियो बनाया, वायरल किया, तो जाकर पता चला कि सरकारी स्कूल में बच्चों को किस तरह पानी वाली सब्जी का स्वाद चखाकर तंदुरुस्त करने की योजना चल रही है। जहां अब कार्रवाई के नाम का नाटक करने अधिकारी पहुंचे, रसोईया को हटा दिया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, बीईओ के खिलाफ एडवर्स एंट्री करके हाथ झाड़ लिया गया। जरा सीतापुर के कलेक्टर को सुनिए।
7: लापरवाही के कारण मतलब ऐसे घटना घटित हुई। जब ये प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान में आया, तत्काल हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी को हमने विद्यालय भेजा। विद्यालय में जब प्रथम दृष्टि जो वायरल हुई वीडियो वो सही पाया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए जो प्रिंसिपल साहब और साथ में जो रसोईया, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और प्रिंसिपल साहब का सस्पेंशन का कार्रवाई की गई, और साथ साथ जो पर्यवेक्षण का जो लापरवाही का देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रविष्टि का कार्रवाई किया गया। और ऐसे लापरवाही फ्यूचर में ना होने के संबंध में प्रशासन का स्तर से पहले से स्पष्ट निर्देशित किया गया, तो खंड शिक्षा अधिकारी नहीं खंड विकास अधिकारी भी स्कूल पे जाएंगे, जो बच्चे के साथ बैठ के मिड डे मील खाएंगे और मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण से बन रहा है या नहीं इसके संबंध में भी इन लोगों को पर्यवेक्षण करने के लिए हमने स्पष्ट निर्देशित किया गया।
0: ये सब सुनकर आपको लगेगा कि देखो कलेक्टर साहब ने कितना बड़ा एक्शन लिया, लेकिन रुकिए, फैक्ट हम बताते हैं। यूपी एमडीएम के दस्तावेज कहते हैं कि बच्चे किस तरह का खाना स्कूल में मिड डे मील के तौर पर पा रहे हैं और खा रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक DRDA, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर उप जिलाधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, यानी कुल 20 लोग हैं। लेकिन एक आदमी ये नहीं देख पा रहा था कि कैसी पानी वाली सब्जी बच्चों को स्कूल में परोसी और खिलाई जा रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा वाली व्यवस्था में कहा जाता है सबसे बड़ा करप्शन अधिकारी मिड डे मील के नाम पर ही तो करते हैं। जहाँ मिड डे मील ना बने तो बचने का सबसे ज्यादा रेट लगता है, बाकी खराब बने तो कौन देखने वाला है। सोचिए ये मासूम बच्चे इस खाने को कैसे खाते रहे होंगे, कभी उप नहीं किया होगा, इन्हें क्या पता कि इनके हक का खाना खा खा कर कौन कौन कितना कितना मोटा हो गया होगा।
6: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि कुंडली की अशुभता को दूर कर देती है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य और क्या है बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

13वां दिन आंदोलन जारी। सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी उठा सकती है मुद्दा। दो हजार 27 के यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का बिगुल। अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड। अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। जीत का किया दावा। संसद के विपक्ष के हल्ला बोल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध। आज भी हंगामे के आसार। अब मानसून सत्र में ही पेश किए जाने वाले परिसीमन और एफसीआरए बिल पर सियासत तेज। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समन। शेख हसीना ने दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान। उनके समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ हिंसा। बांग्लादेश में घर पर पेट्रोल बम से हमला।

0: सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा। सुबह के 6 बजे और इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी। दरअसल वहां पर रांची में छात्रों का नॉन स्टॉप विरोध प्रदर्शन जारी है और आज उसका 13वां दिन है। स्थिति ये है कि अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र लगातार CBI जांच की मांग पर अड़े हुए हैं और अभी इसकी जांच CID कर रही है। कई अन्य मांगे भी हैं। दरअसल छात्रों की डिमांड को लेकर सोरेन सरकार ने उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है, हालांकि छात्रों ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है। तो सोरेन सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव छात्रों को भेजा है। लगातार आज 13वां दिन है इस प्रदर्शन का। रांची में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। तो इन सब के बीच रांची की सियासत तेज हो गई है। दरअसल आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने छात्रों की मांग को विधानसभा में उठाने की तैयारी भी की है। दरअसल एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिले और दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात भी की और जारी प्रदर्शन को लेकर जानकारी साझा की है। तो रांची में 13 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और छात्र आंदोलन का मुद्दा अब राजनीतिक भी हो गया है। दरअसल बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी रांची के इन छात्रों के प्रदर्शन पर आखिर चुप क्यों हैं? कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं। आंदोलन बढ़ता जा रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें।
1: देवेंद्रनाथ महातो है जिन्होंने आज सोनम वांगचुक से बात कर अपना पानी का अनशन तोड़ा।
2: लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
1: हबीबी।
3: पैसा नहीं है, जिसे जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की यह स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट।
4: CID जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है।
5: दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे प्रदर्शन की गूंज भी अब पूरे देश में हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड की सरकार दबाव के बाद प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार हो रही है। बताया जा रहा है कि आज झारखंड सरकार के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
1: सर आप बताएंगे, अभी पहले SDO आए थे, क्या कह के गए हैं आप?
4: वो ये कर के गए कि मुख्यमंत्री जी हमसे बात करना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जिनका बात रखा जाए और मुख्यमंत्री हमसे वार्ता करने के बाद फिर ये मुद्दा पे डिस्कस करके अपने में एक सुझाव देंगे।
5: ये प्रदर्शन रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहा है। इसमें करीब 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ा हुआ था। बुधवार को सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील पर देवेंद्र ने पानी पिया लेकिन कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा।
6: ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मैं नींद में रही थी। मैं 26 सालों से कई लगातार कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
5: JPSC और JSSC अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और OMR शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं JSSC CGL समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए।
1: अगर सरकार सारी मांगे मान ले पर सीबीआई को जांच ना दे, क्योंकि सुनने में आया है उसी पर सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
7: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के जो बात किया गया, जो बड़े ऑफिसर आए, एसडीओ आए, डीएम आए, जो भी आए, पांच लोग के, ठीक है। अब मेरा कहना है कि पांच लोग से ही अगर पर्सनल में बात करना है तो पांच लोग में ही आप अपने फैमिली में ही इलेक्शन लड़के।
5: ये प्रदर्शन राजनीतिक भी हो चुका है। जंतर मंतर के प्रदर्शन पर सवाल उठा रही बीजेपी रांची के प्रदर्शन को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी प्रदर्शनकारियों से मिलने गए थे, लेकिन इधर जंतर मंतर के छात्रों के समर्थन में दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास घेरने वाले राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन के साथ सरकार में शामिल है। अब छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं।
1: एक सवाल जो बार बार उठ के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें शामिल है कांग्रेस। कांग्रेस जो छात्रों की गूंज प्रयागराज तक लेके गई है, कांग्रेस जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ गए थे, आपके साथ उन्होंने आकर खड़े नहीं हुए हैं जैसा उनको उतरना चाहिए था, डिसअपॉइंटेड है उनसे।
2: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची।
1: कुछ नहीं,
2: लड़की नहीं है मैम, मेरे लिए यही वर्ड सही है, हबीबी कम टू रांची।
1: पर डिसअपॉइंटेड है,
2: बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड मैम, मन खराब हो गया है। आप नीट के लिए इतना हावी प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री का आवास घेर रहे थे, और वहाँ तो एक एग्जाम का बात था मैम, वो भी एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ तो हमारे नौकरी का सवाल है।
5: प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र को देखो उसकी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची के ही छात्र यहाँ आए हैं, पूरे झारखंड से छात्र यहाँ आए हैं। 19 साल का ये लड़का चतरा से यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आया है। जब ये 10वीं कक्षा में था तब इसका भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब ये ग्रेजुएट हो गया है और भाई अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाया। अब दोनों भाई साथ में तैयारी करते हैं।
1: जब आप
8: 10th में थे,
1: आप 10th
8: का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो भैया हैं ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे हैं, इनका ये 30+ हो गया। बताइए,
1: आप दोनों एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कितने साल के हैं सर?
3: मेरा 30 साल हो गया, 30 ईयर।
1: और ये 19 साल के हैं, कब से एक ही एग्जाम दे जा रहे हैं?
3: की एग्जाम
1: कब से?
3: 8 साल से।
1: 8 साल से एक एग्जाम दे रहे हैं?
3: जी जी जी, क्योंकि हम लोग पास पैसा नहीं है, जिसे पास पैसा था वो लोग सिलेक्शन होके चल गया। झारखंड की ये स्थिति है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है सब जो पोस्ट का होता है सारा का पैसा का रेट का भाव खुल जाता है मार्केट में, जिसके पास जितना पैसा रहता है सब देखकर ज्वाइन कर लेता है। अभी जैसे जेपीएससी का आया तो डीएसपी का 1,30,00,000 रुपया रेट था, वीडियो सीओ 1,20,00,000 रुपया रेट था। जैसे तो सरकार से हमको कहना है कि अगर इसी तरह करना है तो कॉलम आता है ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, तो रेट का भी कॉलम खोल दे।
5: ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं, जिससे मिलो उसकी अपनी अलग कहानी है। एक और अभ्यर्थी मिला जो अब 35 साल के हो गए, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं अनियमितताओं की वजह से एग्जाम निकल ही नहीं रहा।
1: आप कितने एग्जाम दे चुके हैं?
9: मैंने 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे हैं जेपीएससी का।
1: सारे रद्द हुए हैं?
9: सारे रद्द नहीं हुए हैं, अभी तो इसके लिए हम लोग आए 14 के लिए, ये रद्द हुए।
1: पेपर लीक हुआ है सर?
9: हाँ, पेपर लीक हुआ इसके लिए।
1: कितने साल दे चुके हैं आप इन एग्जाम्स में?
9: मैंने तो मेरा ये 35 ईयर्स हो रहा है, ये एज 35 ईयर्स है।
1: कब से दे रहे हैं एग्जाम?
9: 2016 से दे रहे हैं, 2016 से।
1: पिछले 10 साल से आप ही एग्जाम दे रहे हैं?
9: 3 मेंस लिखे, 2 इंटरव्यू दिए, और ये वाला एक जेपीएससी है 14 वाला, इसका तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सब देख रहे हैं कि अभी तो कट ऑफ भी नहीं पता, रिजल्ट निकाल दिया है,
1: कट ऑफ जारी।
5: ऐसा नहीं है कि यह हाल किसी एक एग्जाम का हो। एक और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मिले, विक्रम। झारखंड सरकार ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए पिछले 7 साल से भर्ती ही नहीं निकाली है। जब से झारखंड बना है तब से सिर्फ 3 बार भर्ती निकली है, अभी तो जद्दोजहद भर्ती निकालने की।
10: बात ऐसा है कि हम सब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इतने अभागे हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता है एग्जाम देने को। पिछले 26 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ है सिर्फ 3 बार एग्जाम हुई, 2007, 2013 और 2019 में। 2019 के बाद एक भी एग्जाम नहीं हुई है। तो हमने RTI के जरिए आंकड़ा निकाला था, वो आंकड़ा निकल के आया है हमारा 539 सीट खाली है, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली होता है। इसके बाद हमने मतलब प्रॉपर चैनल के माध्यम से जितने भी टेबल्स होते हैं वहाँ पे जाके अर्जी लगाई है कि हमारा वैकेंसी आ जाए, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। ये जो लेटर आप देख सकते हैं, मतलब विभाग में जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो DOPT में, उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जारी होती है। यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ बताया जाता है, और इसी तरह से हमें घुमाया जा रहा है।
5: प्रीति चौधरी, रांची, आज तक।
0: तो एक दिन पहले रांची छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली और परीक्षा में धांधली पर सवाल उठाए गए, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा, देखिए।
11: बीते 12 दिनों से झारखंड के ये युवा लगातार सड़कों पर हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे, मांग इतनी है कि JPSC JSSC में जो धांधली हुई है उसे खत्म किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले। वो बेरोजगारी से जूझते झारखंड में युवाओं के जो सपने टूटे हैं, और अब इंसाफ की मांग के लिए ये छात्र मड़ुआ रोटी खाएंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए, और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं। और आगे जिस स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, देश का झंडा लेकर के नारे लगाते हुए ये युवा जो है झारखंड रांची की इन सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। 12 दिन से आप लोग हर मौसम में आंधी तूफान गर्मी क्या कुछ नहीं देखा है, वो क्या चीज है जो इन युवाओं को हिम्मत देती है?
12: देखिए भैया, सबसे पहला बात देखिए, अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है, लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले है, माड़ भात खाने वाले है, बोथल भात खाने वाले छात्र है। नहीं पूरा करेगी तो इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे।
11: मौसम तो मुझे लगता है कोई चुनौती रही ही नहीं, लेकिन इन 12 दिनों के बाद
13: हौसले बहुत हैं सर। मौसम फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा।
11: आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करना है, हमें आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, क्या कहीं पर लग रहा है कि एक बातचीत का भी विंडो खुलने की कोई उम्मीद है?
14: सर, इसके लिए हम लोग कोर कमेटी का बैठक करेंगे, कि डेलीगेशन टीम को जो बुलाया गया है आपस में निर्णय लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करना है, उसके बाद जो कोर कमेटी का जो बात रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा।
15: कुछ झुकनी पड़ेगी, जब तक नहीं झुकेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।
14: झुक गई है तब तो डेलीगेशन टीम के लिए भेज रही है, सरकार झुकती नहीं तो डेलीगेशन।
13: हम लोग झारखंड छात्र हैं, याद रखिएगा, हम लोग जब लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर, हम बता दें सर। आज आप लोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए, पर हमारे मुख्यमंत्री अभी तक मिलने तक नहीं आए कि मिल लेते छात्र। हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं ना, हम भी उनको नौकरी के नाम पे वोट दिए थे सर कि सर आएंगे। हम लोग कल्पना मैम का देखे थे रोते हुए वीडियो, तो हमने वोट दिए थे कि मैम जीतेंगी।
11: और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अव्यवस्थाओं में है, ये जंतर मंतर नहीं है, रांची की सड़कें बहुत पतली हैं, ये खुद वॉलंटियर बने हैं।
0: छात्रों के प्रदर्शन को अब आवाज मिलती जा रही है, लोग खुलकर उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। लेखक सिंगर निलोत्पल मृणाल भी उनके बीच पहुंचे और उनसे खास बातचीत की, आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार ने देखे।
16: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पोएट आए हैं, निलोत्पल मृणाल हमारे साथ हैं। निलोत्पल जी, कब आए यहाँ रांची आप, और कैसा है यहाँ पे जंतर मंतर से कितना अंतर दिख रहा है?
17: कल रात 12 बजे आया था और मेरे ख्याल से हमें जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंतर में नहीं फंसना चाहिए। इस आंदोलन का जो मंतर है उसको जपना जरूरी है कि जो झारखंड के युवाओं की समस्या है उसको सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ सुनती है। अभी अभी एक अच्छी खबर आई है कि माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए डेलीगेशन को बुला रहे हैं, तो अगर छात्र वार्ता करते हैं तो टेबल पर ये बात फिर जाएगी, क्योंकि संवाद जरूरी है। तो ये 12 दिन के बाद ये इस आंदोलन का की ताकत है, उसकी गूंज है कि माननीय मुख्यमंत्री खुद बात करने के लिए तैयार हुए।
16: कुछ यहाँ पे जो है आप लोग आप किस तरह से समर्थन आपने किया, विद्यार्थियों को क्या एक्सपेक्टेशन था आपसे?
17: नहीं, मैं देखिए लेखक हूँ, मैं किताबों में विद्यार्थियों की समस्या लिखता हूँ, युवाओं की लिखता हूँ, इनके लिए कुछ लिखा तो था ही। और मैं यहाँ आया तो रात को मैं यहीं पर था, मैं रात भर लगभग 4 से 5 बजे सुबह तक मैं यहीं था, और अभी भी मैं दिन भर यहाँ पे हूँ, तो बोल ही रहा हूँ।
16: तो कुछ हो जाए उनके लिए, कुछ जो आपने उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ लिखा, उनको बूस्टअप करने के लिए।
17: माथे पर ले गमछा चलते चलते, जीत लेंगे एक दिन लड़ते। तो ये लगे हुए हैं और इस लड़ाई में जीत के करीब है, तो ये बहुत सकारात्मक पहल है। पहली बार झारखंड के छात्रों ने झारखंड के नक्शों को पूरे देश में
16: एस्टेब्लिश किया,
17: चमका के दिखाया है। अब भारत खनिजों के लिए, झारखंड केवल खनिजों के लिए नहीं, अपने नौनिहाल के जिजीविसा के लिए भी जाना जा रहा है पूरे देश में।
0: तो पेपर लीक आंदोलन के बाद सुर्खियों में आई कांग्रेस जनता पार्टी अब अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। दरअसल कल सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर छत्रपति संभाजी नगर में अहम बैठक हुई। ये बैठक आज भी जारी रहेगी और इस बैठक में देश भर में छात्र आंदोलनों को समर्थन देने और संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई है। लेकिन अभिजीत दीपके ने यह ऐलान साफ कर दिया है कि वो राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, फिलहाल वो प्रेशर ग्रुप से सरकार पर दबाव बनाएंगे।
18: क्या जंतर मंतर के बाद कांग्रेस जनता पार्टी रांची में भी छात्रों की आवाज बुलंद करेगी? क्योंकि आज महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस जनता पार्टी ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक से पहले अभिजीत दीपके मीडिया के सामने आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आने वाले समय में राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा जो सरकार पर आम लोगों के मुद्दों पर दबाव बनाएगा।
19: सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है, और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टी है उसको तोड़ा जाता है ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चली, एक सोशल मूवमेंट चली।
18: जब मीडिया ने दीपके से पूछा कि क्या वो झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने वहां जाएंगे, इस पर दीपके बोले, हम निश्चित रूप से झारखंड जाकर छात्रों की मांगों का समर्थन करेंगे।
19: डेफिनेटली वी विल गो टू झारखंड एंड वी स्टैंड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग देयर एंड वी सपोर्ट देयर एवरी डिमांड। जो हमारे पहले ही आंदोलन को सफलता मिली है उसके बाद लोगों की हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए अब जैसे हमें पूरे देश भर से समर्थन मिला था, ये जो आंदोलन हुआ था वो बस जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा था, वो पूरे देश भर में हुआ था, पूरे देश भर के लोगों ने हमें समर्थन दिया था अपना। तो उसके चलते अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कांग्रेस जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम।
18: आज की बैठक में कांग्रेस जनता पार्टी में चर्चा हुई कि आगे उन्हें किन किन राज्यों में आंदोलन के लिए कूच करना होगा।
20: अभिजीत दीपके ने एक बात लाइन क्लियर कर दी है कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक संगठन नहीं बनाना चाहते, हम एक प्रेशर ग्रुप रखेंगे। वो प्रेशर ग्रुप सरकार जिस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उनकी नीतियां क्या है, मूल्य क्या है, उन सब पर कड़ी निगरानी रखेगा। इतना ही नहीं बल्कि प्रेशर ग्रुप, अभी तो उन्होंने ये कहा है कि एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी हो रहा है, अभी झारखंड में जो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है वो हो, या फिर महाराष्ट्र में सीटी एग्जाम को लेकर अभी बवाल हो रहा है, रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अब सवाल उठाए जा रहे हैं, देयर आर डिफरेंट स्पेकुलेशंस कि इसमें भी पेपर लीक होने की आशंका है, टेंडर कैसे सेट हुए। तो कांग्रेस जनता पार्टी आने वाले वक्त में इन सभी घटनाओं पर नजर रखेगी।
18: इससे पहले शिक्षाविद और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी रांची में बैठे आंदोलनकारियों से फोन पर बात की।
6: कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा।
4: अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी, आप बेहोश होंगे, फिर सरकार का अपना निर्णय लेगी।
18: कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दूसरे सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की।
21: जिसकी दुकान सिर्फ लोगों के बारे में झूठ फैलाकर चलती है, उस व्यक्ति द्वारा अभी कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में सौरभ दास पर लगातार गलत आरोप लगाए गए, सौरभ के घर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और उसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आज सुबह कई यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स सौरभ के घर पहुंच गए, उनमें से कुछ लोगों ने घर में घुसने की भी कोशिश की और पूरी तरह से सौरभ की और उसके परिवार की निजता का उल्लंघन किया।
18: वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में युवा सीजेपी से जुड़ रहे हैं और अब उन्हें संगठित करने के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार की जाएगी।
22: उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे, दो दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा, एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए।
23: अभी जी फेरी आने वाला पाहुणे की सेवा कर रहे का
24: मैं अभी चला गया।
18: मीटिंग से पहले अभिजीत दिपके पत्रकारों को अपने हाथ से चाय बांटते दिखे, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग ये वीडियो शेयर कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष को भी ये लग रहा है कि जो प्रेशर वो सरकार पर नहीं बना पाए उसे सीजेपी ने कर दिखाया।
25: कॉकरोच और छिपकली इनको तो हम ज्यादा नहीं जानते, हम सिर्फ ये जानते हैं कि सकारात्मक राजनीति हमें करनी है। बच्चों के मुद्दे सही हैं, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था जो अच्छी होनी चाहिए थी अभी नहीं हुई है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारी खुद की अपनी पार्टियां हैं तो कॉकरोच मॉकरोच को लेकर हम क्या जीवन में राजनीति करेंगे, हम अपनी खुद की राजनीति करेंगे।
26: मुझे लगता है कि अभी कोई सूरत का एक आरटीआई का कोई वर्कर है, कार्यकर्ता है, उन्होंने मतलब उनके संबंध में कुछ टिप्पणी की है कि भाई वो अमेरिका कैसा गया था, पैसा उन्होंने कहाँ से लाया था, तो उसका कोई बीजेपी से आरपीआई से या कोई एनडीए से कोई संबंध नहीं है। मतलब जो आरटीआई का कार्यकर्ता है वो ऐसा ही कार्यकर्ता है, ऐसे ही कार्यकर्ता मांग करते रहते हैं।
18: फिलहाल कांग्रेस जनता पार्टी की हर गतिविधि पर सरकार और पुलिस की नजर है, इसीलिए बीजेपी का कोई भी नेता सीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहा है।
27: जब वांगचुक ने इस आंदोलन का बैकिंग दिया है, वो उनके विद्यार्थियों के पीछे खड़े, तो क्या अभिजीत दिपके उनकी सीजेपी भी इनके पीछे खड़े रहेगी? तो दिपके का ये साफ साफ कहना था कि अगर जरूरत होगी तो हम वहां जाएंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक हमारे मेंटोर है और वो जो कहेंगे उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। आज की मीटिंग में भी यही तय होगा कि अब झारखंड हो जहां आंदोलन शुरू है वहां क्या करना है, रोड मैप कैसा रहेगा, स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, और आने वाले वक्त में सिर्फ एजुकेशन या फिर शिक्षण व्यवस्था के बाद भी, यानी कि आरोग्य हो, कुछ अलग अलग गांव के किसानों के इश्यू हो, एग्जैक्टली कौन कौन से मुद्दे पर सीजेपी ये पूरे आंदोलन को आगे लेके जाएगी, देखना बहुत अहम रहेगा। कैमरा पर्सन राजू रेवड़कर के साथ में ओंकार बाबले, छत्रपति संभाजीनगर, आज तक।
0: यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
28: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
29: The government controlled everything.
1: They didn't want too much private industry.
2: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time. Slowly, I think new entrepreneurs came up.
1: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

0: बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि कुंडली की अशुभता को दूर कर देती है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य और क्या है बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

का 13वां दिन आंदोलन जारी। सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी उठा सकती है मुद्दा। दो हजार 27 के यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का बिगुल, अखिलेश ने चला ब्राह्मण कार्ड। अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार, जीत का किया दावा। संसद के विपक्ष के हल्ला बोल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध, आज भी

0: पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समर्थन। शेख हसीना ने दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान। उनके समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ हिंसा। बांग्लादेश में घर पर पेट्रोल बम से हमला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा। अब खबर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई के लिए बिगुल बजा दिया है और अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। पहले उम्मीदवार के रूप में पवन पांडे का नाम तय हुआ है। वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश ने ऐलान कर एक साथ कई निशाने भी साधे।
1: पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं।
0: तो यूपी में ब्राह्मण वोट को लेकर सियासत जोरों पर है और यही वजह है कि अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को जोड़ देते हैं।

0: पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज। प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति, पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है।
1: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं।
0: इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए। और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला।
1: याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है, सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है कोने हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें।
2: समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है सौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में गांव में कहावत है बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कालर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहां से बिल्ली मौसी आ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे, ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजिम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं।
3: भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा, उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है।
4: ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया, क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे?
5: बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये है कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए।
6: तो सनातन धर्म के सम्मान की बात करकर जब हिंदू वोट को बीजेपी लगातार साधती रही है, तब पिछले दो महीने से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर विपक्ष को बीजेपी को घेरने वाला हथियार मिला हुआ है। और स्पीकर सतीश महाना के बयान के बाद और भी ब्राह्मण वोट के साथ पूरे हिंदू वोट को लेकर तनातनी बढ़ गई है।
3: आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का का धन निकाल लिया और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को। कहा कि ये ही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने, जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं।
7: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
8: संसद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर और भीतर तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक हमला इसी तरह जारी है। लखनऊ में विधानसभा में अलग लड़ाई दिखती है, हाथ में तख्तियां और जुबान पर तल्ख तेवर। विपक्ष के विधायक चढ़ावा चोरी के मसले पर दान पात्र लेकर विधानसभा के बाहर बैठे। मंगलवार को स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर निकाल दिया। बुधवार को वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए।
9: मेरा निष्कासन हुआ है तो मैं अंदर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी पर सदन के अंदर चर्चा हो।
8: यही पोस्टर लेकर सचिन यादव सदन के भीतर आए, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। स्पीकर कहते हैं मुख्यमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए।
10: मेरे विचार से सदन के माननीय नेता, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व।
8: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच स्पीकर सतीश महाना खुद विवादों में घिरे हैं, जहां स्पीकर ने चढ़ावा चोरी पर नारे लगा रहे विधायकों से चंदे की रसीद मांगी थी।
10: मुझे कितना संतोष हो रहा है

0: मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई यहाँ, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे।
1: इस तरह के बयान पहले भी सतीश महाना देकर पलट चुके हैं। फिलहाल दोबारा चंदा विवाद पर सवाल करने पर रसीद मांगी, विपक्षी विधायक प्रतीकात्मक रसीद लेकर पहुंच गए। महाना के बयान पर विपक्ष ने और चढ़कर घेर लिया।
2: बड़े लोग शामिल होंगे और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग। देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारी हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में है। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पर पाप पड़ा, जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है।
3: आप उत्तर प्रदेश के स्पीकर पर भी सवाल उठाते हो, ये भारत के संविधान के अनुच्छेदों से कहीं ना कहीं आच्छादित ये कुर्सियां हैं। एक तरफ आप लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करने के लिए हर षड्यंत्र कर रहे हैं, एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो उनके किसी सीख की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो आचरण क्या विधानसभा में हुआ, ये आचरण क्या शोभा देता है?
1: वहीं ओवैसी कहते हैं कि चेयर से चंदे की रसीद मांगना विधानसभा की गर्मियों पर सवाल उठाता है। ओवैसी का सवाल है कि गुनाह का मुद्दा उठाने के लिए मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या?
4: उनको इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, उनको बोलना है तो वही काशी के ज्ञानव्यापी परिसर के बारे में बोलें और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी ईदगाह के बारे में बोलें।
1: फिलहाल ब्राह्मण वोट साधने से लेकर राम मंदिर चढ़ाव विवाद तक पर रणनीति बनाकर बढ़ती समाजवादी पार्टी की नजर बीजेपी के साथ एकजुट रहे हिंदू वोट को तोड़ने की है, ताकि 40% के पार तक 2027 के चुनाव में पहुंचा जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीओके में गोलियां चलवाने वाले आसिम मुनीर का डबल गेम जारी है। दरअसल मोहसिन नकवी के साथ मिलकर आसिम मुनीर इस्लामाबाद में तख्ता पलट करने की साजिश रच रहे हैं, कैसे देखिए।
6: पीओके में बेगुनाहों पर फायरिंग, इस्लामाबाद में तख्ता पलट की साजिश। आसिम मुनीर का डबल गेम एक्सपोज, इस्लामाबाद तक विरोध। पीओके में फर्जी चुनाव का खेल, शरीफ खानदान और भुट्टो परिवार की भिड़ंत। आसिम मुनीर का घातक गेम प्लान, पूरे पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश। पीओके में मुनीर ने शांति लाने का ठेका आतंकियों को क्यों दे दिया? पीओके में इस वक्त बगावत की जो आग धधक रही है, उसे पाकिस्तान की सरकार और सेना दबाने की पूरी कोशिशों में जुटी है। लेकिन पीओके वालों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में विद्रोह बढ़ता ही जा रहा है। पूरा पीओके जल रहा है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं,

0: बुनियादी हक मांगने पर उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। पिछले हफ्ते भर में ही 100 लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई है। पीओके में मुनीर की सेना गोलियां बरसा रही है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी पीओके में फर्जी चुनाव करवा कर खुद को पीओके का विजेता घोषित करने पर तुली है। लेकिन सच्चाई क्या है, खुद पाकिस्तानी पत्रकार इसकी सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं।
1: लगातार फायरिंग हो रही है, जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं और जाहिर बात है कि विजुअल्स हम इससे ज्यादा आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है इसके ऊपर इनके अपने जो अंदर झगड़े बन गए हैं, जो सिस्टम तो फेल हुआ है लेकिन इनके अपने अंदर भी झगड़े शुरू हो गए हैं। जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा जो इनका है, जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बना के बैठा हुआ है, उनके अंदर भी मामला जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त इस इलेक्शन की तरफ अब जब देखते हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब तक 45 में से 23 सीट्स जो है वो उनको दान की जा चुकी हैं, उनके हवाले की जा चुकी हैं, उनको जो है वो गिफ्ट की जा चुकी हैं। आसिम मुनीर अपनी मशूक को जो है वो तोहफे के अंदर जो है 45 में से 23 सीट्स दे चुका है।
0: आपको बता दें कि पीओके विधानसभा की 45 सीटों पर तीन चरणों में दिखावटी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में पीएमएलएन ने 13 में से 9 सीटें जीती थीं। अब दूसरे चरण के बाद उसके पास कुल 23 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण 10 अगस्त को होना बाकी है। हालांकि पीओके वाले दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव फर्जी है। जब वहां बहिष्कार हो रहा है तो वोट कौन डाल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया ने खुद दिखाया है कि कैसे पोलिंग बूथों पर सन्नाटा है, तो फिर वोट कौन डाल रहा है?
1: चेक करें आप, पुलिस वाले टेबलों के ऊपर सो रहे हैं, वोटर एक भी नहीं है और इतनी गहरी नींद सो रहे हैं कि कैमरामैन टीम आके बड़े कैमरों से फुल फ्लैश तस्वीरें बना के नशर कर रही है। सुनसान बयाबान ये हो रहा है इलेक्शन।
0: पीओके को लेकर एक और पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, पीओके में आसिम मुनीर अब शांति बहाल करने का ड्रामा खेल रहे हैं, जिसके तहत एक पीस कमेटी बनाई गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पीस कमेटी में आतंकियों को शामिल किया गया है। जी हाँ, पीस कमेटी के नाम पर एक प्रतिनिधि मंडल रावला कोट भेजा गया है, जिसमें इलियास कश्मीरी जैसा आतंकी भी शामिल है। जैश मोहम्मद के इस सीनियर कमांडर के पीस कमेटी में शामिल होने पर पाकिस्तान की नियत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लश्कर-ए-तैयबा भी JAC आंदोलन के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। संगठन लगातार JAC नेताओं को गद्दार बता रहा है, उनके खिलाफ प्रचार अभियान चला रहा है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों का खुलकर समर्थन कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पीओके में आतंकी भेज रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव का ढोंग करके पीओके पर अपना कब्जा बनाए रखने की साजिश भी रच रहा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती।
0: पाकिस्तान में एक चर्चा ये भी है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी मिलकर बड़ा गेम कर रहे हैं। आखिर मुनीर ने एक तीर से कई शिकार करने का प्लान बनाया है। वो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे में भड़के विद्रोह को दबाने के लिए उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए पाकिस्तान के दो परिवारों, भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। और आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ की ही पार्टी के मंत्री मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया और ये बयान दिलवाया कि 70 साल पुराना पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो गया है और नए सिस्टम की जरूरत है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और मोहसिन नकवी को रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि कैसे शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी और उनकी पार्टी के बीच खुली जंग छिड़ गई है।
1: मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इत्तला के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं जारी बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैप की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया सदर जरदारी को, मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा।
0: मोहसिन नकवी ने अचानक 21 साल पुराने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू घोटाले का मुद्दा उठाया है। सिस्टम फेल होने का दावा करने वाले मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें जज, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल रहे हैं।
3: इतना बड़ा स्कैम मेरे नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा जिसमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, बैंकर्स हर एक इन्वॉल्व है और 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग पैसे खाते रहे।
0: लेकिन अब इस्लामाबाद में भी आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी का तख्ता पलट वाला प्लान एक्सपोज हो रहा है। जी हाँ, जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन नकवी का जमकर मजाक उड़ाया है और ये तक कह दिया है कि वो वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई केक नहीं है कि जब मन आया छुरी से काट दिया।
4: नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं लेकिन कुछ वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात जो है वो अपनी जाती कैपेसिटी में की है। क्या मुल्क इस बात के लिए तैयार है कि सूबे बनाए जाएं? सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बनते हैं। ये कोई केक तो नहीं है कि आप आराम से छुरी लेकर उसको बस जिस तरह चाहें काट दे। सूबे बनाने की बात के लिए क्या मुल्क तैयार है?
0: उधर पाकिस्तान में एक और बवाल शुरू होने जा रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2023 को ही इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनसभाओं, प्रदर्शनों और लॉन्ग मार्च जैसी रणनीति पर चर्चा की गई है। आज तक ब्यूरो।
5: चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि कुंडली की अशुभता को दूर कर देती है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य और क्या है बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सो सॉरी।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

का 13वां दिन आंदोलन जारी। सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी उठा सकती है मुद्दा। दो हजार 2027 के यूपी चुनाव के लिए समाजवादी

बोल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध। आज भी हंगामे के आसार। अब मानसून सत्र में ही पेश किए जाने वाले परिसीमन और एफसीआरए बिल पर सियासत तेज। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समन। शेख हसीना ने दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान। उनके समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ हिंसा। बांग्लादेश में घर पर पेट्रोल बम से हमला।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियां बड़ा कमाल करती हैं। कभी कभी किसी ग्रह की दृष्टि से कुंडली बिगड़ जाती है और कभी कभी किसी ग्रह की दृष्टि से जीवन बेहतर हो जाता है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की दृष्टियों के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम के 6:52 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र रात के 8:13 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टि का बड़ा महत्व है, क्योंकि उनकी दृष्टि कुंडली के और जीवन के परिणाम बदल सकती है। हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति की दृष्टि के बारे में। बृहस्पति की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास विशेष दृष्टियां भी पाई जाती हैं। बृहस्पति के पास सातवीं दृष्टि तो होती ही है, इसके अलावा पांचवी और नवी दृष्टि भी होती है। बृहस्पति की दृष्टि अत्यंत शुभ और बड़ी शक्तिशाली मानी जाती है। बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है या जिस भाव पर पड़ती है उसको अत्यंत शुभ बना देती है। बृहस्पति का बैठना अशुभ होता है सामान्यतः। बृहस्पति जहां बैठे वहां स्थान हानि करते हैं, लेकिन बृहस्पति जहां देखते हैं, जिसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उसके अंदर शुभता आनी शुरू हो जाती है। बृहस्पति की दृष्टि पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के पावन महीने में एक अचूक उपाय आपको बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बृहस्पति की दृष्टि जब अलग अलग ग्रहों पर पड़ेगी तो इसका असर क्या होगा वो भी समझते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़े तो व्यक्ति को बहुत सारा मान सम्मान मिलता है, राज्य से गवर्नमेंट से सहायता और कृपा प्राप्त होती है। अगर चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो मानसिक रूप से जीवन में स्थिरता आती है, और चंद्र के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी हो जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति मंगल की परस्पर दृष्टि हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। हालांकि अगर केवल बृहस्पति मंगल को देखे, मंगल बृहस्पति को न देखे, तो व्यक्ति के पराक्रम को साहस को बढ़ा देता है। बुध पर अगर दृष्टि है तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में, समझाने और सलाह देने वाले क्षेत्र में जीवन में बड़े सफल होते हैं। बहुत बड़े पत्रकार, लेखक, विद्वान, ज्योतिषी, साहित्यकार ऐसे लोग होते हैं जहां पर बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है। बाकी ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

होंगे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

चिंता हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आशुतोष जी ने लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मई 1989। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने का योग क्या है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आशुतोष, आपकी कुंडली में विवाह का समय शुरू हो चुका है और ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है कि जून 2027 के पहले अगले 6 से 8 महीने में आपकी शादी होगी। विवाह जब भी करें, संतान वाले पक्ष को लड़की की कुंडली में अच्छी तरह देख लीजिएगा, यानी कुंडली मिला करके संतान वाले पार्ट को देख करके अगर आप विवाह करें तो परिणाम बेहतर होंगे। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने, रोज सुबह 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो हमने आपको बताया कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो उसका प्रभाव क्या होगा। अब बाकी ग्रहों के हाल भी जान लेते हैं। अगर शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति वैभवशाली होता है। अगर लेकिन शुक्र बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे हो तो व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन की संभावना आ सकती है। लेकिन अगर केवल बृहस्पति शुक्र को देखे तो व्यक्ति को जीवन में ऐश्वर्य मिलता है और व्यक्ति का चरित्र काफी मजबूत होता है। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है। शनि पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव कभी कभी आदमी को आध्यात्मिक पढ़ाई या कानूनी पढ़ाई की तरफ ले जाता है। राहु और केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और ये ग्रह सामान्यतः आपको परेशान करना बंद कर देंगे और अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। यानी अगर कुंडली में कोई अशुभ योग है, कुंडली में कोई अशुभ कॉम्बिनेशन है और उसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वो अशुभता, वो नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। बृहस्पति की दृष्टि पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का
दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि तो शुभ है, जिस ग्रह पर पड़ेगी, जिस भाव पर पड़ेगी, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क करके उसको शुभ और पवित्र बना देगी। लेकिन अगर बृहस्पति के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, सामान्यतः राहु, केतु और शनि को पाप ग्रह माना जाता है। अब राहु और केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती, केवल शनि के पास ही दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति के ऊपर पड़े तो ये काफी दुष्प्रभाव डालती है, काफी नकारात्मक असर डालती है। बृहस्पति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़े तो वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होती है, पेट की बीमारी होने की या गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है। बृहस्पति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़े तो इस दृष्टि संबंध के कारण कभी कभी व्यक्ति कानून की, लॉ की या दर्शन यानी फिलॉसफी की शिक्षा प्राप्त करता है। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़े, गुरु की दृष्टि शनि पर पड़े, परस्पर सम सप्तक हो तब इसके प्रभाव बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन अगर शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर नहीं पड़ रही है तब बृहस्पति को ज्यादा नुकसान होगा। केवल शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ने से उसकी शुभता में, उसकी पवित्रता में कमी आ जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

रखें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि को देखता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि उसकी दृष्टि उच्च की है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि को देखता है तो लोग कहते हैं कि उसकी दृष्टि नीच की है। क्या दृष्टि भी उच्च या नीच की होती है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में दृष्टि उच्च की होगी या नीच की होगी ऐसा नहीं लिखा गया है। दृष्टियां सामान्य होती हैं। हाँ, जब आप दृष्टियों का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब दृष्टियों का वर्गीकरण करते हैं तो एक पाद की, दो पाद की, चार पाद की, यानी अलग अलग चरणों की दृष्टि होती है, हो सकती है। लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि उच्च की होगी, किसी ग्रह की दृष्टि नीच की होगी ऐसा संभव नहीं है। किसी भी ग्रह की दृष्टि उच्च या नीच की नहीं हो सकती। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर एक से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर एक, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रजनी बाला जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1971। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। रजनी बाला जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है और कोई ना कोई समस्या मेरे जीवन में लगातार चलती रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य
बेहतर हो जाए। रजनी बालाजी, आपकी कुंडली में शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या उतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी दिक्कत हड्डियों और नसों की जरूर है आपको, लेकिन आपकी ज्यादातर दिक्कत साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। ऐसा लगता है कि परिवार का सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस का लेवल ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर 2026 के बाद स्थितियां बेहतर होंगी और अगले साल तक आप काफी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन बेवजह की चिंता करना, बेवजह का तनाव पालना, ये आपको बंद कर देना चाहिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लीजिएगा और रोज सुबह स्नान करके इत्मीनान से बैठ करके नारायण कवच या तो पढ़िए या तो सुनिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

के लिए हर कार्य में सफल होंगे, रुकावटें दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, बेवजह की चिंता और तनाव हो सकता है, काम का बोझ बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, आज भगवान शिव को पीले फूल चढ़ाइएगा या जिस भी भगवान के प्रति श्रद्धा है उनको पीले फूल चढ़ाइएगा, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। सावन का पावन महीना चल रहा है और अब आपको बताते हैं सावन के महीने का अचूक उपाय सावन सूत्र में। अगर किसी बालिका का कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो जितने दिन सावन में बचे हैं जितना कर सके वो बालिका अगर सावन में पार्वती मंगल का पाठ करे तो निश्चित रूप से उसका विवाह शीघ्र होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। दरअसल पटना में देर रात चेल्लुम अखाड़ा जुलूस के दौरान हुआ बवाल। जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच हाथापाई हुई है, जोरदार हाथापाई की गई और विवाद सुलझाने के दौरान पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। दरअसल खाजू कला के SHO विद्यानंद वर्मा के सिर में चोट तक लगी है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया और वही जुलूस निकाला जा रहा था और उस दौरान हाथापाई हुई है दो गुटों के बीच, जिस वक्त SHO भी घायल हुए हैं। देर रात पटना में बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विवाद सुलझाने पुलिस गई थी और पुलिस पर ही वहां पर लोगों ने हमला कर दिया, जिस बीच कालेखा के SHO विद्यानंद वर्मा के सिर में गंभीर चोट भी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

बिहार के रोहतास में मजदूरी और आपसी विवाद के चलते 60 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद बदमाश ने शव को नहर में फेंका, मचा बवाल। मजदूर की हत्या की खबर सुनते ही भड़के ग्रामीण, आरोपी के घर पर बोला हमला। लोगों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। बवाल की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शव की तलाश अभी भी जारी। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। डेयरी ईओ विमल कुमार हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी से सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया और जिला प्रशासन को मामले में स्पीड ट्रायल चलाने के सख्त निर्देश दिए। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी। चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने जारी किया बयान। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ कमियों को स्वीकार किया। कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीप फेक से निपटने में हुई चूक को भी माना। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मिले नेटफ्लिक्स के सीईओ। एंटरटेनमेंट सेक्टर की अपार संभावनाओं पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह सीईओ से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा भारत में कहानी सुनाने और रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान। नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की घोषणा। युवाओं को मिलेंगे मौके। आज मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत। 2000 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी। बढ़ते तनाव के बीच सीएम सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर यह प्रस्ताव सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीआईडी की चल रही जांच को खारिज किया। छात्रों ने सीबीआई जांच या स्वतंत्र जांच की मांग की। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा में बीजेपी के विरुद्ध प्रदर्शन की संभावना तेज। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर के प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने की प्रक्रिया पर केंद्र से मांगा गया जवाब। नई दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए। वहीं अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका लगा। कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की विदेश यात्रा याचिका। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा कोई भी टोल। मरम्मत पूरी होने तक एनएचएआई ने किया सस्पेंड। आज सीएम योगी आदित्यनाथ डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। मंत्री असीम अरुण भी रहेंगे मौजूद। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द हुआ। कार्यस्थल पर पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का हवाला देकर अनुमति निरस्त की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बोले यहां भी छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अजय राय ने स्पष्ट किया है कि शनिवार 8 तारीख को शाम 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद होकर रहेगा। चाहे जितनी बाधाएं डाल लो, युवा न्याय की लड़ाई नहीं रोकेगा। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। तो वहीं यूपी में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। कैंसर से थे पीड़ित। अखिलेश और मायावती ने जताया दुख। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले कुछ नौजवान छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने माफी मुद्दे पर फिर से सरकार पर बोला हमला। कहा इन छात्रों को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और अन्य तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। समित पात्रा ने कहा प्रदर्शन में कोई भी फायरिंग नहीं हुई और छात्रों के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए छात्रों के संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। कहा रांची के छात्रों की परेशानी भी समझ राहुल। छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की 2 दिवसीय रणनीति बैठक। देशव्यापी अभियान की रूपरेखा पर मंथन। सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने राजनीतिक पार्टी बनाने से किया इनकार। बोले कांग्रेस जनता पार्टी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी। देश को जन आंदोलन की जरूरत। मुंबई में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान के खिलाफ एनसीपी का विरोध प्रदर्शन जारी। जिशान सिद्दीकी के आह्वान पर जुटे कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कई हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम सनेत्रा पवार के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सियासी घमासान तेज। एनसीपी ने कांग्रेस को दी सोच समझकर बोलने की नसीहत। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जारी। आज से आंदोलन तेज करने का ऐलान। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने उभर

मांग को अनुरूप हो रहे हैं शिक्षक। संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा। सांसद बर्क और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। परीक्षा में धांधली के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा एबीवीपी। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर की पानी की बौछार। आज तक की खबर का असर। पीएमओ की दखल के बाद राजस्थान में छोटी नौकरियों के लिए खत्म होगा इंटरव्यू। रोडवेज कर्मचारियों को भी जल्द वेतन भुगतान के आदेश। यूपी के सहारनपुर में कावड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही है एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कावड़। भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे हैं दर्शन। तो वही मुजफ्फरनगर में आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट लंबी तिरंगा कावड़। देश के शहीदों को समर्पित कावड़ लेकर 21 शिव भक्त 190 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। बिजनौर में कावड़ में कहीं दिखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं पर कावड़ यात्रा में दिखी हनुमान जी और राम परिवार की झलक। प्रयागराज में भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कावड़। कावड़ियों ने अपनी अपनी कावड़ को दिया आकर्षण रूप। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कावड़ भी बनी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग कावड़ों की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं लोग। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हुई। गणपति बाप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्ति कलाकार। बप्पा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। कोर्ट ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर दिया है जोर। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल को भेंट की 3 मंजिला इमारत। चेन्नई में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी स्कूल में धनुष ने की थी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और असम सीएम हेमंत ने शिवसागर में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित संकट और नेपाली खूंटी इलाकों का दौरा किया नुकसान का जायजा। जेपी नड्डा ने केंद्र से हर संभव मदद का दिलाया आश्वासन। बोले असम के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। राहत और पुनर्विकास कार्यों में नहीं होगी कोई भी कमी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी में फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। नदी मार्ग नाले का बढ़ा जलस्तर। रांची के रिम्स अस्पताल में लबालब भरा पानी। मरीजों और परिजनों की बढ़ी इससे परेशानी। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़िए का सफल रेस्क्यू। पीएसी के आपदा राहत दल के जवान ने दिखाई फुर्ती। नदी में डूब रहे कांवड़िए को सकुशल निकाला बाहर। फर्रुखाबाद में गंगा नदी उफान पर पहुंची। 36 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आए। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा हुआ बारिश के बीच ढहा 100 साल पुराना मकान। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। बिजनौर में दर्दनाक हादसा। गन्ने के खेत में करंट लगने से किसान मजदूर की मौत हुई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। ग्रामीणों ने 5 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी समेत 3 को उम्र कैद। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मथुरा में छात्र की हत्या। जंगल की कोठरी में मिला एक शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में कैफे और मिनीप्लेक्स पर पुलिस का बड़ा छापा। 2 दर्जन युवक युवतियां हिरासत में। अनैतिक गतिविधियों की आशंका। जांच के बाद दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तो वही छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भीषण सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची छात्रा की जान। ट्रक ड्राइवर की सतर्कता से चला बड़ा हादसा। एमपी के मेहर से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। सरकारी स्कूल में ए सर्टिफाइड धुरंधर फिल्म देखते नजर आए छात्र। मामले में प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया। तेल चोरी मामले में एमपी के कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई। मथुरा पुलिस ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत की कुर्क। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 48 पर चलती कार में लगी भीषण आग। हाईवे पर मची अफरा तफरी। चालक की बाल बाल बची है जान। जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद से परेशान सिपाही ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया आत्महत्या का प्रयास। साथियों की सूझबूझ से बची उसकी जान। तो वहीं जूनी इंदौर के गुरुद्वारे में विवाद। चढ़ावे के पैसों के हेरफेर का हिसाब मांगने पर मैनेजर ने बुजुर्ग से मारपीट की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया पूरा केस। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खड़े डंपर से टकराई कार। 4 लोगों की हुई मौत। धनबाद में शॉर्ट सर्किट से बहुमंजिला इमारत के बिजली मीटर में लगी भीषण आग। आसपास के स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। बिहार एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। दरअसल मिनीगन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। 11 देसी पिस्टल और इसी के साथ हथियार बनाने के उपकरण के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने बहन पर किया जानलेवा हमला। बिहार के दरभंगा में अपने बकाए वेतन को लेकर संस्कृत के शिक्षक का फूटा गुस्सा। डीसी ऑफिस में किया अनोखा प्रदर्शन। हरियाणा के जींद जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप। 2 जेल सुपरिंटेंडेंट और 1 कैदी समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप। तो वही बिहार के बगहा में मवेशी तस्करी के संदेह में ग्रामीणों ने 5 युवकों को बंधक बनाया। करीब 10 घंटे तक कमरे में बंद कर मारपीट का आरोप। पुलिस ने बचाई जान। यूपी के शामली में पश्चिमी यूपी का

0: कुख्यात बदमाश फुरकान एनकाउंटर में ढेर, कार्बाइन पिस्टल बरामद, हत्या और रंगदारी जैसे 30 मुकदमे दर्ज। मथुरा में 2 करोड़ की हीरोइन समेत अलीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सूरत में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। पश्चिम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे वडोदरा निवासी की अचानक से दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई, अस्पताल पहुंचते ही ड्यूटी पर और मौजूद डॉक्टर्स के जांच के बाद मृत घोषित किया गया। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, दरअसल फर्जी पुलिसकर्मी बन लाइसेंसी पिस्तौल ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। वहीं पंजाब के गुरदासपुर में 2 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप, तलाशी के दौरान नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 31 जुलाई को हुई हिंदू युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया, प्रेम प्रसंग के मामले में कारण हुई थी साजिश।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जनेश्वर मिश्र की ऐसी जयंती लखनऊ वालों ने शायद कभी ना देखी थी। पुष्पांजलि तो हर साल होती थी, लेकिन ऐसा जश्न, ढोल नगाड़े डमरू डांस आरती पूजन, ये सब पहली बार हुआ। जर्मन हैंगर टेंट में जनवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर गुंजायमान था। जिन जनेश्वर मिश्र को दुनिया प्रखर समाजवादी मानती है, जिन जनेश्वर मिश्र को उत्तर प्रदेश में छोटे लोहिया की उपाधि मिली, उन्हीं जनेश्वर मिश्र में आज समाजवादी पार्टी एक जाति का चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते देते अब समाजवादी पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी जताती है, अपना फॉर्मूला तक बदल दिया। और पंडितों से अखिलेश का पॉलिटिकल प्रेम योगी राज में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार की दावों की कहानी से शुरू होता है। और तब अखिलेश यादव ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर और प्रयागराज में बटुकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों की प्रीति भोज तक का जिक्र कर डाला। मंच पर बैठे माता प्रसाद पांडे से लेकर इकलौते ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे तक का जिक्र करते हुए अखिलेश डोरे डाल रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान तो समाजवादी पार्टी ही करती है। और इस सियासी सम्मान के उद्गार के पीछे की जमीनी कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में करीब 11-12% ब्राह्मण हैं, जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने बीएसपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा चुनाव में 80% तक पहुंच गया। 2019 लोकसभा चुनाव में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला, तो 2022 विधानसभा चुनाव में 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए पाती है। अखिलेश को लगता है कि बिना ब्राह्मण वोट के आशीर्वाद के लखनऊ की कुर्सी हासिल नहीं हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कभी नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम गिनाते, कभी गोसाईगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति का जिक्र करते हैं, अखिलेश परशुराम जयंती पर अपने राज्य में सरकारी छुट्टी के ऐलान की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो इन दिनों पंडित जी के मुहूर्त से ही बड़े काम करने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सनातन समाजवाद वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता की ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद उन्हें जोरदार फटकार भी लगाते हैं। दरअसल देश की सियासत में राजनीतिक दलों के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के गठन से पनपी सियासी बेल तरह तरह के जातिवादी मोर्चों तक पहुंची है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी चर्चित हुआ और समाजवादी पार्टी 15 से अधिक प्रमुख जातियों और उपजातियों पर केंद्रित करके चुनावी रणनीतियां बनाने लगी। एक तरफ एसपी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करती है, तो क्षत्रिय वोट के लिए क्षत्रिय समाज मिलन समारोह करती है। वैश्य व्यापारी समाज के वोट के लिए एसपी का व्यापार प्रकोष्ठ, तो गैर यादव ओबीसी वोट के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से लेकर जनवादी क्रांति यात्रा चलाती है। अखिलेश कभी लोधी गुर्जर जाट समुदाय के लिए साम्यवादी समता भाईचारा अभियान चलाते हैं, तो कभी दलित वोट के लिए बाबा साहेब वाहिनी का गठन करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इसी राजनीतिक मंत्र पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार को जन विरोधी बता देते हैं। ये और बात है कि पीडीए के पी में अब पिछड़े की जगह पंडित की बात करने वाले अखिलेश की तमाम कोशिश के बाद भी 2022 के चुनाव में यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक जीत कर आए, जिनमें 46 बीजेपी और 6 समाजवादी पार्टी के थे। उससे पहले 2017 में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जिनमें 48 विधायक बीजेपी के थे और 10 एसपी बीएसपी अन्य दल। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2022 में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था, जबकि एसपी को 6-7% ही ब्राह्मण वोट मिला। और तब 2017 में करीब 80% ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का कब्जा था और एसपी गठबंधन को करीब 11% ब्राह्मण वोट मिला था। देखना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश का पी फॉर पिछड़ा का झंडा बुलंद होगा या फिर पी फॉर पंडित का। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

रांची में छात्रों के आंदोलन के 13वें दिन सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के चलते पड़ा दबाव। बीजेपी उठाएगी मुद्दा, सीएम से मिलेंगे 5 स्टूडेंट लीडर। दो के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने चली पहली चाल। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार, जीत का किया दावा। राहुल से रिजिजू की मुलाकात के बाद भी नहीं खत्म हुआ संसद का डेडलॉक। और आज भी विपक्ष के मार्च के बाद हंगामे के आसार। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण की कई पार्टियां। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समय। शेख हसीना ने दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान। समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ हिंसा। बांग्लादेश में घर पर पेट्रोल बम से किया गया हमला।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुबह के 8 बजे और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर आज का। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें आपको दिखाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत रांची में जारी आंदोलन से होगी, साथ ही जिक्र करेंगे हेमंत सोरेन की मुश्किलों की बात की। दरअसल यूपी चुनाव की भी करेंगे बात। अखिलेश ने किसे अयोध्या से उम्मीदवार बनाया है ये भी आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण कार्ड का भी जिक्र होगा और बताएंगे कि 2024 में हुई संबल हिंसा की रिपोर्ट में आखिर क्या खास है। एक खबर बिहार के रोहतास की भी, जहां पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। खबर मेटा पर जारी सवाल की भी आपको अपडेट के साथ देंगे और साथ ही आपको ये दिखाएंगे कि कुदरत की कहर की तस्वीरें आखिर क्या बयां कर रही हैं। तो बात रांची की सियासत की कर लेते हैं, जो कि काफी तेज है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी ओर आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने छात्रों की मांग को विधानसभा में उठाने की तैयारी भी की है। एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिले और दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात भी की है और जारी प्रदर्शन को लेकर जानकारी भी साझा की गई है। तो वही रांची में छात्रों का नॉन स्टॉप विरोध प्रदर्शन जारी है और आज उसका 13वां दिन है। अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी इसकी जांच सीआईडी कर रही है, कई अन्य मांगे भी हैं। छात्रों की डिमांड को लेकर सोरेन सरकार ने उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। हालांकि छात्रों ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया। छात्रों के एक गुट ने सत्र के पहले दिन यानी कि आज विधानसभा मार्च करने का ऐलान भी किया है। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर हंगामे के मूड में नजर आ रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी में भी लग रहा है। तो सोरेन सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव छात्रों को भेजा है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का लगभग आज 13वां दिन हो गया है। पहले हमने देखा दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन और अब यहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। छात्रों के एक गुट का विधानसभा, दरअसल 13वां दिन आज है छात्रों के प्रदर्शन का और ऐसे में अब देखना होगा कि छात्रों के प्रदर्शन के आगे सोरेन सरकार कितने दबाव में है। सोरेन सरकार ने बातचीत करने के लिए 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी बनाया है।

0: तो रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस प्रदर्शन को लेकर आज 13वां दिन हो चुका है। अब अपडेट आपको दे देते हैं कि वहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। दरअसल दिल्ली में हमने पहले देखा जंतर मंतर पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब इसी से 12 किलोमीटर दूर रांची में प्रदर्शन हो रहा है और आज इस प्रदर्शन का 13वां दिन है। देखने वाली बात होगी कि अब आखिर इसमें क्या कुछ होने वाला है। अब छात्रों लगातार छात्र रांची में पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं एक स्थल पर और 13वां दिन इसका है। 13वां दिन भी प्रदर्शन जोर शोर से जारी है लगातार छात्रों का और परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने अब मोर्चा संभाला है। पहले हमने देखा दिल्ली में जंतर मंतर पर मोर्चा संभाला था और इस वक्त की एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। दरअसल जानकारी मिली है कि सोरेन सरकार ने बातचीत करने के लिए 4 मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल बनाया और आज सभी 4 मंत्री धरना स्थल पर जा सकते हैं या फिर किसी विशेष जगह छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए भी बुलाया जा सकता है। छात्रों के प्रदर्शन के आगे सोरेन सरकार लगातार दबाव में नजर आ रही है। छात्रों की मांगें मानते हुए सरकार ने परीक्षा के नतीजों को रद्द करने की चर्चा भी कल की है। वहीं आपको ये बता दें सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पर जल्द फाइनल फैसला ले सकती है। छात्रों से बात झारखंड के 4 मंत्री करेंगे। छात्रों के एक गुट को बुलाया जा सकता है, उनसे कहीं अलग बातचीत इस पूरे मुद्दे पर की जा सकती है और माना यह भी जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर एक फाइनल फैसला आ सकता है। तो छात्रों से बात करने के लिए झारखंड के 4 मंत्री उस बातचीत में शामिल होंगे, यानी एक बैठक होगी जिसमें छात्र होंगे और झारखंड के 4 मंत्री। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द एक फाइनल फैसला ले सकती है सरकार, क्या लग रहा है आशुतोष? और अपडेट भी दीजिएगा अभी फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए।
1: तो शुरुआत अपडेट से करते हैं पूजा। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर उस जंतर मंतर के बाद आज इस जंतर मंतर का 13वां दिन है। मेरे पीछे 4 ऐसे छात्र हैं दरअसल जो अब अनशन पर हैं, क्योंकि इसके पहले एक अनशन जब टूटा तो 4 और उनकी जगह लेकर के। ये वो पंडाल है जहां आंधी तूफान बारिश उमस हर चीज से निपटते हुए छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ाई पर टिके हुए हैं। महात्मा गांधी की तस्वीर, अंबेडकर की तस्वीर, ज्योतिबा फुले की तस्वीर और उसी के साथ ये छात्रों का धरना प्रदर्शन है। इसी के साथ उनको जो समर्थन करने आते हैं इस जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ, वो भी यहां बैठते हैं। अब क्या युवा क्या बुजुर्ग जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जो परीक्षाएं आगे देंगे और जिनके बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, हर वो पीढ़ी इस आंदोलन में शामिल है। छोटे छोटे बच्चे यहां पर हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, वो भी आए हैं, आते हैं नारे लगा के समर्थन देकर के चले जाते हैं। अब जहां तक बात है कि अपडेट की कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ है, कुल मिला के गिरफ्तारियां हो गई हैं 19। आज 5 गिरफ्तारियों के बारे में सीआईडी ने जानकारी और दी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि छात्र जब आंदोलन पर बैठे हैं धरने पर, कोई हंगामा नहीं, नारेबाजी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य को लेकर के चिंतित, तो दबाव में अब सोरेन सरकार दिखाई दे रही है। 4 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है, प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। कल जब अधिकारी आए थे कि चलिए सरकार से बातचीत होगी, वो तैयार नहीं हुए कि ये बंद कमरों में होने वाली बातचीत नहीं है, सड़क पर होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। तो 4 राज्य के कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है जो आज इस जगह पर उन्हें आना है। वो आएंगे, बातचीत करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन कल शाम को ही सरकार में इस बात पे भी चर्चा हुई है।
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे 13 दिन बाद भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।
2: बारिश और उमस के बीच आंदोलन का केंद्र बना है रांची। परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में आज 13वें दिन भी छात्रों की आवाज बुलंद है। रांची में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं नारेबाजी हो रही है तो कोई अनशन पर बैठा है।
3: संविधान की कॉपी अपने पास आप रखी हुई है, अंबेडकर का फोटो है, क्या सोच के संविधान का कॉपी पकड़ा है?
4: जी अभी हमारी ताकत जो है ना, संविधान ही हमारी ताकत है। यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ये हक हमें संविधान ने ही दिया है।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ कुछ वैसा ही नजारा रांची का है। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सोरेन सरकार भी बातचीत को तैयार है। एक दिन पहले जयपाल सिंह स्टेडियम में सरकार का प्रस्ताव लेकर छात्रों से मिलने एसडीएम और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो बातचीत के लिए 5 सदस्यों के नाम बताएं।
5: राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहां जाके बात करेंगे।
2: अभी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की, उस दौरान भी छात्र आंदोलन का जिक्र उठा। अब सीएम भरोसा दे रहे हैं कि कुछ सार्थक होगा।
6: मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे।
2: सरकार के बातचीत वाले प्रस्ताव पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब तक फैसला नहीं किया है। माना जा रहा है कि आज इस पर कोई सार्थक पहल हो सकती है। आशुतोष मिश्रा और प्रीति चौधरी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो देखिए, एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने दिल्ली में हाल के प्रदर्शन में शामिल हुए और कुछ छात्रों से मुलाकात की। अलग अलग राज्यों के युवा प्रदर्शनकारी उनसे मिलने भी पहुंचे और इनमें से कई प्रदर्शनकारियों को 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। उनसे मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें छात्रों पर गर्व है। राहुल ने पुलिस की बर्बरता के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया। 20 जुलाई को पुलिस के बल प्रयोग पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। छात्रों से मिलकर राहुल ने कहा कि मुझे इन युवाओं पर गर्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब खबर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई के लिए बिगुल बजा दिया है और अपने पहले उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल पहले उम्मीदवार के रूप में पवन पांडे का नाम तय हुआ है। वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश ने ऐलान करे एक साथ कई निशाने भी साधे। अयोध्या सीट से उम्मीदवार पवन पांडे होंगे, ये अखिलेश यादव ने साफ किया है और साथ ही अखिलेश ने इस ऐलान के साथ साथ कई निशाने भी साधे हैं। पवन पांडे का नाम अखिलेश यादव ने लिया।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर शोर शराबे के बीच अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के सहारे यूपी चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर पार्टी ने अयोध्या सीट से पवन पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में हुआ।
7: पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं।
2: अयोध्या में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या शामिल है। राम मंदिर अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। ऐसे में अखिलेश ने अयोध्या विधानसभा सीट से ब्राह्मण चेहरे को टिकट देकर बीजेपी को अपना इरादा बता दिया है। बुधवार को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रभु श्री राम की झांकी निकाली गई। झांकी में राजा रामचंद्र, लक्ष्मण और हनुमान दिखे। समाजवादी पार्टी ने अपने हिंदुत्व प्रेम की झलक दिखाई। साथ ही अखिलेश ने बताया कि पीडीए की क्या नई परिभाषा है।
8: लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
2: इस पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है।
9: सवाल है ब्राह्मणों के लेके बहुत बड़ा सम्मेलन अखिलेश ने किया और कह रहे हैं कि पीडीए में पी और डी का मतलब पंडित हो गया है।
10: अभी तक तो ये कुछ और था, अभी तक तो कुछ और था इसका मतलब। तो ये उन्हीं से पूछा जाए कि आखिरकार इसको स्पष्ट किया जाए। वो कि जिसके सामने देखते हैं, जो चेहरा देख के फिर बोलते हैं।
2: यूपी में ब्राह्मण वोट पर सियासत के बीच अखिलेश ने अयोध्या सीट से पवन पांडे का नाम ऐलान कर बता दिया कि इस बार लड़ाई और तेज होने वाली है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: देखिए, अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा बताई है। इसके बाद अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को एक ऐसी पहेली में तब्दील कर दिया है जो कि गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदलती है। केशव मौर्य ने आरोप लगाया है कि अखिलेश के लिए कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित तो कभी पी से पंडित है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और ब्राह्मणों की पार्टी नहीं, बल्कि गुंडों और अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है।

0: चलिए अब खबर यूपी के संभल में 2024 में हुई हिंसा की कर लेते हैं बात। दरअसल उस हिंसा की न्यायिक रिपोर्ट को कल यूपी विधानसभा में पटल पर रखा दिया और इस रिपोर्ट में बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थी और रिपोर्ट में सांसद जियाउर रहमान बर्क और इंतजामिया कमेटी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गलत जानकारी फैलाई गई। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि मृतकों को लगी गोलियां पुलिस की नहीं थी। आपको ये बता दें कि हिंसा में 4 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। वहीं इसी को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल इस खबर में अब ये भी माना जा रहा है कि जब हिंसा हुई थी तो 4 लोगों की मौत भी हुई थी। संभल में 2024 की रिपोर्ट रखी गई और पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा यह हिंसा थी माना जा रहा है। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जब इंतजामिया कमेटी की भी इसमें साजिश की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, आपको याद होगा 2024 में संभल में बहुत बड़ी एक हिंसा हुई थी और उसी को लेकर अब सर्वे को लेकर मुस्लिमों में गलत जानकारी फैलाई गई। ये कहा गया मृतकों को जो गोलियां लगी वो पुलिस द्वारा नहीं लगी थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो वही आपको भी बता दें कि 4 लोगों की मौत हुई थी इस पूरी हिंसा में और जिन मृतकों को वहां पर गोलियां लगी वो पुलिस की नहीं थी। ये संभल हिंसा 2024 की रिपोर्ट में लिखा गया। आगे बढ़ते हुए तमाम खबरों के बीच यूपी और पंजाब में अगले साल होने वाले चुनावों से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। दरअसल इस खास सेगमेंट में खबर चुनाव की भी होगी। देखिए,
1: लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डी नोटिफाइड नोमैडिक समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। सुबह 10:30 बजे वो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मिलेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए ये काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डी नोटिफाइड नोमैडिक समाज के प्रतिनिधि सीएम का सम्मान भी करेंगे और घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे। समाजवादी पार्टी गाजीपुर में 10 अगस्त को फूलन देवी की जयंती मनाने की तैयारी में है। पार्टी की कोशिश 2027 चुनाव से पहले फूलन देवी की विरासत के सहारे सामाजिक समीकरण साधने की है। कावड़ यात्रा के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा को अखिलेश यादव और उनके समर्थक बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी हमले के साथ साथ संगीत सोम ने ये भी कहा है कि हम न कटेंगे न बटेंगे और न ही छटेंगे।
2: ना डरेंगे ना हटेंगे, लेकिन बस आपको कहना चाहता हूँ कि आप बटना मत नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको बता, ना हम बटेंगे ना कटेंगे ना छटेंगे, हम एक तरफा रहेंगे।
1: पंजाब कांग्रेस ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल फरीदकोट पहुंचे। उन्होंने जिला कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की अपील की। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी खुलकर सामने आई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खेमे से जुड़े कई नेता गायब रहे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिंग आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को चैलेंज किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वंडिंग ने कहा कि सुखबीर बादल से मुझे चुनाव मत लड़वाना, वो पहले ही जमीन खो चुके हैं। अगर मुकाबला करवाना ही है तो भगवंत मान से मेरा मुकाबला करवा दो।
0: बढ़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाने के मामले में सरकार गंभीर है। ऐसे में मेटा की टीम ने एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मेटा के पब्लिक पॉलिसी हेड जोएल कप्लान कल मंत्रालय पहुंचे और पीएम का पोस्ट हटाने के मामले में गलती उन्होंने मानी। इस पूरे मामले में आज फिर से मेटा टीम को समन किया गया है।
1: पीएम मोदी के पोस्ट हटाने पर मेटा पर गंभीर सवाल है। उन्हीं सवालों के जवाब मांगे जाने के बाद मेटा टीम दिल्ली पहुंची। इस टीम में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कप्लान भी थे। सरकार की नाराजगी और सख्ती के बाद मेटा ने माना कि गलती हुई है। अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद जोएल कप्लान ने कहा कि मैंने पीएम मोदी की पोस्ट को रोकने की गलती के लिए मेटा की तरफ से मंत्री से माफी मांगी।
3: सर, एनी कमेंट ऑन द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट? सर,
1: मंत्रालय के अधिकारियों ने मौजूदा नियमों का ठीक से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया और प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के मामले पर चिंता जताई। इनमें प्रधानमंत्री की पोस्ट को मनमाने ढंग से हटाना और आपत्तिजनक कंटेंट भी शामिल है। सरकारी सूत्रों की माने तो मेटा टीम से कड़ी पूछताछ की। बातचीत ने बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों के शोषण वाले कंटेंट के विज्ञापन से पैसे नहीं कमा सकते और सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकते। खबर है कि मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे जानबूझकर या जानकारी में रहते हुए अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होने देते। एक दिन पहले ही मार्क जकरबर्ग ने CSAM कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। अब आज फिर मेटा की टीम को समन किया गया है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर बिहार के रोहतास से जुड़ी। दरअसल यहां पर एक शख्स की हत्या के बाद जमकर हिंसा हुई है। मर्डर से नाराज लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ की और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। कई गाड़ियों में भी आग लगी दिखी। तनाव को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बलों को तैनात करना पड़ा।
1: 3 ट्रैक्टर को आग के हवाले किया जा रहा है। ये कार भी जल चुकी है और यहाँ हार्वेस्टर भी सुलग रहा है। आसपास रखे सामान भी खाक हो चुके हैं। इस इमारत के परिसर में धुआं ही धुआं है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास की है, जहां जोगिया इलाके में एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में ये नाराज भीड़ आरोपी के घर टूट पड़ी। गुस्साए लोगों ने पहले वहां जमकर घर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ की, फिर एक एक कर वहां मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उस वक्त आरोपी के परिजन घर के अंदर ही मौजूद थे। हत्या से गुस्साई भीड़ बेकाबू दिखी और पुलिस वाले लाचार। बताया जा रहा है कि अजीत तिवारी नाम के आरोपी के यहाँ जनेश्वर तिवारी नाम का शख्स मजदूरी करने गया था। वहीं दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, तभी अजीत ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से जनेश्वर की मौत हो गई। तब आरोपी ने उसके शव को नहर में फेंक दिया। जैसे ही इसकी खबर लगी, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी अजीत तिवारी के घर पर जमकर हमला बोल दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, घर में आग लगा दी। 3 ट्रैक्टर, कार और हार्वेस्टर को भी आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे तनाव की खबर के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वे बेबस नजर आए। पुलिस ने आरोपी अजीत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है।
3: आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद शव लेकर भाग रहे अजीत तिवारी को पीछा करके यूपी पुलिस की मदद से गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया है।
1: अभी तक मृतक जनेश्वर की लाश नहर से नहीं मिली है, तलाश जारी है। रंजन कुमार, रोहतास, आज तक।
0: बात कर लेते हैं बांग्लादेश से जुड़ी खबर की। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगे। और इस प्रेस वार्ता में पूर्व क्रिकेटर और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन भी मौजूद थे। उसी को लेकर बांग्लादेश में उनके आवास में आगजनी की गई। खबरों के मुताबिक शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला भी किया गया है।
1: करीब 2 साल बाद शेख हसीना ने किसी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया, साझा किया कि उनके दिल और दिमाग में बांग्लादेश को लेकर क्या योजना है। उन्होंने इसका भी खुलासा किया कि वो बांग्लादेश कब लौटेंगी।
4: I know that they may put me in the jail or they may kill me, they may, anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support, it is very important for me.
1: ये शेख हसीना का वर्चुअल संबोधन था। इसी दौरान शाकिब अल हसन भी मौजूद थे। वो शेख हसीना के समर्थन में श्रीलंका से वर्चुअली जुड़े थे। इसी बात पर बांग्लादेश में उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश पुलिस की माने तो शेख हसीना के बयान के कुछ घंटे बाद शाकिब अल हसन के घर की खिड़कियां तोड़ी और घर में आग लगाने की कोशिश की गई। ये घटना रात करीब 9 बजे की है। जानकारी के मुताबिक कई उपद्रवियों ने घर पर ईंट के टुकड़े फेंके और खिड़कियां तोड़ दी, फिर उन्होंने घर में आग लगाना चाहा। आग जाने की कोशिश के बाद से शाकिब अल हसन के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और चलिए अब खबर मौसम की मार की। दरअसल जम्मू कश्मीर में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर कल भी कई जगहों पर अचानक से बाढ़ से भारी तबाही मची। पुरी के बोनियार इलाके में बाढ़ का पानी भर गया। मूसलाधार बारिश से अचानक से बाढ़ आ गई, जिससे कि पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में फैल गया। ऐसी ही हालत कुलगाम में भी देखे गए हैं। दरअसल कुलगाम के नंदी मार्ग इलाके में एक और जबरदस्त बादल फटा, जिससे कि नामलन नाले का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। ये तस्वीरें देखिए, इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल छात्रों ने मांग उठाई है एक कि जल्द से जल्द सीएम से बातचीत की जाए, सीधे सीएम सोरेन से बातचीत हो, छात्रों द्वारा ये मांग की गई है। दरअसल 13वां दिन है आज छात्रों के प्रदर्शन का। बातचीत के दौरान दो मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जब छात्र और सीएम की बातचीत हो, मीडिया के सामने सरकार से छात्र बात करेंगे, ये छात्रों ने मांग उठाई है। इसके साथ यहाँ वक्त हो गया है सुपर 8 में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी,
7: असली शहद असली स्वाद।
9: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

बारिश के बाद सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों से बचकर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। यहां तक कि जिस हाईवे पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है उस पर भी लंबे चौड़े गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है। सरकार के दावों और सड़कों की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुंबई नासिक हाईवे पर पहुंची। थाने में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ दो दिनों में जानलेवा गड्ढों ने दो लोगों की जान ले ली। शाहपुर में इस गड्ढे में बाइक गिरने से एक TDRF जवान की मौत हो गई, जिसके बाद से शाहपुर के बामनी गांव में मातम पसरा है। TDRF के जवान विकास कुरे सोमवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। TDRF के जवान विकास कुरे के परिवार में उसकी पत्नी और 9 महीने की जुड़वा बेटियां हैं। ठेकेदारों ने भले ही सड़क पर वो गड्ढा भर दिया हो जहां विकास गोरे की मौत हुई थी, लेकिन सवाल है कि ऐसे गड्ढों पर तभी ध्यान क्यों जाता है जब किसी की जान चली जाती है। वहीं ठाणे के भिवंडी में भी एक गड्ढे की वजह से बाइक पर पीछे बैठी सुनीता नाम की एक महिला की मौत हो गई थी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रांची में छात्र आंदोलन के 13वें दिन सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। छात्रों की मांग, सीधे सीएम से करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। आज से झारखंड विधानसभा का सत्र। 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने पहली चाल चली। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। जीत का किया दावा। राहुल से रिजिजू की मुलाकात के बाद भी नहीं खत्म हुआ संसद का डेडलॉक। आज भी विपक्ष के मार्च के बाद हंगामे के आसार। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण की कई पार्टियां। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी, मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समय। शेख हसीना ने दिसंबर में ढाका लौटने का किया ऐलान। समर्थन में कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ हुई हिंसा। बांग्लादेश में घर पर पेट्रोल बम से हमला। चलिए सुपर एक में वक्त हो गया नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। रांची छात्र आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार से बातचीत से पहले छात्रों ने तीन शर्तें रखी हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने कहा है कि बातचीत सीधे मुख्यमंत्री के साथ होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बातचीत के दौरान कम से कम दो मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहें।
1: देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे, और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समक्ष कम से कम दो कोई मीडिया वाले रहें, है ना, मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का।

मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने जारी किया बयान। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ कमियों को स्वीकार किया। कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीप फेक से निपटने में हुई चूक को भी माना। प्रधानमंत्री मोदी से मिले नेटफ्लिक्स के सीईओ। एंटरटेनमेंट सेक्टर की अपार संभावनाओं पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने नेटफ्लिक्स के सीईओ से मुलाकात भी की और तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में कहानी सुनाने और रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान। नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की घोषणा। युवाओं को मिलेंगे मौके। आज मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत। 2000 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। वहीं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। छात्रों की मांग खुले में हो बातचीत। बढ़ते तनाव के बीच सीएम सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अधिकारियों ने धरनास्थल पर पहुंचकर यह प्रस्ताव सौंपा। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा अनियमितताएं मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। 5 और गिरफ्तारी। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। रांची और लखनऊ पुलिस के सहयोग से हुई कार्रवाई। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की संभावनाएं। बिहार के रोहतास में मजदूरी और आपसी विवाद के चलते 60 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश ने शव को नहर में फेंका। मचा बवाल। मजदूर की हत्या की खबर सुनते ही भड़के ग्रामीण। आरोपी के घर पर बोला हमला। लोगों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। बवाल की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव भी किया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। शव की तलाश जारी। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। डेयरी ईओ विमल कुमार हत्याकांड के बाद अपनी पत्नी से एजीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया और जिला प्रशासन को मामले में स्पीड ट्रायल चलाने के सख्त निर्देश दिए। तो वहीं नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर के प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने की प्रक्रिया पर केंद्र से मांगा गया है जवाब। नई दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि वो आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए। अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की विदेश यात्रा याचिका। ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में कश्मीरी प्रवासियों का प्रदर्शन। पीओजेके ने के घटनाक्रम को लेकर ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा ने जताया विरोध। तो वहीं प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द हुआ। कार्यस्थल पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का हवाला देकर अनुमति निरस्त की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बोले यहां भी छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। अजय राय ने स्पष्ट किया है कि शनिवार 8 तारीख को शाम 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद होकर रहेगा। चाहे जितना बाधाएं डाल लो, युवा न्याय की लड़ाई रुकेगी नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। लगातार बारिश का असर। प्रयागराज भदोही में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल आज बंद। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है बड़ा फैसला। आज सीएम योगी आदित्यनाथ डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। मंत्री असीम अरुण भी रहेंगे मौजूद। संभल हिंसा को न्याय का आयोग ने बताया सुनियोजित साजिश। रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना। विधानसभा में पेश हुई 370 पन्नों की रिपोर्ट। संभल हिंसा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में पूर्व नियोजित साजिश का खुलासा। सदबर्ग और विधायक इकबाल के बेटे का नाम आया सामने। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा कोई भी टोल, मरम्मत पूरी होने तक एनएचएआई ने किया सस्पेंड। योगी सरकार ने सपा सरकार का मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया। 2016 में पारित विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के चलते कभी लागू नहीं हो सका। वहीं इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले कुछ नौजवान छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने माफी मुद्दे पर फिर से सरकार पर बोला हमला। कहा इन छात्रों को माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और अन्य तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा प्रदर्शन में कोई भी फायरिंग नहीं हुई और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए छात्रों के संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। कहा रांची के छात्रों की परेशानी भी समझे राहुल गांधी। वही महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई। 3,137 प्रतिष्ठानों की जांच। 165 लाइसेंस सस्पेंड। 55,72,00,000 रुपए के असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त या नष्ट। कमिश्नर ने कहा कार्रवाई निष्पक्ष। वाशिम में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जेसीबी से हटाई गई अवैध दुकानें।
मुंबई मेयर बंगले के आसपास विकास कार्यों का टेंडर रद्द, विवाद के बाद बीएमसी का फैसला, करीब 3 करोड़ रुपए के टेंडर पर उठे थे सवाल। महाराष्ट्र में हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में 15,407 संदिग्ध क्लेम मिले। आयुष्मान भारत और महात्मा फूले योजना में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी गठित। मुंबई के विक्रोली में तेज म्यूजिक विवाद बना खूनी, पिता पुत्र की मौत, चाकू हमले में 2 घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हुई, गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्ति कलाकार। बप्पा की मूर्ति निर्माण में श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। कोर्ट ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर दिया जोर। अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल में भेंट की 3 मंजिला इमारत। चेन्नई में खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और असम सीएम हेमंत सोरेन ने शिवसागर में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित संकट और नेपाली खूंटी इलाकों का किया दौरा, नुकसान का लिया जायजा। जेपी नड्डा ने केंद्र से हर संभव मदद का दिलाया आश्वासन, बोले असम के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। वहीं यूपी के सहारनपुर में कावड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही है एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कावड़, भक्ति के अनोखे रंग के साथ हो रहे हैं दर्शन। मुजफ्फरनगर में आकर्षण का केंद्र बनी 221 मीटर लंबी तिरंगा कावड़, देश के शहीदों को समर्पित कावड़ लेकर एक शिवभक्त 190 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। बिजनौर में कावड़ में कहीं भी दिखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं पर दिखी कावड़ यात्रा में हनुमान जी और राम परिवार की झलक। प्रयागराज में भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कावड़, कावड़ियों ने अपनी अपनी कावड़ को दिया आकर्षण का केंद्र। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही है महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कावड़ की बनी आकर्षण का केंद्र, अलग अलग कावड़ों की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं लोग। बगहा में उफंती नदियों के आगे बेबस छात्र, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते बुजुर्गों की तस्वीरें, व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश और पहाड़ से गिरे पत्थर, यातायात प्रभावित। चमोली में 1 साल बाद भी नहीं बना पैदल रास्ता, नदी पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश की वजह से उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन अलर्ट, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की सतर्कता। हुगली में भारी बारिश से जल भरा सड़कों पर थमा जनजीवन, सेरामपुर इलाके में पानी भरने की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ, लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में फ्लैश फ्लड की वजह से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बादल फटने के कारण बाढ़ जैसे हालात, नंदीमार्ग नाले का बढ़ा जलस्तर। रांची के रिम्स अस्पताल में लबालब भरा पानी, मरीजों को और परिजनों की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़िए का सफल रेस्क्यू, पीएसी के आपदा राहत दल के जवान ने दिखाई फुर्ती। फरुखाबाद में गंगा नदी उफान पर 36 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आए। वहीं प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, बारिश के बीच उड़ा 100 साल पुराना मकान, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, गन्ने के खेत में करंट लगने की वजह से किसान मजदूर की मौत हुई, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या करने वाली पत्नी समेत 3 को उम्र कैद, कोर्ट ने 3 दोषियों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मथुरा में छात्र की हत्या, जंगल में कोठरी में मिला शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई गई। आगरा में

महासमुंद में भीषण सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची छात्रा की जान। एमपी के मेहर से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। सरकारी स्कूल में ए सर्टिफाइड धुरंधर फिल्म देखते हुए छात्र नजर आए। तेल चोरी मामले में एमपी के कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई। मथुरा पुलिस ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत की कुर्क। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 48 पर चलती कार में लगी भीषण आग। वही जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद से परेशान सिपाही ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया आत्महत्या का प्रयास। साथियों की सूझबूझ से बची जान। जूनी इंदौर के गुरुद्वारे में विवाद मचा। चढ़ावे के पैसों के हेरफेर का हिसाब मांगने पर मैनेजर ने बुजुर्ग से की मारपीट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खड़े डंपर से टकराई कार, चार लोगों की मौत। धनबाद में शॉर्ट सर्किट से बहुमंजिला इमारत ने बिजली मीटर में लगी भीषण आग। बिहार एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। अमृतसर से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने बहन पर किया जानलेवा हमला। बिहार के दरभंगा में अपने बकाए वेतन को लेकर संस्कृत के शिक्षक का फूटा गुस्सा। डीसी ऑफिस में किया अनोखा प्रदर्शन। हरियाणा के जींद जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप। दो जेल सुपरिटेंडेंट और एक कैदी समेत चार लोगों पर गंभीर आरोप।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 अगस्त 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 6:52 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 8:13 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ

रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

में सुधार होगा, करियर की स्थिति बेहतर रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे? पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: सीएम योगी ने यूपी के मदरसों पर नया हंटर चलाया है। जी हां, योगी सरकार अब मदरसों की ओर से दी जाने वाली कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर रोक लगाने जा रही है। जी हां, अब यूपी के मदरसों में 12वीं तक ही पढ़ाई होगी, डिग्री कोर्स पूरी तरह से बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल यानी ग्रेजुएशन और फाजिल यानी पीजी की पढ़ाई बंद की जाएगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन का प्रस्ताव है। यूपी कैबिनेट में मदरसे को लेकर बड़े फैसले की तैयारी हो चुकी है, जिसमें पारित होने वाले 21 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन का भी है।
3: तो ये करें क्या, हवा खराब हो चुकी है। आंतरिक सर्वे इन लोगों ने खुद ही कराया, 100 के आसपास सिमट रहे हैं। तो सत्ता जब जाने लगती है तो बौखलाहट में क्या कर दिया जाए, वो एक उसी का शगुफा है, जो चाहे बोले।
2: योगी सरकार में मदरसों की पढ़ाई को लेकर शुरू से ही सख्त सरकारी समीक्षा होती रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसों की ओर से ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री देना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के खिलाफ है, लिहाजा मदरसे 12वीं तक ही पढ़ाई करा सकते हैं। ऐसे में यूपी में मौजूद कुल 4,536 आलिया स्तर के मदरसों पर असर होगा, जिनमें से करीब 1,000 मदरसों में ये ग्रेजुएशन और पीजी डिग्री दी जा रही थी। इन पाठ्यक्रमों में लगभग 37,000 से 38,000 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। अब इन्हें यूजीसी से मंजूर विश्वविद्यालयों का रुख करना पड़ेगा, लेकिन मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, केशव मौर्य ने एक और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है।
4: मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री।
5: मानसिक रोगी, ये मानसिक रोगी है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बांकीपुर इनके अध्यक्ष की सीट जनता ने हरा दी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये हिंदू मुसलमान अब चलने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, ये जयंती समझा चुके हैं।
6: अगर एक भी आतंकवादी निकला तो उसे पेश करना चाहिए जनता के सामने। ये मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है, जिस तरह से और धार्मिक संस्थाओं में तालीम दी जाती है। सरकार को चाहिए कि उन्हें ITI की परमिशन दे। सरकार अपने वोटों के एजेंडे को नफरत फैलाने का काम कर रही है, और ये
7: मुद्दों को भटकाकर असली मुद्दों से हटना इनकी साजिश है। हमेशा ऐसी बात करकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अब गुमराह नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
2: ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्राथमिक स्कूल बंद करने से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गिराने और अब मदरसों में डिग्री की पढ़ाई बंद करना सरकार की सिर्फ नाकामी छिपाने की कोशिश है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में छात्र आंदोलन के 13वें दिन सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। छात्रों की मांग, सीधे सीएम से करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया मौजूद। आज से झारखंड विधानसभा का सत्र। शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के बाल के बाद मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे जेनजी से सीधा संवाद। 100 शहरों के 2000 स्कूली बच्चों से करेंगे बात आरएसएस चीफ।

फसाद हंगामे के आसार, एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण की कई पार्टियां। सत्ताईस के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने चली पहली चाल, ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार, जीत का किया दावा।

0: बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार इस बुलेटिन में जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे खबरों की झलकियों पर। रांची में छात्रों और सरकार में आर पार की लड़ाई, रांची में छात्र आंदोलन का 13वां दिन है, विस्तार से खबर बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। बात यूपी की राजनीति की करेंगे, अखिलेश यादव के पीडीए की कई नई परिभाषा, और क्या है ब्राह्मण शंख बजाकर साइकिल चलाएंगे अखिलेश। पीएम फेसबुक पोस्ट पर मेटा की माफी काफी नहीं है, समिति के सामने कल पेश हुई, आज फिर बुलाया है। और ठीक 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन का 13वां दिन है, स्थिति ये बनी हुई है कि अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और अभी इसकी जांच सीआईडी कर रही है। कई अन्य मांगे हैं छात्रों की डिमांड को लेकर, सुरेंद्र सरकार ने उनके सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। मंत्रियों का एक पैनल गठित किया गया है जो छात्रों से संवाद करेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 5 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी धांधली मामले में रांची झारखंड पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और इसके साथ कुल गिरफ्तारियां 19 हो गई। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, आप तो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है वहां की सरकार के साथ बातचीत करके आंदोलन जल्द खत्म होगा और जिस तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है उससे छात्र संतुष्ट होंगे?
1: गिरफ्तारियां 19 हो गई है नेहा, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने ये तो मान लिया है कि अनियमितताएं हुई है, गड़बड़ी हुई है, ओमार शीट बाहर आई है और बैक डोर से कहीं न कहीं ये जो भर्तियां निकली थी उनको भरने की कोशिश हुई है, ये इसी बात का प्रमाण है। दूसरा, क्या छात्र मानेंगे? अगर ये दबाव नहीं होता, 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली से अगर ये प्रदर्शन नहीं हो रहा होता तो 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल नहीं तैयार करना पड़ता। आंधी तूफान ऐसी मूसलाधार बारिश में उसके बाद भी टेंट बनाकर ये बच्चे टिके हुए हैं, 24 घंटे टिके हैं। इस आंदोलन को कमजोरी ना पड़े, अगर कोई अनशन तोड़ता है तो 4 और अनशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल ये आंदोलन पूछ रहा है और इसी वजह से दबाव है। अब तक लगता था कि क्या ये कुछ मुट्ठी भर छात्र होंगे, अब पूरे झारखंड का समर्थन है। छात्र भूखे ना सोए तो कुछ और नहीं तो ये चना गुड़ लेकर के, पिज्जा बर्गर नहीं है तो चना गुड़ लेकर के आ गए कि कम से कम इन छात्रों की जो आवाज है वो सरकार तक लगातार पहुंचती रहे। अब जो जानकारी है कि जो प्रतिनिधिमंडल है 4 मंत्रियों का वो यहाँ आ सकता है, इनसे बातचीत होगा। एक धड़ा छात्रों का, दरअसल आज विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है, वो मार्च करना चाहता है तो होगा कि उनको यहाँ रोका जाए, बातचीत का प्रस्ताव आए और उस बातचीत में छात्रों की पहली शर्त है कि कहीं बंद कमरे में नहीं, यहीं पर इसी मंच पर आएंगे, यहीं पर
0: मंच पर बातचीत होगी, ये छात्रों की मांग है। वहीं झारखंड में छात्रों का मुद्दा गर्मा चुका है। इस बीच आज से झारखंड का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ये मानसून सत्र जेपीएससी आंदोलन की भेंट चढ़ सकता है। रांची बीजेपी खुलकर छात्रों के साथ खड़ी हो गई है और अब जब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो आज वहां जोरदार हंगामे के आसार हैं।

0: इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए मंत्रियों का पैनल गठित किया है। हेमंत सोरेन सरकार के 4 मंत्री छात्रों से संवाद के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से ही वो सीधी बात करेंगे। किसी मंत्री या डेलीगेशन से संवाद नहीं किया जाएगा। शर्त यह भी है कि जो भी बातचीत होगी सबके सामने होगी, मीडिया के सामने होगी, बंद कमरे में कुछ भी नहीं होगा।
1: देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे, और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समक्ष कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना, मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं।
0: आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या हेमंत सोरेन सरकार को इस बात पर मानना पड़ेगा कि खुद सीएम छात्रों से संवाद करें, क्योंकि एक तरफ विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो हंगामे की भेंट ना चढ़े, इस मांग को मानना पड़ेगा?

0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में छात्रों का मुद्दा गर्मा चुका है। आज से झारखंड का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ये मॉनसून सत्र जेपीएससी आंदोलन की भेंट चढ़ सकता है। रांची में बीजेपी खुलकर छात्रों के साथ खड़ी हो गई है और अब जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो आज वहां पर जोरदार हंगामे के आसार हैं। जेपीएससी धांधली मामले में यह हंगामा किया जा सकता है। छात्रों की लगातार मांग है कि वो सीधे संवाद करेंगे, मीडिया के सामने संवाद करेंगे, खुले में संवाद मंच पर किया जाएगा। और रांची की सियासत तेज है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी ओर आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। बीजेपी ने छात्रों की मांग को विधानसभा में उठाने की तैयारी की है। उधर 13वें दिन छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा में कथित धांधली के मुद्दे पर छात्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन की सफलता के बाद अब रांची में छात्रों का यह महाजुटान देखने को मिल रहा है। आज 13वां दिन है जब रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र डटे हुए हैं। उमस भरी गर्मी, बारिश और प्रतिकूल मौसम के बावजूद छात्रों का जोश बरकरार है। इस आंदोलन में जेपीएससी के वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनकी उम्र का बड़ा हिस्सा सिर्फ तैयारी में निकल गया। उनका आरोप है कि धांधली की वजह से उनकी हर ईमानदार कोशिश बेकार चली है। प्रदर्शन में शामिल जिस भी छात्र से बात कीजिए उसकी अपनी अलग कहानी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची से छात्र आए हैं बल्कि पूरे झारखंड से अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं। चतरा से आया 19 साल का ये छात्र भी प्रदर्शन में शामिल है। जब यह 10वीं कक्षा में था तब इसका बड़ा भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था। आज ये खुद ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन उसका भाई अब तक परीक्षा पास नहीं कर पाया है। अब दोनों भाई साथ में तैयारी कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, जिससे भी मिलिए उसकी अपनी संघर्ष गाथा है। एक और अभ्यर्थी मिले जिनकी उम्र अब 35 साल हो चुकी है। वे पिछले 10 वर्षों से परीक्षा दे रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि अनियमितताओं की वजह से अब तक सफलता नहीं मिल पाई।
2: 22 सितंबर को परीक्षा हुआ था, 21 और 22 को दो दिन बाद एग्जाम।
3: 3 जेपीएससी दिए हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस लिखे जेपीएससी का।
1: जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई। 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने की प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी, सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। झारखंड का ये छात्र आंदोलन अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। जो बीजेपी नीट आंदोलन के दौरान चुप्पी साधे हुए थी वही अब रांची में इस आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार अब छात्रों से बातचीत कर रही है। सरकार की ओर से अधिकारियों की एक टीम प्रदर्शनकारी छात्रों से मिल चुकी है।
4: माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहां जाके बात करेंगे।
1: एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की थी। उस दौरान भी छात्र आंदोलन का मुद्दा उठा। अब मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि इस दिशा में कोई सार्थक समाधान निकलेगा।
5: मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे।
1: सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं किया है। माना जा रहा है कि आज इस दिशा में कोई अहम पहल हो सकती है। इस बीच आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि सदन में भी छात्रों का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। आशुतोष मिश्रा और प्रीति चौधरी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण शंख समाजवादी पार्टी बजाएगी और 2027 के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। पहला कैंडिडेट ब्राह्मण है, वो भी अयोध्या से है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपनी पीरे की परिभाषा बदल दी है। अखिलेश यादव की इस रणनीति के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि क्या ब्राह्मण साइकिल पर सवार होगा।
1: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। अयोध्या से अखिलेश यादव ने तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला को सफल बनाने के लिए यूपी का ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल पर चढ़ जाएगा? क्या अयोध्या से आगाज करके अखिलेश यादव ने यूपी के ब्राह्मण वोट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है? जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें समाजवादी पार्टी छोटे लोहिया कहती है, उनकी जयंती पर लखनऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। ये तस्वीर सम्मेलन की है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की झांकी निकल रही है। झांकी में राजा रामचंद्र, लक्ष्मण और हनुमान जी दिख रहे हैं।
6: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
1: ये अखिलेश यादव का ऐलान है। संदेश में भी कहा कि ब्राह्मण वोट पीडीए में शामिल है। पीडीए यानी अखिलेश यादव की बहुजन पॉलिटिक्स, जिसके दम पर 2024 में उन्होंने यूपी में इतिहास रचा था, अब उसी फॉर्मूले को 2027 में आजमाने जा रहे हैं। और इसका आगाज अयोध्या में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से हुआ है।
7: आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो।
1: लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से यूपी का ब्राह्मण वोट अखिलेश यादव के साथ जुड़ेगा? जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जहां संत समाज हो, सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में दो से ज्यादा बार आता हो, जहां 10 ब्राह्मण वोट में से 8 वोट बीजेपी ही हासिल करती हो, वहां समाजवादी पार्टी की दाल कैसे गलेगी? जवाब समझने के लिए इस वीडियो पर गौर करिएगा। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडेय, सनातन पांडेय, माता प्रसाद पांडेय, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी और तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। अखिलेश यादव ने कृष्ण सुदामा की मित्रता का याद दिलाई और फिर ये भी कह दिया कि सरकार ब्राह्मण समाज के पीछे पड़ी है।
6: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
8: ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम ही नहीं करना।
1: यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था यूपी में। अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 2007 में कई सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार जब मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। 2007 में बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। अब अखिलेश यादव इसी वोट बैंक में फिर से सेंध लगाने में जुटे हैं। अखिलेश की सारी कोशिश है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर ब्राह्मण मतदाता को अपने पाले में लाया जाए और जीत का समीकरण बिठाया जाए। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, 2022 चुनाव तक तो समाजवादी पार्टी को याद नहीं आई ब्राह्मणों की, अचानक इस चुनाव में याद आ रही है, तो क्या देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत इन पर फिट बैठती है?
9: देखिए, निश्चित तौर पर पहली बार समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि ब्राह्मण उनकी तरफ आ सकता है, और शायद यही वजह है कि एक सीरियस कोशिश सपा की तरफ से दिखाई दे रही है, जब उन्होंने पीडीए के में के पीडी को ही उन्होंने पंडित कह दिया है। विपक्ष बीजेपी जरूर इसका विरोध कर रही है, लेकिन जिस तरीके के कुछ दिनों पहले से हालात बदले हैं, खासकर पटना में प्रशांत किशोर की जीत, एक ब्राह्मण चेहरा जिन्होंने बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को हरा दिया है, उसी तरीके से नरोत्तम मिश्रा के बाद दतिया की हार, अब समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, उनके भीतर एक अनरेस्ट है। और कल जो ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ है, उसमें जो जोश दिखाई दिया है वो इस ओर इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले तक को बदलने को तैयार है। हालांकि पीडीए प्लस की बात वो करते रहे, और जिस तरह की बातें उन्होंने कल कही हैं, चाहे कृष्ण सुदामा की याद दिलाई हो, चाहे पीडी का मतलब पंडित उन्होंने बताया हो, चाहे ब्राह्मणों पर के एनकाउंटर्स की चर्चा उन्होंने की है, ये साफ दिखा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार पीडीए प्लस यानी कि अपने ओबीसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक से आगे जाकर ब्राह्मणों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। देखना है कि कितना सफल होते हैं, लेकिन एक चीज तो है नेहा कि ब्राह्मण अभी तक खुल करके कभी उसने समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं किया। यह जरूर है कि पॉकेट्स में और जगह जगह उसने वोट किया है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव की कोशिश है कि अगर यह वर्ग थोड़ा भी नाराज है तो इस वर्ग को अपनी तरफ लाया जाए। और एक तरीके से पटना में उन्होंने एक ट्रेलर देखा है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी उसे दोहरा सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और रुक करेंगे पटना का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना में देर रात चहलुम अखाड़ा जुलूस के दौरान बवाल हुआ। जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, हाथापाई हुई। विवाद सुलझाने के दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। खाजे कलां के एसएचओ विद्यानंद वर्मा के सिर पर इसमें चोट लगी है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और ये जुलूस बिना इजाजत के निकाला जा रहा था। विवाद सुलझाने के दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। कालिक कला के एसएचओ विद्यानंद वर्मा के सिर पर चोटें आई हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, किस किस पर कार्रवाई की जाएगी कि जुलूस को बिना इजाजत के निकाला जा रहा था?
10: बिल्कुल, और प्रशासन अलर्ट पे नया था, इसी वजह से कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ। हालांकि विवाद हुआ और हंगामा हुआ, और हंगामे में जो पटना सिटी इलाका है उसके खाजे कला के थाना प्रभारी जो है वो भी घायल है। भीड़ पर काबू पा लिया पुलिस ने, ये एक राहत की बात रही। लेकिन जिन लोगों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला, जिन अखाड़ों ने चैलुम के मौके पे, और किस वजह से दो पक्षों के बीच, दो गुटों के बीच हाथापाई हुई है, इस सब मामले की पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी ट्रैक कर रही है कि कहां से ये पूरा बवाल बढ़ा है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे पुलिस किन लोगों पर कार्रवाई करती है। लेकिन जो खाजेकला के थाना प्रभारी हैं उनका सर भी फटा है और उनको चोट भी आई है। बड़ा बवाल देखने को मिला पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट की करेंगे, जिसे हटाने के मामले में सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। मेटा की टीम ने एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मेटा की पब्लिक पॉलिसी है जोएल का प्लान, कल मंत्रालय पहुंचे और पीएम का पोस्ट हटाने के मामले में गलती मान ली। इस मामले में आज फिर से मेटा टीम को समन भेजा गया है।
11: पीएम मोदी के पोस्ट हटाने पर मेटा पर गंभीर सवाल है। उन्हीं सवालों के जवाब मांगे जाने के बाद मेटा टीम दिल्ली पहुंची। इस टीम में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कप्लान भी थे। सरकार की नाराजगी और सख्ती के बाद मेटा ने माना कि गलती हुई है। अश्वनी वैष्णव से मुलाकात के बाद जोएल कप्लान ने कहा कि मैंने पीएम मोदी की पोस्ट को रोकने की गलती के लिए मेटा की तरफ से मंत्री से माफी मांगी।
12: सर, एनी कमेंट ऑन द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट? सर,
11: मंत्रालय के अधिकारियों ने मौजूदा नियमों का ठीक से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया और प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के मामले पर चिंता जताई। इनमें प्रधानमंत्री की पोस्ट को मनमाने ढंग से हटाना और आपत्तिजनक कंटेंट भी शामिल है। सरकारी सूत्रों की माने तो मेटा टीम से कड़ी पूछताछ की। बातचीत में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों के शोषण वाले कंटेंट के विज्ञापन से पैसे नहीं कमा सकते और सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकते। खबर है कि मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे जानबूझकर या जानकारी में रहते हुए अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होने देते। एक दिन पहले ही मार्क जकरबर्ग ने CSAM कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। अब आज फिर मेटा की टीम को समन किया गया है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के उबाल के बीच आज छात्रों से सीधा संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। मुंबई में आज जेन जी से सीधा संवाद किया जाएगा और 100 शहरों के 2000 स्कूली बच्चों से ये बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आ रही है कि छात्रों से आज संवाद संघ प्रमुख करेंगे। अलग अलग स्कूलों के बच्चे इसमें शिरकत करेंगे। ये जेन जी से सीधा संवाद संघ प्रमुख का। देश भर में जिस तरीके से आंदोलन जेन जी द्वारा किए जा रहे हैं उसी के मद्देनजर 100 शहरों के स्कूली बच्चे यहां शिरकत करने वाले हैं।

0: और अब बात बांग्लादेश की, जहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल 2 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान कर दिया कि दिसंबर में वो बांग्लादेश लौटेंगी। उस प्रेस वार्ता में पूर्व क्रिकेटर और आवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन भी शामिल थे। उसी को लेकर बांग्लादेश में उनके आवास में आगजनी की गई। खबरों के मुताबिक शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया।
1: करीब 2 साल बाद शेख हसीना ने किसी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया, साझा किया कि उनके दिल और दिमाग में बांग्लादेश को लेकर क्या योजना है। उन्होंने इसका भी खुलासा किया कि वो बांग्लादेश कब लौटेंगी।
2: I know that they may put me in the jail or they may kill me, they may anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support it is very important for me.
1: ये शेख हसीना का वर्चुअल संबोधन था। इसी दौरान शाकिब अल हसन भी मौजूद थे। वो शेख हसीना के समर्थन में श्रीलंका से वर्चुअली जुड़े थे। इसी बात पर बांग्लादेश में उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश पुलिस की माने तो शेख हसीना के बयान के कुछ घंटे बाद शाकिब अल हसन के घर की खिड़कियां तोड़ी और घर में आग लगाने की कोशिश की गई। ये घटना रात करीब 9 बजे की है। जानकारी के मुताबिक कई उपद्रवियों ने घर पर ईंट के टुकड़े फेंके और खिड़कियां तोड़ दी। फिर उन्होंने घर में आग लगाना चाहा। आग जाने की कोशिश के बाद से शाकिब अल हसन के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात एक ऐसे कपड़ा व्यापारी की करेंगे जो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते रहे। जब उनका अंतिम समय आया तो उनकी बेटियों के पास इतना भी समय नहीं था कि वो उनसे मिल सके। वो व्यापारी 20 दिन तक इंतजार करता रहा लेकिन बेटियां नहीं आईं और उसने दुनिया से अलविदा कह दिया। और वीडियो कॉल पर इस अंतिम संस्कार को बेटियों ने अटेंड किया, उनके पास समय नहीं था।
3: या तो 20 तारीख से पहले आ जाओ।
4: अच्छा अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ।
5: हाँ बिल्कुल अच्छे से होंगे।
3: ठीक है
5: भेज दो।
6: महाराष्ट्र का बड़ा कपड़ा व्यापारी अपनी बेटियों से मिलने की चाहत में दुनिया से रुखसत हो गया लेकिन बेटियों के पास समय नहीं था कि अपने पिता से जाकर मिल सके। किसी कवि ने लिखा है कि बेटा बेटी रिश्ते नाते महल अटारी रुपया पैसा सब यही छूट जाएगा, अंतकाल में सिर्फ 2 गज का कपड़ा ही रह जाएगा। समाज और रिश्तों की बुनियाद हिला देने वाली ये घटना सोनीपत की है, जहां के वृद्धाश्रम में महाराष्ट्र के कपड़ा कारोबारी शिवचरण गुप्ता रहते थे। उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां हैं जो अपनी लाइफ में सेट हैं। वृद्धाश्रम में जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा जताई। आश्रम संचालक ने बेटियों को फोन लगाया लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आया।
7: करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे मुंबई में, कोई अच्छा ठाडा था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे। तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए। मियाँ भी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम में आ गए।
6: शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती है और वहीं पर टीचर है। मंझली बेटी निशा यूपी के आजमगढ़ में रहती है और सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में ही रहती है। अध्यापिका बेटी अनीता ने ऑनलाइन 5,100 रुपये भेजकर कहा कि पिता का सही ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पहले बेटियों ने कहा था कि अस्थियां रख देना लेकिन बाद में कहा कि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम संचालक ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दें।
7: नहीं बताया, देखिए मतलब इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही कहते रहे कि आते हैं और वो नहीं आई।
8: डेथ होने के बाद
7: भी ये रात को 3:30 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, भाई शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना आप, इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें।
6: शिव चरण गुप्ता एक समय पर बड़े कपड़ा व्यापारी होते थे और पैसे भी बहुत कमाए थे, लेकिन ये पैसे उनके काम नहीं आ सके और ना ही उनकी बेटियां उन्हें देखने आईं, जिनके लिए उन्होंने सारा जीवन खपा दिया। पवन कुमार, सोनीपत, आज तक।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में छात्र आंदोलन के 13वें दिन सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। छात्रों की मांग, सीधे सीएम से करेंगे वार्ता। इस दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। आज से झारखंड विधानसभा का सत्र। शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के बाल के बाद मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे जैन जी से सीधा संवाद। 100 शहरों में 2000 स्कूली बच्चों से करेंगे बात आरएसएस चीफ। राहुल से रिजिजू की मुलाकात के बाद भी नहीं खत्म हुआ संसद का डेडलॉक। आज विपक्ष के मार्च के बाद हंगामे के आसार। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण की कई पार्टियां। 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने चली पहली चाल। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। जीत का किया दावा। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा के अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समन।

जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा है खतरा, बरसाती पानी के साथ मलबा गांव के बीचों बीच पहुंचा अलर्ट जारी। चमोली में एक साल बाद भी नहीं बना पैदल रास्ता, नदी पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से उफान फलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बह रही है खतरे के निशान के पार, घरों के निकट पहुंचा नदी का पानी, पैदल पुल जलमग्न। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी में फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, नंदी मार्ग नाले का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, पूरा इलाका जलमग्न, सड़कें बंद, यातायात प्रभावित। रांची के रिम्स अस्पताल में लबालब भरा पानी, मरीजों और परिजनों की बड़ी मुश्किलें। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़िए का सफर, रेस्क्यू पीएसी के आपदा राहत दल ने जवान ने दिखाई फुर्ती, नदी में डूब रहे कांवड़ियों को सकुशल बाहर निकाला। फरुखाबाद में गंगा नदी उफान पर, 36 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। लगातार बारिश का असर प्रयागराज भदोई, कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद, शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। बगा में उफंती नदियों के आगे बेबस है छात्र, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए तस्वीरें वायरल। हुगली में भारी बारिश से जलभराव, सड़कों पर थमा जनजीवन, सेरामपुर इलाके में पानी भरने से आवागमन प्रभावित, लोग परेशान। पुरी में भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, बारिश के बीच जहां 100 साल पुराना मकान, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, गन्ने के खेत में करंट लगने से किसान मजदूर की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों ने 5 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी समेत 3 को उम्र कैद, कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया। बजरा में छात्र की हत्या, जंगल की कोठरी मिला शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। आगरा में कैफे और मिनीप्लेक्स पर पुलिस की बड़ी छापेमारी, 2 दर्जन युवक युवतियां हिरासत में, नैतिक गतिविधियों की आशंका, जांच के बाद दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार के रोहतास में मजदूरी और आपस के विवाद के चलते 60 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद बदमाश शव को नहर में फेंका। हत्या की खबर सुनते ही भड़के ग्रामीण, आरोपी के घर पर बोला हमला, लोगों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद लगा दी आग। बवाल की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शव की तलाश जारी। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। डेयरी ईओ विमल कुमार हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी से सीएम चौधरी ने की मुलाकात, पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया, जिला प्रशासन को मामले में स्पीड ट्रायल चलाने के सख्त निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भीषण सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची छात्रा की जान, ट्रक ड्राइवर की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। एमपी के मेहर से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, सरकारी स्कूल में ए सर्टिफाइड धुरंधर फिल्म देखते नजर आए छात्र। तेल चोरी मामले में एमपी के कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई, मथुरा पुलिस ने 20 करोड़ रूपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 48 पर चलती कार में लगी आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी, चालक की बाल बाल बची जान। जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद से परेशान सिपाही ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया आत्मदाह का प्रयास, साथियों की सूझबूझ से बची जान। इंदौर के गुरुद्वारे में विवाद, चढ़ावे के पैसों में हेरफेर का हिसाब मांगने पर मैनेजर ने बुजुर्ग से की मारपीट, वीडियो वायरल। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खड़े ट्रक पर से टकराई कार, 4 लोगों की मौत। धनबाद में शॉर्ट सर्किट से बहुमंजिला इमारत के बिजली मीटर में लगी भीषण आग, आसपास के स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। बिहार एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 11 देसी पिस्टल सहित हथियार बनाने के उपकरण और 4 तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना, पारिवारिक संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने बहन पर किया जानलेवा हमला। बिहार के दरभंगा में अपने बकाए वेतन को लेकर संस्कृत शिक्षक का फूटा गुस्सा, डीसी ऑफिस में किया अनोखा प्रदर्शन। हरियाणा के जींद में जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना के आरोप, 2 जेल सुप्रिंटेंडेंट और 1 कैदी समेत 4 पर मामला दर्ज। बिहार के बगहा में मवेशी तस्करी के संदेह में ग्रामीणों ने 5 युवकों को बनाया बंधा, करीब 10 घंटे तक कमरे में बंद कर मारपीट का आरोप। यूपी के शामली में पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश फुरकान एनकाउंटर में ढेर, कार्बाइन पिस्टल बरामद, हत्या और रंगदारी जैसे 30 मुकदमे दर्ज। मथुरा में 2 करोड़ की हेरोइन समेत अलीगढ़ के 2 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। सूरत में युवक की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। पश्चिम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे वडोदरा निवासी के अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन, अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद मृत पाया।
अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी पुलिसकर्मी बन लाइसेंसी पिस्टल ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में दो निजी स्कूलों को बम छुड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से अड़कम, तलाशी के दौरान नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। शाहजहांपुर में पुलिस 31 जुलाई को हुए हिंदू युवक की हत्या मामले में खुलासा किया, प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी हत्या। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मीठा ने मांगी माफी, चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने जारी किया बयान। सूत्रों के मुताबिक मेहता ने कंटेंट मॉडरेशन जुड़ी कुछ कमियों को स्वीकार किया, कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीप फेक से निपटने में हुई चूक को भी माना। प्रधानमंत्री से मिले नेटफ्लिक्स के सीईओ, एंटरटेनमेंट सेक्टर की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने नेटफ्लिक्स के सीईओ से मुलाकात कर तस्वीरें शेयर की, भारत में कहानी सुनाने और रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार बताया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान, नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव लॉन्च करने की घोषणा, युवाओं को मिलेंगे मौके। आज मुंबई में जेन जी और जैन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत, 2000 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी। बढ़ते तनाव के बीच सीएम सुरेन ने आंदोलनकारी छात्रों से 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर ये प्रस्ताव सौंपा। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा निमित्ताओं मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 और गिरफ्तार, कुल 19 गिरफ्तारियां। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की संभावना। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पेपर की प्रिंटिंग को लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने की प्रक्रिया पर केंद्र से मांगा गया है जवाब। नई दिल्ली के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि वो आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए। अभिषेक बैनर्जी को बड़ा झटका, कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की विदेश यात्रा याचिका। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी प्रवासियों का प्रदर्शन, पीओजेके के घटनाक्रम को लेकर ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा ने जताया विरोध। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द, कायस पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का हवाला देकर अनुमति निरस्त की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। अजय राय ने स्पष्ट किया कि शनिवार 8 तारीख को शाम 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद होकर रहेगा, चाहे जितनी बाधाएं डाली जाएं। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया, अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। आज सीएम योगी डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद, सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा महत्वपूर्ण कार्यक्रम। संबल हिंसा को न्यायिक आयोजित न्यायिक आयोग ने बताया सुनियोजित साजिश, रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन कार्रवाई की सराहना। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक एनएचएआई ने किया सस्पेंड। अखिलेश यादव का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे को लेकर बीजेपी पर हमला, बोले उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद सड़क की मरम्मत, बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलताऊ काम है। योगी सरकार ने सपा सरकार का मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया, 2016 में पारित विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के चलते कभी लागू नहीं हो सका। राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच तेज, पुराने लेजर खंगाल रही है, पुलिस 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस, चढ़ावे के हिसाब और वित्तीय रिकॉर्ड की हो रही है पड़ताल। कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद के छात्रों को एडवाइजरी, कांवड़ मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया, समर्थकों और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झांसी में अनोखा स्वागत, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष के क्रेन से पहनाई गई 2 क्विंटल की माला, क्रेन से हुआ भव्य अभिनंदन। बिजनौर में स्मैक तस्कर महिला गिरफ्तार, 254 ग्राम स्मैक, 66,000 रूपए बरामद, पुलिस खंगाल रही है तस्करी का नेटवर्क। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुछ नौजवानों से की मुलाकात, इस दौरान बीजेपी और अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने माफी मुद्दे पर फिर सरकार को उला हमला, कहा इन छात्रों को माफी मांगने कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और अन्य तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा प्रदर्शन में कोई फायरिंग नहीं हुई है, छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों के संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करे कांग्रेस, रांची के छात्रों की परेशानी भी समझे राहुल। महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 3,137 प्रतिष्ठानों की जांच, 165 लाइसेंस सस्पेंड, 55.72 करोड़ रुपए के असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त या नष्ट। वाशी में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जेसीबी से हटाए गए अवैध दुकानें, शहर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई, देसी शराब की दुकान समेत कई ठिकानों पर गिरी गाज। मुंबई मेयर बंगले के आसपास विकास कार्यों का टेंडर रद्द, विवाद के बाद बीएमसी का फैसला, करीब 3 करोड़ रुपए के टेंडर पर उठे थे सवाल।
महाराष्ट्र में हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं में 15,407 संदिग्ध क्लेम मिले। आयुष्मान भारत और महात्मा फुले योजना में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए SIT गठित। मुंबई के विक्रोली में तेज म्यूजिक विवाद बना खूनी संघर्ष, पिता पुत्र की मौत, चाकू हमले में 2 घायल। देश भर में

अनुकूल प्रतिमा निर्माण पर दिया है जोर। अभिनेता धानुष ने अपने पुराने स्कूल की भेंट की 3 मंजिला इमारत, चेन्नई में खास कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और असम के सीएम हेमंता ने शिवसागर में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित संतक और नेपाली खुटी इलाकों का किया दौरा, नुकसान का लिया जायजा। जेपी नड्डा ने केंद्र से हर संभव मदद कर दिया भरोसा, बोले असम के साथ मजबूती से खड़ा है सरकार, राहत और पुनर्वास कार्यों में नहीं होगी कोई कमी। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही है एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कांवड़, भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे हैं दर्शन। मुजफ्फरनगर में आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़, देश के शहीदों को समर्पित कांवड़ को लेकर 21 शिव भक्त 90 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। बिजनौर में कांवड़ में कहीं दिखी भगवान भोलेनाथ के आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं कांवड़ यात्रा में दिखी हनुमान जी और राम परिवार की झलक। प्रयागराज भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कांवड़, कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ को दिया आकर्षक रूप। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी बना आकर्षण का केंद्र। नागिन बनकर बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी में श्रद्धा कपूर, फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी, जल्दी शूटिंग होगी शुरू, श्रद्धा ने रोल के लिए जताई खुशी। फिल्म मिर्जापुर द मूवी का पहला गाना 2 नंबरी रिलीज, 4 सितंबर 2026 को रिलीज हो रही है फिल्म। एक्टर इमरान खान लगभग एक दशक बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, अधूरे हम अधूरे तुम नाम की रोमांटिक कॉमेडी में दिखाई देंगे। तब्बू ने पर्सनैलिटी राइट मामले में खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, बिना अनुमति अपने नाम फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की उठाई मांग। टॉम हेलन की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने रचा इतिहास, सिर्फ 5 दिन में $1 बिलियन की कमाई। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बड़ा हादसा बारिश की वजह से हुआ, एक मकान की छत ढह गई है, एक ही परिवार के 6 लोगों की मलबे में दबकर जान चली गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर मौत हुई है हादसे में, माता पिता बहू बेटा 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। 100 साल पुराना यह घर बताया जा रहा है। सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं।

जम्मू कश्मीर मानसूनी आफत जारी है, यहाँ पर कल कई जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई। उरी के बुनियार इलाके में बाढ़ का जलस्तर बढ़ गया है। मूसलाधार बारिश से अचानक बाढ़ आई, जिससे पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में फैल गया। ऐसी हालत कुलगाम में भी देखने को मिली। यहाँ पर नंदी मार्ग इलाके में जबरदस्त बादल फटा, जिससे नामलन नाले का जलस्तर बढ़ गया। इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण सड़कें पानी से भर गई हैं और कई इलाकों में जाम लगना शुरू हो गया है। आज सुबह से ही कई घंटे की बारिश हो चुकी है, जिसके बाद ट्रैफिक बेहद स्लो, कई इलाके में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही जमकर बादल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, देखते रहिए आज तक।

0: जाना कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: बिलो तो चार्ज हुआ यार।
6: ओ ला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: is finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: जनेश्वर मिश्र की ऐसी जयंती लखनऊ वालों ने शायद कभी ना देखी थी। पुष्पांजलि तो हर साल होती थी, लेकिन ऐसा जश्न, ढोल नगाड़े डमरू डांस आरती पूजन, ये सब पहली बार हुआ। जर्मन हैंगर टेंट में जनवादी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर गुंजायमान था। जिन जनेश्वर मिश्र को दुनिया प्रखर समाजवादी मानती है, जिन जनेश्वर मिश्र को उत्तर प्रदेश में छोटे लोहिया की उपाधि मिली, उन्हीं जनेश्वर मिश्र में आज समाजवादी पार्टी एक जाति का चेहरा देखना चाहती है, क्योंकि योगी सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते देते अब समाजवादी पार्टी खुद को ब्राह्मण हितैषी जताती है, अपना फॉर्मूला तक बदल दिया। और पंडितों से अखिलेश का पॉलिटिकल प्रेम योगी राज में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार की दावों की कहानी से शुरू होता है। और तब अखिलेश यादव ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर और प्रयागराज में बटुकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों की प्रीति भोज तक का जिक्र कर डाला। मंच पर बैठे माता प्रसाद पांडे से लेकर इकलौते ब्राह्मण सांसद सनातन पांडे तक का जिक्र करते हुए अखिलेश डोरे डाल रहे थे कि ब्राह्मणों का सम्मान तो समाजवादी पार्टी ही करती है। और इस सियासी सम्मान के उद्गार के पीछे की जमीनी कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश में करीब 11-12% ब्राह्मण हैं, जो राज्य की 115 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2007 में इस ब्राह्मण वोट बैंक के करीब 40% हिस्से ने बीएसपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। 2012 में सिर्फ 19% ब्राह्मण वोट पाकर अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2014 के बाद से ये वोट बैंक बीजेपी के पास है। 2014 लोकसभा चुनाव में लगभग 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2017 विधानसभा चुनाव में 80% तक पहुंच गया। 2019 लोकसभा चुनाव में फिर 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला, तो 2022 विधानसभा चुनाव 89% तक ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलता है, लेकिन 2024 में 80% से भी कम ब्राह्मण वोट एनडीए पाती है। अखिलेश को लगता है कि बिना ब्राह्मण वोट के आशीर्वाद के लखनऊ की कुर्सी हासिल नहीं हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कभी नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम गिनाते, कभी गोसाईगंज में भगवान परशुराम की मूर्ति का जिक्र करते हैं। अखिलेश परशुराम जयंती पर अपने राज्य में सरकारी छुट्टी के ऐलान की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, वो इन दिनों पंडित जी के मुहूर्त से ही बड़े काम करने का दावा करते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सनातन समाजवाद वाले पोस्टर लगते हैं, तो राजकुमार भाटी जैसे नेता के ब्राह्मण विरोधी बयान के बाद उन्हें जोरदार फटकार भी लगाते हैं। दरअसल देश की सियासत में राजनीतिक दलों के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के गठन से पनपी सियासी बेल तरह तरह के जातिवादी मोर्चों तक पहुंची है। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी चर्चित हुआ और समाजवादी पार्टी 15 से अधिक प्रमुख जातियों और उपजातियों पर केंद्रित करके चुनावी रणनीतियां बनाने लगी। एक तरफ एसपी ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करती है, तो क्षत्रिय वोट के लिए क्षत्रिय समाज मिलन समारोह करती है। वैश्य व्यापारी समाज के वोट के लिए एसपी का व्यापार प्रकोष्ठ, तो गैर यादव ओबीसी वोट के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन से लेकर जनवादी क्रांति यात्रा चलाती है। अखिलेश कभी लोधी गुर्जर जाट समुदाय के लिए साम्यवादी समता भाईचारा अभियान चलाते हैं, तो कभी दलित वोट के लिए बाबा साहेब वाहिनी का गठन करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इसी राजनीतिक मंत्र पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी विधानसभा में विपक्ष के व्यवहार को जन विरोधी बता देते हैं। ये और बात है कि पीडीए के पी में अब पिछड़े की जगह पंडित की बात करने वाले अखिलेश की तमाम कोशिश के बाद 2022 के चुनाव में यूपी विधानसभा में कुल 52 विधायक जीत कर आए, जिनमें 46 बीजेपी और 6 समाजवादी पार्टी के थे। उससे पहले 2017 में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, जिनमें 48 विधायक बीजेपी के थे और 10 एसपी बीएसपी अन्य दल। और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2022 में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिला था, जबकि एसपी को 6-7% ही ब्राह्मण वोट मिला। और तब 2017 में करीब 80% ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का कब्जा था और एसपी गठबंधन को करीब 11% ब्राह्मण वोट मिला था। देखना है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश का पी फॉर पिछड़ा का झंडा बुलंद होगा या फिर पी फॉर पंडित का। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। छात्रों की मांग सीधे सीएम से करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। आज से झारखंड विधानसभा का सत्र। शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के उबाल के बाद मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे जेन जी से सीधा संवाद। 100 शहरों के 2000 स्कूली बच्चों से करेंगे बात आरएसएस चीफ। राहुल से रिजिजू की मुलाकात के बाद भी नहीं खत्म हुआ संसद का डेडलॉक। आज भी विपक्ष के मार्च के बाद हंगामे के आसार। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण की कई पार्टियां। सत्ताईस के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने चली पहली चाल। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। जीत का किया दावा। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा के जकरबर्ग ने मांगी माफी। मानी अपनी गलती। आज लगातार दूसरे दिन मेटा अधिकारियों को पेश होने का सरकार का समय।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष जो है वो छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है, चढ़ावा चोरी पर बयान चाहता है। थोड़ी देर में फिर विपक्ष का मार्च भी है। साथ ही बात होगी झारखंड के छात्र प्रोटेस्ट की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा टेस्ट है। हम बताएंगे कि सरकार और प्रदर्शनकारियों में बात आखिर कहां तक आगे बढ़ी है। और ठीक आधे घंटे बाद देखिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई कैसे ब्राह्मणों पर गर्मा गई है। तो ये सारी बातें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले संसद में आज फिर एक्शन है। कार्यवाही शुरू होने में एक घंटा भी बाकी है, लेकिन संसद परिसर में हलचल अभी से शुरू हो गई है। विपक्ष आज भी गृह मंत्री के बयान और चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर मोर्चाबंदी तेज कर रहा है। आज भी एक और मार्च की तैयारी है। सरकार की ओर से गतिरोध खत्म करने की कोशिशें भी हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। परिसीमन और महिला बिल के साथ साथ संसद में गतिरोध खत्म करने पर भी बात की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह का बयान तो चाहिए, चढ़ावा चोरी पर चर्चा भी चाहिए।

0: आपको ये तीन तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, आज भी हंगामे के आसार हैं। हालांकि कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की गई है, जब किरण रिजिजू ने मुलाकात की राहुल गांधी से, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और आज फिर एक और मार्च है जिसमें उन्हीं मांगों को दोहराया जाएगा, विरोध जताया जाएगा। सारी मांगे हैं जिनमें से एक अहम मांग चंदा चोरी की भी है, इस पर भी विपक्ष अड़ा हुआ है और साथ ही में चाहता है गृह मंत्री का बयान।
1: ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टियर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी, यही परंपरा रही है इस देश की।
2: आर्टिकल 370।
0: तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, लगता है कि विपक्षी पार्टियां अपना हमला तीखा कर रही हैं, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है जो कहते हैं कि गृह मंत्री आखिर सदन में क्यों नहीं आते हैं। लगातार विपक्षी पार्टियां ये सवाल खड़ा कर रही हैं कि गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्री सदन में नहीं आते हैं। और ये सब मुद्दा छात्रों पर पुलिसिया एक्शन को लेकर है।
3: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे, ये कैसा हो जाता है। ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया, ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं, क्या है?
0: और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, जिस तरह का रवैया दिख रहा है विपक्षी पार्टियों का, वो बिल्कुल अपने इरादे से टस से मस नहीं होते हुए नजर आ रहे, खास तौर पे गृह मंत्री के बयान पर। तो क्या आज भी यही मान के चले कि हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा सत्र?
4: अंजलि, देखिए, ये सत्र जब शुरू हुआ था और उसके बाद छात्रों का आंदोलन 20 जुलाई को हुआ, तब से ही विपक्ष इस मांग को लेकर बेहद ही स्पष्ट है कि वो सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट चाहता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। हर दिन जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू होती है, हम लोग अंदर होते हैं, देखते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू होती है। वो मांग करते हैं कि गृहमंत्री सदन के अंदर आए, अपना बयान रखे। यहां तक भी सवाल उठाया गया है कि गृहमंत्री जब पार्लियामेंट आ रहे हैं तो सदन के अंदर आकर बयान क्यों नहीं दे रहे। सरकार की तरफ से हालांकि स्पष्ट किया गया है कि जहां तक छात्रों का मुद्दा है तो उस पर जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, पीएमओ विभाग भी उनके पास है, उन्होंने दोनों ही सदनों में इसको लेकर बयान दिया और इसके आगे अब कुछ बोलने के लिए नहीं है। उनकी तरफ से स्पष्ट बात कही गई है। सरकार कह रही है कि गृह मंत्री लाठीचार्ज के आदेश नहीं देते हैं, बल्कि एक एसडीएम लेवल का अधिकारी आदेश देता है, लेकिन विपक्ष चाहे वो मकरद्वार हो, वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर भी इस मुद्दे को उठा रहा है। राहुल गांधी ने कल फिर छात्रों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सदन की स्ट्रैटेजी तो साफ है इंडिया गठबंधन के लिए कि वो गृहमंत्री के बयान के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। एक बार को लग रहा था कि अगर एफसीआरए पे चर्चा होती है तो उस वक्त गृहमंत्री का बयान हो सकता है और वैसे में सदन में फिर से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता। अंजलि
0: जी, और इस वक्त हमारे साथ हिमांशु मिश्र भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसे बीजेपी घेर रही है विपक्ष को। बीजेपी हंगामे पर विपक्ष को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी प्रवक्ता ने तो राहुल गांधी को भगोड़ा तक बोल दिया है।
5: कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए।
0: तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु का। हिमांशु, सरकार कोशिश अपनी तरफ से कर रही है, हमने बातचीत और एक रीच आउट देखा किरेन रिजिजू की तरफ से, लेकिन क्या लग रहा है, सरकार इस मुद्दे पर बेंड होगी कि बयान दिया जाए, क्योंकि वो तो साफ कर चुकी है कि बिल्कुल गृह मंत्री का बयान नहीं बनता, तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे?
6: देखिए, और इसीलिए कल किरण रिजिजू ने जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इससे पिछले हफ्ते भी बुधवार को जो है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की थी और सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए सहयोग की अपील की थी। लेकिन कल भी राहुल गांधी ने एक तौर से स्पष्ट कर दिया कि गृह मंत्री आकर सदन में बयान दे और चंदा चोरी जैसे मामले के ऊपर जो है वो बहस होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है सरकार की ये कोशिश है कि ये जो डेडलॉक है, ये जो गतिरोध बना हुआ है संसद का, इसको जो है तोड़ा जाए और जल्द से जल्द सदन के अंदर जो है जितने भी विधेयक पारित किए जा रहे हैं उनमें चर्चा हो, और इसीलिए सरकार की कोशिश है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सदन की कार्रवाई चले इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ऊपर है और संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद जो है अगर डेडलॉक बना हुआ है तो विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से जो है डेडलॉक को जो है बैक चैनल बातचीत के जरिए जो है वो खत्म करेगी, क्योंकि दो राउंड की बातचीत किरण रिजिजू की वो हो चुकी है राहुल गांधी के साथ, क्या अखिलेश यादव या अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सरकार और संपर्क बढ़ाएगी, जिसे इस सप्ताह और अगले सप्ताह के अंदर जो 13 अगस्त तक का मानसून सत्र है उसके अंदर जो है वो और बिलों पर जो है चर्चा हो सदन के, और उसके बाद दोनों ही सदनों से उनको पारित करके कानूनी रूप दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक दुविधा बन गई है। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उस पर सरकार का ये स्टैंड है कि ये गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं बनती है, क्योंकि इस तरीके के लाठीचार्ज या आंसू गैस छोड़ना या पैलेट गन के लिए कहीं भी गृह मंत्री के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ये SDM लेवल के अधिकारी जो है स्थिति को देखते हुए जो है वो ऑर्डर देते हैं, और इसीलिए दोनों ही पक्षों में जो है अभी तक जो है रस्साकसी बनी हुई है और संसद के अंदर गतिरोध बना है। क्या संसद का गतिरोध जो है इस संसद के सत्र में खत्म होगा या इस गतिरोध के साथ ही जो है संसद का ये सत्र समाप्त हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
0: बिल्कुल बड़ा सवाल ये बना हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे जरूरी बिल हैं जिन्हें पेश करना बेहद जरूरी हो जाता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी जुड़ चुकी है। मौसमी, आज फिर एक और मार्च की तैयारी, तो ये एक तरीके से रोज का कार्यक्रम हो गया है, तख्तियां पकड़िए, बैनर पकड़िए और मार्च कीजिए। बातचीत से भी बात हल नहीं हो रही है, लेकिन अहम बिल भी हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, तो क्यों हम रवैया देख रहे हैं विपक्ष का इतना कि वो बिल्कुल ही लचीलापन नहीं दिखा रहा?
7: अंजलि, देखिए बारिश भी हो रही है और मुझे लगता है कि बारिश में भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हम लोग को अब कुछ ही देर में देखने को मिलेगा, लेकिन जो सियासी बारिश हो रही है सत्ता पक्ष पर उसको कैसे निपटेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ ये जो हिमांशु भी बात कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को घेरने का मौका बार बार नहीं मिलता। वो गृह मंत्री अमित शाह लगातार सरकार के लिए बहुत संतुष्ट से बैटिंग करते हैं, हर बिल पे जो है उनका हस्तक्षेप रहता है या मॉनिटरिंग करते हैं, और ऐसे में राहुल गांधी की कल दो टूक कि अमित शाह जो है वो आकर जवाब दे, उससे ये साफ हो गया है कि विपक्ष अभी आक्रामक तेवर बनाए रखेगा। ये लॉकडाउन तभी सुलझेगा, ये कहा गया है, सरकार को बता दिया गया है कि आप गृह मंत्री अमित शाह का बयान कराइए और चंदा चोरी पे चर्चा कराइए, ये दो शर्तें रखी गई है विपक्ष के द्वारा। उसी के बाद FCRA से लेकर डिलिमिटेशन जो कामकाज है आप लेकर आइए। अब सवाल ये है, टाइम बहुत कम बचा है, सारा सत्र आधे से ज्यादा घुल गया है, तो अब कैसे सरकार इसमें क्या राजी होगी, क्या गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट, सारी बात अब इसी पे टिकी
0: जी है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ेंगी संसद परिसर में हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर हेमंत सोरेन सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है। सरकार ने 4 मंत्रियों की टीम बनाई है जो इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखेगी। उधर वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10 छात्रों का रिफॉर्म मंच बनाया है। उनसे पहले ही कहा गया था कि आप छात्रों को चुने जो बातचीत करेंगे, ये सीधे CM से बात करना चाहते हैं। आपको बता दें कि छात्रों ने ये शर्त रखी और साफ कह दिया है कि बातचीत में 2 मीडिया के लोग भी मौजूद होने चाहिए, तो वार्ता खुले में होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए और सीधा मुख्यमंत्री के साथ होनी चाहिए, ये कहना है प्रदर्शनकारी छात्रों का।
8: देखिए, संवाद हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे, और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समक्ष कम से कम दो कोई मीडिया वाले रहें, है ना, मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं।
0: तो दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर रांची में चल रहा छात्रों का ये आंदोलन अब झारखंड सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 12 दिन से जारी सत्याग्रह के बाद सरकार ने अब बातचीत की पहल की है। मामले पर नजर रखने के लिए 4 मंत्रियों की टीम भी बनाई गई है। सरकार के साथ वार्ता के लिए छात्र प्रतिनिधि के नाम मांगे गए हैं, लेकिन छात्रों को रिफॉर्म मंच बनाकर 10 छात्रों का नाम देना है, ये उन्होंने साफ कर दिया है।
9: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन ने अब सरकार को बातचीत की मेज तक ला दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के लगातार सत्याग्रह के बाद सरकार की ओर से अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर वार्ता का प्रस्ताव दिया।
10: माननीय राज्य सरकार जो है वो आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, ठीक है, और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो लोग वहाँ जाके बात करेंगे।
9: मुख्यमंत्री बातचीत को तैयार, 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई, 5 छात्र प्रतिनिधियों के नाम मांगे। सरकार के प्रस्ताव के साथ छात्रों ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी। बातचीत सीधे मुख्यमंत्री से कम 2 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे, पूरी वार्ता मीडिया की मौजूदगी में हो, सभी आश्वासन सार्वजनिक किए जाएं।
11: सरकार से वार्ता होना है, इधर से भी जाएंगे स्टूडेंट्स और उधर से भी जाएंगे और सामूहिक वार्ता होगी।
9: छात्रों का कहना है कि उन्हें सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि भरोसेमंद कार्रवाई चाहिए। छात्रों की प्रमुख मांगे हैं, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो, ओएमआर और मेरिट प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, लंबित भर्तियों का तय कैलेंडर,
12: रद्द करो और जांच करो और रिफॉर्म करो।
13: सरकार अड़ी हुई है कि सीबीआई को नहीं सीआईडी को दे दिया जाए।
14: सीआईडी जो है स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ये बात हर किसी को पता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट अपना सरकार के हित में ही रिपोर्ट जारी करेगी, उसे किसी को कोई फायदा हम लोग को तो नहीं होगा।
9: आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जाहिर है आंदोलन पर सियासत भी जमकर हो रही है। कल नेता बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने पहुंचे और उनका समर्थन किया। कांग्रेस सरकार में शामिल है तो सवालों के घेरे में भी है। अब छात्र राहुल गांधी को भी रांची आने की चुनौती दे रहे हैं।
15: ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को हम कहना चाहेंगे, हबीबी कम टू रांची, हबीबी कम टू रांची,
13: हबीबी
15: कम टू रांची।
9: जंतर मंतर से रांची तक छात्र आंदोलन की कहानी वही है। दर्द न सिर्फ शिक्षा में बदहाली का है बल्कि रोजगार नौकरी का भी है। 19 साल का एक छात्र जब 10वीं में था तब उसका बड़ा भाई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था। आज दोनों भाई एक साथ उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी अब भी दूर है।
13: जब आप
16: 10th में थे, 10th का तैयारी करने आया था मैं रांची, वो लाइब्रेरी में पढ़ता था। भैया हैं, ये जेएसएससी का तैयारी करते थे 2022 में, मैं आज 2026 में मैं भी जेएसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, जेपीएससी, ये भी वही चीज का करने लगे, इनका ये 30+ हो गया, बताइए।
9: एक और अभ्यर्थी, उम्र 35 साल, 3 बार मेंस, 2 बार इंटरव्यू, लेकिन आज भी नियुक्ति का इंतजार। जाहिर है मामला बड़ा है, छात्रों का प्रोटेस्ट हेमंत सरकार के लिए बड़ा टेस्ट तो है ही, ये केंद्र समेत सारी सरकारों के लिए भी कठिन प्रश्न पत्र है जिसका सही जवाब हर किसी को चाहिए, खासकर जैन जी को। सत्यजीत कुमार, प्रीति चौधरी के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: और इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं उसका। छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड सरकार का बयान सामने आ गया है। झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार बातचीत की तैयारी कर रही है।
17: ये हाँ, जाहिर तौर पे सरकार की जो इस विषय पर जो सोच है और सरकार चाहती है कि छात्रों को किस तरह से न्याय दिया जाए, सरकार स्टेट गवर्नमेंट छात्रों की भी बात सुनना चाहती है, जाहिर सी बात है। हमारी सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और छात्रों की बात सुने बिना वो क्या चाहते हैं, किस तरह से उन्हें न्याय दिया जाए और किस तरह से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पदधारी हैं उनको कैसे मजबूती के साथ उस संस्था को मजबूत किया जाए, तो ये वार्ता के बाद ही संभव हो सकता है।
0: और इस मुद्दे पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सत्यजीत हमारे साथ हैं और साथ ही प्रोटेस्ट साइड से आशुतोष मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं क्योंकि छात्रों की क्या मांगे इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस सब को लेकर इसके मद्देनजर विधानसभा का सत्र जो शुरू होने वाला है वहां पर हंगामा हो सकता है, तो किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका?
18: सरकार ने कहा है कि वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल पूछे जाते हैं सरकार इसका जवाब देगी। हंगामा अगर करके सदन का समय व्यतीत किया जाता है तो ये विपक्ष का मामला है, लेकिन सरकार हर वो चीज कर रही है, कमिटेड है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको न्याय देने के लिए लगातार रेड कंडक्ट किए गए, गिरफ्तारियां हुई, अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी, श्यांगते जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा FSI जांच की बात आ रही है, जो OMR बबल्स जो कलर किए गए थे, कम बबल्स अगर कलर करने वाले सक्सेसफुल लिस्ट में है तो FSI जांच की जाएगी, ये भी की जा रही है। इसके अलावा 4 मंत्रियों का एक पैनल बनाया गया है जिसमें सुद्दी में सोनू है, JMM की तरफ से चमरा लिंडा है, RJD की तरफ से संजय यादव है और कांग्रेस की तरफ से दीपिका पांडे है। साफ तौर से कहा गया कि स्टूडेंट्स आए, बात करें, अपनी बातों को रखें, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपनी बातों को रखें
0: जी,
18: डेडलॉक जो है उसको ब्रेक करें।
0: बिल्कुल, और इस पर हमारी नजर रहेगी। आप सीधा रुक करते हैं प्रदर्शन की साइट का, जहां पर मौजूद है आशुतोष मिश्रा और उनके साथ प्रदर्शनकारी छात्र भी है। तो आशुतोष, कोई तो प्रस्ताव आ गया सरकार की तरफ से, क्या कह रहे हैं छात्र?
19: छात्र ये कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। ये दरअसल नई पीढ़ी है, ये इस तरह के हंगामे नहीं करती। इनके हंगामे इनके पोस्टर में, बैनर में, ये AI के नारों में, वो पीछे लगा रखा है ना उन्होंने, कुछ पुच्चू JPSC JSSC रिफॉर्म कर दो ना, अब इस तरह के नारों में इतना दम है कि इससे आप कहते ना कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई। ये नई पीढ़ी है, ये हंगामा नहीं करती, ये बस शांति से बैठ के अपने नारों से सरकार हिला देती है। और संभवतः इसीलिए सरकार को अपने मंत्रियों को बना भेजना पड़ा है, यहां से 10 छात्र हैं, उनका डेलीगेशन भी तैयारी कर रहा है जाने के लिए, और वो चाहते हैं कि सारी बातचीत कैमरे पर हो। अभी इस तरह के हालात बने हैं कि हम तो एक परीक्षा देख रहे हैं। ये मनीष है 25 साल के, इनके पिता झारखंड मुक्ति के आंदोलन में थे, माता शिक्षिका थी और वो उस आंदोलन में शामिल रहे अपने अधिकारों के लिए। यहां तो पेट से ही आंदोलन सीख करके बच्चे आए हैं। अब इतनी तैयारियां, 3 परीक्षा दी, नतीजे नहीं आए, कहीं पेपर लीक हो गया, तब ये धरने पर बैठ गए। अगर झारखंड के छात्रों का देखें प्रतियोगी को कि सरकार का आकार यहां छोटा है, सरकारी नौकरियां कम है, साल 3 साल 4 साल 5 साल में 150 की सीट निकलती है या तो पर्चा लीक हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि CID जांच से भरोसा नहीं है, वो भी JPSC परीक्षा करके दिए ASP DSP बने हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? ये ब्रिज किशोर देवघर से छोड़ करके आए, 2 परीक्षा दी, एक में मेंस तक पहुंचे, दूसरे में अभी मेंस का नतीजा नहीं है, कहीं प्रीलिम्स फंसा हुआ है। इस तरह की स्थिति में चाहते हैं कि सरकार एक आश्वासन दे, कम से कम 14वीं परीक्षा के जो नतीजे उसे रद्द किया जाए, CBI की जांच हो जाए और कड़ी कार्यवाही के नाम पर ऐसा कुछ ना हो कि जो पहले गिरफ्तारियां जब इसके पहले इतिहास में हुई हैं, बीते सालों में हुई हैं, तो सबको बाद में क्लीन चिट मिल जाता है। और इसीलिए आपको देखेंगे कि रांची के इस जंतर मंतर पर 4 छात्र अनशन पर बैठे हैं, कोर कमेटी ये चर्चा कर रही है कि हम किन छात्रों को भेजेंगे, अगर भेजेंगे तो मुद्दा क्या होगा। उन मुद्दों का सीट एक चीज तो तय है कि अपनी जो मांग है उससे पीछे नहीं हटना है, जो नतीजे हैं उन्हें रद्द की जाए, दोबारा परीक्षा हो, पर्याप्त मौका मिले, पारदर्शिता हो और कड़ी कार्यवाही हो किसी केंद्रीय एजेंसी के लिए। जैसे जैसे दिन बीत रहा छात्रों का हुजूम यहां पर, और ये सिर्फ अब रांची की बात नहीं है, ये कोडरमा, देवघर, गुमला, आसपास का कोई ऐसा इलाका नहीं है पहले ही पिछड़ा राज्य माना जाता है। इन छात्रों के जीवन में प्रतियोगी परीक्षाएं शायद रह गई हैं और इसीलिए इतनी परीक्षाओं में नाकामयाबी मिली है कि अब धैर्य परीक्षा ले रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये छात्र पढ़ाई लिखाई लाइब्रेरी छोड़ करके यहां इस जंतर मंतर पर धरने पर नहीं बैठे होते। अंजलि,
0: जी आप हमारे साथ बने रहें आशुतोष। इस वक्त हम कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं जो कि झारखंड विधानसभा से इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये तस्वीरें वहां पर भी जो विरोध हो रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से उसे हम दिखा रहे हैं। तो आज से आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा, ऐसे में वहां पर हंगामे के आसार हैं। छात्रों का ये जो विरोध प्रदर्शन है उसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई देगी और अब देने भी लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
20: छात्रों के साथ अन्याय,
21: हम लोग जो है छात्रों का जो हक के लिए हम लोग सदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोग को भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करने देंगे, उन लोगों को मनमानी नहीं चलने देंगे। सीबीआई का जांच कराना होगा, जेएसएससी होगा, जेपीएससी है, सीजीएल है, सीबीआई का जांच कराना होगा। जो पेपर में भारी गड़बड़ी हुई है इसके जांच के लिए हम लोग मांग करते हैं। नहीं जांच करते इस्तीफा दे मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दे।
0: मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही विपक्षी पार्टियां, तो लगातार ये जो मुद्दा है ये गरमाता जा रहा है। लेकिन एक तरफ सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ चुका है, वो चाहते हैं कि छात्र बातचीत करें। उसके लिए छात्रों ने भी 10 प्रतिनिधियों का एक अपना दल चुनना शुरू कर दिया है। तो कैसे ये बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी इस पर हमारी नजर रहेगी। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
3: हाँ ला, ला भाई मेरा बैट।
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: तो चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
10: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
9: असली शहद, असली स्वाद।
11: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sera Sanitaryware. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
0: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुप.
5: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
6: I didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
5: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.

बारिश के बाद सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों से बचकर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। यहां तक कि जिस हाईवे पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है उस पर भी लंबे चौड़े गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है। सरकार के दावों और सड़कों की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुंबई नासिक हाईवे पर पहुंची। ठाणे में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ दो दिनों में जानलेवा गड्ढों ने दो लोगों की जान ले ली। शाहपुर में इस गड्ढे में बाइक गिरने से एक TDRF जवान की मौत हो गई, जिसके बाद से शाहपुर के बामनी गांव में मातम पसरा है। TDRF के जवान विकास कुरे सोमवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। TDRF के जवान विकास कुरे के परिवार में उसकी पत्नी और 9 महीने की जुड़वा बेटियां हैं। ठेकेदारों ने भले ही सड़क पर वो गड्ढा भर दिया हो जहाँ विकास गोरे की मौत हुई थी, लेकिन सवाल है कि ऐसे गड्ढों पर तभी ध्यान क्यों जाता है जब किसी की जान चली जाती है। वहीं ठाणे के भिवंडी में भी एक गड्ढे की वजह से बाइक पर पीछे बैठी सुनीता नाम की एक महिला की मौत हो गई थी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर अब सियासत गर्मा गई है। मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है वहां पर, और कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। छात्रों के मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी गई है। रांची के जयपाल स्टेडियम में जहां छात्रों ने मोर्चा खोला हुआ है, वहीं विधानसभा के बाहर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। ये तस्वीरें वहीं की लेकर आ रहे हैं जहां पर बीजेपी के नेता पोस्टर बैनर लेकर खड़े हैं और मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री के इस्तीफे की।
4: किसी पे विश्वास है ही नहीं हमको, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर एक साल छात्रों को समस्या के निदान करना है तो राज्यपाल का महोदय राष्ट्रपति शासन से परीक्षा लिया जाए, न तो छात्र किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है, झारखंड ही किसी पे विश्वास नहीं।
3: तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी सियासत थी अब वो गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी इस बात को उठाया था संसद के परिसर में, और अब जब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो ऐसे में बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं वहां पर पोस्टर बैनर लेकर खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को ही इस्तीफा देना होगा। तो उनकी मांग इस्तीफे की है क्योंकि ये मुद्दा सीधा छात्रों का है। उधर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और हमारे सहयोगी सत्यजीत कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, विधानसभा की जो तस्वीरें आ रही है उससे ये तो साफ है कि बीजेपी और विपक्षी पार्टियां अब इसको भुनाने का मौका नहीं छोड़ेंगी, तो कैसे हो रही है घेराबंदी?
5: देखिए, ये विद्यार्थियों के मुद्दा पे जमकर जो है आप देख सकते हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी के जो नेता है, केंद्रीय नेता हो चाहे वो वहाँ केंद्रीय प्रवक्ता हो, बाकी लोग, वो लगातार जो है झारखंड के मुद्दे को ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसको रेकअप कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ देखिए विधानसभा के बाहर जो है वो नारेबाजी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नारेबाजी शुरू हो चुकी है, बैनर पोस्टर लेकर विधायक जो है वो विधानसभा के मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरह का घपला है ये बिल्कुल जो है स्टूडेंट्स हित के खिलाफ है। तो आप यहाँ देखिए नारेबाजी भी हो रही है, हम आपको कोशिश करते हैं जैसे आवाज आपको हम सुनवाते हैं। हाथों में इनके पोस्टर्स है, देखिए जेपीएससी जेएसएससी सीबीएल सभी परीक्षाओं का सीबीआई जांच कराओ, जागो सरकार, होश में आओ, इस तरह के नारे जो है यहाँ लगातार जो है लगाए जा रहे हैं जो एनडीए के विधायक है उनके द्वारा। और ये
3: जी सत्यजीत, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें और जैसे ही कुछ होता है हम लौटेंगे, लेकिन इस वक्त रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का कि एक और बड़ी खबर वहां से आ रही है। तो यूपी जहां पर मिशन 2027 की लड़ाई शुरू होने वाली है वहां ब्राह्मण वोट पर मुद्दा गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया तो सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है, वो इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया है और उसमें कहा है कि इनका पी परिवार है न कि पंडित है। तो पीडीए में पी क्या है इस पर अब सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है।
6: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
7: ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम ही नहीं करना।
3: तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक का। अभिषेक, बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, जब पीडीए की परिभाषा लगातार बदलती चली जा रही है और अब जो बयान आया है बीजेपी की तरफ से उसमें उन्होंने पी की नई परिभाषा परिवारवाद दे दिया है।
1: देखिए, लगातार केशव प्रसाद मौर्य पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम देते रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने जब पीडीए शुरू में कहा था तो इसका सीधा मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन लगातार इस पीडीए का अर्थ और नाम बदलता गया है। लेकिन कल जब उन्होंने पीडीए से पीडी शब्द का इस्तेमाल किया है तो उन्होंने पंडितों के लिए किया, यानी ब्राह्मणों के लिए। और कल जिस तरीके से ब्राह्मण जुटे थे पार्टी दफ्तर पर और जिस तरीके का कार्यक्रम हुआ, यह दिखा रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए प्लस की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि 2024 में पीडीए ने उनका बड़ा साथ दिया था, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और इस वक्त स्थिति यह है कि ब्राह्मणों की नाराजगी अगर उनके भीतर है तो वो उसे भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत करके आए हैं, जिस तरीके से दतिया में नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी है, उत्तर प्रदेश में भी लगता है कि इस ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाने की का मौका अखिलेश यादव को दिखाई भी दे रहा है। और यही वजह है कि वो अब ब्राह्मण पॉलिटिक्स को भी अपने पीडीए में जोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि बीजेपी लगातार इस पीडीए का एक तरीके से मजाक भी उड़ाती है, नए तरीके से उसका अर्थ निकालती है, लेकिन ब्राह्मण पॉलिटिक्स अब निश्चित तौर पर फिलहाल जो केंद्र है पॉलिटिक्स की उत्तर प्रदेश में, उसमें आ गया है।
3: अंजलि जी, बिल्कुल। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। तो लगातार यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स हो रही है चुनाव से पहले, और अखिलेश ब्राह्मण और चढ़ावा चोरी को योगी सरकार के सामने मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण शंख बजाया जाएगा वहां पर और साइकिल चलेगी? 2027 के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारना शुरू कर चुकी है और पहला कैंडिडेट ब्राह्मण ही है और वो भी अयोध्या से। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की परिभाषा भी बदल दी है, जैसा कि आपको दिखाया है, पी मतलब पंडित।
8: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। अयोध्या से अखिलेश यादव ने तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। क्या अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला को सफल बनाने के लिए यूपी का ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल पर चढ़ जाएगा? क्या अयोध्या से आगाज करके अखिलेश यादव ने यूपी के ब्राह्मण वोट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है? जनेश्वर मिश्रा, जिन्हें समाजवादी पार्टी छोटे लोहिया कहती है, उनकी जयंती पर लखनऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ। ये तस्वीर सम्मेलन की है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में प्रभु श्री राम की झांकी निकल रही है। झांकी में राजा रामचंद्र, लक्ष्मण और हनुमान जी दिख रहे हैं।
6: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
8: ये अखिलेश यादव का ऐलान है। संदेश में भी कहा कि ब्राह्मण वोट पीडीए में शामिल है। पीडीए यानी अखिलेश यादव की बहुजन पॉलिटिक्स, जिसके दम पर 2024 में उन्होंने यूपी में इतिहास रचा था, अब उसी फॉर्मूले को 2027 में आजमाने जा रहे हैं। और इसका आगाज अयोध्या में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से हुआ है।
9: आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो।
8: लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से यूपी का ब्राह्मण वोट अखिलेश यादव के साथ जुड़ेगा? जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जहां संत समाज हो, सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में दो से ज्यादा बार आता हो, जहां 10 ब्राह्मण वोट में से 8 वोट बीजेपी ही हासिल करती हो, वहां समाजवादी पार्टी की दाल कैसे गलेगी? जवाब समझने के लिए इस वीडियो पर गौर करिएगा। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडेय, सनातन पांडेय, माता प्रसाद पांडेय, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी और तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। अखिलेश यादव ने कृष्ण सुदामा की मित्रता का याद दिलाई और फिर ये भी कह दिया कि सरकार ब्राह्मण समाज के पीछे पड़ी है।
6: ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग।
7: ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम ही नहीं करना।
8: यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था यूपी में। अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 2007 में कई सालों बाद पूर्ण बहुमत की सरकार जब मायावती की बनी तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। 2007 में बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। अब अखिलेश यादव इसी वोट बैंक में फिर से सेंध लगाने में जुटे हैं। अखिलेश की सारी कोशिश है कि

0: श्रीवास्तव लखनऊ आज तक।
1: और यूपी की राजनीति से आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुख करते हैं उसी खबर का। तो संसद परिसर में विपक्ष का मार्च शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी हमलावर रहे हैं और इस वक्त विपक्ष के मकर द्वार तक मार्च होना है। कल भी हमने एक ऐसा ही मार्च देखा था, उससे पहले के दिनों में भी हमने लगातार विरोध प्रदर्शन देखे हैं और एक ही मुद्दा है, एक ही मांग है जिसपे सबसे ज्यादा अड़ियल हो रही है विपक्षी पार्टियां, वो है गृह मंत्री का बयान हो और वो जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, जो पुलिस ने एक्शन किया था छात्रों के प्रदर्शन के खिलाफ, उसको लेकर सवाल उठाए हैं, उस पर वो गृह मंत्री का बयान चाह रहे हैं।
2: दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है लेकिन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर विपक्ष का प्रदर्शन आज भी जारी है। छतरी के सहारे ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ठीक पीछे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस पार्टी के सांसद, विपक्षी सांसद सब अलग अलग छातों के सहारे मकर द्वार के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा है उसको भी उठा रहे हैं। तो लगातार आखिरी हफ्ते, सेकंड लास्ट वीक आप कह सकते हैं पार्लियामेंट का, जिसमें विरोध प्रदर्शन विपक्ष का जारी है और छात्रों के सहारे, पोस्टर्स के सहारे विरोध प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, आज तक। लुटियंस दिल्ली में।
1: तो ये तस्वीरें हम आपके लिए सीधा लेकर आए थे संसद से और अब एक ऐसी खबर जिसने समाज और सिस्टम और रिश्ते को हिला दिया है। एक कपड़ा व्यापारी जो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता रहा, जब उसका अंत आया तो उसकी बेटियों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो उससे मिलने आ सकें। वो बूढ़ा 20 दिन तक इंतजार करता रहा लेकिन बेटियां आई नहीं, वो दुनिया से रुखसत हो गया।
3: बिल्कुल अच्छे जाएंगे।
4: ठीक है,
3: भेज दूँगा।
0: महाराष्ट्र का बड़ा कपड़ा व्यापारी अपनी बेटियों से मिलने की चाहत में दुनिया से रुखसत हो गया लेकिन बेटियों के पास समय नहीं था कि अपने पिता से जाकर मिल सके। किसी कवि ने लिखा है कि बेटा बेटी, रिश्ते नाते, महल अटारी, रुपया पैसा सब यहीं छूट जाएगा, अंतकाल में सिर्फ दो गज का कपड़ा ही रह जाएगा। समाज और रिश्तों की बुनियाद हिला देने वाली ये घटना सोनीपत की है, जहाँ के वृद्धाश्रम में महाराष्ट्र के कपड़ा कारोबारी शिवचरण गुप्ता रहते थे। उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां हैं जो अपनी लाइफ में सेट हैं। वृद्धाश्रम में जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा जताई। आश्रम संचालक ने बेटियों को फोन लगाया लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आया।
5: करते तो पहले तो ये बताए कपड़ा व्यापारी थे बुम्बई में, कोई अच्छा ठाडा था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे। तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम आ गए, मियाँ भी आए थे, इनकी घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, उसके बाद ये मेरे आश्रम आ गए।
0: शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती है और वहीं पर टीचर है। मंझली बेटी निशा यूपी के आजमगढ़ में रहती है और सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में ही रहती है। अध्यापिका बेटी अनीता ने ऑनलाइन 5,100 रुपये भेजकर कहा कि पिता का सही ढंग से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पहले बेटियों ने कहा था कि अस्थियां रख देना लेकिन बाद में कहा कि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वृद्धाश्रम संचालक ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दें।
5: नहीं बताया, देखिए मतलब इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया, उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है, हम आते हैं, मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं और वो नहीं आई।
6: डेथ होने के बाद
5: भी ये रात को 3:30 बजे करीब डेथ हुई इनकी, उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका

0: अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला है, अभी शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना आप, इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना, और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें।
1: शिव चरण गुप्ता एक समय पर बड़े कपड़ा व्यापारी होते थे और पैसे भी बहुत कमाए थे, लेकिन ये पैसे उनके काम नहीं आ सके और ना ही उनकी बेटियां उन्हें देखने आईं, जिनके लिए उन्होंने सारा जीवन खपा दिया। पवन कुमार, सोनीपत, आज तक।
2: तो आइए सीधा रुख करते हैं संसद के परिसर का, जहां विपक्षी विरोध चल रहा है। विपक्ष का मार्च जारी है। संसद के मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसद कर रहे हैं ये प्रदर्शन। गृहमंत्री के बयान और चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यही बैनर पकड़कर विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अमित शाह जवाब दो, गृहमंत्री का बयान वो चाहते हैं। और ऐसे में आज बारिश के बावजूद आप देख सकते हैं कि सांसद एकजुट होकर खड़े हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या दूसरी विपक्षी पार्टियों के हों, एक साथ एकजुट विपक्ष खड़ा है और मांग कर रहा है गृह मंत्री के बयान की, संसद में चर्चा की, जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर हो। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र का। हिमांशु, ये जो संसद परिसर के अंदर मार्च का सिलसिला हम देखते आ रहे हैं, उससे पहले विरोध प्रदर्शन भी चलता रहा, कुछ नाटकीय अंदाज भी हमने देखे, इस सब का असर क्या कोई पड़ रहा है? कल हमने देखा सरकार की तरफ से कोशिश हुई, और क्या क्या कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि कई अहम बिल है जिन पर चर्चा होना जरूरी है देश के लिए।
3: देखिए बिल्कुल, सरकार की तरफ से कल जो है किरण रिजिजू, उन्होंने मुलाकात की थी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, और यह मुलाकात एक हफ्ता पहले भी उन्होंने बुधवार को की थी, लेकिन सरकार की अपील का जो है असर जो है वो विपक्ष पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि 20 जुलाई को जो भी घटनाक्रम हुआ उस पर आकर जो है गृह मंत्री सदन के अंदर जो है वो जवाब दे दें, और उसके साथ साथ राम मंदिर में चंदा चोरी जैसा जो मामला है इस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो। सरकार का ये कहना है कि जो कुछ हुआ है 20 जुलाई को उस पर गृह मंत्री का जवाब देना नहीं बनता है, कि जो ऑर्डर दिए गए हैं वो SDM लेवल पर दिए गए हैं, वो गृह मंत्री के द्वारा नहीं दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और ये गृह मंत्रालय के अंदर जो है उसका लॉ एंड ऑर्डर है, तो ऐसे में गृह मंत्री का जवाब जो है
2: बिल्कुल, लेकिन विपक्ष है जो टस से मस होने को तैयार नहीं है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: cool and don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सुरेंद्र सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल।
1: राहुल से रिजिजू की मुलाकात के बाद भी नहीं खत्म हुआ संसद का डेडलॉक। संसद परिसर में विपक्ष की बैठक और नारेबाजी। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण की कई पार्टियां।
0: शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के उबाल के बाद मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे जेन जी से संवाद। 100 शहरों में 2000 स्कूली बच्चों से करेंगे बात आरएसएस चीफ।
1: दो हजार 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने चली पहली चाल। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। जीत का किया दावा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंशली इस्टवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। पत्रकार तरुण तेजपाल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यौन उत्पीड़न के मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं। आपको बता दें कि गोवा बेंच मुंबई हाईकोर्ट का जो था उसमें ट्रायल चल रही थी और उसके बाद अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है और अब पत्रकार तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया गया है।
0: अदालत ने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं और आरोपी को दोषी ठहराते हैं। हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के बरी करने वाले फैसले को पलट दिया है। दिवेश सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दिवेश, डिटेल्स बताइए, कोर्ट ने क्या कहते हुए दोषी करार दिया है?
2: जी, आपको बता दें कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट का बेंच है गोवा का, उन्होंने तरुण तेजपाल का जो सेक्सुअल असॉल्ट केस था उसको सुनते हुए आज रेप के सेक्शन के तहत, सेक्शन 376 के तहत उन्हें कन्विक्ट कर दिया है। उन्हें आरोपी बताया है रेप के मामले में। अन्य सेक्शन भी दर्ज थे, पर अभी कोर्ट के बेंच ने ये बताया है कि जो रेप के सेक्शन के तहत केस चल रहा था उसमें उन्हें आरोप तय किया गया है, उन्हें आरोपी बताया गया है, उनका आरोप सिद्ध हुआ है। इस बारे में हाई कोर्ट के इस बेंच ने दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने पहले जब लोअर कोर्ट में ये मामला चल रहा था उन्होंने एक्विटल दिया था, उन्होंने आरोप सिद्ध नहीं किया था तरुण तेजपाल पर। बॉम्बे हाईकोर्ट के बेंच ने रेप के मामले में तरुण तेजपाल को आरोप सिद्ध करते हुए आरोपी तय किया है। अभी सेंटेंसिंग नहीं हुई है, मतलब उन्हें क्या।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आप सीधे रुख करेंगे लोकसभा राज्यसभा का, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है।
3: मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि देश संसद को चर्चा संवाद के रूप में देखना चाहता है। आप प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, देश की जनता प्रश्नकाल में आपके प्रश्नों और सरकार के जवाबों को सुनना चाहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजे। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। सदन चलना चाहिए, सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाने नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा, हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूँ, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपने देखा कि लोकसभा में जो कार्रवाई चल रही थी उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रश्नकाल का वक्त था, लगातार स्पीकर ने अपील की वहां पर मौजूद विपक्षी पार्टी के सांसदों से।
0: और अब रुक करेंगे शतक आज तक का।

0: संसद में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसदों का हंगामा, बारिश के बीच छाते लेकर सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर स्नैप प्रोटेस्ट की आशंका, लाल किले की सुरक्षा में 12,000 पुलिसकर्मी तैनात, 24,000 मेहमानों पर रहेगी नजर। एफसीआरए संशोधन बिल पर दक्षिणी दलों का विरोध, डीएमके एनसीपी ने बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताई, डीएमके ने कहा सदन में संशोधन की मांग करेंगे। सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले ब्राह्मण सिर्फ सुदामा नहीं चाणक्य भी है, कन्नौज के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साधा निशाना, परिवारवाद को लेकर भी उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अरुणाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, याजाली में फ्लैश फ्लड और बादल फटने से हुआ नुकसान और उसका लेंगे जायजा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, 13वें दिन भी जारी और छात्रों की मांग, खुले में हो बातचीत। बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के 5 संसदीय सदस्य प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर ये प्रस्ताव सौंपा। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 और गिरफ्तार, अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार, रांची और लखनऊ पुलिस के सहयोग से हुई कार्रवाई। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा में बीजेपी का विरोध, झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों का ऐलान, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे, लंबित मांगों को लेकर छात्र आंदोलन तेज, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की है तैयारी।
1: पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर बैठक ने मांगी माफी, चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने जारी किया बयान। सूत्रों के मुताबिक बैठक ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ कंपनियों को स्वीकार किया, कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण जुड़े कंटेंट और डीप फेक से निपटने हुए हुई चूक को भी माना। आज मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत, 2000 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पेपर की प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने की प्रक्रिया पर केंद्र से मांगा है जवाब। ब्रिटेन के ब्राडफोर्ड में कश्मीरी प्रवासियों का प्रदर्शन, पीओजेके के घटनाक्रम को लेकर ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा ने जताया विरोध। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में हाईकोर्ट का आदेश, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का हवाला देकर अनुमति निरस्त की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कराने का षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। अजय राय ने स्पष्ट किया कि शनिवार 8 तारीख को शाम 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद होकर रहेगा, चाहे जितनी बाधाएं डाल लो, युवा न्याय की लड़ाई रुकेगी नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया, अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। यूपी में अपराध नियंत्रण की तैयारी, 51 जिलों के 196 संवेदनशील चौराहे चिन्हित, 9 करोड़ की लागत से लगेंगे 1,342 सीसीटीवी कैमरे।
0: आज सीएम योगी डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद, मंत्री असीम अरुण भी रहेंगे मौजूद। संबल हिंसा को न्यायिक आयोग ने बताया सुनियोजित साजिश, रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना, विधानसभा में पेश हुई 370 पन्नों की रिपोर्ट। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक एनएचएआई ने किया सस्पेंड। अखिलेश यादव का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला, बोले उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही सड़क की मरम्मत, बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है, धसता ढहता गिरता ज्यादा है। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी सरकार का मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया, 2016 में पारित विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के चलते कभी लागू नहीं हो सका। राम मंदिर दान चोरी केस में जांच तेज, पुराने लेजर खंगाल रही है पुलिस, 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस, चढ़ावे के हिसाब और वित्तीय रिकॉर्ड की हो रही है पड़ताल। कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद की छात्रों को एडवाइजरी, कांवड़ मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया, समर्थकों और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। झांसी में अनोखा स्वागत, भाजुमो प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से पहनाई गई 2 कुंतल की माला, क्रेन से हुआ भव्य अभिनंदन। बिजनौर में स्मैक तस्कर महिला गिरफ्तार, 254 ग्राम स्मैक और 66,000 रुपए बरामद, पुलिस खंगाल रही है तस्करी का नेटवर्क।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले कुछ नौजवान छात्रों से की मुलाकात, उस दौरान बीजेपी और अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने माफी मुद्दे पर सरकार पर बोला हमला, कहा इन छात्रों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन दौरान पुलिस बल और अन्य तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा प्रदर्शन में कोई फायरिंग नहीं हुई और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 3,137 प्रतिष्ठानों की जांच, 165 लाइसेंस सस्पेंड, 55.72 करोड़ रुपए के असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त या नष्ट। वाशिम में अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर, जेसीबी से हटाई गई अवैध दुकानें, शहर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई, देसी शराब की दुकान समेत कई ठिकानों पर गिरी गाज। मुंबई मेयर बंगले के आसपास विकास कार्यों का टेंडर रद्द, विवाद के कारण बीएमसी का फैसला, करीब 3 करोड़ रुपए के टेंडर पर उठे थे सवाल। महाराष्ट्र में हेल्थ इंश्योरेंस योजना में 15,407 संदिग्ध क्लेम मिले, आयुष्मान भारत और महात्मा फुले योजना में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी गठित। मुंबई के विक्रोली में तेज म्यूजिक विवाद बना खूनी संघर्ष, पिता पुत्र की हत्या, चाकू हमले में 2 घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया।
0: यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कांवड़, भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे हैं दर्शन। मुजफ्फरनगर में आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़, देश के शहीदों को समर्पित कांवड़ लेकर 21 शिव भक्त 190 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। बिजनौर में कांवड़ में कहीं दिखी भगवान भोलेनाथ की आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं कांवड़ यात्रा में दिखी हनुमान जी और राम परिवार की झलक। प्रयागराज में भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कांवड़, कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ को दिया आकर्षक रूप। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी बनी आकर्षण का केंद्र, अलग अलग कांवड़ों की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं लोग। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा खतरा, बरसाती पानी के साथ मलबा गांव के बीच पहुंचा अलर्ट जारी। चमोली में एक साल बाद भी नहीं बना पैदल रास्ता, नदी पार कर जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की सतर्कता। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर, घरों के निकट पहुंचा नदी का पानी, पैदल पुल जलमग्न।
1: जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी सेक्टर में फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, नंदीमार्ग नाले का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, पूरा इलाका जलमग्न, सड़कें बंद, यातायात प्रभावित। रांची के रिम्स अस्पताल में लबालब भरा पानी, मरीजों और परिजनों की बड़ी परेशानी। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़ियों का सफल रेस्क्यू, पीएसी के आपदा राहत दल के जवान ने दिखाई फुर्ती, नदी में डूब रहे कांवड़ियों को सकुशल निकाला बाहर। फरुखाबाद में गंगा नदी उफान पर, 76 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। लगातार बारिश का असर प्रयागराज, भदोही में कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद, शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। बगहा में उफनती नदियों के आगे बेबस छात्र, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते बुजुर्ग की तस्वीरें, व्यवस्था पर उठा रहे गंभीर सवाल। हुगली में भारी बारिश से जलभराव, सड़कों पर थमा जल जीवन। ओडिशा के पुरी में भारी बारिश के बाद इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित।
0: बिहार के रोहतास में मजदूरी और आपसी विवाद के चलते 60 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद बदमाश ने शव को नहर में फेंका। मजदूर की हत्या की खबर सुनते ही भड़के ग्रामीण, आरोपी के घर पर बोला हमला, लोगों ने घर में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। बवाल की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, शव तलाश जारी। डेयरी ईओ विमल कुमार हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी के से सीएम सम्राट चौधरी ने की मुलाकात, पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिया और जिला प्रशासन को मामले में स्पीड ट्रायल चलाने के सख्त निर्देश दिए। पटना में पकड़ा गया लाखों का नकली ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और दवा, आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, बारिश के बीच ढहा 100 साल पुराना मकान, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, गन्ने के खेत में करंट लगने से किसान मजदूर की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी समेत 3 को उम्र कैद, कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया। मथुरा में छात्र की हत्या, जंगल की कोठरी में मिला शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में कैफे और मिनी प्लेक्स पर पुलिस का बड़ा छापा, 2 दर्जन युवक और युवतियां हिरासत में, अनैतिक गतिविधियों की आशंका, जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई।
1: छत्तीसगढ़ के महासमुंद में भीषण सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची छात्रा की जान, ट्रक ड्राइवर की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, एमपी के मेहर से हैरान करने वाला वीडियो, सरकारी स्कूल में ए सर्टिफाइड धुरंधर फिल्म देखते नजर आए छात्र, मामले में प्रिंसिपल ने जारी किया नोटिस। तेल चोरी मामले में एमपी के कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई, मथुरा पुलिस ने करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की। गुजरात के वलसाड में नेशनल हाईवे 48 पर चलती कार में लगी भीषण आग, हाईवे पर मची अफरा तफरी, चालक की बाल बाल बची जान। जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद से परेशान सिपाही ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया आत्महत्या का प्रयास, साथियों की सूझबूझ से बची जान। जूनी इंदौर के गुरुद्वारे में विवाद, चढ़ावे के पैसों में हेरफेर का हिसाब मांगने पर मैनेजर ने बुजुर्ग के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खड़े डंपर से टकराई कार, 4 लोगों की मौत। धनबाद में शॉर्ट सर्किट से बहुमंजिला इमारत की बिजली मीटर में लगी भीषण आग, आसपास के स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। बिहार एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 11 देसी पिस्टल सहित हथियार बनाने के उपकरण के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, पारिवारिक संपत्ति में विवाद को लेकर भाई ने बहन पर किया जानलेवा हमला।
0: बिहार के दरभंगा में अपने बकाए वेतन को लेकर संस्कृत के शिक्षक का फूटा गुस्सा, डीसी ऑफिस में किया अनोखा प्रदर्शन। हरियाणा के जींद जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाए प्रताड़ना के आरोप, 2 जेल सुप्रिंटेंडेंट और 1 कैदी समेत 4 लोगों पर गंभीर आरोप। बिहार के बगहा में मवेशी तस्करी के संदेह में ग्रामीणों ने 5 युवकों को बंधक बनाया, करीब 10 घंटे तक कमरे में बंद कर मारपीट का भी आरोप, पुलिस ने बचाई जान। यूपी के शामली में पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश फुरकान एनकाउंटर में ढेर, कार्बाइन पिस्टल बरामद, हत्या और रंगदारी जैसे 30 मुकदमे थे दर्ज। मथुरा में 2 करोड़ की हेरोइन समेत अलीगढ़ में 2 तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, कप्तान शुभमन गिल समेत 3 भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल, टॉप पर काबिज है कप्तान गिल, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर और चौथे पायदान पर है रोहित शर्मा। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने टीम के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को किया शामिल, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को करेंगे गेंदबाजी। 17 अगस्त से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ करेंगी अभियान की शुरुआत। युवा शटलर आयुष को मिली है कड़ी चुनौती, पहले दौर में विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की शी यू कुई के साथ होगा उनका मुकाबला।
1: अमित राय की ओ माय डॉग कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में दिखाई देंगे। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0 भी कल हो रही है रिलीज, हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सहगल, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार शामिल। आर माधवन की फिल्म GDN कल होगी लॉन्च, GD रायडू की फिल्म में दिखेंगे माधवन, फिल्म में प्रिया मणि, जयराम और सत्यराज जैसे कलाकार भी हैं। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी कल थिएटर में होगी लॉन्च, फिल्म में शिल्पा शेट्टी के साथ पतिराज कुंद्रा लीड रोल में है। तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म DC भी कल रिलीज होगी, इसमें लोकेश कनगराज और वामिका गाबी शामिल है। सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 14 अगस्त को होगी रिलीज। इमरान हाशमी के आवारण पर 2 सेंसर बोर्ड से मिला UA सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म देगी दस्तक। फिल्म जोरथी का टीजर लॉन्च, फिल्म में कीर्ति सुरेश निभाएगी मुख्य भूमिका, 25 सितंबर 2026 को होगी रिलीज। नेटफ्लिक्स ने किया ऐलान, मुजाफिर कैफे का आएगा दूसरा सीजन, विक्रांत मेसी विदिका पिंटो फिल्म में दिखाई देंगे। भारत में फिल्म स्पाइडरमैन का जलवा बरकरार, फिल्म ने 7 दिन में कमाए 314 करोड़ रुपए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
1: एक बार फिर से गुरुग्राम का हाल बारिश ने खराब कर दिया है। तेज बारिश ने एक बार फिर साइबर सिटी को पानी पानी कर दिया है। सुबह होते होते शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। भारी बारिश की वजह से कादीपुर पटौदी रोड और सेक्टर 10 इलाकों में सड़क पर जलभराव है। ऐसा लग रहा है सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर कोई जगह नहीं है। गुरुग्राम पुलिस ने तमाम कंपनियों को सलाह दी है कि वो अपने कर्मचारियों को आज के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें। जलभराव के चलते यातायात प्रभावित हुआ है, वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। स्कूल हालांकि अभी खुले हुए हैं, ऐसे में दिक्कतें रोजाना सफर करने वालों को जो दफ्तर और स्कूल जाते हैं। ये देखिए सड़कों का हाल, कहां सड़क है कहां दरिया है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम जिसे हाईटेक सिटी कहा जाता है
0: और आइए सीधा रुक करते हैं राज्यसभा का, जहां पर इस वक्त किरण रिजिजू बोल रहे हैं।
3: धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से देश भर के करोड़ों समाज की बहनों के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ। और मानवता के उपासक थे, उन्होंने अपना समर्पण जीवन गरीबों दलित आदिवासी के लिए जीवन समर्पित किया, संदेश दिया था। उनकी शिक्षा आज भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उन्होंने समाज जाति और क्षेत्र के ऊपर उठकर एकता, नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा में जुड़ा हुआ है। इस महान संत सेवालाल महाराज का योग्य जो है सरकार के माध्यम से पूरा एक संदेश देना चाहते हैं। मोदी जी सरकार जिस तरह हमारे आदिवासी बिरसा।
1: इसी के साथ यहां रुकना होगा, फिर से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: इन एसोसिएशन विद
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट बड़े आराम से।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
9: द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एवरीथिंग। दे डिडंट वांट टू मच प्राइवेट इंडस्ट्री।
10: द बिग फैमिली ग्रुप्स एट दैट टाइम हु ट्रेडिशनली वर डोमिनेटिंग इंडियन इंडस्ट्री एट दैट टाइम। स्लोली आई थिंक न्यू एंटरप्रेन्योर्स केम अप।
9: देयर वर बिजनेसमैन हु वर कमिंग इनटू प्रोमिनेंस एंड राइजिंग। नोबडी हैड हर्ड ऑफ विजय माल्या'स फादर विट्टल माल्या एट दैट टाइम, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है, लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
4: मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है। कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
3: अब बांदीपुरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गुरेज के कोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया है, जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सुरेंद्र सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल,
1: खत्म नहीं हुआ संसद का डेडलॉक। विपक्ष की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक की नारेबाजी, रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी है दक्षिण भारत की कई पार्टियां।
0: शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के बाल के बाद मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे जेन जी से सीधा संवाद। 100 शहरों के 2000 स्कूली बच्चों से बात करेंगे आरएसएस चीफ।
1: 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने चली पहली चाल। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार, जीत का किया दावा।
0: तेजपाल रेप मामले में दोषी करार। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। बलात्कार की धारा 376 के तहत सजा पर जजमेंट बाकी।

0: रांची में इन दिनों एक और आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही रांची में हजारों छात्रों का जमावड़ा है, नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है।
1: झारखंड के छात्र राज्य की सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार और धांधली की गिरफ्त में आ चुके परीक्षा के सिस्टम में भी परिवर्तन चाहते हैं, नियुक्ति के सिस्टम में भी परिवर्तन चाहते हैं। आज उनके आंदोलन का 13वां दिन है और वो हेमंत सोरेन की सरकार की ईंट से ईंट बजाने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं।
0: वही दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद दिन पहले जो कुछ हुआ वो अब रांची में दोहराया जा रहा है। जंतर मंतर की तरह ही रांची में भी झारखंड के नौजवान अपने हक की आवाज बुलंद करें। छात्रों की मांग है कि 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कर दी जाए।
1: जेपीएससी के साथ ही छात्र उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिनमें धांधली के आरोप लगते रहे, यानी कि छात्र पूरी परीक्षा व्यवस्था की पूरी तरह साफ सफाई चाहते हैं। तो क्या झारखंड की सोरेन सरकार छात्रों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी?
2: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
3: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
4: छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
5: जो आवाज अब तक दिल्ली में सुनी जा रही थी वो अब रांची से सुनाई दे रही है। हक की एक और लड़ाई तेजी से परवान चढ़ रही है। झारखंड के नौजवान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की अनोखी जंग लड़ रहे हैं। देश ने बड़े गौर से जंतर मंतर को देखा कि कैसे नौजवानों ने एक और आंदोलन की बुनियाद रखी। ये भी देखा कि कैसे युवा शक्ति के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया। देखा कि कैसे एक बेहद मजबूत शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। और अब दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक और जंतर मंतर का वजूद मजबूत होते देश देख रहा है। दो आंदोलन, दोनों का मकसद एक। फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में डटे छात्र साधन संपन्न थे तो रांची में जमे छात्रों के सामने संसाधन का संकट है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है।
4: यार अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले
2: हैं। लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
3: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
2: हम बता दें सर, आज आप लोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए पर हमारे मुख्यमंत्री अभी तक मिलने तक नहीं आए कि मिल लेते छात्र। हम भी तो उन्हीं के छात्र ना, हम भी उनको नौकरी के नाम पे वोट दिए थे सर।
5: 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर रांची में छात्र डटे हैं। न धूप बारिश की परवाह है, न भूख प्यास की चिंता। इनकी दो टूक मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा और अन्य विवादित परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई या ईडी से जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य की सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो, मुख्यमंत्री सीधे छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करें और लिखित आश्वासन दें।
6: तो चार मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल नहीं तैयार करना पड़ता, आंधी तूफान इसी मूसलाधार बारिश में, उसके बाद भी टेंट बनाकर ये बच्चे टिके हुए हैं, 24 घंटे टिके हैं। इस आंदोलन को कमजोरी ना पड़े, अगर कोई अनशन तोड़ता है तो चार और अनशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल ये आंदोलन पूछ रहा है और इसी वजह से दबाव है। अब तक लगता था कि क्या ये कुछ मुट्ठी भर छात्र होंगे, अब पूरे झारखंड का समर्थन है। छात्र भूखे ना सोए तो कुछ और नहीं तो ये चना गुड़ लेकर के, पिज्जा बर्गर नहीं है तो चना गुड़ लेकर के आ गए कि कम से कम इन छात्रों की जो आवाज है वो सरकार तक लगातार पहुंचती रहे।
5: इन छात्रों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जंतर मंतर का प्रकरण सोरेन सरकार के जहन में जरूर दर्ज हुआ होगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने छात्रों से बातचीत की पेशकश की है,
7: उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।
5: मुख्यमंत्री की इस पहल का अब तक ज्यादा असर नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि जो कुछ होगा सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री का आवास 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करें। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
1: तो जंतर मंतर पर आपने एक नए किस्म का आंदोलन देखा है। ये देखा कि कैसे छात्र नए और आधुनिक तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में भी कुछ वही आलम है।
6: तारीख को विधानसभा मार्च तय है, छात्र यहां से अनाउंस कर रहे हैं। दरअसल आंदोलनों की रूपरेखा बदलते वक्त में भी बदलती गई। हमने जंतर मंतर पर देखा, नारों से ज्यादा ये जो नई पीढ़ी है, जो जनरेशन जी है, इसके आंदोलन की ताकत, इसके नारे, इसके तरीके हैं। जब हम इस मंच पर आते हैं तो आपको यहाँ बाबा अम्बेडकर दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी यहाँ दिखाई देते हैं, शिबू सोरेन भी दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ एक नियम ये जरूर है कि मंच से किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत व्यक्तित्व वक्तव्य नहीं होगा। आंदोलन के मूल निर्देशों पर ही अपनी बात होगी। और ये भी कहा है कि लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित न करें, आप शब्दों का प्रयोग न करें। और उसी के साथ जो तिरंगा है वो राष्ट्र का प्रतीक है। और इसी के साथ साथ आपको इस आंदोलन के वो रंग दिखाते हैं जो अहिंसा से है, सादगी से है, लेकिन नया है और इसीलिए बहुत प्रभावशाली है। न्याय नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए, तुमसे ये उम्मीद नहीं था हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, AI के जरिए बनाई गई इन तस्वीरों को, एजुकेशन इज आवर राइट नॉट अ प्रिविलेज, ये है वो जेन जी का आंदोलन। वो इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि इनके तरीके नए हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। JSSC जो स्टूडेंट कह रहे हैं अब तो नौकरी पक्की है, फिर क्या होता है पेपर लीक, इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। उपहास कहते हैं ना कि इतने गंभीर विषय को भी ऐसा उपहास बनाया कि मार सीधे सिस्टम को लगती है। पेपर मत बेचो प्लीज, क्या लिखा देखिए, जेंजी बाबू पेपर मत बेचो प्लीज। जेंजी की जो भाषा है ना इन बच्चों की, वो भाषा अपनी इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, लेकिन प्रभावशाली है। ये 3D के जरिए एनिमेटेड AI का इस्तेमाल हमने कहां नहीं देखा था। और किसने सोचा था कि भारत में AI का इस्तेमाल आंदोलनों में भी होगा। और इसीलिए 3D डायनेमिक पिक्चर बना करके इसमें लिखा है आज।
0: और हमारे दो सहयोगी सत्यजीत और आशुतोष मिश्रा से तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गए। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, आप दिखा रहे थे किस तरीके से जो जेंजी का वहां पर प्रोटेस्ट है वो दरअसल कई मामलों में बेहद गंभीर है। अगर उसकी तुलना यहाँ के जंतर मंतर से की जाए तो काफी मायनों में उन लोगों को उस तरह का सपोर्ट भी हासिल नहीं हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो संख्या हो छात्र बलों की, किसी भी तरीके से।
6: दरअसल टायरनी ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है अंग्रेजी में इसे, देखा। और देश की राजधानी थी तो इंस्टाग्राम था, सोशल मीडिया था, इन्फ्लुएंसर थे, बैंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, देश का कोई कोना नहीं था जो उससे जुड़ रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं है। अगर 10 दिनों में यहाँ 100 लोग थे तो अब 10 दिनों के बाद ये संख्या हजारों में है। हो सकता है यहाँ स्विगी जोमेटो से ऑर्डर ना आ रहा हो, लेकिन गुड़ चना लेकर के आने वाले इसी शहर, इसी राज्य के लोग, खुंटी, गुमला, देवघर, कोई इलाका नहीं है जहाँ के लोग नहीं पहुंचे हैं। इस आंदोलन में मैंने उन लोगों को देखा है, मसलन ये मनीष हैं, इनके बारे में आप सोचिए कि इनके पिता ने झारखंड की जब लड़ाई चल रही थी बिहार से अलग होने की, वो उस लड़ाई में थे। उनकी माता जो है प्राथमिक शिक्षिका के आंदोलन में थी और बेटे को 25 साल की उम्र में क्या मिला, ये आंदोलन। तो ये एक दूसरे को इतनी परीक्षाएं दी हैं, कभी धांधली कभी लीक, और इसीलिए अब जो संख्या है जैसे जैसे दिन बीतता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन ये नई पीढ़ी है, ये हिंसा में विश्वास नहीं करती, ये उग्र नारे नहीं लगाती, ये 3D के जरिए इस तरह के पोस्टर बना के ले आती है, नारे लिख करके ले आती है, और ये भी कह देती है कि कुछ JPSC की जो रिफॉर्म है उसे कर दो। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इन नारों में जो व्यंग होता है ना, कभी भी सत्ता को व्यंग नहीं पसंद आते थे, और उस व्यंग में, हास्य में, सरकाज्म में, और अपनी उम्र के साथ ये जो नयापन आया है इस प्रदर्शन का, ये बहुत ज्यादा गंभीर करती है, सरकार पर दबाव डालती है। और ये बताते हैं कि ये बच्चे ही तो हैं, आप ही के बच्चे हैं, ये झारखंड का भविष्य है। ये कहते हैं ना, प्राकृतिक संपदा से संपन्न है ये राज्य, लेकिन उसके बाद यहाँ पर निजी रोजगार नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, सरकार का आकार छोटा है तो सरकारी नौकरियां नहीं है। 5 साल में 1 बार 100 सीटों की परीक्षा निकली तो कभी मेंस नहीं हो पाया, कहीं प्रीलिम्स हो गई, कहीं OMR शीट में गड़बड़ी है। और भरोसा इसलिए नहीं है कि उसी JPSC चुने हुए जो SP DSP SP बन के गए हैं उनके भरोसे अगर जांच है, ये कहते हैं हम उस पर भरोसा कैसे करें। और इसीलिए फिर वो मांगों के लेकर के डफली ढोल लेकर के जो जैसे आया, झारखंड की परंपरा, उनकी रंग, उनकी संस्कृति और

0: लेकिन झारखंड में कम से कम पूरा एक राज्य यहाँ इकट्ठा जरूर है और इसी वजह से हेमंत सोरेन की सरकार उस दबाव में है, जिसकी वजह से वो बात करने के लिए तैयार हुई है। चार मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी बनाया गया है।
1: जी बिल्कुल, और छात्रों की आवाज अब विधानसभा में भी गूंजने लगी है। सत्यजीत हमारे साथ है। सत्यजीत, किस तरह का प्रदर्शन दिखा है आज वहाँ पर?
2: देखिए, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आगाज था और आगाज के दिन कस्टमरी होता है शोक प्रस्ताव, लेकिन सदन के बाहर ठीक इस जगह पे पोर्टिको में जमकर नारेबाजी की बीजेपी के विधायकों ने। छात्रों के हित को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी में जो लार्ज स्केल रिगिंग हुआ, लार्ज स्केल करप्शन है, उसके सीबीआई प्रोब को लेकर मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे तक की मांग कर दी। एजेएसयू के विधायक जो निर्मल महतो है, वो एक ऐसा जो है टायर पहन के आए थे जिसमें रेट्स लिखे हुए थे कि कैसे कैसे सीट बेचे जाते हैं डीएसपी, और अगर आपको एसडीएम बनना तो उसके लिए 2.5 करोड़, ऐसे ऐसे करके तमाम रेट जो है वो लिखे हुए थे। हाउस के अंदर जैसे हाउस शुरू होता है उस वक्त जो है हंगामा करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जाती है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन चूंकि कस्टमरी आज शोक प्रस्ताव होता है।
3: जानकारी के लिए आपका। इस बीच छात्रों के आंदोलन के जब 12 दिन बीत गए तो सोरेन सरकार की नींद टूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाया, मंत्रियों के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन भी कर दिया, लेकिन छात्र नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीएम से ही बात होगी, वो भी सार्वजनिक मंच पर।
4: रांची में एक नया अध्याय आकार ले रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच रांची की सड़कों पर झारखंड के नौजवान नई भारत लिखने में पूरी ताकत से जुटे हैं। बुधवार की शाम यहां अनोखी तिरंगा यात्रा निकली।
0: बिरसा मुंडा की जमीन पर ये आदिवासी छात्र, ये वो लोग हैं जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं के अनियमितता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। ये देख रहे कितना लंबा तिरंगा है, ये 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर के, तिरंगा हाथों में लेकर के, तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र निकले हैं। 12 दिनों से सुनवाई हुई नहीं, अब सरकार कहती है कि बातचीत करेंगे, चर्चा करनी है, और इसी के लिए देखिए ये तमाम सारे छात्र जो हैं ये तिरंगा यात्रा लेकर के रांची की सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं।
5: जब तक जेपीएससी नहीं होगा तब तक नंगे पैर रहेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे। चप्पल
0: बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ये शरीर की पीड़ा फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेगा, दरअसल जो भविष्य के सामने जो पीड़ा खड़ी हुई है उसका जवाब कौन देगा? रांची ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है।
4: झारखंड के हर हिस्से से छात्रों का रांची की तरफ कूच हो रहा है। जत्थे में उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुदरत बारिश की बौछार कर रहा है तो आंदोलनकारी इन छात्रों पर फूलों की भी बारिश हो रही है। जंतर मंतर वाली व्यवस्था तो नहीं, लेकिन दाल चावल का इंतजाम यहाँ भी है।
0: झारखंड के इस जंतर मंतर पर जानते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर क्या है। ये छोटी सी तिरपाल है, जगह यहाँ पर 50 से 100 लोगों की है, लेकिन दिन भर में हजारों छात्र अलग अलग टुकड़े में, देखिए कहीं से छत टपक रही है तो व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बचाया जा सके। नारे पोस्टर लेकर के वो भी आए हैं जिनका परीक्षाओं से लेना देना नहीं है, लेकिन भविष्य अपने बच्चों का देखते हुए वो चिंता उन्हें यहाँ लेकर के आई है। यहाँ आपको क्या, युवा महिलाएं हर कोई समर्थन में मिलेगा, और ऐसे छोटे छोटे टेंट लगा के इस मैदान के अंदर तमाम सारे छात्र हैं, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करके बल्कि वो युवा ताकत से ये बताना चाहते हैं कि मामला उनके भविष्य का है, उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए। देखिए यहाँ पर सोनम वांगचुक की भी तस्वीरें लगी होंगी, और सोनम वांगचुक ने जब दिल्ली में दर्शन अनशन किया तो देवेंद्रनाथ महतो ने भी यहाँ अनशन किया। उनका अनशन सोनम वांगचुक के कहने पर टूटा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस आंदोलन में पिछले 12 दिनों से दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर अपनी आवाज सुनाने के लिए, हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए यहां पर चुके हैं। देखिए कुदरत का तो मानो कहर बरप रहा है पूरी भारत में, खासकर झारखंड में मूसलाधार बारिश के बीच जहां जिसको जगह मिली है ये छात्र बस यहीं टिके हैं। 24 घंटे ऐसा कोई समय नहीं है जब छात्रों का जमावड़ा यहां पर नहीं होता, और इसीलिए देखिए चावल दाल सलाद जो भी है जिसके बहाते जो बना वो लेकर के आ गया, क्योंकि दिन भर यहां हजारों छात्र होते हैं, कोई भूखा ना सोए इसकी जिम्मेदारी अब झारखंड ने ले ली है। आप लोग क्या करते हैं और क्या ऐसी चीज थी जो आपको यहाँ लेकर के आई, ये पूरा खाना लंगर लेकर के?
6: सर मैं घर पे रह रही थी तो मैंने लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ये प्रोटेस्ट देख रहे थे, बट कल जब यहाँ आए और देखा मैंने स्टूडेंट्स को तो देखकर बहुत ही ऐसा लगा कि अगर हम नहीं करेंगे अब तो कौन करेगा इनके लिए।
4: सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार अब क्या करेगी? खबर है कि सोरेन सरकार ने 4 मंत्रियों का

0: प्रतिनिधिमंडल बनाया है। आंदोलनकारी छात्रों से प्रतिनिधिमंडल ही बातचीत करेगा। परीक्षाओं में धांधली के आरोप में अब तक 19 गिरफ्तारी हुई है। छात्रों और सरकार के बीच आज बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार के लिए आंदोलन एक अग्नि परीक्षा की तरह ही है। छात्र आमूलचूल सुधार चाहते हैं, सड़ी गली व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। तो सोरेन सरकार के लिए भी ये कम बड़ी चुनौती नहीं है। आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
1: सवाल यह है कि अब सोरेन सरकार का अगला कदम क्या होगा। सोरेन सरकार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि इस मामले में विधानसभा में सरकार कोई पहल कर सकती है।
2: देखिए, इसमें बहुत साफ बात है, ये पेपर लीक का मामला नहीं है। ये बैकडोर से और गलत मींस के साथ लोगों को अपॉइंट कराने की बात है। इसमें वो एजेंसी दोषी है जिसने क्वेश्चंस को या पहले से ही लोगों को सेट कर रखा था। सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व है कि ऐसे मामले में जो लोगों की संलिप्तता है उनके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई हो, जो कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार में है। अब वो जो छात्र हैं, जो वास्तविक छात्र हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और इसका पटाक्षेप हो। सरकार भी चाहती है, बीच में कहीं किसी के साथ कोई परेशानी नहीं। इसीलिए मैंने कहा सांकेतिक रूप से कि राज्य का विपक्ष भी सरकार को सहयोग करे कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो विषय है वो उसका पटाक्षेप कितना जल्दी।
3: बहाली की अभी चर्चाएं हुई, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उस बहाली की चर्चा से लगता तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ इतने लोगों की बहाली हो जाएगी। लगभग 97,000 ऐसा कुछ, लगभग 1,00,000 की संख्या है। लेकिन पिछले दिनों जो बहालियां हुई है, पिछले दिनों जो JSCC से CGL का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं। आज भी लड़का सड़क पर है और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप CBI को अवर कर दीजिए, जांच के लिए आप अग्रसरित कर दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार से CGIL के एग्जाम को कंडक्ट किया गया और जानकारी मिली है बंगाल की कोई कंपनी, सरकार के कोई कंसर्न की कंपनी से शायद एग्जाम लिया है बंगाल सरकार के। हम सब लोगों को पता है पिछले दिनों शिक्षक बहाली में क्या हुआ, कौन कितना दिनों तक जेल में अभी छूटा है कि नहीं छूटा है, कितने पैसा लेकर के बहाली हो रही है। मैं ये कहूंगा कि झारखंड के बारे में हमें विचार करना चाहिए। झारखंड के नौजवानों का ही सवाल नहीं है, झारखंड की बुनियाद भी हम बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि भाई हम जब इस प्रकार के एग्जाम होते हैं लड़का को ये जो भरोसा होनी चाहिए, लेकिन आप भरोसा कहाँ दिला पा रहे हैं।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। खत्म नहीं हुआ संसद का डेडलॉक। विपक्ष की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक की नारेबाजी। रोकनी पड़ी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी हुई हैं कई पार्टियां। शिक्षा परीक्षा पर नौजवानों के उबाल के बाद मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज करेंगे जेन जी से सीधा संवाद। 100 शहरों के 2000 स्कूली बच्चों से बात करेंगे आरएसएस प्रमुख। और तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी करार। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। बलात्कार की धारा 376 के तहत सजा पर जजमेंट बाकी। और दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर पानी ही पानी। सुबह सुबह जाम से हाफने लगी राजधानी।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन आज 13वां दिन है, लगातार जारी है। स्थिति ये हो गई है कि अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। छात्रों ने साफ किया है कि बातचीत सिर्फ मुख्यमंत्री से होगी। मुख्यमंत्री खुद सामने आए और सबके सामने मीडिया की मौजूदगी में बातचीत करें। बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी है, ये छात्रों ने बहुत स्पष्ट कह दिया है।
1: हो सकता है यहाँ स्विगी जोमेटो से ऑर्डर ना आ रहा हो, लेकिन गुड़ चना लेकर के आने वाले इसी शहर इसी राज्य के लोग, खुंटी गुमला देवघर कोई राकाब नहीं है जहाँ के लोग नहीं पहुँचे हैं। इस आंदोलन में मैंने उन लोगों को देखा है, मसलन ये मनीष हैं, इनके बारे में आप सोचिए कि इनके पिता ने झारखंड की जब लड़ाई चल रही थी बिहार से अलग होने की, वो उस लड़ाई में थे। उनकी माता जो है प्राथमिक शिक्षिका के आंदोलन में थी और बेटे को 25 साल की उम्र में क्या मिला, ये आंदोलन। तो ये एक दूसरे को इतनी परीक्षाएं दी हैं, कभी धांधली कभी लीक, और इसीलिए अब जो संख्या है जैसे जैसे दिन बीतता है वो बढ़ती जाती है। लेकिन ये नई पीढ़ी है, ये हिंसा में विश्वास नहीं करती, ये उग्र नारे नहीं लगाती, ये 3D के जरिए इस तरह के पोस्टर बना के ले आती है, नारे लिख करके ले आती है और ये भी कह देती है कि कुछ जेपीएससी की जो रिफॉर्म है उसे कर दो। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इन नारों में जो व्यंग होता है ना, कभी भी सत्ता को व्यंग नहीं पसंद आते थे, और उस व्यंग में, हास्य में, सार्कैज़म में और अपनी उम्र के साथ ये जो नयापन आया है इस प्रदर्शन का, ये बहुत ज्यादा गंभीर करती है, सरकार पर दबाव डालती है। और ये बताते हैं कि ये बच्चे ही तो हैं, आप ही के बच्चे हैं, ये झारखंड का भविष्य है।
0: तो जेपीएससी धांधली को लेकर झारखंड विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी इस मुद्दे को लगातार हवा दे रही है और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी लामबंद हो गई है और अब यह आंदोलन सड़क से सदन तक पहुंच गया। हालांकि सरकार ने 4 मंत्रियों की एक समिति बनाई है, पैनल बनाया है, लेकिन बात बनती अभी दिख नहीं रही है।
2: जेपीएससी और जेएसएससी में करप्शन का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर भी गूंज रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि विधायक जो है इस तरह के कटआउट लेके बाहर खड़े हैं, नारे लिखे हुए कटआउट जो है वो लेके बाहर खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो बिल्कुल संजीदा है। स्टूडेंट्स के मामले को लेकर एक 4 मंत्रियों का पैनल भी बनाया गया है, जिसमें आरजेडी की तरफ से संजय यादव, जेएमएम की तरफ से चामरा लिंडा और इसके अलावा सुदीप सोनू है, कांग्रेस के तरफ से दीपिका पांडे हैं। तो पैनल भी बनाया हुआ है। सरकार लगातार चाह रही है कि स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर आए, अपनी मांग को रखे, बातचीत करें, डायलॉग रखें। इस दिशा में आइस भी ब्रेक किया था सरकार ने, एसडीएम रांची के और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जाकर मिले थे। एक डेलीगेशन की मांग, डेलीगेशन के बाद जो है सरकार ने कही है कि आप डेलीगेशन में आए, मिले, दोनों तरफ से डेलीगेशन रखें और अपनी बातों को रखें। ओएमआर सीट को लेकर भी एफएसएल जांच की बात की गई है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, 19 गिरफ्तारियां सीआईडी ने किया है, ख्यांगते का इस्तीफा हो चुका है, सीआईडी उनसे भी क्वेश्चन कर रही है। तो सरकार का दावा है कि छात्रों के हित को लेकर वो लगातार गंभीर है।
0: और 12 बजे बड़ा रिपोर्टर में बात संसद के मानसून सत्र की करते हैं। विपक्ष और सरकार में बात बनती अब दिख नहीं रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पैलेट गन पर गृह मंत्री के बयान समेत कई मुद्दों पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आए और विपक्ष के सवालों का जवाब दें।
3: संसद में गतिरोध बना हुआ है, सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि संसद में बने हुए गतिरोध को खत्म किया जाए। विपक्ष इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि संसद में गृह मंत्री जवाब दें और राम मंदिर में चंदा चोरी जैसे मामले को लेकर संसद में चर्चा हो। अब देखना यह है कि सरकार की अपील का विपक्ष पर कोई असर पड़ेगा या ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल चलाएगा? 2027 के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारने शुरू कर चुकी है और पहला कैंडिडेट ब्राह्मण है और वो भी अयोध्या से। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए की परिभाषा बदल दी है। अखिलेश यादव की इस रणनीति के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में अब हलचल बहुत बढ़ गई है। क्या ब्राह्मण साइकिल पर सवार होगा? सवाल अब लोगों के मन में जगह बना चुका है।
4: जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए में पी अब पंडित हो चुका है। और पीडी पंडित का शॉर्ट फॉर्म। आसान भाषा में कहें तो अखिलेश यादव को यह मालूम पड़ गया है कि अगर यूपी का चुनाव जीतना है तो केवल दलित पिछड़े ओबीसी से ही नहीं बल्कि सवर्णों का खासकर ब्राह्मणों का वोट भी चाहिए। ऐसे में जनेश्वर मिश्र जयंती के जरिए समाजवादी पार्टी सियासी समीकरण साधती हुई दिखती है, जहां सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, पूजा शुक्ला, अभिषेक मिश्रा जैसे तमाम ब्राह्मण नेताओं के जरिए को स्टेज में लाने के साथ साथ पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि केवल आक्रामक सरकार और पार्टी पीडीए को लेकर नहीं है बल्कि ब्राह्मणों को लेकर भी है। तो वहीं बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है जिससे उनका ब्राह्मण वोट कहीं ना खिसके। बीजेपी की यह भी कोशिश है कि वो अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अखिलेश यादव के इस गेम चेंजर मूव का जवाब दे पाए।
0: और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बताते हैं, राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द हो गई है। केपी इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान पर राहुल गांधी की छात्र गूंज सभा शनिवार को होनी है। अब इसके लिए कांग्रेस ने केपी ग्राउंड बुक किया था, फीस भी जमा की थी और तैयारियां भी चल रही थी, तस्वीरें देखिए। लेकिन अब कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने बुकिंग रद्द कर दी और कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग बुकिंग शुल्क वापस ले लें। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी और यूपी सरकार को घेरा और कहा कि राहुल गांधी से घबरा गई है सरकार, इसीलिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अजय राय ने दावा किया है कि 8 अगस्त को तय समय पर ही राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रयागराज में होगा।
5: प्रयागराज में होने वाले युवा संवाद की जो परमिशन है वो कहीं ना कहीं सरकार ने नहीं दी है। वैसे में एक बड़ा प्रोग्राम जो कि किया जा रहा था प्रयागराज, जिसमें जेन जी को स्पेशली इकट्ठा करके उनसे संवाद करना था और इसको लेकर लाखों की भीड़ वहां पर पहुंच रही थी। अब ऐसे में कांग्रेस के सभी वो कार्यकर्ता, नेता, विधायक भी प्रयागराज पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि सरकार डर गई है और इसी वजह से ये राजनीतिक प्रोग्राम बताकर परमिशन देने से मना कर रही है। अब इस प्रोग्राम के बाद कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई कि जिस जेनजी को लेकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में राजनीति साधने की बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उसको अब जगह नहीं दी जा रही है। वैसे में ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन कांग्रेस के मंसूबे पूरे ना हो इसके लेकर भी कई आरोप लग रहे हैं।
0: बारह बजे बारह रिपोर्टर में अब बात अगली खबर की। संघ प्रमुख मोहन भागवत जेनजी से संवाद कर रहे हैं। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान भी संघ प्रमुख ने कहा था कि युवाओं से संवाद करना चाहिए, जिसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया था और अब खुद मोहन भागवत जेनजी को अपने पाले में करने के लिए संवाद कर रहे हैं। मुंबई में आयोजन है जिसमें 100 से अधिक शहरों से जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो शामिल हुए हैं। जेनजी आप जिन्हें कह सकते हैं।
6: मुंबई में आयोजित जेनजी संवाद कार्यक्रम में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जेनजी से संवाद करेंगे। ऐसे में देश हित, राष्ट्र प्रेम और युवा पीढ़ी के विचार, इन विषयों को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सीजेपी आंदोलन के बाद यह पहली बार होगा जब मोहन भागवत इतने बड़े पैमाने में जेनजी से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में जो है जेनजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा इस कार्यक्रम में मोहन भागवत अपने विचार जेनजियों के सामने किस तरीके से रखते हैं और जेनजियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है।
0: तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी करार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा ब्रांच ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। बलात्कार की धारा 376 के तहत सजा पर अब जजमेंट बाकी है। यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल दोषी करार दे दिए गए हैं। विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। विद्या, बहुत लंबी सुनवाई और उसके बाद अब फैसला पलट दिया गया है और बलात्कार का दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन जजमेंट कब आएगा?
7: जी देखिए, 2:30 बजे के आसपास कोर्ट ने रखा है कि वो आर्ग्यूमेंट्स तो हो चुके हैं। हमने देखा कि तरुण तेजपाल खुद ने उन्होंने एड्रेस किया अदालत को और कहा कि वो 62 इयर्स ओल्ड के हैं, उनके परिवार में भी लोग हैं और लीनियंसी की उम्मीद वो कर रहे थे अदालत से। वहीं प्रोसिक्यूशन ने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए आर्ग्यू करते हुए कहा कि किस तरह से ये हीनस एक्ट था। बहरहाल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व किया है, 2:30 बजे पर इसमें ऑर्डर जजमेंट आने वाला है।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी। और अब बात करते हैं मेटा यानी फेसबुक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाने के मामले में सरकार अब बेहद गंभीर है। मेटा की टीम ने एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मेटा के पब्लिक पॉलिसी हेड जोएल कप्लान कल मंत्रालय पहुंचे। पीएम का पोस्ट हटाने के मामले में गलती मानी उन्होंने, लेकिन इससे बात नहीं बनी। इस मामले में आज फिर से मेटा टीम को समन किया गया है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने के बाद मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कप्लान ने मेटा की तरफ से माफी मांगी है, लेकिन ये माफी काफी नहीं है क्योंकि सरकार ने मेटा को कड़ी चेतावनी।
0: सीधे आपके लिए चलते हैं राज्यसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं।
9: Pawan Khera ji, he is standing. For them, who is he? He don't know the rules.
10: Our is sitting here, he is
9: know the rules. He is learned man, good man. And you are telling that he should read.
10: Okay,
9: the rules are like this. The rules everybody knows.
10: Right.
9: And sir, I want to tell one example. In this house, this means the Rajya Sabha, there, the Jaitley ji himself said, disruption is a part of democracy, partial of democracy. You can raise any questions which are relevant to the proceedings. Here, when we are asking, they are escaping.
10: That is not correct.
9: No.
10: That is not correct. Let him be. I will ask him to respond.
9: Prime Minister is not coming.
10: Our Minister is
9: not coming.
10: He is responding. He is responding to your question.
9: No,
10: he is responding to your question. I have already called Honorable Minister for Parliament Affairs to respond.
9: I think that leader of opposition will make some rules as a point to speak. I quoted two rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also leader of opposition. But he has not quoted any rules.
10: Let me ask him. You please, sir. Please wait.
9: I retread again. Rule 240. I had already quoted that time also, that while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair.
10: Okay,
9: whether he is the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair. On the matter
11: with regarding to the new member. I want to facilitate the new member. Pawan Khera is a new member. As a parliamentary affairs minister, I want to facilitate him. But the problem is, he has not made his maiden speech yet. There was enough ample chance for a member to speak. There are so many other members who have been elected newly. They got chance. The Congress party, they kept shouting their new members are not learning anything because their leadership is not giving them chance. He is unable to speak. I only made suggestion that he is neither on his seat nor on any rule, coming in the flight right in front of the chair and kept shouting slogans. That is why, that is against the rule. I request once again, let the new member be given the chance to speak. The Congress party should give the young members or the new members chance. My point is as per rule, but I'm sorry, the leader of the opposition did not quote any rule, did not mention any rule. He simply dictated the chair. But I request Kharge ji, I request once again, let the house function.
12: Now I request you to continue this request that he requested the Home Minister to come to the house. You represented to it. It is his will. But you, as a parliamentary affairs minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HF.
11: Okay. I have accepted whatever they have.
12: Now I'm coming back to you. Now, Tiwari ji.
11: Sir.
12: First.
11: I think this is a question hour. This is question.
0: और 12 बजे वाला रिपोर्टर में बात राजस्थान के उन भर्ती आयोगों की जो बने तो थे भर्तियां करने के लिए लेकिन अब खुद खाली पदों की वजह से बेकार पड़े हैं। फिर चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यायिक प्राधिकरण हो या लोकायुक्त और महिला आयोग सभी जगह पद खाली पड़े हैं। बोर्ड और निगम के तो और भी हाल बुरे हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा दावा करते हैं कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी लेकिन ये सब सिर्फ सुनने में और कहने में अच्छा लगता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का दफ्तर ही बेरोजगार है। आयोग के अध्यक्ष और सचिव का पद खाली है। सोचिए अध्यक्ष नहीं है और भर्तियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। गजब है।
13: राजस्थान सरकार दावा कर रही है कि सरकारी नौकरियां देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं मगर भर्ती कराने वाली संस्थाओं में पद खाली पड़े हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में न अध्यक्ष हैं न सचिव हैं। 10 में से 5 सदस्यों का पद खाली पड़ा हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 2 सदस्यों का पद 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में बाहरी लोगों को बुलाकर काम चलाया जा रहा है जिससे न केवल परीक्षाओं पर संकट पैदा हो रहा है जबकि परीक्षाएं भी देरी से हो रही हैं और भर्ती का पूरा कार्यक्रम भी देरी से संचालित हो रहा है।
0: और अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में बड़ी खबर पटना से आपको बताते हैं जहां देर रात चहल्लुम अखाड़ा जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई और बीच बचाव करने गई पुलिस से भी हाथापाई हो गई। पथराव में खाजे कला के SHO विद्यानंद वर्मा के सिर में चोट लगी। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल्का प्रयोग किया और ये जुलूस बिना इजाजत के निकाला जा रहा था।
14: खबर पटना के खाजे कला थाना इलाके से जहां बीती रात चहल्लुम के जुलूस निकालने के दौरान 2 गुटों के अंदर भिड़ंत हो गई। इस पूरे इलाके में बीती रात अफरा तफरी मची रही। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह से हालात पर काबू पाया है। यह पूरा मामला बिना अनुमति के चहल्लुम का जुलूस निकाले जाने से जुड़ा है। प्रशासन ने 2 गुटों के बीच जब झड़प हुई तो हालात पर तुरंत काबू पाया। हालांकि इसमें खाजेकला के जो SHO हैं खाजेकला थाने के वो चोटिल हो गए, घायल भी हुए। अब पुलिस इस पूरे मामले में CCTV समेत अन्य सबूतों के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है।
0: उत्तर प्रदेश में BSP के इकलौते विधायक रहे उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। वो बलिया के रसड़ा से विधायक थे। मैं 55 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उमाशंकर कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका जाकर इलाज भी कराया लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। BSP प्रमुख मायावती, CM योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सहित और भी कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है।
15: बलिया की रसड़ा विधानसभा से BSP के विधायक उमाशंकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी की प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया। उमाशंकर सिंह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली स्थित निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बलिया के रसराज स्थित उनके पैतृक निवास पर उनके शव को ले जाया जाएगा और वहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। उमाशंकर सिंह एकमात्र ऐसे विधायक थे जो भले ही बीएसपी में थे लेकिन उनके निजी रिश्ते, रवैया और मिलनसार स्वभाव के कारण हर दल में उनके रिश्ते थे। उनके अपने निजी कंपनी छात्र शक्ति संगठन निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रही थी, लेकिन उमाशंकर सिंह के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर ब्यूरोक्रेसी में तक शोक की लहर है।
0: और अगली खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद अब ढाका में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। शेख हसीना ने दिल्ली से ऐलान किया कि दिसंबर में वो बांग्लादेश लौटेगी और उस प्रेस वार्ता में पूर्व क्रिकेटर और आवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन भी मौजूद थे और इसी को लेकर बांग्लादेश में उनके आवास में आगजनी की गई। खबर के मुताबिक शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल पंप से हमला किया गया है, आग लगाने की कोशिश भी की गई।
16: शाम शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद शाकिब अल हसन के बांग्लादेश के घर पर हमला किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। अवामी लीग का यह दावा है कि शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के वजह से बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शकीब अल हसन के घर पर यह हमला किया गया है। हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि बांग्लादेश सरकार की ओर से नहीं किया गया। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने यह साफ जाहिर कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो आगे जाकर काफी ज्यादा खराब हो सकती है। और
0: एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेज बारिश ने एक बार फिर साइबर सिटी को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से कादीपुर पटौदी रोड सेक्टर 10 इलाकों की सड़क पर जल भराव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो सड़क है ही नहीं, तालाब है, दरिया है और डूब के जाना है या तैर के जाना है। पैदल चलने वालों के लिए तो सड़क पर कोई जगह खाली बची नहीं है और बाइक वाले सोच रहे हैं कि काश उनके पास बाइक की जगह कश्ती होती तो इस सैलाब से निकल जाती। दिल्ली में भी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया, गाड़ियां रेंग रही हैं या तैर रही हैं पता नहीं चल पा रहा है।
17: आज सुबह से ही दिल्ली में भारी वर्षा हो रही है, जहां एक तरफ इस वर्षा के वजह से टेम्परेचर में कमी आई है, ह्यूमिडिटी कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये वर्षा एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं आईटीयू पर मौजूद हूं और आईटीयू पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं पीक आवर ट्रैफिक के वजह से जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो जल भराव की समस्या यहां होती थी वो जल भराव इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम की ऐसी स्थिति जो है आज दिन भर बनी रहेगी। इसके अलावा जो दिल्ली के अन्य इलाके हैं, जैसे कि आसपास के अन्य इलाके हैं, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, इस तरफ आने जाने वाले दोनों ही रास्ते पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं बारिश की वजह से। पीक आवर ट्रैफिक की वजह से काफी सारी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि हर तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पे प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से जो जल भराव की समस्या है वो बनते हुए दिख रही है उसकी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है गुरुग्राम में।
0: तो जमाझम बारिश हो रही है, मजे जरूर लीजिएगा लेकिन सावधानी के साथ। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
21: कुछ तो बात है इस दिल में।
22: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1939।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: बारिश के बाद सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों से बचकर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। यहां तक कि जिस हाईवे पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है उस पर भी लंबे चौड़े गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है। सरकार के दावों और सड़कों की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुंबई नासिक हाईवे पर पहुंची। ठाणे में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ दो दिनों में जानलेवा गड्ढों ने दो लोगों की जान ले ली। शाहपुर में इस गड्ढे में बाइक गिरने से एक TDRF जवान की मौत हो गई, जिसके बाद से शाहपुर के बामनी गांव में मातम पसरा है। TDRF के जवान विकास कुरे सोमवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। TDRF के जवान विकास कुरे के परिवार में उसकी पत्नी और 9 महीने की जुड़वा बेटियां हैं। ठेकेदारों ने भले ही सड़क पर वो गड्ढा भर दिया हो जहाँ विकास गोरे की मौत हुई थी, लेकिन सवाल है कि ऐसे गड्ढों पर तभी ध्यान क्यों जाता है जब किसी की जान चली जाती है। वहीं ठाणे के भिवंडी में भी एक गड्ढे की वजह से बाइक पर पीछे बैठी सुनीता नाम की एक महिला की मौत हो गई थी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अय्या के लिए चलते यूपी एक्सप्रेस वे। लखनऊ में सीएम योगी का घुमंतू समाज संवाद, मंत्री असीम अरुण भी मौजूद। सीएम बोले, जनता हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि जनार्दन है। संबल हिंसा के न्यायिक आयोग ने बताया सुनियोजित साजिश। रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना। विधानसभा में पेश हुई 370 पन्नों की रिपोर्ट। रिपोर्ट आने के बाद मस्जिद के आसपास आरपीएफ तैनात। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक एनएचएआई ने किया सस्पेंड। कांग्रेस ने कहा 4200 करोड़ की सड़क बनाई और चार रातों में टूट गई। अखिलेश यादव का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पंखे से सुखाने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। बोले, बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलता काम है, धसता डहता गिरता ज्यादा है। योगी सरकार ने सपा सरकार का मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया। 2016 में पारित विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के चलते कभी लागू नहीं हो सका। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का वाला देकर अनुमति निरस्त की। यूपी में बारिश से नुकसान पर सीएम योगी का एक्शन। 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश। अधिकारियों को फील्ड में उतरने के आदेश। सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले, ब्राह्मण सिर्फ सुदामा नहीं चाणक्य भी है। कन्नौज के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साधा निशाना। परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। यूपी में अपराध नियंत्रण की तैयारी। 51 जिलों के 196 संवेदनशील चौराहे चिन्हित। 9 करोड़ की लागत से लगेंगे 1342 सीसीटीवी कैमरे। बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए खरीदे जाएंगे 1100। राम मंदिर धान चोरी केस में जांच तेज। पुराने लेजर खंगाल रही पुलिस। 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस। चढ़ावे के हिसाब और वित्तीय रिकॉर्ड की हो रही है पड़ताल। कावड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद के छात्रों को एडवाइजरी। कावड़ मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। समर्थकों और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। झांसी बहनों का स्वागत। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से पहनाई गई 2 क्विंटल की माला। क्रेन से हुआ भव्य अभिनंदन। इंदौर में स्मैक तस्कर महिला गिरफ्तार। 256 ग्राम स्मैक और 68,000 रुपए बरामद। पुलिस खंगाल रही नेटवर्क। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा। बारिश के बीच ढहा 100 साल पुराना मकान। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर में दर्दनाक हादसा। गन्ने के खेत में करंट लगने से किसान मजदूर की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। 5 घंटे तक शव नहीं उठने दिया। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाले समेत 3 को उम्र कैद। कोर्ट ने 3 दोषियों को 5,000 का जुर्माना भी लगाया। मथुरा में छात्र की हत्या। जंगल की कोठरी में मिला शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में कैफे और मिनीप्लेक्स पर पुलिस का बड़ा छापा। 2 दर्जन युवक युवतियां हिरासत में। अनैतिक गतिविधियों की आशंका। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दिख रही एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी विशाल कांवड़। भक्ति के अनोखे रंग के हो रहे दर्शन। मुजफ्फरनगर में आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़। देश के शहीदों को समर्पित कांवड़ लेकर 91 शिवभक्त 190 किलोमीटर की यात्रा पर। बिजनौर में कांवड़ में नहीं दिखी भगवान भोलेनाथ की आदि स्वरूप की झलक, तो कहीं कांवड़ यात्रा में दिखी हनुमान जी और राम परिवार की झलक। प्रयागराज में भोलेनाथ के एक श्रद्धालु ने केदारनाथ की थीम पर बनाई कांवड़। कांवड़ियों ने अपनी अपनी कांवड़ को आकर्षक रूप दिया है। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग से गुजर रही महाकाल के भव्य स्वरूप वाली विशाल कांवड़ भी बनी आकर्षण का केंद्र। अलग अलग कांवड़ों की तस्वीर मोबाइल में कैद कर रहे हैं लोग।

0: उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर से संभल का जो जन्म है वो सर उठ चुका है। 2024 की संभल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कल विधानसभा में पेश की गई और इस रिपोर्ट में हिंसा और दंगे को पूर्व नियोजित साजिश माना गया और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे के बयान को बड़ी वजह माना गया है।
1: नवंबर 2024 में हिंसा की आग में धधक चुके संभल की आंच पर सियासत अब भी पक रही है। संभल हिंसा की वजहों की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई तो सियासत एक बार फिर उबली। 450 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया है। रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि संभल में हिंसा पूर्व नियोजित साजिश, जिसे समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क, एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट जफर अली, वकील कासिम अली, मशहूद फारूकी, लड्डन खान ने भड़काई थी। असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर कब्जे और गिराने की अफवाह फैलाने वाले वीडियो फैलाए। 19 और 22 नवंबर 2024 को बर्क के भाषणों से अयोध्या से तुलना करते हुए माहौल बिगाड़ा गया। एफएसएल की बैलिस्टिक जांच और रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि हिंसा में चार लोगों की मौत पुलिस फायरिंग से नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष से हुई फायरिंग का नतीजा थी।
2: हम लोग उस समय भी कहते थे कि ये संभल की हिंसा प्रायोजित है और उसमें समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं प्रवोक करने के मामले में। अब कमीशन ने ऐसा कहा है तो वो बात सिद्ध हो गई।
3: एसआईटी कोई न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायालय का भी काम ने, जैसे कि रिपोर्ट अभी सरसरी तौर पे मुख्तसर मैंने पढ़ी है, उसमें न्यायालय का भी इस तरह काम एसआईटी ने किया है। तो ऐसी एसआईटी बनाने से क्या फायदा जिससे कि हक और इंसाफ नहीं मिल पाए। मुझे तो इसमें पूरी राजनीतिक बू आती है। एक साल पहले जब रिपोर्ट पेश कर दी गई थी तब से क्यों उसको बंद कमरे के अंदर टेबल पर सजा के रखा गया था? एक साल पहले क्यों विधानसभा के अंदर नहीं पेश की गई? क्या विधानसभा का सत्र एक साल बाद चल रहा है?
1: हालांकि विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके से मिले विदेशी 12 बोर के खोके के अलावा भीड़ की ओर से पत्थरबाजी और फायरिंग की घटनाएं भी दर्ज है।
3: आज तक अभी तक मैंने बार बार चैलेंज किया है, अभी तक एक भी कोई ऐसा फोटो नहीं साबित दिया गया है कि जिसमें कि हमारा संभल का हमारा कोई नौजवान भाई या कोई संभल का हमारा सीनियर सिटीजन किसी के हाथ में कोई हथियार हो या चला रहा हो। जितनी भी फोटो वीडियोस आई है सब पुलिस के अधिकारी चलाते हुए दिखे हैं।
1: समाजवादी पार्टी 28 नवंबर 2024 को गठित इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को पेश किए जाने में एक साल की देरी पर भी सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट काफी पहले से सरकार के पास थी। इस रिपोर्ट में हिंसा के क्रम के बारे में बताया गया है कि 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे रोकने के बाद से ही हिंसा की साजिश शुरू हो चुकी थी। 21 नवंबर 2024 को संभल सांसद के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप से बड़ी संख्या में भीड़ को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया गया।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर आ रही है और ये बताया जा रहा माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है। अबान अहमद नाम बताया जा रहा है, झांसी जा रहे थे उसी वक्त गाड़ी डिसबैलेंस होती है, डिवाइडर से टकराती है और कई लोग घायल होते हैं, लेकिन अबान अहमद जो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था उसकी मौत हो जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे से जुड़ी हुई?
4: देखिए, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था जो झांसी जा रहा था और उसका जो बड़ा बेटा है वो अली वहां पर चूंकि बंद था झांसी में, नैनी जेल से शिफ्ट किया गया था और इसी दौरान एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद एक्सीडेंट की जांच भी की जा रही क्योंकि 2-3 लोग और थे उसमें और अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान था जो कि अपने भाई से ही मिलने जा रहा था और झांसी में जहां पर एक्सीडेंट होता है डिवाइडर से बताया गया कार वहां टकराती है और उसके बाद आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट जाता है यानी कि हो जाता है, जिसके बाद से ही ये पूरी गाड़ी पलट जाती है और उसमें अबान की मौत हो जाती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच भी बिठा दी गई है क्योंकि इसमें जो 2-3 लोग और थे सवार वो भी घायल हुए हैं, उनको भी अस्पताल ले जाया गया है। तो ये तो साफ हो गया क्योंकि इससे पहले जो अली है इनका भाई था बड़ा वो नैनी जेल में शिफ्ट था जिसको बाद में झांसी शिफ्ट किया गया था और उसी से मिलने सड़क के जरिए कार से अपनी जा रहा था अबान। तो सबसे छोटा बेटा अतीक अहमद का सड़क हादसे में ये मौत हुई है और जिसको लेकर अब आगे की भी जांच की जा रही है कि आखिर किस तरीके से गाड़ी टकराई है और क्या वजह थी इसके पीछे। लेकिन ये तो जरूर है कि मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर जो घायल थे उनको शव को जो घायल थे उनको पहुंचाया है और जो मृतक अबान था उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा जिसकी मौत हो
0: बने रही है हमारे साथ आशीष बने रही है। और हादसे के ठीक बाद जो तस्वीरें आई है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब इसमें ये गाड़ी आपको दिख रही होगी क्षतिग्रस्त ये वाहन, और यही गाड़ी में बताया जा रहा है कि अबान अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था जो कि झांसी जेल में बंद है। नैनी जेल से झांसी में ट्रांसफर किया गया था अली को। अब उसी से मिलने के लिए अबान जो कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद वो इस गाड़ी में था, उसके साथ में और भी कई लोग मौजूद थे, 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। अब गाड़ी का आप अगला हिस्सा देखिए, गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से मिट चुका है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ी तेज रफ्तार में थी और उसके बाद डिसबैलेंस होती है, डिसबैलेंस होते ही इसकी जो टक्कर होती है वो होती है डिवाइडर से, और उसके बाद ये तस्वीर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग घायल बताए जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन ये बताया गया कि अबान अहमद की, क्योंकि वो आगे बैठा था तो उसकी मौत हो जाती है, और 2 से 3 लोग ऐसे थे जो साथ में थे गाड़ी में वो घायल हो जाते हैं। तो ये हादसे के बाद की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और गाड़ी गाड़ी को देखते हुए आप समझ सकते हैं। आशीष बने हुए हमारे साथ, आशीष और क्या जानकारी अभी तक आ पा रही है और कैसे पहचान हुई अबान अहमद की, क्योंकि हम देख रहे हैं गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
4: आप बिल्कुल देखिए, जो डिवाइडर से टकराई है जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अबान अहमद इसमें सवार था, और कहीं ना कहीं अभी जो सूचना आ रही है प्राइमरी तौर पे उसका एक दोस्त है उसकी भी मौत की सूचना आ रही है, सोनू नाम है उसका, उसकी भी सूचना आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि जो 3 से 4 लोग थे जिसमें से अबान अहमद चूंकि मौजूद था तो मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है, दूसरा उसका जो दोस्त है वो घायल अवस्था में ले जाया जाता है वहां पर उसकी मौत की सूचना आ रही है, और 2 अन्य लोग जो इसमें और सवार थे उनमें से भी वो घायल है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर इतनी तेज रफ्तार थी ये गाड़ी की कि अतीक अहमद का जो छोटा बेटा है ये जा रहा था अपने भाई से ही मिलने और उस दौरान डिवाइडर से टकरा दिया। अब डिवाइडर से कैसे टकराई है ये भी जांच का विषय है, क्या वजह है इसके पीछे ये जरूर जांच की जा रही है एक तरीके से, पुलिस ने शुरुआती लिखी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब नैनी जेल से वो शिफ्ट किया गया था झांसी तो बराबर अबान इससे पहले जाता रहता था अबान अहमद, और इस बार भी उसी तरीके से जा रहा था मिलने, और इसी बीच जब ये टकराती है तो उसी समय ये हादसा होता है कह सकते हैं और उसमें मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले पर चूंकि अबान अहमद पहले से ही कई बार जा चुका है, अचानक से कैसे हादसा हुआ ये भी कई सवाल हैं जो, लेकिन इसको लेकर माना जा रहा है कि इसमें जो और लोग हैं वो घायल हैं, अगर उनको होश आता है तो पूरी बात को बता पाएंगे। लेकिन अभी अबान अहमद जिस तरीके से मौत हुई है, जिस तरीके से हादसा हुआ है, उसको लेकर कह सकते हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश में भी आगे बढ़ रही है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही, चूंकि अतीक अहमद का जो बेटे हैं अली वो तो जेल में बंद है और उसी से मिलने जा रहा था, और ये सबसे छोटा बेटा है ये वहां पर मौजूद था, ये या जा रहा था, इसी की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद है उसके बाद से जिस तरीके से लगातार उसके बेटे अली जेल में बंद थे और अबान ही बाहर था जो कि लगातार उनसे मिलने जाना, उनसे बात करना और चीजों करना था, अब वो भी खत्म हो गया है। यानी कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा इस में मौत

0: पूरी परखच्चे उड़ गए हैं और इस बीच ही अब आगे पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है हिमांशु। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके होश आने पर जरूर ये बात की जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि हमेशा से जब ये जाते रहे थे तो आज इसके पीछे वजह क्या होगी हिमांशु।
1: और देखिए असद अहमद जो बड़ा भाई था अबान का, झांसी में ही एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था और वहां पर उसकी मौत हुई थी असद अहमद की। और अब झांसी में ही अबान अहमद, उसकी मौत हुई है और ये सड़क हादसा बताया जा रहा है। और ये फिर हम वो फुटेज दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। गाड़ी का जो अगला हिस्सा जो बोनट वाला रहता है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, मतलब आधी गाड़ी पूरी तरह से धस चुकी है और ये डिवाइडर से टकराई। और ये बताया भी जा रहा है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी, डिसबैलेंस हुई, कंट्रोल नहीं कर पाए। इस बारे में कोई जानकारी आशीष अभी तक मिल पाई है कि गाड़ी कौन चला रहा था, क्या अबानी गाड़ी चला रहा था या कोई और?
0: देखिए इसमें जो अगर चार अभी तक तो सूचना मिलने पर बताया गया है कि अबान साथ में बैठा था, गाड़ी उसका दोस्त चला रहा था, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है मोहम्मद जैद उमर सहित और अन्य लोग जो इसमें शामिल थे वो जरूर बार बार गाड़ी चलाने की बात कह रहे थे। और इस दौरान जो हादसा हुआ है वो किस वजह से हुआ ये तो अभी पूरी खुल के बात नहीं आ पाई है, लेकिन अबान जब भी जाता था तो अपनी गाड़ी खुद चलाकर जाता था। इस बार बताया गया कि वो गाड़ी नहीं चला रहा था, ऐसा बताया गया अभी शुरुआती बातचीत में, लेकिन इसकी भी पुष्टि होना बाकी है। तो ये तो अब जब होश में आएंगे जो उसके और जो दोस्त हैं जो एडमिट हैं जिस तरीके से घायल हैं उन पर भी सवाल है कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि अचानक से गाड़ी पलट गई या अचानक से कह सकते हैं इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिससे कि अबान की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल भी है इसको लेकर। जांच भी, पुलिस भी इस मामले को कह रही कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिससे सीधा डिवाइडर में कैसे टकरा गई और कोई गाड़ी आगे नहीं थी, इसके भी कई पॉइंट्स देखे जा रहे हैं।
1: अच्छा आशीष आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ और तस्वीरें यहां पर आ रही है। देखिए ये वो क्रेटा गाड़ी है जिससे हादसा हुआ, जिससे ये दुर्घटनाग्रस्त हुई, डिवाइडर से टकराई है। पीछे से आप देखिए गाड़ी कोई डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि आगे से गाड़ी डिवाइडर से टकराई। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी, जो गाड़ी में मौजूद जो घायल है उनकी तरफ से बताया गया, और उसके बाद अनियंत्रित होती है, डिसबैलेंस होती है और उसके बाद सीधे डिवाइडर से टकराकर आगे का हिस्सा तो पूरी तरह से मिट गया। आप देखेंगे तो चिथड़े से उड़ चुके हैं गाड़ी के। और दो लोग आगे थे, देखिए अबान और एक और शख्स जिसके बारे में अभी बता रहे थे, दो लोगों की मौत हुई है। एक तो अबान अहमद जो अतीक अहमद का छोटा बेटा है और एक और शख्स जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद था आगे, उसकी भी मौत हुई है। तो दो लोगों की जान जा चुकी है और बाकी जो तीन लोग पीछे थे वो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है और उसके बाद जब बयान देने के लायक वो होंगे तो उसके बाद और पता चल सकेगा कि क्या पीछे की वजह रही, गाड़ी की रफ्तार क्या थी, आखिर कहां पर लापरवाही हुई, ये और पता चल पाएगा। लेकिन गाड़ी की हालत हम यहां पर देख रहे हैं, आशीष बने हुए हमारे साथ। आशीष, गाड़ी के चिथड़े उड़ चुके हैं और ये पता लगा रहा, ये तस्वीरें देख के समझ में आ सकता है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में हुई होगी और ये हादसा कितना भीषण रहा होगा।
0: बिल्कुल निमांशु, देखिए एक सबसे बड़ी बात है, अबान इससे पहले भी हमेशा मिलने जाता रहा है और नैनी जेल में जब बंद था उसका भाई अली, तो जब उसको शिफ्ट किया गया है झांसी तो हमेशा से चाहे किसी चीज की बातचीत करनी हो या लीगल पॉइंट से बात करनी हमेशा जाता, लेकिन इस बार का ये जो हादसा हुआ इसमें अपने दोस्तों के साथ में था और कहीं ना कहीं जो दोस्त थे इसके परिचय के थे वो उनसे क्या ऐसी बातचीत हुई कि ये डिवाइडर से गाड़ी टकराई, किस समय पे टकराई, क्योंकि दिन समय भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत रात हो जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी अब एक तरीके से जांच कर रही कि आखिर ये जो हादसा हुआ है इसमें अबान की मौत हो जाती है, बाकी सब घायल होते हैं, हालांकि एक दोस्त उसका सोनू है उसकी भी मौत की बात सामने आ रही, लेकिन ये तो बड़ा सवाल हो गया कि क्रेटा गाड़ी जिस तरीके से लड़ी है डिवाइडर से सीधा सीधा जाके उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। और दूसरा, इसने आगे का हिस्सा जो पूरी तरीके से जिस साइड में बैठा था उस साइड का पूरा अंदर घुस के चला गया है, यानी कि जो लड़ी है डिवाइडर उससे पूरी तरीके से बैक साइड तक इसका इम्पैक्ट गया है गाड़ी का और वहां तक असर गया है। तो जो
1: अच्छा, एक बात और बताइए क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि पूंछ में यह हादसा हुआ है और यह बताया जा रहा है कि झांसी जिले की जो मोठ तहसील है वहां पर यह पूंछ गांव है, 70 किलोमीटर दूर है ये झांसी से, वहां पर यह हादसा हुआ वो तो समझ में आ रहा है, नेशनल हाईवे 27 है, लेकिन ये लोग मिलने जा रहे थे या मिलके आ रहे थे इस बारे में और

0: डिटेल में जानकारी मिल पाई अभी?
1: हिमांशु, अभी शुरुआती जांच में यह है कि ये अभी मिलने जा ही रहे थे और उसी समय यह हादसा हुआ है, क्योंकि दूरी थी ज्यादा और पहुंचना था अभी वहां पर, इस वजह से भी हो सकता है कि संभावना हो तेज रफ्तार से जा रहे हो। लेकिन ये तो जरूर है कि वहां मिल नहीं पाए हैं अपने भाई से, क्योंकि उससे मिलना था अली से जो जेल में बंद था। अब उसके बाद क्या बातचीत होती, क्या रिएक्शन होता, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जिस तरीके से अली, चूंकि पहले से ही कई बार मिल चुका है अबान अहमद से और लगातार मिलता भी रहा है, और ऐसे में ये भी कहा जाता रहा है कि वो हमेशा से कार स्लो चलाता था, संभल के चलाता था, लेकिन इसके बावजूद अगर ये बहुत जो घटना हुई है ये किस तरीके से हुई है, ये कई सवाल खड़े कर रही है। और इसको लेकर माना जा रहा है कि पुलिस शुरुआती इस पूरे मामले को दर्ज कर रही है, कि पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई है जो अतीक अहमद के बेटे की, और साथ ही साथ उसके दोस्त की भी, बाकी अन्य घायल भी इसमें हुए हैं जिनको रखा गया हॉस्पिटल में। तो ये तो कह सकते हैं कि ये लगातार जब मिलने जाता था उसके बावजूद उसी झांसी में चूंकि झांसी और जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है प्रयागराज की, लेकिन इसके बावजूद ये एक्सीडेंट हुआ, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात
0: अच्छा
1: है।
0: एक बात और आशीष एक बार और बताइए, क्योंकि अभी जब जैसे ही ये खबर आई, लगभग वो 12:15-12:30 बजे का वक्त है जैसे ही ये खबर आई, लेकिन क्या और स्पेसिफिक जानकारी मिल पाई है कि कितने बजे ये हादसा हुआ, तड़के सुबह हुआ या फिर कुछ देर पहले, ऐसी कोई जानकारी और मिल पाई है?
1: देखिए, ये बताया गया है कि सुबह के बाद ये हादसा हुआ है, तड़के सुबह नहीं लेकिन सुबह के बाद हुआ है। और वहां पर जब ये हादसा हुआ तो मौके पर पुलिस पहुंचती तत्काल, हालांकि एसपी झांसी नहीं पहुंच पाते हैं मौके पर, लेकिन वहां पर जो लोकल थाना है वो पहुंच जाते हैं और वहां से वो आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। चूंकि जिस तरीके से ये सूचना मिलती है, ऐसे में शुरुआत में किसी को नहीं मालूम था कि अतीक अहमद का छोटा बेटा है, और चूंकि एक्सीडेंट होता है और उस दौरान आइडिया नहीं लग पाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पुलिस की भी जानकारी करती, तफ्तीश करती, आधार कार्ड और उन नंबरों से पता चलता है कि किस तरीके से ये अबान अहमद है जो अतीक अहमद का छोटा बेटा है, और इसी वजह से उस पूरे मामले को लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है बाकियों को भी, और कहीं ना कहीं अबान की डेथ के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको भी शुरू किया जाता है, और सूचना दी जाती है उसके जो लोग हैं उनको भी सूचना दी जाती है, उसके जो घर में जो बचे हुए लोग हैं उनको सूचना दी जाती है। अतीक अहमद का छोटा बेटा था और माना जा रहा था सारी चीजों को लेकर कि वो प्रयागराज से लेकर जेल तक वो लगातार एक्टिव रहता था, लगातार जो इसको लेकर लीगल लड़ाई लड़ना वो सारी चीजें वही करता था, और ना कहीं जेल में मिलने जाना ये सब अतीक अहमद का छोटा बेटा ही करता था, और उसके बाद आज उसकी मौत हो गई है। तो ये और वो भी सड़क हादसे में जहां पर गाड़ी पूरी तरह से
0: बिल्कुल, देखिए झांसी की ही बात की जा रही है, एक बार फिर हम बता रहे हैं कि 13 अप्रैल 2023 की बात है जब असद अहमद का एनकाउंटर एसटीएफ ने किया था, वो भी झांसी में ही हुआ था जो कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा था, और उसके बाद अब अबान अहमद सड़क हादसे में उसकी जान चली गई, उसके साथ में एक और उसके दोस्त, उसकी भी मौत हो गई और बाकी तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1937।

संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का ये बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे? पीयूष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद, विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। संसद का डेडलॉक, विपक्ष की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक की नारेबाजी, रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्यवाही। एफसीआरए बिल के खिलाफ अड़ी हैं कई पार्टियां।

अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी राज की सड़कें चलती कम है, धस्ती ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर पानी पानी, सुबह सुबह जाम से हांफने लगी राजधानी।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है। छोटा बेटा अतीक अहमद का, जो कि झांसी के पास एक एक्सीडेंट में मारा गया है, डिवाइडर से कार टकराई, वो अपने भाई से मिलने जा रहा था। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की भी इस सड़क हादसे में मौत हो गई है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। भीषण कार हादसा जिसमें कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मृतकों में अबान अहमद की पुष्टि हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अली अहमद 1 अक्टूबर 2025 से नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। और अब रुक करेंगे नॉनस्टॉप 100 का।

झांसी में बत्ती अहमद के बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की सड़क हादसे मौत। झांसी में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकराकर हुई हादसे का शिकार। हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। राज्यसभा में खड़गे की मांग, पेलेटगन मुद्दे पर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन में दे बयान। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सरकार इस मुद्दे पर सदन में जवाब दे। संसद में हंगामे के बीच रिजिजू ने पवन खेड़ा पर लगाया आरोप। खड़गे बोले सदन में हर कार्रवाई का एक तय प्रक्रिया के मद्देनजर होती है। संसद परिसर में बारिश के बीच बिना छतरी नजर आए राहुल गांधी। बारिश के दौरान छतरी हटाकर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल रहे। संसद परिसर में डिंपल यादव ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा। सरकार का घेराव, चर्चा के बीच चंदा देने का वीडियो आया सामने। चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर आप का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के मुद्दों पर भाजपा को घेरा। संसद में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसदों का हंगामा। बारिश के बीच छाते लेकर सांसदों ने गृहमंत्री शाह और बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर स्नैप प्रोटेस्ट की आशंका। लाल किले की सुरक्षा में 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। एफसीआरएस संशोधन बिल पर दक्षिणी दलों का विरोध। डीएमके एनसीपी ने बिल के प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

सुब्रत पाठक अखिलेश यादव पलटवार, बोले ब्राह्मण सिर्फ सुदामा नहीं है, चाणक्य भी है। कन्नौज के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साधन शाना परिवारवाद को लेकर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अरुणाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, याजाली में फ्लैश फ्लड और बादल फटने से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन आज 13वें दिन भी जारी है। बढ़ते तनाव के बीच सीएम सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रस्ताव सौंपा। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 और आरोपियों समेत अब 19 की कुल गिरफ्तारी। आज से शुरू हो रहा है झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की संभावना। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों का ऐलान, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे, लंबित मांगों को लेकर छात्र आंदोलन तेज, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की तैयारी। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मीठा ने मांगी माफी, चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने जारी किया बयान। सूत्रों के मुताबिक मेहता ने कंटेंट मॉडरेशन जुड़ी सभी कमियों को स्वीकार किया, कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीप फेक से निपटने में हुई चूक को माना। आज मुंबई में जेन जी और जैन आल्फा का संवाद करेंगे मोहन भागवत, 2000 से ज्यादा छात्र लेंगे हिस्सा। तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न मामले में वो दोषी करार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में कश्मीर प्रवासियों का प्रदर्शन, पीओजेके के घटनाक्रम को लेकर ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा ने जताया विरोध। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द, कायस पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने और बारिश का हवाला देकर अनुमति निरस्त की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया, बोले यहां भी छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। अजय राय ने स्पष्ट किया कि शनिवार 8 तारीख को शाम 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद होकर रहेगा, चाहे जितनी बाधाएं डाली जाएं। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया, अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया। यूपी में अपराध नियंत्रण की तैयारी, 51 जिलों में 196 संवेदनशील चौराहे चिन्हित, 9 करोड़ की लागत से लगेंगे 1342 सीसीटीवी कैमरे, बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए खरीदे जाएंगे 11 सूट। लखनऊ में सीएम योगी का घुमंतू समाज संवाद, मंत्री असीम अरुण मौजूद, सीएम बोले जनता हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जनार्दन है। संबलसा को न्यायिक आयोग ने बताया सुनियोजित साजिश, रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना, विधानसभा में पेश हुई 370 पन्नों की रिपोर्ट। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक एनएचएआई ने लिया किया सस्पेंड, कांग्रेस ने कहा 4200 करोड़ की सड़क बनाई गई, 4 रात में टूट गई। अखिलेश यादव का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे पर पंखे से सुखाने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला, बोले बीजेपी राज में हुआ निर्माण चलताऊ काम है, धसता ढहता और गिरता ज्यादा है। योगी सरकार ने सपा सरकार का मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया, 2016 में पारित विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के चलते कभी लागू नहीं हो सका। राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच को लेकर पुराने लेजर खंगाल रही है पुलिस, 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी, चढ़ावे के हिसाब और वित्तीय रिकॉर्ड की हो रही है पड़ताल। कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद के छात्रों को एडवाइजरी, कांवड़ मार्गो और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। झांसी में नौका स्वागत, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन से बनाई गई 2 क्विंटल की माला, क्रेन से हुआ भव्य अभिनंदन। बिजनौर में स्मैक तस्कर महिला गिरफ्तार, 254 ग्राम स्मैक और 66,000 रुपए बरामद, पुलिस खंगाल रही है तस्करी का नेटवर्क। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले नौजवान छात्रों से की मुलाकात, जिस दौरान बीजेपी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने माफी मुद्दे पर फिर सरकार पर बोला हमला का, इन छात्रों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और अन्य तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा प्रदर्शन में कोई फायरिंग नहीं हुई है और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए छात्रों के संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 3,137 प्रतिष्ठानों की जांच, 165 लाइसेंस सस्पेंड, 55.72 करोड़ रुपए के असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त या नष्ट, कमिश्नर ने कहा कार्रवाई निष्पक्ष। वाशिम में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जेसीबी से हटाई गई अवैध दुकानें, शहर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई, देसी शराब की दुकान समेत कई ठिकानों पर गृह गाज। मुंबई मेयर बंगले के आसपास विकास कार्यों का टेंडर रद्द, विवाद के बाद बीएमसी का फैसला, करीब 3 करोड़ रुपए के टेंडर पर उठे थे सवाल।
महाराष्ट्र में हेल्थ इंश्योरेंस योजना में 15,407 संदिग्ध क्लेम मिले। आयुष्मान भारत और महात्मा फुले योजना में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए एसआईटी गठित। मुंबई में विक्रोली में तेज म्यूजिक विवाद बना खूनी पिता पुत्र की मौत, चाकू हमले में दो घायल, पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा है खतरा, बरसाती पानी के साथ मलबा गांव तक पहुंचा, अलर्ट जारी। चमोली में एक साल बाद भी नहीं बना है पैदल रास्ता, नदी पार कर जान जोखिम में डालने को मजबूर है ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से उफान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की सतर्कता। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बह रही है खतरे के निशान के पार, घरों के निकट पहुंचा नदी का पानी, पैदल पुल जलमग्न। सावन के महीने में दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश, आज झिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, घने बादलों से ढका आसमान। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, दिनभर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश की आशंका। बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है लेकिन कई जगह पानी भरने से ट्रैफिक की धीमी हुई है रफ्तार। बारिश से दिल्ली की हवा हुई साफ, 84 हुआ AQI, संतोषजनक श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। साउथ दिल्ली मनिका मेट्रो स्टेशन के पास वाटर लॉगिंग, लोगों को भारी मुसीबत। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील। असम में बाढ़ बारिश के बीच पानी सेवा की शानदार मिसाल, कई चैरिटेबल संस्थाओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर शुरू किया राहत और बचाव का काम। असम के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं पक्के मकान, परिवारों को बांटे जा रहे हैं राशन, खाना पकाने और गैस स्टोव और रोजमर्रा की जरूरत का सामान। लगातार हो रही बारिश के चलते टीरी के मुख्य बाजार में लैंडस्लाइड हादसे में कई मकान खतरे की जद में, एक गाड़ी मलबे में दबी। जम्मू कश्मीर के बारामूला की उरी में फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात, निचले इलाकों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, नंदीमार्ग नाले का बढ़ा जलस्तर।

हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश, पूरा इलाका जलमग्न, सड़कें बंद, यातायात प्रभावित, प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कांवड़िए का सफल रेस्क्यू, पीएसी के आपदा राहत दल ने जवान ने दिखाई फुर्ती, नदी में डूब रहे कांवड़िए को सकुशल बाहर निकाला। यूपी में बारिश से हुए नुकसान का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को मदद के निर्देश। फरुखाबाद में गंगा नदी उफान पर, 36 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आए, लगातार बारिश का असर, प्रयागराज भदोई में कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल बंद, शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। बगहा में उफनती नदियों के आगे बेबस छात्र, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते बुजुर्गो की तस्वीर, व्यवस्था पर उठा रही गंभीर सवाल। हुगली में भारी बारिश से जलभराव, सड़कों पर थमा जनजीवन, श्रीरामपुर इलाके में पानी भरने से आवागमन प्रभावित, लोग परेशान। उड़ीसा के पुरी में भारी बारिश से बाद कुछ इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, बारिश चलते 100 साल पुराना मकान ढहा, 6 लोगों की मलबे में दबकर गई जान। बिजनौर में दर्दनाक हादसा, गन्ने के खेत में करंट लगने से किसान मजदूर की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी समेत 3 को उम्र कैद, कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 5,000 का जुर्माना लगाया। मथुरा में छात्र की हत्या, जंगल की कोठरी मिला शव, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। आगरे में कैफे और मिनीप्लेक्स पर पुलिस का बड़ा छापेमारी, 2 दर्जन युवक युवतियां संदिग्ध हालत में पाए गए। यूपी में बाराबंकी में दीवार ढहने से हादसा, 5 बच्चे मलबे में दबे, 2 की मौत। ग्रेटर नोएडा में चांदी व्यापारी से लूट का खुलासा, 1,38,00,000 का माल बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, मामले में सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। बिहार के रोहतास मजदूरी और आपसी विवाद चलते 60 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद बदमाश ने शव को नहर में फेंका। पटना में पकड़ा गया लाखों का नकली ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और दवा, आम लोगों के जनजीवन से खिलवाड़ करने वाले गिरफ्तार। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, कप्तान शुभमन गिल समेत 3 भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल। टॉप पर काबिज है कप्तान शुभमन गिल, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर, चौथे पायदान पर है रोहित शर्मा। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने टीम के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को किया शामिल, हर्ष दुबे, शिवान कुमार, तनुष प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को करेंगे गेंदबाजी। 17 अगस्त से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ जारी, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को के खिलाफ करेंगे अभियान की शुरुआत। युवा शटलर आयुष को मिली है कड़ी चुनौती, पहले दौर में विश्व चैंपियन और शीर्ष विजेता प्राप्त चीन के शी यू क्यूई से होगा मुकाबला। अमित शाह की ओ माई डॉग का सिनेमाघरों में लॉन्च, इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0 भी कल हो रही है रिलीज, हिमांश कोहली, रवि किशन है इस फिल्म में शामिल। आर माधवन की फिल्म जीडीएन कल होगी लॉन्च, जीडी नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी कल थिएटर में हो रही रिलीज, फिल्म में शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा मुख्य भूमिका में हैं। तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म डीसी भी कल रिलीज हो रही है, इसमें लोकेश कनगराज और बाम्बिका गाबी लीड रोल में हैं। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 14 अगस्त को हो रही है फिल्म रिलीज। इमरान हाशमी के आवरण पर 2 सेंसर बोर्ड से मिला यूए 16 सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म देगी दस्तक, फिल्म डॉरथी का टीजर लॉन्च, फिल्म में कीर्ति सुरेश निभाएंगी मुख्य भूमिका। नेटफ्लिक्स ने किया ऐलान, मुसाफिर कैफे का आएगा 2 सीजन, विक्रांत मैसी वेदिका पिंटो फिल्म में दिखाई देंगे। भारत में फिल्म स्पाइडरमैन का जलवा बरकरार, 7 दिन में किया 314 करोड़ की का बिजनेस।

0: एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता दें, भयानक सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की जान चली गई है। झांसी के पास डिवाइडर से उनकी कार टकराई, जेल में वो अपने भाई से मिलने जा रहा था। अबान अतीक अहमद के बेटे समेत दो लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकरा गई, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। तो परिवार में अतीक अहमद के कौन कौन अब बचा है ये भी देख लीजिए। अतीक अहमद मारे जा चुके हैं, उनकी पत्नी शाहिस्ता और उसके साथ उमर जेल में बंद है, अली भी जेल में बंद है, असद एनकाउंटर में मारा गया है, अजन बाहर है और अबान की आज एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आशीष जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। प्राथमिक जानकारी और पुलिस की जानकारी क्या कह रही है आशीष?
1: नया देखिए कि बड़ा पुलिस ने जानकारी दी है कि जब अबान अपने मित्रों के साथ में जा रहा था अली से मिलने झांसी में, और उसी दौरान ये जो हादसा होता है ये काफी भयानक हादसा होता है। और बताया गया है कि ये हमेशा से अबान गाड़ी चलाता था, लेकिन इस बार अबान साइड में बैठा हुआ था और उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था। और जैसे ये टक्कर होती है कि पहले तो बताया जाता है कि कोई साइकिल मोटरसाइकिल सवार बीच में आता है उसको बचाने के लिए होती है, और ये डिवाइडर से टकराती है। हाँ, इतनी टक्कर इतनी बड़ी तरीके से होती है कि वो पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है क्रेटा, और जिस दिशा में अबान बैठा होता है उस दिशा में पूरी गाड़ी अंदर घुस जाती है। यानी कि अबान ही मेन उस गाड़ी में सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि हालांकि मौत हो गई और उसके दोस्त की भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई वो उधर ही हुई जिधर अबान बैठा था। और ये हमेशा से जब जाता था मिलने तो कभी भी गाड़ी हमेशा चलाता था, लेकिन इस बार वो खुद नहीं चला रहा था। ये भी कई सवाल तरीके के हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अली चूंकि जेल में बंद था तो उससे अभी मुलाकात नहीं हुई थी, मिलने जा ही रहा था, अभी वहां पहुंच नहीं पाया था, तो आखिर क्या बातचीत होती ये भी अलग बातचीत थी। लेकिन जो हादसा हुआ उसमें तीन अन्य लोग जो इनके साथ बैठे थे वो घायल हुए, जिनको पुलिस ने एडमिट किया है, लेके तुरंत अस्पताल लेके पहुंच गई है। मौके पर ही अबान की और उसके साथी जो दूसरा साथी था सोनू, दोनों की मौत हो गई है। इसके जो अन्य साथी थे उसमें उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम, ये तीन और अन्य साथी थे, यानी टोटल पांच लोग उसमें सवार थे, और उन्हीं में से तीन को अब जो घायल है बहुत गंभीर अवस्था में उनको ले जाया गया है, जबकि अबान की मौत हो गई है। अब ये हादसा चूंकि दिन में ही हो रहा है, ऐसा कुछ लाइट का भी इश्यू नहीं था, और सीधे डिवाइडर से टकराती है, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस अब इस मामले को जांच कर रही है कि इतना बड़ा हादसा, इतना भयंकर हादसा जो होता है उसमें सीधे अबान की मौत होती है और उस गाड़ी भी पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है, आगे से पूरी गाड़ी पीछे तक, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की फ्रंट सीट होती है वहां पर अबान बैठा हुआ था और वहीं से ये पूरी टकराती है। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है और अबान चूंकि वही हमेशा से अब देख कर रहा था, क्योंकि साहिस्ता अंबर साहिस्ता वैसे भी पुलिस की पकड़ से दूर है, दूसरा अली जेल में बंद है, इससे पहले उसके बड़े भाई का एनकाउंटर किया जा चुका है झांसी में ही, और इस वजह से अब यही अबान था जो कि ज्यादातर दौड़ धूप करता था और कहीं ना कहीं अपने भाई से मिलने जाता था, इसी वजह से लगातार झांसी से पहले भी गया है और लगातार वो मिलता भी रहा है। लेकिन इस बार ये इतनी बड़ा ये हादसा हुआ, कह सकते हैं एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि पूरी कार के चिथड़े उड़ गए हैं और आगे बैठा अबान भी पूरी तरीके से वहीं, जब ये गाड़ी लड़ी है उसी समय तत्काल मौत हो जाती है, साथ ही साथ उसके मित्र की भी। तो पुलिस तो जांच कर रही है शुरुआत में इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।
0: इस बीच चश्मदीद वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
2: डिवाइडर में कार जा रहे थे झांसी,
3: किस लिए जा रहे थे?
2: भाई से मुलाकात।
3: कौन भाई?
2: अली भाई।
3: कौन कौन था उसमें?
2: अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया,
3: फिर सभी लोग घायल हो गए।
2: हाँ, उसके बाद नहीं यार, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए।
3: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
2: हाँ, छोटे वाले।
3: क्या नाम था उनका?
2: अबान। जा रहे थे मिलने भाई से
3: जेल में,
2: जेल अली भाई से।
0: आशीष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, अबान को नींद आने की वजह से हादसा हुआ, कार का ब्रेक फेल हो गया, या किसी को बचाने के चक्कर में किसी व्हीकल या पशु को, क्या समझ में आ रहा है इस हादसे के?
1: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि अबान इस बार गाड़ी नहीं चला रहा था। गाड़ी चलाने की जो बात है वो दूसरी सीट पर बैठा हुआ था, जो फ्रंट की सीट है लेफ्ट साइड की, वहां पर बैठा हुआ था और उसका दोस्त जो था सोनू वो चला रहा था। तो ये भी बड़ी बात है कि अबान हमेशा से चलाकर जाता था, अबान अहमद अतीक का छोटा बेटा हमेशा गाड़ी चलाकर जाता था, इस बार उसने गाड़ी नहीं चलाई और वो जा रहा था। बताया गया है कि रास्ते में कोई मोटरसाइकिल सवार आया, उसको बचाने को लेकर ब्रेक लगाया गया और जानवर की बात भी कही गई हालांकि, और उसी दौरान ये सीधा जाके डिवाइडर से टकरा गई गाड़ी और जिससे कि डिसबैलेंस हुई और उसके बाद पलट गई और कहीं ना कहीं जो तत्काल डिवाइडर जिस तरीके से गाड़ी में घुसता है क्रेटा, तो आगे की सीट में बैठा हुआ अबान अहमद पूरी तरीके से उसके जो इस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जो तीन अन्य पीछे बैठे हुए थे वो जो उसके दोस्त थे वो बैठे रहे, वो घायल हुए हैं और वो उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, लेकिन अभी वो मिलने जा नहीं पाया था झांसी, चूंकि ये अभी झांसी पहुंच रहा था और रास्ते की बात है तकरीबन दूरी बची थी, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी तेज थी गाड़ी की। लेकिन ये था कि अबान हमेशा से इस इन गाड़ी से जाता रहा है और यहीं से निकलता रहा है, कभी इस तरीके की घटना इससे पहले नहीं हुई, लेकिन अब आज जब ये घटना हुई इसमें बताया गया है मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए हुई है और इस दौरान गाड़ी पूरी डिवाइडर में घुस जाती है और चिथड़े उड़ जाते हैं गाड़ी के। तो अबान अहमद चूंकि अली अहमद से मिलने नैनी जेल से जब उसको शिफ्ट किया गया था झांसी में, तो लगातार अबान ही संपर्क में रहता था, लगातार अबान ही उनसे बातचीत करता था और यही वजह थी कि आज भी वो जा रहा था और इस दौरान पुंछ के पास उसकी जो है ये एक्सीडेंट हो जाती है, कार तो मौत हो जाती है मौके पर ही बिल्कुल भी, और सबको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा हुआ है, आगे की वहां पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है, जांच कर रही है हर एंगल से और पुलिस भी इस मामले को तफ्तीश कर रही है कि इतना बड़ा हादसा आखिर डिसबैलेंस से ही हो गया, केवल बचाने को लेकर हुआ या कोई और भी वजह हो सकती है। तो इस पूरे हादसे को लेकर पुलिस भी चूंकि मौके पर पहुंची और अलग फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, जांच कर रही है, लेकिन ये तो साफ है कि अबान अहमद की तत्काल वहां पर मौत होती है और हादसा इतना बड़ा था कि बचने का कोई भी गुंजाइश नहीं था और डिवाइडर से सीधा टकराती है घटनाकार। लगभग माना जा रहा है कि जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा था, 90 और 100 के आसपास थी, उस दौरान ये टकराव होता है। तो ये बड़ी बात है कि अबान अहमद मौके पर मौत होता है, उसके दोस्त की मौके पर मौत हो जाती है, साथ ही साथ जो तीन उसके दोस्त थे उनको अस्पताल में ले जाया जाता है और अब अपने भाई से नहीं मिल पाता है, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा जो अली से मिलने जा रहा था झांसी वहां नहीं पहुंच पाता है और उससे मौत हो जाती है। तो ये तो अब पुलिस का दायरा है और बढ़ रहा है कि इसमें फॉरेंसिक टीम भी लगाई गई है, जांच भी कर रही है कि आखिर और क्या वजह हो सकती है इसकी, क्योंकि नींद आने का समय ऐसा नहीं था कि रात के हो, बहुत दिन का समय था और ऐसे में जो हादसा हुआ है ये काफी दूर दूर तक कोई गाड़ियां उस समय मौजूद नहीं थी।
0: बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहां रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया
6: है।
8: टाटा ए आई जी है तो भरोसा है।
9: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
12: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
13: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
14: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
15: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
4: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
5: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
6: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
7: Kuch to baat hai is dil mein.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
3: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बातचीत का प्रस्ताव, आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद, विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। खत्म नहीं हुआ संसद का डेडलॉक, विपक्ष की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक की नारेबाजी, रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। ₹42,00,000 रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने पर गर्म हुई राजनीति, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी राज की सड़कें चलती कम है, दस्ती ज्यादा है।

0: एनसीआर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर पानी पानी। सुबह से जाम से आफ्ते लगी है राजधानी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत हो गई एक सड़क हादसे में झांसी के नजदीक। यह हादसा बताया जा रहा है, अतीक अहमद का बेटा अबान इस हादसे में मारा गया है। वो प्रयागराज से झांसी जा रहा था, रास्ते में उसकी क्रेटा कार डिवाइडर से टकरा गई जिसमें अबान अहमद की मौत हो गई। अतीक अहमद के तीन बेटे अब बचे हैं, दो जेल में हैं, तीसरा कहां है ये कोई नहीं जानता। अतीक की पत्नी फरार है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से गुट्टू बमबाज और शाइस्ता परवीन दोनों फरार हैं। उसका बेटा अबान जो प्रयागराज से झांसी जा रहा था अपने भाई से मिलने के लिए जेल जा रहा था, रास्ते में ही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जहां पर ये दुर्घटना हुई उस जगह की आप तस्वीरें देखिए, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर अबान बैठा हुआ था वो हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मौके पर ही अबान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार का संतुलन बिगड़ गया। आरओ से देखिए ये पूरा हिस्सा चकनाचूर और यहीं पर अबान बैठा हुआ था। अब आपको अतीक अहमद का फैमिली ट्री दरअसल समझा देते हैं। एक बेटे की आज मौत हो गई है, दुर्घटनाग्रस्त उसकी कार हुई, उसके बाद उसकी जान चली गई। दो बेटे उसके जेल में बंद हैं, एक बेटा फरार चल रहा है, कोई नहीं जानता कि उसकी लोकेशन कहाँ है। और अतीक की पत्नी शाहिस्ता फरार चल रही है। अपने भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था अबान, लेकिन रास्ते में ही इस दुर्घटना के चलते उसकी जान चली गई। ये परिवार की कुंडली आप देख रहे हैं।
1: डिवाइडर में कार जा रही
2: है, जा रहे थे झांसी। झांसी किस लिए जा रहे थे?
1: भाई से मुलाकात।
2: कौन भाई?
1: अली भाई।
2: कौन कौन था उसमें?
1: अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया।
2: फिर सभी लोग घायल हो गए।
1: हाँ, उसके बाद नहीं यार, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए।
2: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
1: हाँ, छोटे वाले।
2: क्या नाम था उनका?
1: अबान। जा रहे थे मिलने भाई से
2: जेल में।
1: जी, अली भाई से।
0: आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, अब तो काफी वक्त गुजर गया है, क्या डिटेल सामने आ रहे हैं? कार का संतुलन ही बिगड़ गया था जिसकी वजह से हादसा हुआ है।
3: अन्या, बिल्कुल, देखिए कार का संतुलन बिगड़ा गया है। बताया गया है कि एक जानवर और मोटरसाइकिल आ गई थी जिसको बचाने के लिए इस तरीके से मोड़ किया गया जिससे कि पूरी गाड़ी जो है वो डिवाइडर में टकरा गई जो क्रेटा कार थी और इसकी वजह से ही ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि अबान जो अहमद जो बैठा हुआ था, अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है वो बैठा हुआ था और अमूमन वो गाड़ी चलाता था लेकिन इस बार बैठा हुआ था और सोनू जो उसका साथी चला रहा था, इस दौरान इतनी तेज ये टक्कर होती है कि गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें जो तीन अन्य लोग थे पीछे बैठे हुए थे जो गंभीर रूप से घायल होते हैं। पुलिस को जानकारी बाद में पता चलती, पुलिस मौके पर पहुंचती भी है लेकिन जब तक उनको एक तरीके से कोशिश की जाती है तो देखा जाता है गाड़ी में बिल्कुल फंसा हुआ अबान होता है कि बिल्कुल ही निकल नहीं सकता है और साथ ही साथ सोनू आगे की गाड़ी बिल्कुल दब के पीछे हो गई होती है जैसा तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं। अतीक अहमद का ये छोटा बेटा है और अभी यही केवल एक तरीके से कह सकते हैं परिवार में बचा हुआ था चूंकि एक फरार है हालांकि, बल्कि दो अन्य जो जेल में है और जो शाइस्ता है वो भी अभी तक फरार है। तो कहीं ना कहीं यही एक ऐसा शख्स था जो अली से मिलता था और बाकी चीजों को देख रहा था। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा मौत हो गई है उसकी इस पूरे घटना में कह सकते हैं कि जो बड़ा ही एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस ने इसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जरूर है और जांच भी की जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से और क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं या क्या और वजह हो सकती है।
0: ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश गड्ढे में एक्सप्रेस वे।

4200 से 4700 करोड़ की लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया वीडियो जारी कर इसके निर्माण पर सवाल उठाए। वीडियो में पंखे लगाकर मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिस पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि ये भाजपाई तरक्की की नई हवा है। कुछ दिनों पहले जिसका उद्घाटन हो रहा था वहां अब मरम्मत की जरूरत पड़ गई है और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हास्यास्पद है। 2 से 3 हफ्ते में जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम कौन लेगा? कांग्रेस ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी कर सवाल उठाए। अब अखिलेश का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। इस वीडियो को उन्होंने अपने ट्वीट में जोड़ा है और पूछा है कि आखिरकार ये कैसा एक्सप्रेसवे है जिसमें मरम्मत का कार्य पंखों के जरिए सुखाया जा रहा है। ने कहा है कि जिस एक्सप्रेसवे का अब से कुछ महीने पहले उद्घाटन हुआ था वहां पर अब मरम्मत की जरूरत पड़ गई है। भाजपा राज में हर निर्माण चलताऊ काम है, धस्ता ढहता और गिरता ज्यादा है।

0: 42,00,000 रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की निगरानी में यह नया एक्सप्रेसवे बना था। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। लोगों को लगा कि सरकार ने एक बड़ी सौगात दे दी, घंटों का सफर मिनटों में तय होगा, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर चंद दिन में ग्रहण लग गया। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, ये कहना मुश्किल है। इसे लेकर भी जनता कंफ्यूज है।
1: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेस वे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेस वे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि दो बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं, JCB मशीन्स एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है।
1: हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेस वे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेस वे बना है या गड्ढा वे।
2: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जांपल है, हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पे आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धस गई है।
1: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का सियास सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है।
3: मैं उन्नाव से आ रहा हूं।
2: उन्नाव से आ रहे हैं तो यहां पे आप आए तो
3: रास्ता बंद हुआ है,
2: तो आप लोग अब क्या पे क्या बताया उन्होंने कि कैसे?
3: वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ।
2: तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा?
3: वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना रॉन्ग साइड से, उस घूम के लखनऊ जाना।
2: तो कितने किलोमीटर आप यहां से रॉन्ग साइड से?
3: बताया नहीं उन्होंने कितना, उन्होंने बोला काफी आपको कम से कम आधा किलोमीटर एक किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा।
2: सुविधा आप लोग को हो रही है?
3: भाई दिक्कत तो है, ये पता नहीं हो सकता चालान भी काट दे, मेरा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है।
1: ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं।
4: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड्स भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं, ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहां रहते हैं वहां पे टूटी आते हैं।
1: इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया, मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है।
4: AI तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड्स क्रश्ड, मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई क्वालिटी की कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं।
1: एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो एनएचएआई को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद एनएचएआई के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं।
4: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे पांच लोकेशंस हैं, पांचों लोकेशन मिला करके एक किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेस में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
1: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला? सवाल एनएचएआई के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद पीएनसी पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन एनएचएआई के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई, यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
5: ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसे कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और

0: आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं लाकाम लेके आया हूँ। और आप कोई भी कहेगी, एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है। और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैकलिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दें। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे।
1: उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सामने आई गड़बड़ी को लेकर नितिन गडकरी ने संसद में ऐलान किया था। संसद में दिए जवाब में राजमार्ग मंत्रालय ने माना कि बीते दो साल में गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय समेत कई राज्यों में 19 राजमार्ग परियोजनाओं में खामियां और खराबियां पाई गई। कई अफसर पर एक्शन हुआ, 11 जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त किया गया, जबकि कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन सरकार के एक्शन के बावजूद देश भर में घटिया निर्माण सामने आ रहा है। नेशनल हाईवे हो, ब्रिज हो, हाईवे हो, फ्लाईओवर्स के धसने की घटनाएं हो रही हैं। सवाल यही कि आम जनता की गाड़ी कमाई के डकैतों का इलाज कब और कैसे होगा?
2: देश की संसद में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क हादसों में मरने वालों का आंकड़ा बताते हुए दुख तो जताते हैं, लेकिन कटघरे में ड्राइवरों को खड़ा कर देते हैं। यही कहते हैं कि ड्राइविंग की अच्छी ट्रेनिंग की कमी कई बार जानलेवा साबित होती है।
3: In our country, we are highest in the accidents, and particularly it is really a very, very painful thing. That every year we have 180,000 deaths. There are lot of reasons, that is with the automobile engineering, we have taken all the measures for that. Road engineering, we have taken the measure. The third is enforcement of law, already a new act is already there. The most important thing is the behavior of the human being. That is to be important thing. And regarding the reference of honorable member about the driver, in our country we need a good training for the driver.
2: क्या इन आंसुओं का जवाब जिम्मेदारों के पास है? क्योंकि 31 साल के विकास गोरे की मौत ड्राइविंग की ट्रेनिंग की कमी से नहीं, बल्कि मुंबई नासिक हाईवे पर NHAI की अंधेर गर्दी से हुई। विकास गोरे ठाणे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का हिस्सा थे, लेकिन हाईवे पर मौत के गड्ढे ने बेमौत मार दिया।
4: ये देखिए, सड़क बहुत अच्छी है तो इसलिए काफी स्पीड में वो आ रहे थे। और बताया यही जा रहा है कि विकास जब अपनी गाड़ी, अपनी टू व्हीलर को जब इससे लेके जा रहे थे तो यहाँ पानी भरा हुआ था। उससे वो समझ नहीं पाए कि आखिर यहाँ पर ये पॉट होल है। उनकी गाड़ी जो कि तेज रफ्तार में थी, इसको हिट किया उन्होंने और सीधे गाड़ी थोड़ी दूर और वो उससे भी आगे दूर जाके गिरे। उससे उनको बहुत तेज चोटें आई। तुरंत लोगों ने यहाँ पर रुक के एम्बुलेंस बुलाई, गाड़ियाँ रुक गई थी यहाँ पर। किसी तरीके से उनको एम्बुलेंस में लेके जाया गया, लेकिन जब तक वो।
1: और अब बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां पर बारिश के चलते हाल बेहाल हो गए हैं। तेज बारिश ने फिर साइबर सिटी को पानी पानी कर दिया है। सुबह होते होते शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव की स्थिति हो गई। भारी बारिश की वजह से कादीपुर पटौदी रोड सेक्टर 10 इलाकों की सड़कों पर जल जमाव हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर कोई जगह खाली नहीं बची है। गुरुग्राम पुलिस ने तमाम कंपनियों को सलाह दी है कि वो अपने कर्मचारियों को आज के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें।
5: मैं इस वक्त अंडरपास में मौजूद हूँ। ये अंडरपास गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल से NH 48 को जोड़ता है और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रात 2:30 बजे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद किस कदर ये हालात इस अंडरपास में दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और ये पानी इस वक्त यहाँ पे 4 से 5 फीट के करीब है। इसी पानी की जद में।
1: और अब सीधे रुख करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का।
6: और जो चीजें नहीं करना चाहिए था, जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना था, टॉयलेट पेपर का हो, गैस का हो और लाठी का हो, करंट की लाठी और किले की लाठी, ये सारी चीजें उन्होंने विद्यार्थियों पर

0: उपयोग किया। विद्यार्थी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किए, क्या एक 20-50 सरकारी वाहनों को कुछ जख्म किया, क्या किसी नेता को रोक के कुछ पूछा? वो तो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन उनको वहां से हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला, गैस छोड़ा क्या यही पुलिस ने ही बोला, और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? तो ये तो ये अरोगेंस ही बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। ये दो ही वजह हो सकते हैं। और उन्होंने हमेशा ये बोलते ही रहे, हम हिम्मत से काम करेंगे, हमारा फलाना फलाना चाहती है, इनसे वो सब मैं बोले नहीं जाता। लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो दुख विद्यार्थियों को आपने पहुंचाया है, उनके माता पिताओं को पहुंच गया है, उसके लिए हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा है। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। और ये एक स्टेटमेंट खुद आके करने से मैं समझता हूं सब ठीक हो जाता था, डिस्कशन हो जाता, डिबेट होता था, लेकिन वो नहीं करे। इसीलिए आज हम राज्यसभा में ये मुद्दा फिर से उठाए और सरकार को फिर हमने जवाब मांगा, जवाब देने के लिए कहा और उनसे ये भी विनती की गई कि आप और प्रधानमंत्री हाउस में आइए और बोलिए, लेकिन आज भी वो माने नहीं। तब हमारे MPs जो राज्यसभा मेंबर्स है, वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब से भी ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए, ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीज।
1: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था, सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
8: Kuch to baat hai is dil mein.
2: In association with
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933. बरसों से सरसों.
6: कुछ तो बात है इस दिल में.
7: एक जर्नलिस्ट के लिए इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि अगर आप टाइम में पीछे जाके कोई चीज कवर कर सकते हैं. मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर किया था 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप लॉर्ड्स, वो फाइनल अगर मैं कवर कर पाती. लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसने वो सब कुछ देखा है जो एक देश को गढ़ते हुए, अगर आपकी इच्छा है देखने की, तो वो सारा कुछ इंडिया टुडे का सफर है. और यही एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में जब पीवीआर आईनॉक्स में आप देखेंगे तो वाकई इसे मिस नहीं करना चाहिए. इसे जरूर देखिए. पीवीआर आईनॉक्स 7 अगस्त ऑनवर्ड्स.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क.
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना.
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
6: Kuch to baat hai is dil mein.
8: Ye wahi log hain jin logon ne Ram Janmabhoomi Mandir ka sadaiv virodh kiya. Aaj ye aastha ki baat karte hain. Jo Prabhu Ram aur Prabhu Krishna ko ke astitva par prashn khada kar chuke hain, ve aaj aastha ki baat karte hain. Jo Ram bhakton se Ayodhya ki galiyon ko lauluhan kar chuke hain, वे आज आस्था की बात करते हैं. और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित, यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं.
9: आज सबसे बड़ा महापाप, सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है. दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को.
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी, सोकुडो.

खत्म नहीं हुआ संसद का डेडलॉक, नारेबाजी के बाद रोकनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। सरकार बोली जानबूझकर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। खड़गे बोले सदन ना चल पाने की जिम्मेदार है सरकार। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। भयानक सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत। झांसी के पास डिवाइडर से टकराई कार। जेल में अपने भाई से मिलने जा रहा था अबान। चार 4,200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बहाने अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना। पंखे से रोड सुखाने की तस्वीर पोस्ट कर कहा बीजेपी राज की सड़कें धस्ती ज्यादा हैं। और दिल्ली की बारिश में गई एक शख्स की जान, करंट लगने से हुई मौत। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर पानी ही पानी, जाम से हाफने लगी राजधानी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज गए न्यूज रूम लाइव में, एक बार फिर से हम सभी आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन सी खबर है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले, तो वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे झांसी में अतीक अहमद का बेटा अबान, सबसे छोटा बेटा, एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है, उसके एक दोस्त की मौत हो जाती है, क्या वजह सामने आ रही है ये हम डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो विपक्ष ने छाता खोल दिया। बारिश हो रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, छाता खोलकर प्रदर्शन किया जा रहा था और सत्ता पक्ष की नाक में दम किए हुए, लेकिन अभी भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। गतिरोध कब खत्म होगा ये राम जाने। तीसरी बड़ी खबर जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और वो होगी योगी अखिलेश का रण किसके साथ है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड अब खेला जा रहा है और अखिलेश यादव तो एक कदम आगे भी बढ़ गए, फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। वो बैटिंग में क्या कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही ठीक आधे घंटे बाद हम आपको बताने जा रहे हैं रांची के जंतर मंतर से क्या खास हो रहा है। सीधे लाइव बुलेटिन रांची के जंतर मंतर से होगा, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। बड़ी खबर, आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ, आज भी संसद में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और तो और, आज छाता खोलकर बारिश के बीच में प्रदर्शन किया गया, विपक्ष ने छतरी मार्च निकाला। ये देखिए, अब एक बैनर तो परमानेंट हो गया है, वो है कि अमित शाह हैं कहां, अमित शाह संसद में कब आएंगे, और अमित शाह के बयान पर अभी विपक्ष अड़ा हुआ है, राहुल गांधी अड़े हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, चंदा चोरी से लेकर पैलेट गन तक विरोध किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ देर पहले आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी पहले से कहते आए, मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बोलते आए हैं। अब गतिरोध कब खत्म होगा ये आप, हम, आम जनता सब जानना चाहते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। जैसा आपको बताया कुछ ही देर पहले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाई गई है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे। अब छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाई गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ये भी कहा कि छात्रों को नुकीली लाठियों से, कील वाली लाठियों से मारा गया। अब इस पर गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर ये सब कुछ आता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए।
1: जो चीजें नहीं करना चाहिए था, जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना था, कार्यक्रम का हो, गैस का हो और लाठी का हो, करंट की लाठी और किले की लाठी, ये सारी चीजें उन्होंने विद्यार्थियों पर उपयोग किया। विद्यार्थी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं किए, क्या एक 20-50 सरकारी वाहनों को कुछ जख्म किया या किसी नेता को रोक के कुछ पूछा? वो तो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन उनको वहां से हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला, गैस छोड़ा क्या यही पुलिस ने ही बोला, और बहुत से नौजवानों को, विद्यार्थियों को और खास करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को जो पीटा गया, मारा गया, तो इसके ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है? तो ये तो ये अरोगेंस ही बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते। हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब से ये विनंती की गई भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई आकाश में क्या चल रहा है, क्या दुनिया के कोने में क्या चल रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे थे। जो सीआरएफ है, आरएएफ है और पुलिस है, ये जो दौर्जन्य की है इसके बारे में ही हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लापता है, क्यों नहीं आ रहे मुझे मालूम नहीं।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि आज शाम को एक बैठक होने जा रही है एफसीआरए के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा एफसीआरए के मुद्दे पर आज शाम 5:30 बजे एक अहम मुलाकात होने जा रही है। और जो अभी तक खबर आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह से कैथोलिक चर्च के लोग मिलेंगे, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे मुलाकात करेंगे। और पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक से जुड़ी हुई?
2: बिल्कुल हिमांशु, एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 5:30 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह के साथ होने वाली है और इस बैठक में चर्च के कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, साथ साथ देश भर के कुछ कैथोलिक बिशप हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने यह दावा किया है कि लगभग 10 ऐसे धार्मिक जो नेता हैं क्रिश्चियन समुदाय से, ईसाई समुदाय से, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दरअसल एफसीआरए को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी देखा कि ऐसे कुछ राजनीतिक दल लगातार ये चिंताएं जाहिर कर रहे हैं और अब जो ईसाई समुदाय के कुछ धार्मिक जो नेता हैं उन्होंने भी इस चीज को कहीं ना कहीं आगे रखा है और इसीलिए उनकी बात समझने के लिए उस तरह की क्या उनकी चिंताएं हैं, क्या उनके मन में आशंकाएं, इन सभी चीजों के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लगभग 10 जो रिलीजियस लीडर्स हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो 5:30 बजे के आसपास संसद भवन में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और एफसीआरए
0: पर किन पहलुओं पर यहाँ पर बात हो सकती है, जो 10 नेताओं से यहाँ पर बात करेंगे सही नेताओं से, वो कौन से पहलू होंगे?
2: जी देखिए, एफसीआरए के अंदर कुछ अमेंडमेंट सरकार लेके आई है जिसमें 16वां और 17वां अमेंडमेंट की बात जो है वो कही गई है। जो धार्मिक गुरु हैं ईसाई समुदाय के, उनका ये मानना है कि ये जो अमेंडमेंट है इनकी वजह से जो प्रॉपर्टीज कंफिस्केशन है, यानी जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है या चर्च की कोई प्रॉपर्टी है उस पर कहीं ना कहीं संकट आ सकता है, इस तरह की चिंताएं जाहिर जरूर की गई हैं इन नेताओं की तरफ से, इन धर्मगुरुओं की तरफ से, और उन्हीं कुछ चिंताओं को लेकर वो आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे। हालांकि सरकार का ये साफ मानना है कि इससे बहुत फायदा होने वाला है, विदेशी फंडिंग जिसका इस्तेमाल गलत चीजों में होता है वो रुक जाएगा।
0: और इन सभी पहलुओं पर आज शाम को 5:30 बजे अहम मुलाकात कही जा रही है जहां पर गृहमंत्री अमित शाह होंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ पीयूष जुड़ने के लिए। देखिए, राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है, लेकिन जब आज राज्यसभा शुरू हुई एक तरफ तो मल्लिकार्जुन खड़गे जमकर बातचीत उन्होंने रखी तो दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया।
1: अब रिजिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है, अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं, ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए सो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दिस इज द रूल बुक एंड
3: says you are insulted by member. And Pawan Khera, you took his name and you are insulting him as if you are everything. And sir, just I want, we raised only junior questions concerning to the country, concerning 140 crores people, Asta's question. And we are asking only Home Minister, Prime Minister should come to a statement.
4: And sir, leader of opposition, Kharge Saab ke liye main ye rule pad raha hu. Rule 2-4 for the leader of opposition, Kharge ji. This is about irrelevance of reputation. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious reputation, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. Har din Kharge ji khade hote hain, jo likh ke late hain, same cheez padhne lag jata hai. Baar baar usko aap mauka dete hain, chairman sir, aur Kharge sir same cheez bolte hain. Ye reputation hai aur ye rule हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए. और सर, कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा. इनका अभी मैदान स्पीच भी नहीं हुआ, इनका अभी सारे मैदान स्पीच भी नहीं हुआ. पहले रूल पढ़ना चाहिए,
0: तो देखिए मामला बहुत ज्यादा गंभीर दिखा. हर जगह गर्मा गर्मी का माहौल देखा गया. राज्यसभा में तो आपने देख ही लिया. अब श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी सांसदों के बीच जमकर बहस देखने को मिली. एक तरफ थी सपा सांसद अक्षय यादव तो दूसरी तरफ जगदम्बिका पाल.
5: ये भगवान के आएगा ये भगवान के आएगा मस्जिद आएंगे
6: बहुत अलग
5: देंगे ये भगवान के आएगा मस्जिद आएंगे बहुत अलग देंगे
6: ये इसमें भी हालत जोड़ो यार डाल देंगे.
0: और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है. किसकी तरफ से? केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से. जो पीडीए की बात लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं, पी की परिभाषा कुछ और बता दी गई है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से. केशव मौर्य कह रहे हैं अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं वो पहले था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब पंडित दलित अल्पसंख्यक. तो पीडीए में केशव मौर्य पी की परिभाषा परिवार बता रहे हैं. अखिलेश यादव ने पी डी ए में पी को पहली बना दिया, ये कह रहे हैं कि हर वक्त इसका मतलब बदलता रहता है सहूलियत के हिसाब से. अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा है और पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इस मुद्दे पर काफी गर्म दिखी.
7: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है.
8: ये खुद कंफ्यूज है, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं. केवल तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम ही नहीं करना.
0: समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. समर्थ ये बताइए कि पीडीए में पी आखिर है क्या? ये एक पहेली बन गई है, ये गुत्थी बन गई है. कभी पिछड़ा होता है, कभी पंडित होता है, कभी कुछ होता है. अब केशव मौर्य तो पी फॉर परिवार बता रहे हैं, अब और क्या क्या देखने को मिलेगा?
9: देखिए हिमांशु, ये लड़ाई कुल मिलाकर है ब्राह्मण और खासकर सवर्ण वोटर को लेकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी तो शुरुआत से ही आक्रामक रही है और अब समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि पीडीए के साथ साथ साइकिल पर ब्राह्मण वोट को भी सवार करवाना पड़ेगा और तभी ये चुनाव में नैया पार लग पाएगी। और इसी वजह से पूरी आपने देखा किस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया जिसमें तरह तरह की बातें की गई और अखिलेश ने एक बड़ा नारा दिया, कहा पीडीए में पी जो है पंडित है और पीडीए का पीडी जो है वो पीडी पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। इतना ही नहीं, उन्होंने अयोध्या से उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। कौन उम्मीदवार? पवन पांडे, वो खुद ब्राह्मण पवन पांडे चेहरा है। अयोध्या जो विधानसभा सीट है वहां से ऐलान उम्मीदवार का कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लगातार एक तरीके से राजनीतिक सियासी जो मैसेजिंग होती है वो देने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जबकि बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि हर दिन तो पीडीए की डेफिनेशन समाजवादी पार्टी बदल रही है, तो लोग क्या समझेंगे पीडीए में पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है वो सवाल कर रहे हैं, डिप्टी सीएम जो है वो सवाल कर रहे हैं, जो कि खुद बीजेपी से ब्राह्मण चेहरा है, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है, केवल वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। जबकि समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि प्रदेश में केवल जो अत्याचार है वो पीडीए पर नहीं हो रहा है बल्कि ब्राह्मण को जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है और इस वजह से समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। कल का जो जनेश्वर मिश्र का सम्मेलन रहा उसमें स्टेज पर अखिलेश के साथ तमाम ब्राह्मण नेताओं को तरजीह दी गई, चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो, चाहे पूजा शुक्ला हो, अभिषेक मिश्रा हो, सनातन पांडे हो। तो वहीं बीजेपी जो है उसका पलटवार कर ये कहती है कि केवल चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं, इस तरह लुहावने वादे हो रहे हैं।
0: देखने को मिलेगा कि पी फॉर है क्या, पी फॉर पिछड़ा है या फिर पंडित है। वैसे शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से, वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है, अब वो भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो अखिलेश यादव के पी पर, सुनिए।
10: ये बड़ी अजीब सी बात है और पत्रकार साथियों के लिए भी और समाज के लिए भी बड़ा एक कौतूहल बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी आखिरकार समाज से इस प्रकार का मजाक क्यों कर रहे हैं। कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है, समाज को दिशा देता है, समाज को गति देता है, आप उसको गुमराह नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी का अपमान हुआ तो ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, ब्राह्मण अधिकारियों का अपमान हुआ, ब्राह्मण डॉक्टरों का अपमान हुआ, ब्राह्मण नेताओं का अपमान हुआ।
0: देखिए 27 से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मण अपनापन अत्याचार चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, वो हिंदुत्व का झंडा इस वक्त बुलंद कर रहे हैं।
11: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
12: आज सबसे बड़ा महापाप, सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।
0: और देखिए अखिलेश यादव तो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, जो शुरुआत में आपको कहा था ना कि फ्रंट फुट पर अखिलेश यादव बैटिंग कर रहे हैं, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने तो एक प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाम है पवन पांडे का और इनको टिकट भी दे दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे पवन पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश ने ऐलान कर दिया और एक साथ कई निशाने भी साध दिए, सुन लीजिए।
12: पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पांडे जी,
0: पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे वो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी पवन पांडे है कौन, तो हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने पवन पांडे से बातचीत की, वो बातचीत आपको सुनवा देते हैं।
9: पहले कैंडिडेट आप बने हैं जिनको पार्टी ने कुल मिलाकर अनाउंस किया है, अखिलेश यादव ने कल खुले मन से कहा, कैसे देखते हैं पहले तो बताइए।
13: मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर विश्वास किया और ये कहा कि अब की अयोध्या से हमारे सिपाही हमारे कार्यकर्ता पवन पांडे जीत रहे हैं, तो ये हमारे अयोध्या के जो देवतुल मतदाता हैं, हमारे देवतुल क्षेत्रवासी, उनका आशीर्वाद है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे एक एक नेता साथी कार्यकर्ता भाई बंधु का आशीर्वाद और सहयोग है कि जिसकी बदौलत हम लोग अयोध्या विधानसभा जीतेंगे। और अयोध्या विधानसभा ही नहीं, अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगे, पूरा अयोध्या मंडल जीतेंगे और पूरा प्रदेश जीतेंगे और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
9: मुलाकात भी आपकी हुई अखिलेश यादव से आज, कुछ बताया उन्होंने क्या कुछ करना है?
13: हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ठग रही जनता को, जिस तरह से किसान ठगा जा रहा है, नौजवान ठगा जा रहा है और मंदिरों में भी लूट और डकैती हो रही है, दिन भर राम राम करते करते चढ़ावा चोरी करने वाले जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर डकैती डाली है, इस बार जनता ने मन बना लिया कि इनको कुर्सी से हटाएंगे, इनको हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।
9: एक बात और भी है, कल जनेश्वर मिश्र जयंती थी, आप भी थे वहां पर, एक तरीके से जो ब्राह्मणों के लोग एक पार्टी एक्टिव हुई है इधर बीच में, उसी बीच आपको भी टिकट दिया जाता है, आप भी ब्राह्मण चेहरा है और अयोध्या से आप आते हैं, क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार जो है, क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ जाएगा?
13: देखिए ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
9: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है,
13: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा ऐसा जिला जहां टिकट नहीं देती।
0: और अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और ये अतीक अहमद परिवार के लिए बुरी खबर है क्योंकि झांसी में अतीक अहमद का जो छोटा बेटा था अबान अहमद, सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने भाई जो कि नैनी जेल से जिसको झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था उससे मिलने के लिए जा रहा था, अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था, उसके साथ में उसके चार दोस्त और थे, लेकिन अबान और उसके एक साथी की मौत हो जाती है, बाकी तीन लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, क्रेटा गाड़ी डिवाइडर से जोरदार टकराती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और ये बताया जा रहा है झांसी से 70 किलोमीटर दूर पूंछ में हुआ ये। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष अब तक और क्या जानकारी आ पा रही है इस पूरे मामले में, पुलिस की तरफ से क्या आधिकारिक बयान दिया गया है?
14: देखिए जो एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर पुलिस ने साफ कहा है कि दो लोगों की मौत हुई है, जिसमें से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अमान अहमद भी इसमें था और ये गाड़ी के फ्रंट सीट के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था, जिससे कि जब ये क्रेटा गाड़ी डिवाइडर से लड़ती है तो उसकी इसी दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो ये पुलिस ने पोस्टमार्टम में भेजा हुआ है, बाकी फॉरेंसिक जाँच हो रही है। और तीसरी बात है कि इसमें जो और तीन लोग घायल हैं उनको भेजा गया है हॉस्पिटल में कि उनका इलाज किया जा सके, क्योंकि वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। अब ऐसे समय में जब माफिया अतीक अहमद का जो बेटा है छोटा अबान अहमद वो जा रहा था नैनी से, जैसे ट्रांसफर हुआ उसके भाई का अली का, वो वहां पर था मौजूद झांसी जेल में, उनसे ही मिलने जा रहा था और अमूमन हमेशा जाता रहता था, लेकिन आज ये जब घटना हुई है ये 10 सुबह की समय हुई है, ना ही कोई रात थी,
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के लिए भी। और यहाँ पर वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
15: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: In association with
5: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी। सो
2: पीएम मोदी के पोस्ट हटाने पर मेटा पर गंभीर सवाल है। उन्हीं सवालों के जवाब मांगे जाने के बाद मेटा टीम दिल्ली पहुंची। इस टीम में मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कप्लान भी थे। सरकार की नाराजगी और सख्ती के बाद मेटा ने माना कि गलती हुई है। अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद जोएल कप्लान ने कहा कि मैंने पीएम मोदी की पोस्ट को रोकने की गलती के लिए मेटा की तरफ से मंत्री से माफी मांगी।
3: सर, एनी कमेंट ऑन द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट सर?
2: मंत्रालय के अधिकारियों ने मौजूदा नियमों का ठीक से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया और प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के मामले पर चिंता जताई। इनमें प्रधानमंत्री की पोस्ट को मनमाने ढंग से हटाना और आपत्तिजनक कंटेंट भी शामिल है। सरकारी सूत्रों की माने तो मेटा टीम से कड़ी पूछताछ की। बातचीत में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बच्चों के शोषण वाले कंटेंट के विज्ञापन से पैसे नहीं कमा सकते और सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा का दावा भी नहीं कर सकते। खबर है कि मेटा और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे जानबूझकर या जानकारी में रहते हुए अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होने देते। एक दिन पहले ही मार्क जकरबर्ग ने CSAM कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। अब आज फिर मेटा की टीम को समन किया गया है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये सरकार क्या है सर?
1: रिपब्लिक की ये सरकार।
2: राष्ट्रीय सरकार।
3: ऐसे हॉल में नहीं बात करेंगे हम। हम आइए मेरे यहाँ टेंट में। हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
4: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 40 दिन का आंदोलन हुआ तो एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ, और अगर ऐसा नहीं होता तो देश के अलग अलग युवाओं को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, और इसीलिए उसी जंतर मंतर से 1200 किलोमीटर दूर यहां झारखंड में एक और जंतर मंतर बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूँ आशुतोष मिश्रा। बीते 13 दिनों से यहां झारखंड में JPSC JSS उन परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ ये छात्र यहाँ पर धरने बैठे हैं। कोई अनशन पर है तो कोई इस उम्मीद में है कि सरकार उनकी मांगों के आगे झुकेगी। एक छोटा सा राज्य जिसका जन्म ही एक आंदोलन से हुआ था, आज उसी की अगली पीढ़ी भविष्य जो है वो इस आंदोलन में है, वो इस धरने में है। बैनर पोस्टर युवाओं की जो पहचान, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, AI, हर वो व्यंग ऐसा है जिसको देख करके आगे सरकार झुकती है, क्योंकि इसका दबाव महसूस होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ी खबर नहीं आती। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस समय छात्रों ने अगर अपने लिए एक डेलीगेशन टीम बनाई है तो सरकार भी बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। लगभग सब जो झारखंड सरकार है, 4 मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है जो इन छात्रों से बातचीत करेगा, और इसी के साथ ही छात्र कह रहे हैं कि बातचीत सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी, मंत्रियों के साथ नहीं होगी। उनकी दूसरी शर्त ये भी है कि ये बातचीत बंद कमरे में नहीं होगी, खुली जगह पर होगी, और इसी के साथ तीसरी शर्त ये भी है कि जो भी होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा, कुछ भी बंद कमरे में नहीं होगा। क्योंकि साल दर साल परीक्षाएं हुई, प्रतियोगिताएं दी, और उसके बाद मिला क्या? कहीं पेपर लीक, कहीं बैकडोर से एंट्री, और उसी के साथ हर वो मेहनत पर पानी फिर गई, और इसीलिए अब अविश्वास है, विश्वास की कमी है, और ऐसे में छात्र पारदर्शिता चाहते हैं।
0: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
3: इसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? ऐसे हॉल में नहीं बात करेंगे हम। हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
5: अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
6: जो आवाज अब तक दिल्ली में सुनी जा रही थी वो अब रांची से सुनाई दे रही है। हक की एक और लड़ाई तेजी से परवान चढ़ रही है। झारखंड के नौजवान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की अनोखी जंग लड़ रहे हैं। देश ने बड़े गौर से जंतर मंतर को देखा, देखा कि कैसे नौजवानों ने एक और आंदोलन की बुनियाद रखी, ये भी देखा कि कैसे युवा शक्ति के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया, देखा कि कैसे एक बेहद मजबूत शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, और अब दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक और जंतर मंतर का वजूद मजबूत होते देश देख रहा है। दो आंदोलन, दोनों का मकसद एक, फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में डटे छात्र साधन संपन्न थे तो रांची में जमे छात्रों के सामने संसाधन का संकट है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है।
5: अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
0: हम लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
3: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम। हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
0: हम बता दें सर, आज आप लोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए पर हमारे मुख्यमंत्री अभी तक मिलने तक नहीं आए कि मिल लेते छात्र। हम भी तो उन्हीं के छात्र ना, हम भी उनको नौकरी के नाम पे वोट दिए थे सर।
6: 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर रांची में छात्र डटे हैं। न धूप बारिश की परवाह है, न भूख प्यास की चिंता। इनकी दो टूक मांग है कि 14वीं JPSC परीक्षा और अन्य विवादित परीक्षाएं रद्द हो, JPSC, JSSC, CGL परीक्षाओं की CBI या ED से जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य की सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो, मुख्यमंत्री सीधे छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करें और लिखित आश्वासन दें।
7: का तो चार मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल नहीं तैयार करना पड़ता। आंधी तूफान इसी मूसलाधार बारिश में उसके बाद भी टेंट बनाकर ये बच्चे टिके हुए हैं, 24 घंटे टिके हैं। इस आंदोलन को कमजोरी ना पड़े, अगर कोई अनशन तोड़ता है तो चार और अनशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल ये आंदोलन पूछ रहा है और इसी वजह से दबाव है। अब तक लगता था कि क्या ये कुछ मुट्ठी भर छात्र होंगे, अब पूरे झारखंड का समर्थन है। छात्र भूखे ना सोए तो कुछ और नहीं तो ये चना गुड़ लेकर के, पिज्जा बर्गर नहीं है तो चना गुड़ लेकर के आ गए कि कम से कम इन छात्रों की जो आवाज है वो सरकार तक लगातार पहुंचती रहे।
6: इन छात्रों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जंतर मंतर का प्रकरण सोरेन सरकार के जहन में जरूर दर्ज हुआ होगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने छात्रों से बातचीत की पेशकश की है,
8: उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।
6: मुख्यमंत्री की इस पहल का अब तक ज्यादा असर नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि जो कुछ होगा सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री का आवास 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करें। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
4: जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीते 13 दिनों से क्या बरसात, क्या आंधी, क्या तूफान, छात्रों का हुजूम यहां जमा हुआ है। पहले तो सर पर तिरपाल भी नहीं थी और अब जब सर पर तिरपाल आई है तो उम्मीद आई है कि पूरा झारखंड इनके साथ है। लेकिन क्या सरकार साथ है? हमारे सहयोगी सत्यजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, सरकार ने तो 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बना दिया, लेकिन यहां जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत तो सिर्फ मुख्यमंत्री से होगी। अब इन्होंने प्रतिनिधिमंडल बना दिया, जरा अपडेट दीजिए कि बातचीत कब होनी है, किसके बीच होनी है और कहां होनी है।
9: देखिए, दोनों तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर प्रतिनिधि मंडल बनाया गया और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अगर कोई ग्रीवांसेस है किसी तरह का, अगर आपका डिमांड है तो चैनल जो है ओपन, आप आके बातचीत कीजिए। 4 मंत्रियों का पैनल बना हुआ है और जेएमएम के जो इंसाइडर्स हैं उनसे जब बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि जंतर मंतर में भी कोई धर्मेंद्र प्रधान डायरेक्ट तो आ नहीं गए थे बात करने के लिए और वहां पे बहुत सारे दिन लगे थे लड़कों के जो वहाँ आंदोलन कर रहे थे उनके आवाज को संसद तक पहुंचने में, मंत्रालय तक पहुंचने में। लेकिन यहाँ डे वन से कार्रवाई हो रही है, पहले दिन से ही जब रेकअप हुआ ये इशू जो है पब्लिक डोमेन में आया, फटाफट रेड किए गए सीआईडी के द्वारा। अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां की गई है और उसी वक्त 10 से 11 गिरफ्तारियां अभय तिवारी जो किंकित माना जाता है उसकी गिरफ्तारी उसी वक्त हुई थी। ख्यांगते के लोकेशंस पे छापेमारी हुई थी, मेंस एग्जाम जो जेपीएससी 14 का मेंस सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होना था वो पोस्टपोन किया गया और प्रीलिम्स में ओएमआर सीट पर अगर किसी ने सवाल उठाया है तो उसकी एफएसएल जांच हो रही है। ये तमाम दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन दलीलों से बात नहीं बनने वाली है। डायलॉग जब तक नहीं होगा, आइस ब्रेक जब तक नहीं होगा, ये जरूर कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। कल जब एडीएम लॉ एंड ऑर्डर रांची के गए थे या एसडीएम जो रांची के वो कहते हैं और उन्होंने कहा था कि 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आप बनाएं और बातचीत के लिए जो है।
4: ठीक है सत्यजीत, आप बने रहे हमारे साथ। बीते 13 दिनों से लगातार आज तक हर वो तस्वीर कवरेज हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कैसे छात्रों का ये आंदोलन खड़ा हुआ अपने अधिकार के लिए। लेकिन जब अधिकार जेन जी के प्रदर्शन की बात आती है तो ये उग्र नहीं होते, ये आक्रामक नहीं होते, ये नारे नहीं लगाते। यहाँ अनुशासन होता और मंच पर ये लिख दिया जाता है कि किसी तरह का हंगामा नहीं होगा, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन जो होगा वो शांतिपूर्ण होगा। और इसीलिए नारों के साथ कुछ पुच्चू जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर देना, ये वो नारे होते हैं जिसमें व्यंग है। और उन व्यंग की है मैं कैसी तस्वीरें, कैसे रिपोर्ट आपको दिखाता हूं कि कैसे जेन जी का ये आंदोलन, ये जो अगली पीढ़ी है ये अपनी आवाज को कैसे रचनात्मकता के साथ उठाती है। तारीख को विधानसभा मार्च तय है, छात्र यहां से अनाउंस कर रहे हैं। दरअसल आंदोलनों की रूपरेखा बदलते वक्त में भी बदलती गई। हमने जंतर मंतर पर देखा, नारों से ज्यादा ये जो नई पीढ़ी है, जो जनरेशन जी है, इसके आंदोलन की ताकत, इसके नारे, इसके तरीके हैं।
7: जब हम इस मंच पर आते हैं तो आपको यहाँ बाबा अम्बेडकर दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी यहाँ दिखाई देते हैं, शिबू सोरेन भी दिखाई देते हैं, और इसी के साथ साथ एक नियम ये जरूर है कि मंच से किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत व्यक्तित्व वक्तव्य नहीं होगा, आंदोलन के मूल निर्देशों पर ही अपनी बात होगी, और ये भी कहा है कि लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित न करें, आप शब्दों का प्रयोग न करें, और उसी के साथ जो तिरंगा है वो राष्ट्र का प्रतीक है, और इसी के साथ साथ आपको इस आंदोलन के वो रंग दिखाते हैं जो अहिंसा से है, सादगी से है, लेकिन नया है और इसीलिए बहुत प्रभावशाली है। न्याय नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए, तुमसे ये उम्मीद नहीं था हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एआई के जरिए बनाई गई इन तस्वीरों को, एजुकेशन इज आवर राइट नॉट अ प्रिविलेज, ये है वो जेनजी का आंदोलन। वो इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि इनके तरीके नए हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जेएसएससी जो स्टूडेंट कह रहे हैं अब तो नौकरी पक्की है, फिर क्या होता है पेपर लीक, इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। उपहास कहते ना कि इतने गंभीर विषय को भी ऐसा उपहास बनाया कि मार सीधे सिस्टम को लगती है। पेपर मत बेचो प्लीज, क्या लिखा देखिए, जेंजी बाबू पेपर मत बेचो प्लीज। जेंजी की जो भाषा है ना इन बच्चों की, वो भाषा अपनी इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, लेकिन प्रभावशाली है। ये 3D के जरिए एनिमेटेड AI का इस्तेमाल हमने कहां नहीं देखा था, और किसने सोचा था कि भारत में AI का इस्तेमाल आंदोलनों में भी होगा, और इसीलिए 3D डायनेमिक पिक्चर बना करके। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस समय तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में ये फैसला हुआ है। तरुण तेजपाल को अपने ही दफ्तर में एक महिला सहकर्मी के साथ जो घटनाक्रम हुए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, गोवा में उनके खिलाफ मामला चला था, निचली अदालत से बरी हो गए थे, लेकिन उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने उसे ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई। इस समय बड़ी खबर आ रही है। हमारी सहयोगी विद्या हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ रही है। विद्या, एक लंबा मुकदमा चला और उसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब प्रोसिक्यूशन ने उसको चुनौती दी है तो तरुण तेजपाल को जो है कन्विक्ट कर दिया गया है।
10: जी बिल्कुल, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट भी हुए अदालत में। प्रोसिक्यूशन की तरफ से यही कहा गया कि जो जजमेंट है, जिस तरीके से 13 साल इतने सालों बाद आया है, तो और देखिए, अगर आप देखें तरुण तेजपाल के खिलाफ कोई केस भी नहीं है कोई, और उनका कहना यही था कि तरुण तेजपाल का कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसकी वजह से ये पूरा मामला उनके खिलाफ बनाया गया था, और इस पूरे मामले में उन्हें थोड़ी सी रियायत दी जानी चाहिए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के खिलाफ अपील कर सकें। हालांकि अदालत ने उनको 2 हफ्ते का समय दिया है सरेंडर करने के लिए, लेकिन अदालत ने 10 साल की सजा 2 सेक्शंस में उनको बरकरार रखी है, और साथ ही दूसरे कुछ सेक्शंस में उन्हें किसी में 3 साल की सजा, किसी में 1 साल की सजा, ऐसे जो कॉन्करेंट चलेंगे, जो साथ में चलेंगे, तो मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो 10 साल की सजा सुनाई है अभी थोड़ी देर पहले ही जो डिवीजन बेंच है जस्टिस नीला गोखले एंड

0: अगर आप उसके बारे में भी बता सके, क्योंकि निचली अदालत में एक लंबा ट्रायल हुआ, उस ट्रायल के बाद तो बरी हो गए थे इस मामले में।
1: जी बिल्कुल, दरअसल अदालत में यही सरकारी पक्ष की तरफ से यही आर्ग्यूमेंट किए गए थे कि जब महिला ने कंसेंट नहीं दिया था तो कंसेंट के बिना किसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने मोलेस्ट किया, जिस तरह से रेप किया, जिस तरह से लिफ्ट के अंदर ये उनके साथ ये बदसलूकी हुई थी महिला के साथ, वो नहीं करना चाहिए था। और निचली अदालत ने जिस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए था एविडेंस, वो सही तरीके से नहीं हुआ था। हालांकि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का जो डिटेल जजमेंट है वो अभी आना बाकी है, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर जब अदालत ने, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट भी सुन रहे थे, अदालत बार बार यही कह रही थी कि महिला ने जब निचली अदालत में वो पेश हुई थी, अदालत में भी उन्होंने अपने सेंटेंस को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पुलिस को, उसके खिलाफ नहीं गई थी, वो सारे के सारे बातें उन्होंने सही कहा था कि उनके साथ ये सारी चीजें हुई थी, तभी अदालत ने, निचली अदालत ने।
0: ठीक है विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जैसे ही अदालत का यह फैसला आता है, तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई गई है, उसके तुरंत बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया भी है। क्या कह रहे हैं तरुण तेजपाल, आपको सुनवाते हैं।
2: हमको कोई डाउट नहीं है, हम 13 साल से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के पीछे, तहलका के काम की वजह से पीछे, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने ट्रायल कोर्ट में 7.5 साल पूरा केस लड़के हम लोग अक्विट हुए, अभी ये लोग फिर पीछे पड़ गए हैं। जो इनके साथ लोग हैं उनको तो ये सब अक्विट कर देते हैं, जिन्होंने इनके अगेंस्ट कभी भी पत्रकारिता की हो या कुछ भी कहा हो, ये उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये बात सही है, तहलका ने पत्रकारिता की और कुछ ऐसी पत्रकारिता भी की जिससे वेस्टेड इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कोई नुकसान होगा। अब उसके पीछे ये लोग बदला लेंगे भाव से, 13 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। इन्होंने मेरी पत्रकारिता बंद करा दी, इन्होंने तहलका बंद करा दिया, इन्होंने मेरी किताबों का छपना बंद करा दिया, लेकिन हम लड़ेंगे। हम मेरे को पूरा फेथ है कि इतनी बड़ी जुडिशरी में ऐसे जज हैं जो सच देखेंगे और सच एकदम से सामने आएगा।
0: तो तरुण तेजपाल को अदालत ने 10 साल की सजा सुना दी है, लेकिन आज तक पर लगातार कवरेज जारी है इस जंतर मंतर से जो देश की राजधानी से 1200 किलोमीटर दूर है। जनता तैयार है, छात्र तैयार है, सरकार कह रही है बातचीत होगी, लेकिन उस बातचीत के लिए कई सारी शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है पारदर्शिता। छात्र नेता क्या कह रहे हैं सुनिए।
3: ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ, और अभी भी वो हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है।
4: आपने फिर जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था?
3: हाँ, अभी भी वो हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं।
0: जो घटनाएं घटी, इससे पहले जो परीक्षाएं घटित हुई, जिनमें स्पष्ट सामने आया था कि नेपाल में परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर उन्हें परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, ये मामले स्पष्ट रूप से प्रकाश में आए थे। और सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह है, अगर केंद्र सरकार आ जाती है तो प्रश्न चिन्ह होता है, अगर केंद्र ना रहे तो निष्पक्ष हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एजेंसियों पर तो प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन फिलहाल जो छात्रों की मांग है, हमें लगता है, और सरदार पटेल भी कह के गए हैं कि लोकतंत्र में लोगों का एक बड़ा सा समूह जो अगर मांग करता है उस मांग पे चर्चा करनी चाहिए। झारखंड का जन्म ही एक आंदोलन से हुआ था, ये जमीन जानी जाती है जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए, और इसीलिए इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 13 दिन से जब छात्र जुटे हैं तो उनके आगे सरकार मजबूर हुई है, वो दबाव में आई है, लेकिन अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई है। सरकार के मंत्री क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं।
5: छात्रों की बातों को बहुत संवेदनशीलता से, बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुना जाएगा और उसको सरकार के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करेगी सरकार।
6: 2007 में किसके किसके परिवार हैं, आज तक ईडी और सीबीआई ने कोई कार्रवाई कर पाया क्या? लेकिन हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने तुरंत जैसे उनके संज्ञान में आया, निगरानी विभाग से जांच करा करके वैसे दोषियों लोगों को जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करके जेल में भेजने का काम किया। और जो हमारा विद्यार्थी का डिमांड है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उदार दिल दिखाया है और कार्रवाई करेगा, फिर वार्ता होगा।
7: लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब यहाँ लोगों का तंत्र होता है। लोग आवाज उठाते हैं, सरकार सुनती है, मांगे पूरी होती हैं और इसी से भरोसा बना रहता है। ये 13 दिनों का आंदोलन स्टेडियम में छात्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, ये उम्मीद के साथ कि उनकी मांगे सुनी जाएंगी। लगातार हमारी कवरेज यहाँ से जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की तमाम खबरों

0: के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: करीब दो साल बाद शेख हसीना ने किसी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया, साझा किया कि उनके दिल और दिमाग में बांग्लादेश को लेकर क्या योजना है। उन्होंने इसका भी खुलासा किया कि वो बांग्लादेश कब लौटेंगी।
1: I know that they may put me in the jail or they may kill me, they may, anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support, it is very important for me.
0: ये शेख हसीना का वर्चुअल संबोधन था। इसी दौरान शाकिब अल हसन भी मौजूद थे। वो शेख हसीना के समर्थन में श्रीलंका से वर्चुअली जुड़े थे। इसी बात पर बांग्लादेश में उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश पुलिस की माने तो शेख हसीना के बयान के कुछ घंटे बाद शाकिब अल हसन के घर की खिड़कियां तोड़ी और घर में आग लगाने की कोशिश की गई। ये घटना रात करीब 9 बजे की है। जानकारी के मुताबिक कई उपद्रवियों ने घर पर ईंट के टुकड़े फेंके और खिड़कियां तोड़ दी, फिर उन्होंने घर में आग लगाना चाहा। आग जाने की कोशिश के बाद से शाकिब अल हसन के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: माफियाती कहमत के सबसे छोटे बेटे अरबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे में अरबान समेत दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अरबान प्रयागराज से झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी झांसी के पूंछ इलाके में हाईवे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। पुलिस अब इस मामले पर जांच कर रही है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं, पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का यह बयान। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने ही सांसद के ऐसे बयानों का खंडन करेंगे। पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

संसद में डेडलॉक के बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मुलाकात। सरकार बोली जानबूझकर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। खड़गे बोले सदन ना चलने पाने की जिम्मेदारी सरकार की। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया। भयानक सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अवान अहमद की मौत। झांसी के पास डिवाइडर से टकराई कार। जेल में अपने भाई से मिलने जा रहा था अवान। दिल्ली की बारिश में गई एक शख्स की जान। करंट लगने से हुई मौत। स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर पानी ही पानी। जाम से हाफने लगी राजधानी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: झांसी में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद समेत दो लोगों की सड़क हादसे में मौत। झांसी में हाईवे पर कार डिवाइडर से जाके टकराई, हादसे का शिकार हुई। हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी शिफ्ट कर दिया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नीट और यूजी पेपर लीक मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। कहा कि चार्जशीट और दस्तावेजों की जांच पूरी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद की में रक्षा मंत्रालय की बैठक में अध्यक्षता की बैठक में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका उपलब्धियों पर चर्चा की गई। राज्यसभा में खड़गे की मांग, पैलेट गन के मुद्दे पर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन में दे बयान। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में जवाब दे। संसद में हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने पवन खेड़ा पर लगाए आरोप। खड़गे बोले, सदन में हर कार्रवाई की एक तय प्रक्रिया होती है। संसद परिसर में बारिश के बीच बिना छतरी नजर आए राहुल गांधी। बारिश के दौरान छतरी हटाकर विपक्षी सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। संसद परिसर में डिंपल यादव ने राम मंदिर के लिए दिया चंदा। सरकार को घेरा भी किया। चर्चा के बीच चंदा देने का वीडियो हुआ आया सामने। चंडीगढ़ नगर निगम को लेकर आप और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के मुद्दों पर भाजपा को घेरा। संसद में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसदों का हंगामा। बारिश के बीच छाते लेकर सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर, स्नैप प्रोटेस्ट की आशंका है। लाल किले की सुरक्षा में 12,000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। 24,000 मेहमानों पर रहेगी नजर। एफसीआरए पर शाम 5:30 बड़ी मीटिंग। अमित शाह से मिलेंगे कैथोलिक बिशप। सूरत पाठक का अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार, बोले ब्राह्मण सिर्फ सुदामा नहीं चाणक्य भी हैं। कन्नौज से पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए साधा अखिलेश यादव पर निशाना। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अरुणाचल के प्रभावित इलाकों पर करेंगे दौरा। यजाली में फ्लैश फ्लड और बादल फटने से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को की धांधली। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। 13वें दिन जारी है प्रदर्शन। छात्रों की मांग, खुले में बातचीत हो। बढ़ते तनाव के बीच सीएम सोरेन ने आंदोलनकारी छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अधिकारियों ने धरना स्थल पर जाकर सौंपा है ज्ञापन। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा अनियमितता मामले पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। 5 और गिरफ्तारी की गई है। अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रांची और लखनऊ में के सहयोग में हुई है कार्रवाई। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत की गई। छात्र आंदोलन को लेकर विधानसभा में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की संभावना है। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों का ऐलान, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे। लंबित मांगों को लेकर छात्र आंदोलन तेज कर दिया गया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा ने माफी मांगी है। चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने जारी किया है बयान। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कमियों को स्वीकार किया। कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीप फेक से निपटने की चूक की बात भी मानी है। मुंबई में जेंजी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत। 2,000 से ज्यादा छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न केस में दोषी करार दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया है। रेडफोर्ट में कश्मीरी प्रवासियों का प्रदर्शन किया है। पीओजेके के घटनाक्रम को लेकर ब्रिटिश कश्मीरी डायस्पोरा ने जताया विरोध। प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। कार्यस्थल पटना पाठशाला ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किया था। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित और बारिश का हवाला देकर अनुमति निरस्त कर दी गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बोले कि यहां भी छात्रों की आवाज दबाना नहीं जा सकता। अजय राय ने स्पष्ट किया है कि शनिवार 8 तारीख को शाम 5 बजे राहुल गांधी का युवाओं के साथ संवाद होकर रहेगा, चाहे जितनी बाधाएं डालनी हो डालें, युवा न्याय की लड़ाई रुकेगी नहीं। समाजवादी पार्टी ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। यूपी में अपराध नियंत्रण की तैयारी है। 51 जिलों में 196 संवेदनशील चौराहे चिन्हित किए गए। 9 करोड़ की लागत से लगे गए 1342 सीसीटीवी कैमरे। बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए खरीदी जा रही है 11 नए सूट। लखनऊ में सीएम योगी की घुमंतु समाज संवाद, मंत्री असीम अरुण की मौजूद रहे। सीएम बोले हैं कि जनता हमारे लिए सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि जनार्दन है। संबलिंजा को न्यायिक आयोग की बताया सुनियोजित साजिश। रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की गई है। विधानसभा में पेश हुई है 370 पन्नों की रिपोर्ट। रिपोर्ट आने के बाद मस्जिद के आसपास RRF तैनात कर दी गई है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नहीं लगेगा टोल, मरम्मत पूरी होने तक NHAI ने किया सस्पेंड। कांग्रेस ने कहा है कि 4,200 करोड़ रुपए की सड़क बनाई और 4 रातों में टूट गई। अखिलेश यादव का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पंखे से सुखाने को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला। बोला है बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है और ढहता घसता ज्यादा है। योगी सरकार ने सपा सरकार का मदरसा वेतन विधेयक वापस लिया है। 2016 में पारित विधेयक कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के चलते कभी लागू नहीं हो पका था। राम मंदिर दान चोरी केस में जांच तेज कर दी गई है। पुराने लेजर खंगाले जा रहे हैं। पुलिस 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस चढ़ावे के हिसाब और वित्तीय रिकॉर्ड की कर रही है पड़ताल। कावड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम देवबंद में छात्रों को एडवाइजरी दी है। कावड़ मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। झांसी में अनोखा स्वागत, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष को क्रेन ने से पहनाई गई 2 क्विंटल की माला। क्रेन से हुआ भव्य अभिनंदन। बिजनौर में स्मैक तस्कर महिला गिरफ्तार की गई। 254 ग्राम स्मैक और 66,000 रुपए के बरामद किए गए। पुलिस खंगाल रही है तस्करी का नेटवर्क। प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले कुछ नौजवान छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी और अमित शाह पर जमकर निशाना भी साधा है। राहुल गांधी ने माफी मुद्दे पर फिर से सरकार पर बोला हमला, कहा कि इन छात्रों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल और अन्य तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। राहुल गांधी ने आरोप पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा कि प्रदर्शन में कोई फायरिंग नहीं हुई और छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया। कहा कि रांची में छात्रों की परेशानी भी समझे राहुल गांधी। महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई, 3,137 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। 165 लाइसेंस सस्पेंड किए गए। 55.72 करोड़ रुपए की असुरक्षित खाद्य पदार्थों को जब्त भी करें। कमिश्नर ने कहा है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है। वाशिम में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। JCB से हटाई गई अवैध दुकानें शहर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई और देसी शराब की दुकानें समेत कई ठिकानों पर गिरी है गाज। मुंबई मेयर बंगले के आसपास विकास कार्यों का टेंडर रद्द कर दिया गया। विवाद के बाद BMC का फैसला, करीब 3 करोड़ रुपए के टेंडर पर उठे थे सवाल। महाराष्ट्र में हेल्थ इंश्योरेंस योजना में 15,407 संदिग्ध क्लेम मिले हैं। आयुष्मान भारत और महात्मा फुले योजना के कथित गड़बड़ी की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। मुंबई के विक्रोली में तेज म्यूजियम विवाद बना खूनी, पिता पुत्र की मौत, चाकू हमले में 2 घायल हुए। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जोशीमठ में लगातार बढ़ रहा खतरा, बरसाती पानी के साथ मलबा गांव के बीच पहुंचा, अलर्ट जारी कर दिया गया। चमोली में 1 साल बाद भी नहीं बना पैदल रास्ता, नदी पार कर जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण अपनी जान। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से उफान पर है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया सतर्कता। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर, घरों के निकट पहुंचा नदी का पानी, पैदल पुल जलमग्न हो गए। सावन के महीने में दिल्ली एनसीआर में जारी बरसात, कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। घने बादलों से ढका हुआ आसमान। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिन भर दिल्ली एनसीआर में मध्य से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं कई जगहों पर पानी भरने से ट्रैफिक में धीमी रफ्तार कर दी है। बारिश से दिल्ली की हवाओं में भी साफ हो गई है। 84 हुआ है AQI, संतोषजनक श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। साउथ दिल्ली मुनिरका मेट्रो स्टेशन के पास वाटर लॉगिंग लोगों की बड़ी मुसीबत है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच पुलिस ने जारी किया है एडवाइजरी। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। असम में बाढ़ बारिश के बीच मानवीय सेवा की एक शानदार मिसाल है। कई चैरिटेबल संस्थानों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया राहत और पुनः आवास का अभियान। असम में कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित परिवार के लिए बनाए जा रहे पक्के घर, परिवारों को बांटे जा रहे राशन और खाने पीने के सामान। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते टीडी के मुख्य बाजार में लैंडस्लाइड हुई है। हादसे में कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। एक गाड़ी मलबे में दब गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी में फ्लैश फ्लड से बिगड़ते हालात, निचले इलाकों में घुसा है पानी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नंदी मार्ग नाले पर बढ़ा है जलस्तर। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। सड़कें बंद, यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। हरिद्वार में गंगा नदी में डूब रहे कावड़ियों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पीएसी ने, आपदा राहत दल ने, जवान ने दिखाई अपनी फुर्ती। यूपी में बारिश से हुए नुकसान का सीएम योगी ने लिया है संज्ञान। अधिकारियों को मदद के निर्देश दिए। फरुखाबाद में गंगा नदी उफान पर है। 36 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बारिश के आसपास प्रयागराज में भी भदोही में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया। शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। आगामी उफंती नदी के आगे बेबस छात्र जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए बुजुर्गों की तस्वीर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। हुगली में भारी बारिश से जल भराव हो गया। सड़कों पर जमा थमा है जनजीवन और इलाकों में भारी पानी की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उड़ीसा में पुरी में भी भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में जल भराव हो गया। यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा। बारिश के बीच ढहा 100 साल पुराना मकान। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर में दर्दनाक हादसा। गन्ने के खेत में करंट लगने से किसान मजदूर की मौत हो गई। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने 5 घंटे तक शव की नहीं उठाया। चित्रकूट में प्रेमी संग पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी समेत 3 को उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मथुरा में छात्र की हत्या, जंगल की कोठरी में मिला शव। धारदार हथियार से हत्या की आशंका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा में कैफे और मिनीप्लेक्स पर पुलिस का बड़ा छापा। 2 दर्जन युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। अनैतिक गतिविधियों की आशंका है। जांच के बाद दोषियों को होगी कड़ी कार्रवाई। चुपू में बाराबंकी में दीवार झड़ने से हादसा। 5 बच्चे मलबे में दबे, 2 की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में चांदी व्यापारी के लूट का खुलासा हुआ। 1,38,00,000 रुपए का माल बरामद किया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मेरठ में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। मामले में CCTV खंगाल रही है पुलिस। प्यार के रोहतास में मजदूरी और आपसी विवाद के चलते 60 वर्षीय मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश के शव को नहर में फेंक दिया गया। मचाया बवाल। पटना में पकड़ा गया है लाखों का नकली ब्रांडेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का और दवा। आम लोगों के जीवन और खिलवाड़ करने वाले गिरफ्तार किए गए। अमित राय की ओ माय डॉग कल सिनेमा घरों में होगी रिलीज। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0 भी कल हो रही है रिलीज। हिमांशु कोहली, रवि किशन, सोनाली सहगल और शिल्पा शिंदे जैसे एक्ट्रेस इसमें शामिल है। आर माधव की फिल्म GDN कल होगी रिलीज। GD नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रेमणी और जयराम और सत्यराज जैसे स्टार भी आएंगे नजर। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी कल थिएटर में होगी रिलीज। फिल्म की मिल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा लीड रोल में है। तमिल रोमांटिक एक्शन फिल्म DC भी कल हो रही है रिलीज। इसमें लोकेश कंगराज और वामिका गब्बी लीड रोल में है। सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 14 अगस्त को फिल्म होगी रिलीज। इमरान हाशमी की आवारा पंचू सेंसर बोर्ड से मिला है यूए 16 सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता दिवस पर फिल्म देगी दस्तक। फिल्म डोरोथी का टीजर रिलीज हो गया, फिल्म में कीर्ति सुरेश निभाएंगे मुख्य भूमिका, 25 सितंबर 2026 को होगी फिल्म रिलीज। नेटफ्लिक्स ने किया ऐलान, मुसाफिर कैफे का आएगा दूसरा सीजन, विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना, लवनी मिश्रा अहम भूमिका में नजर आएंगे। भारत में फिल्म स्पाइडरमैन का जलवा बरकरार है, फिल्म ने 7 दिनों में 314 करोड़ रुपए कमाए हैं। आईसीसी ने जारी किया है ताजा वनडे रैंकिंग, कप्तान शुभम गिल समेत 3 भारतीय टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल है। टॉप पर काबिज है कप्तान गिल, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर और चौथे पायदान पर रोहित शर्मा है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज में पहले बीसीसीआई ने टीम के कैंप में 4 नेट बॉलर्स को किया है शामिल, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, तनुष प्रैक्टिस सेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों को ही करेंगे गेंदबाजी। 17 अगस्त से दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ड्रॉ जारी है, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबेल के खिलाफ करेंगी अभियान की शुरुआत। युवा स्टार शटलर आयुष को मिली है बड़ी चुनौती, पहले दौर में विश्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के शी यू क्यूई से होगा उनका मुकाबला।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
1: चले खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते और रुक करते हैं यूपी का, जहां पर मिशन 2027 की लड़ाई अब ब्राह्मण वोट पर गर्मा गई। अखिलेश यादव ने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया तो सियासी पारा चढ़ गया, बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है, वो इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो इसे सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है कि इनका पी मतलब परिवार ना कि पंडित है।
2: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
3: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।
1: और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की लगातार कोशिश जारी है। समाजवादी पार्टी ने इस लड़ाई के लिए बिगुल बजा दिया है और अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। पहले उम्मीदवार के रूप में पवन पांडे का नाम तय किया गया है, वह अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने इसका ऐलान किया, साथ ही लगातार बीजेपी पर निशाना भी साधा।
4: पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं, पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं।
1: दरअसल पवन पांडे अयोध्या की राजनीति में चर्चित चेहरे, वह पिछले करीब 3 दशकों से समाजवादी राजनीति का सक्रिय और प्रभावशाली नाम रहे। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट में इनके नाम की घोषणा कर दी। इसके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं।
5: पहले कैंडिडेट आप बने हैं जिनको पार्टी ने कुल मिलाकर अनाउंस किया है, अखिलेश यादव ने कल खुले मन से कहा, कैसे देखते हैं पहले तो बताइए।
6: मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर विश्वास किया और ये कहा कि अब की अयोध्या से हमारे सिपाही, हमारे कार्यकर्ता पवन पांडे जीत रहे हैं। तो ये हमारे अयोध्या के जो देवतुल मतदाता हैं, हमारे देवतुल क्षेत्रवासी, उनका आशीर्वाद है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे एक एक नेता, साथी, कार्यकर्ता, भाई बंधु का आशीर्वाद और सहयोग है कि जिसकी बदौलत हम लोग अयोध्या विधानसभा जीतेंगे। और अयोध्या विधानसभा ही नहीं, अयोध्या की 5 सीटें जीतेंगे, पूरा अयोध्या मंडल जीतेंगे और पूरा प्रदेश जीतेंगे। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
5: मुलाकात भी आपकी हुई है अखिलेश यादव से, आज कुछ बताया उन्होंने क्या कुछ करना है?
6: हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ठग रही जनता को, जिस तरह से किसान ठगा जा रहा है, नौजवान ठगा जा रहा है और मंदिरों में भी लूट और डकैती हो रही है। दिन भर राम राम करते करते चढ़ावा चोरी करने वाले जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर डकैती डाली है, इस बार जनता ने मन बना लिया कि इनको कुर्सी से हटाएंगे, इनको हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे।
5: एक बात और भी है, कल जनेश्वर मिश्र जयंती थी, आप भी थे वहां पर, एक तरीके से जो ब्राह्मणों के लोग एक पार्टी एक्टिव हुई है इधर बीच में, उसी बीच आपको भी टिकट दिया जाता है, आप भी ब्राह्मण चेहरा है और अयोध्या से आप आते हैं, क्या लग रहा है ब्राह्मण इस बार जो है, क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ जाए?
6: देखिए, ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
5: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
6: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ दिया, कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
7: वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले एक बार फिर से संभल का जिन सिर उठाने चुका है। 2024 के संभल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कल विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में हिंसा और दंगे के पूर्व नियोजित साजिश बताया गया और हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे के बयान को बड़ी वजह माना गया है।
8: नवंबर 2024 में हिंसा की आग में धधक चुके संभल की आंच पर सियासत अब भी पक रही है। संभल हिंसा की वजहों की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई तो सियासत एक बार फिर उबली। 450 पन्नों वाली इस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया है। रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि संभल में हिंसा पूर्व नियोजित साजिश, जिसे समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क, एसपी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट जफर अली, वकील कासिम अली, मसूद फारूकी, लड्डन खान ने भड़काई थी। असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर कब्जे और गिराने की अफवाह फैलाने वाले वीडियो फैलाए। 19 और 22 नवंबर 2024 को बर्क के भाषणों से अयोध्या से तुलना करते हुए माहौल बिगाड़ा गया। FSL की बैलिस्टिक जांच और रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि हिंसा में चार लोगों की मौत पुलिस फायरिंग से नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष से हुई फायरिंग का नतीजा थी।
7: चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा
7: नहीं
8: तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील
7: PMT बार एकदम सॉलिड।
8: पापा सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का
9: सब कैशलेस हो गया
8: है।
9: हाँ
8: बोले ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: In association with
14: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
13: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
15: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: In association with
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
7: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR आईनॉक्स में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं मई।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद में जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सरकार बोली जानबूझकर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। खड़गे बोले सदन ना चल पाने की सरकार की है जिम्मेदारी। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बातचीत। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। प्रयागराज में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में जाने पर अड़े राहुल गांधी। कहा स्टूडेंट की आवाज उठाने से डरी सरकार। प्रशासन से राहुल के प्रोग्राम की अनुमति। तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा। 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया। भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान अहमद की मौत। झांसी के पास डिवाइडर से टकराई कार। जेल में अपने भाई से मिलने जा रहा था अवान।

0: नमस्कार, खबरें असरदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। छात्र आंदोलन की हुंकार जो दिल्ली से उठी थी, अब रांची तक पहुंच गई। दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही रांची में हजारों छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। नारेबाजी हो रही, धरना हो रहा है और प्रदर्शन हो रहा है। झारखंड के छात्र राज्य की सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार और धांधली की गिरफ्त में आ चुके परीक्षा के सिस्टम में भी परिवर्तन चाहते हैं। आज उनके आंदोलन का 13वां दिन है और वो हेमंत सोरेन की सरकार की ईंट से ईंट बजाने की पूरी ताकत में लगे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद दिन पहले ही जो कुछ हुआ वो अब रांची में भी दोहराया जा रहा है। जंतर मंतर की तरह रांची में भी झारखंड के नौजवान अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द कर दी जाए। जेपीसी के साथ ही छात्र उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसमें धांधली के आरोप लगते रहे, यानी कि छात्र पूरी परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से साफ सफाई चाहते हैं। क्या झारखंड की सोरेन सरकार छात्रों की उम्मीद पर खरी उतर पाएगी?
1: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
2: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
3: अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
4: जो आवाज अब तक दिल्ली में सुनी जा रही थी वो अब रांची से सुनाई दे रही है। हक की एक और लड़ाई तेजी से परवान चढ़ रही है। झारखंड के नौजवान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की अनोखी जंग लड़ रहे हैं। देश ने बड़े गौर से जंतर मंतर को देखा, देखा कि कैसे नौजवानों ने एक और आंदोलन की बुनियाद रखी। ये भी देखा कि कैसे युवा शक्ति के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया। देखा कि कैसे बेहद मजबूत शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। और अब दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक और जंतर मंतर का वजूद मजबूत होते देश देख रहा है। दो आंदोलन, दोनों का मकसद एक। फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में डटे छात्र साधन संपन्न थे तो रांची में जमे छात्रों के सामने संसाधन का संकट है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं
3: है। अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले
1: हैं। लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
2: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
1: हम बता दें सर, आज आप लोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए पर हमारे मुख्यमंत्री अभी तक मिलने तक नहीं आए कि मिल लेते छात्र। हम भी तो उन्हीं के छात्र ना, हम भी उनको नौकरी के नाम पे वोट दिए थे सर।
4: 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर रांची में छात्र डटे हैं। ना धूप बारिश की परवाह है, ना भूख प्यास की चिंता। इनकी दो टूक मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा और अन्य विवादित परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई या ईडी से जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य की सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो, मुख्यमंत्री सीधे छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करें और लिखित आश्वासन दें।
5: तो चार मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल नहीं तैयार करना पड़ता, आंधी तूफान इसी मूसलाधार बारिश में, उसके बाद भी टेंट बनाकर ये बच्चे टिके हुए हैं, 24 घंटे टिके हैं। इस आंदोलन को कमजोरी ना पड़े, अगर कोई अनशन तोड़ता है तो चार और अनशन पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल ये आंदोलन पूछ रहा है और इसी वजह से दबाव है। अब तक लगता था कि क्या ये कुछ मुट्ठी भर छात्र होंगे, अब पूरे झारखंड का समर्थन है। छात्र भूखे ना सोए तो कुछ और नहीं तो ये चना गुड़ लेकर के, पिज्जा बर्गर नहीं है तो चना गुड़ लेकर के आ गए कि कम से कम इन छात्रों की जो आवाज है वो सरकार तक लगातार पहुंचती रहे।
4: इन छात्रों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जंतर मंतर का प्रकरण सोरेन सरकार के जहन में जरूर दर्ज हुआ होगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने छात्रों से बातचीत की पेशकश की है,
6: उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।
4: मुख्यमंत्री की इस पहल का अब तक ज्यादा असर नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि जो कुछ होगा सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री का आवास 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करें। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: छात्रों के आंदोलन के जब 12 दिन बीत गए तो सोरेन सरकार की नींव टूटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाया। मंत्रियों के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को गठन भी कर दिया गया, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि बात तो सिर्फ और सिर्फ सीएम से ही की जाएगी।
4: रांची में एक नया अध्याय आकार ले रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच रांची की सड़कों पर झारखंड के नौजवान नई भारत लिखने में पूरी ताकत से जुटे हैं। बुधवार की शाम यहां अनोखी तिरंगा यात्रा निकली।
5: बिरसा मुंडा की जमीन पर ये आदिवासी छात्र, ये वो लोग हैं जो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं के अनियमितता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। ये देख रहे कितना लंबा तिरंगा है, ये 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर के, तिरंगा हाथों में लेकर के, तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र निकले हैं। 12 दिनों से सुनवाई हुई नहीं, अब सरकार कहती है कि बातचीत करेंगे, चर्चा करनी है, और इसी के लिए देखिए ये तमाम सारे छात्र जो हैं ये तिरंगा यात्रा लेकर के रांची की सड़कों पर आगे बढ़ रहे हैं।
7: जब तक जेपीएससी रद्द नहीं होगा तब तक नंगे पैर रहेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे।
5: बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ये शरीर की पीड़ा फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेगा, दरअसल जो भविष्य के सामने जो पीड़ा खड़ी हुई है उसका जवाब कौन देगा? रांची ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है।
4: झारखंड के हर हिस्से से छात्रों का रांची की तरफ कूच हो रहा है। जत्थे में उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुदरत बारिश की बौछार कर रहा है तो आंदोलनकारी इन छात्रों पर फूलों की भी बारिश हो रही है। जंतर मंतर वाली व्यवस्था तो नहीं, लेकिन दाल चावल का इंतजाम यहाँ भी है।
5: झारखंड के इस जंतर मंतर पर जानते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर क्या है। ये छोटी सी तिरपाल है, जगह यहाँ पर 50 से 100 लोगों की है, लेकिन दिन भर में हजारों छात्र अलग अलग टुकड़े में, देखिए कहीं से छत टपक रही है तो व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बचाया जा सके। नारे पोस्टर लेकर के वो भी आए हैं जिनका परीक्षाओं से लेना देना नहीं है, लेकिन भविष्य अपने बच्चों का देखते हुए वो चिंता उन्हें यहाँ लेकर के आई है। यहाँ आपको क्या युवा महिलाएं हर कोई समर्थन में मिलेगा, और ऐसे छोटे छोटे टेंट लगा के इस मैदान के अंदर तमाम सारे छात्र हैं, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करके बल्कि वो युवा ताकत से ये बताना चाहते हैं कि मामला उनके भविष्य का है, उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए। देखिए यहाँ पर सोनम वांगचुक की भी तस्वीरें लगी होंगी, और सोनम वांगचुक ने जब दिल्ली में दर्शन अनशन किया तो देवेंद्रनाथ महतो ने भी यहाँ अनशन किया। उनका अनशन सोनम वांगचुक के कहने पर टूटा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस आंदोलन में पिछले 12 दिनों से दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर अपनी आवाज सुनाने के लिए, हेमंत सोरेन सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए यहां पर चुके हैं। देखिए कुदरत का तो मानो कहर बरप रहा है पूरी भारत में, खासकर झारखंड में मूसलाधार बारिश के बीच जहां जिसको जगह मिली है ये छात्र बस यही टिके हैं। 24 घंटे ऐसा कोई समय नहीं है जब छात्रों का जमावड़ा यहां पर नहीं होता, और इसीलिए देखिए चावल दाल सलाद जो भी है जिसके हाथे जो बना वो लेकर के आ गया, क्योंकि दिन भर यहां हजारों छात्र होते हैं, कोई भूखा ना सोए इसकी जिम्मेदारी अब झारखंड ने ले ली है। आप लोग क्या करते हैं और क्या ऐसी चीज थी जो आपको यहाँ लेकर के आई, ये पूरा खाना लंगर लेकर के?
8: सर मैं घर पे रह रही थी तो मैंने लाइक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ये प्रोटेस्ट देख रहे थे, बट कल जब यहाँ आए और देखा मैंने स्टूडेंट्स को तो देखकर बहुत ही ऐसा लगा कि अगर हम नहीं करेंगे अब तो कौन करेगा इनके लिए।
4: सवाल है कि हेमंत सोरेन सरकार अब क्या करेगी? खबर है कि सोरेन सरकार ने 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है। आंदोलनकारी छात्रों से प्रतिनिधिमंडल ही बातचीत करेगा। परीक्षाओं में धांधली के आरोप में अब तक 19 गिरफ्तारी हुई है। छात्रों और सरकार के बीच आज बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार के लिए आंदोलन एक अग्नि परीक्षा की तरह ही है। छात्र आमूल चूल सुधार चाहते हैं, सड़ी गली व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। तो सोरेन सरकार के लिए भी ये कम बड़ी चुनौती नहीं है। आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पे छात्र आंदोलन को लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 11 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत करने जाएगा, जिसमें 11 लोगों में 8 छात्र होंगे, एक वकील और 2 इसमें और शख्स या फिर और तकनीकी जानकार भी इसमें शामिल होंगे। यानी 11 लोगों का प्रतिनिधि मंडल सरकार से बातचीत करने के लिए जाएगा, जिसमें 8 छात्र, एक वकील और दो सलाहकार, या फिर इसमें कह सकते हैं कि दो इसमें एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोरेन सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल की बात की गई थी, लेकिन छात्रों की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ सीएम से बातचीत करना चाहते हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। जी, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से आई एक वीडियो ऐसी है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर खाना तो जेल में कैदियों को दिया जाता है, लेकिन मिड डे मील के नाम पर तहत सीतापुर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में ऐसा खाना परोसा गया जो किसी भी हालात में बच्चों को नहीं खिलाया जा सकता। अब कार्रवाई की बात कलेक्टर कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस योजना की निगरानी के लिए हर जिले में 20 से ज्यादा अधिकारी होते हो, वहां बच्चों को मिड डे मील के तौर पर यह खाना खिलाना किसी शर्मनाक मजाक से कम तो नहीं है।
9: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जली रोटी, पनीहल सब्जी और सरकारों के गुणगान। इस वीडियो को बार बार देखिए, इसलिए देखिएगा क्योंकि मजाक भी बहुत हल्का शब्द साबित होता है। कुकर में 2 गिलास पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक डालकर आलू के चंद टुकड़े और परवल के छींटे मारकर सीटी लगा दी गई। जानवरों को भी जैसे रोटी नहीं फेंकी जाती, उस तरह से फेंक कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी स्कूल का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। ऐसा मिड डे मील खाकर पढ़ेंगे बच्चे तो सोचिए कैसे बढ़ेंगे बच्चे। सीतापुर के छंगापुर का सरकारी प्राइमरी स्कूल इस बात की गवाही देता है कि मिड डे मील के नाम पर जो दावे सरकार करती है, हकीकत में उसमें बहुत पानी मिला हुआ है। दावा है ये वीडियो मंगलवार का है, जब नियम कहता है कि बच्चों को चावल और सब्जी युक्त दाल दी जानी चाहिए। नियम कहता है चना या अरहर की दाल में मौसमी सब्जी मिलाकर चावल के साथ दिया जाए, लेकिन सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बना मिड डे मील कहता है नियम गया पानी लेने और उसी पानी वाली सब्जी को परस देंगे, ताकि बच्चे को इसी बहाने थाली में कल कल बहती पानी वाली सब्जी के बहाने नदियों के बहाव का पाठ भी पढ़ा दिया जाए। वो तो गनीमत रहे, एक शख्स ने ये वीडियो बनाया, वायरल किया, तो जाकर पता चला कि सरकारी स्कूल में बच्चों को किस तरह पानी वाली सब्जी का स्वाद चखाकर तंदुरुस्त करने की योजना चल रही है। जहां कार्रवाई के नाम का नाटक करने अधिकारी पहुंचे, रसोईया को हटा दिया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, बीईओ के खिलाफ एडवर्स एंट्री करके हाथ झाड़ लिया गया। जरा सीतापुर के कलेक्टर को सुनिए।
10: लापरवाही के कारण मतलब ऐसे घटना घटित हुई। जब ये प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान में आया, तत्काल हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी को हमने विद्यालय भेजा। विद्यालय में जब प्रथम दृष्टया जो वायरल हुई वीडियो वो सही पाया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए

0: जो पर्यवेक्षण का जो लापरवाही का देखते हुए कनिष्ठ शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रविष्टि का कार्रवाई किया गया और ऐसे लापरवाही फ्यूचर में ना होने के संबंध में प्रशासन का स्तर से पहले से स्पष्ट निर्देशित किया गया। तो खंड शिक्षा अधिकारी नहीं, खंड विकास अधिकारी भी स्कूल पे जाएंगे, जो बच्चे के साथ बैठ के मिड डे मील खाएंगे और मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण से बन रहा है या नहीं इसके संबंध में भी इन लोगों को पर्यवेक्षण करने के लिए हमने स्पष्ट निर्देशित किया गया।
1: ये सब सुनकर आपको लगेगा कि देखो कलेक्टर साहब ने कितना बड़ा एक्शन लिया, लेकिन रुकिए, फैक्ट हम बताते हैं। यूपी एमडीएम के दस्तावेज कहते हैं कि बच्चे किस तरह का खाना स्कूल में मिड डे मील के तौर पर पा रहे हैं और खा रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक DRDA, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर उप जिलाधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, यानी कुल 20 लोग हैं। लेकिन एक आदमी ये नहीं देख पा रहा था कि कैसी पानी वाली सब्जी बच्चों को स्कूल में परोसी और खिलाई जा रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा वाली व्यवस्था में कहा जाता है सबसे बड़ा करप्शन अधिकारी मिड डे मील के नाम पर ही तो करते हैं। जहां मिड डे मील ना बने तो बचने का सबसे ज्यादा रेट लगता है, बाकी खराब बने तो कौन देखने वाला है। सोचिए ये मासूम बच्चे इस खाने को कैसे खाते रहे होंगे, कभी उप नहीं किया होगा, इन्हें क्या पता कि इनके हक का खाना खा खा कर कौन कौन कितना कितना मोटा हो गया होगा।
2: पहले दिल्ली, फिर रांची और अब पटना में भी छात्र आंदोलन की चिंगारी पहुंच गई। पटना में आज STET के अभ्यर्थियों ने सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। आपको बता दें कि लगातार छात्र यहां पर भी प्रदर्शन कर रहे और बाद लगातार वो इस प्रदर्शन के दौरान परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे।
3: बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी TRE-4 का विज्ञापन अब तक BPSC ने जारी नहीं किया है, लेकिन उसके पहले ही जो एस्टेट है, मतलब राज्य सरकार की तरफ से जो शिक्षक दक्षता परीक्षा जो होती है उसकी मांग को लेकर के, लगातार एस्टेट को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग एस्टेट के लिए मांग कर रहे हैं, क्या है आप लोगों का डिमांड?
4: जी, हम लोग STT-26 के लिए आए हुए हैं। हम लोग विगत महीने से विभाग को ज्ञापन के माध्यम से देख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं शिक्षा मंत्री को, शिक्षा सचिव को। हम लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है।
5: मैं BPSC की तैयारी करता हूं और मैं BEd भी किया हूं। मैं सोचा कि अगर जैसे STT का आयोजन हो जाता है तो हम लोग TRE-4 में एलिजिबल हो जाएंगे। हम लोग जॉब थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक पात्रता पर आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हम लोग को मौका से चाहिए। हम लोग योग्य होंगे तो नौकरी मिलेगा, योग्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा।
6: TRE-4 से सबसे पहले एस्टेट ले, ताकि 24-26 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मौका मिले।
7: लगभग 5.5 लाख ऐसे छात्र हैं जो इस बार स्टेट अगर परीक्षा होता है तो उसमें शामिल होंगे, और इसमें बड़ी संख्या में जो मेधावी छात्र हैं जो आगे चल के शिक्षा क्षेत्र में काफी योगदान अपना दे सकते हैं।
8: ये हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है, कितना अच्छा और कितना मीठा तरीका से झूठ बोलते हैं। अब जब आप लोग जैसा मीडिया जैसा बंधु पूछते हैं उनसे सवाल, क्या एस्टेट लेंगे, तो मीठी मीठी बातें में घुमा देते हैं। और मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को बात उठाने आ पाए।
3: क्या नाम है आप?
8: मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ।
3: धन्यवाद कुंदन, हमसे बात करने के लिए। और हम आज तक के जरिए दिखाते हैं आपको बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है, जो एक बड़ी बहाली शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षकों की आती है, उस आंदोलन को लेकर के लगातार जो एस्टेट क्या आयोजन करने की मांग छात्र कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं।
2: और अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली NCR में मौसम मेहरबान है, लेकिन इस बरसात ने राजधानी की मुश्किलें भी बढ़ा दी। आज सुबह से ही दिल्ली NCR में रुक रुक कर बारिश हो रही। सिर्फ दिल्ली नहीं, पहाड़ों पर भी धुआंधार बारिश हो रही। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, घाटों के आसपास बने कई घर पानी में डूब गए, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो हमने 3 तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, वहीं कई जगहों पर भारी जाम भी लग गया। गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में सड़क पर बारिश का पानी भरने की वजह से

0: वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाईओवर के पास पानी भरने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी दो पहिया वाहन और पैदल चलने वालों को ही हो रही है। वहीं बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक भी समस्या बन गई है।
1: आज सुबह से ही दिल्ली में भारी वर्षा हो रही है, जहां एक तरफ इस वर्षा की वजह से टेम्परेचर में कमी आई है, ह्यूमिडिटी कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये वर्षा एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त मैं आईटीयू पर मौजूद हूं और आईटीयू पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं पीक आवर ट्रैफिक के वजह से जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो जल भराव की समस्या यहां होती थी वो जल भराव इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम की ऐसी स्थिति जो है आज दिन भर बनी रहेगी। इसके अलावा जो दिल्ली के अन्य इलाके हैं, जैसे कि आसपास के अन्य इलाके हैं, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, इस तरफ आने जाने वाले दोनों ही रास्ते पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं बारिश की वजह से। पीक आवर ट्रैफिक की वजह से काफी सारी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि हर तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पे प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके, लेकिन जिस तरीके से जो जल भराव की समस्या है वो बनते हुए दिख रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है।
0: आपने आईटीओ की तस्वीरें देखी, अब दिल्ली के मुनिरका की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आपको राजधानी में भारी बारिश के बाद मुनिरका में जल भराव हो गया था, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और ये तस्वीरें मुनिरका की, आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल कितना ज्यादा है। गाड़ियों को धीरे धीरे रेंग कर यहां से निकलना पड़ा और सबसे ज्यादा दिक्कतें दोपहिया वाहनों वालों को या फिर पैदल चलने वालों को हुई। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस तेल में।
7: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
8: आज सबसे बड़ा महापाप, आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: सॉरी।

0: cool and don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, Complete Oral Health Ka Sach. In association with
2: Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
3: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सरकार है जिम्मेदार। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को हेमंत सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव, आंदोलनकारियों की मांग, सीएम से ही करेंगे बात। वार्ता के दौरान मीडिया भी रहे मौजूद, विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। प्रयागराज में छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में जाने पर अड़े राहुल गांधी, कहा स्टूडेंट्स की आवाज उठाने से डरी सरकार, प्रशासन से राहुल गांधी के प्रोग्राम की अनुमति।

0: अभियान, लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझना, बताया अपना मकसद। तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, 2 हफ्ते में करना होगा समर्पण। रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: मेरे नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है, तैयार हो। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।

0: सावंत आप देख रहे हैं रणभूमि और पूरा पाकिस्तान इस समय एक रणभूमि बना हुआ है, जल रहा है पाकिस्तान। दरअसल नफरत की नींव पर जब एक देश खड़ा होता है, नफरत की नींव पर खड़ा एक देश नाकाम होने की कहानी अब खुद बयां कर रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम फेल हो चुका है, पाकिस्तान का सिस्टम सड़ गया है। जी हां, अब हम आपको चार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पाकिस्तान में हालात इस समय कितने बेकाबू हैं, कितने लचर हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान कल जेल में डाले हुए, 3 साल पूरे हो गए। इमरान खान के जो समर्थक हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आसिफ मुनीर उनसे नफरत करते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। वो अगर उनका बस चले तो इमरान खान जीते जी जेल से नहीं निकलेंगे, और इसीलिए इमरान खान के समर्थकों पर कल जो वार हुआ, एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज हुआ, पिटाई की गई, विरोध की आग अब पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी तक पहुंच गई है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान में छिड़े घमासान की है, जिसमें आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की शह पर उनके जो रिश्तेदार भी हैं, गृहमंत्री मोहसिन नकवी, अपनी ही सरकार के सिस्टम को एक बार फिर सड़ा हुआ बता रहे हैं, सड़ गया है पाकिस्तान का सिस्टम। तीसरी तस्वीर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की है, जहां पाकिस्तान की फौज का दमन इस समय अपने चरम पर है। आप ये सोचिए कि जो लोग खाना मांग रहे हैं, खाना ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉकेड कर दिया है, ताकि आजादी की मांग कर रहे लोग, अपने हक की मांग कर रहे लोग भूखे मर जाएं। ना अनाज मिल रहा है, ना दूध, ना सब्जी, गाड़ियां ही नहीं जाने दे रहे वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पंजाब सूबे से। चौथी तस्वीर बलूचिस्तान की है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। कई इलाकों में बलूच एक बार फिर सड़कों पर आ गए हैं और उनका कहना है अब बलूचिस्तान पर हमारा अपना कब्जा है, पाकिस्तान की सेना डरती है, भाग गई है। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिफ मुनीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो है जिंदा इमरान खान। जी हां, इमरान खान जेल में भले ही हैं, अभी जिंदा है, और जब तक जिंदा है इमरान खान, आसिफ मुनीर चैन की नींद नहीं सो सकते। आसिफ मुनीर ने सीधी चुनौती देने वाले इमरान खान को 3 साल से जेल में डालकर रखा है। बड़ी खबर यह कि उनकी रिहाई के लिए अब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा प्लान बनाया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी PTI 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च करेगी। कल पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, कराची में उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज हुआ, रावलपिंडी में पिटाई की गई। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने, कारकुनानों ने एक बार कमर कस ली है। सोहेल अफरीदी कल पेशावर में एक बड़ी रैली में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब जो पश्तून है, पठान है, वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि मार्च से पहले सरकार इमरान खान पर लगी पाबंदियां हटा ले। उनके डॉक्टर, उनके परिवार, उनके वकील उनसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बस अब उनके पास केवल अगस्त के महीने का समय है, वरना सितंबर के महीने में एक बड़ा इस्लामाबाद मार्च होगा 27 सितंबर को। यह सोहेल अफरीदी का कहना है।
1: मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है। तैयार हो तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
0: अब सवाल यह उठता है कि सोहेल अफरीदी जो मुख्यमंत्री है खैबर पख्तूनख्वा के, 27 सितंबर यानी अभी से 1.5 महीने की बात की उन्होंने तारीख क्यों दी, और इस बात से इमरान खान की बहन अलीमा बेहद नाराज है। जी हां, अलीमा खान इस बात से नाराज हैं कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद की मार्च की तारीख 27 सितंबर की दी है। उनका कहना यह है कि ये लोग इमरान खान को बेफजूल इंतजार करा रहे हैं, उनके बाहर आने में जानबूझकर देरी की जा रही है। हालांकि अलीमा खान ने यह कहा कि इस्लामाबाद मार्च का फैसला पीटीआई का है और ऐसे फैसले पर वो पार्टी के निर्णय में फैसले में दखलंदाजी नहीं करती, उनसे कोई बात नहीं करती, लेकिन वो ये सोच रही है कि 27 सितंबर क्यों, इमरान खान को जबरदस्ती जेल में 1.5 महीने और क्यों रखा जाए। सुनिए,
2: मैं तो फोन पे यही देख
3: रही हूँ। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे?
2: आपसे मैडम कोई निशान
3: रखनी
2: थी
0: सवालों से। अच्छा, स्थिति जो पाकिस्तान में है वो इस समय बेहद गंभीर है। पिछले 3 साल में आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ही 2 बार इससे पहले बड़े नरसंहार करा दिए हैं, और हम आपको उनकी जानकारी विस्तार से देते हैं। आपको याद है 2024 में अक्टूबर के महीने में इमरान खान की रिहाई को लेकर ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद मार्च किया था। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। पीटीआई ने यह दावा किया था कि सुरक्षा बलों ने उन पर सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर राइफलों से गोलियां दाग दी थी, और उस दमन के कारण दर्जनों कार्यकर्ता मारे गए, और पार्टी ने शुरुआत में मृतकों की संख्या को पहले 12 बताया था, फिर कहा कि यह संख्या बढ़ गई है। वहीं 2025 में एक बार फिर इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के प्रदर्शनकारियों को लाहौर में रोक दिया गया। जब वो फिर भी बढ़ना चाहते थे तो सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ, इसमें भी 16 लोग, और ये औपचारिक संख्या है 12 और 16, मारे गए थे। जो वहां के लोग हैं उनका दावा यह है कि जनरल डायर की तरह आसिम मुनीर ने नरसंहार, यह नहीं कि केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में कराया, नरसंहार पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कराया, कभी इस्लामाबाद में तो कभी रावलपिंडी में तो कभी लाहौर में। और यह मैं आपको विस्तार से दिखाना भी चाहता हूं कि कैसे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। ये पत्रकार भी पिट रहे हैं पाकिस्तान में इस समय, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता भी पिट रहे हैं। आप ये तस्वीर अलग अलग देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर है इमरान खान की जब उनको जेल लेकर जाया जा रहा था, 3 साल हो गए हैं। ये मोहसिन नकवी है, मोहसिन नकवी का कहना यह है पाकिस्तान का सिस्टम सड़ चुका है। अच्छा, अब आप देखिए कहां कहां जल रहा है पाकिस्तान। ये देखिए, ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये पूरा का पूरा 4 सूबों में देश है। एक पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर और पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान अलग है, वो भारत का इलाका है जिसका कुछ अंश गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में है। इमरान खान की लड़ाई की रिहाई को लेकर जो लड़ाई हो रही है वो इस समय पाकिस्तान के पंजाब सूबे में कार्यकर्ता निकले, वो कराची में भी निकले, सिंध में और पंजाब सूबे में भी निकले। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में इस समय? सशस्त्र विद्रोह, एक तरह से आजादी का रण बलूचिस्तान में हो रहा है, लगातार हो रहा है वहां पर। 2005 के बाद ये सबसे जो ताजा वाक्या है, ये तब से शुरू हुआ, 2026 तक लगातार चला रहा है। बलूचिस्तान के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान का पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला बलूचिस्तान का ये इलाका है। सिंध अलग जल रहा है, पंजाब सूबा पाकिस्तान का अलग जल रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा अलग जल रहा है। हम आपको हर सूबे के बारे में बताएंगे कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान कैसे इस समय जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वहां के लोग, दरअसल वहां जो पश्तून लोग हैं ना, वो पश्तून लोग अब आजादी चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमान हैं वो उनको सेकेंड रेट सिटीजन के रूप में उनके साथ बर्ताव करते हैं, उनके पास वो अधिकार समान अधिकार नहीं है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जिसे विद्रोह का कहा जा रहा है, या एक तरह से वहां भी वो स्वतंत्रता संग्राम ही है, और उसका खूनी दमन आसिम मुनीर करा रहे हैं। आसिम मुनीर के राज में पूरा का पूरा पाकिस्तान इस समय जल रहा है, और पंजाब सूबे में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर भीषण जंग है, घमासान और बढ़ेगा। बलूचिस्तान में तो आप लगातार जाते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना अब अपने कैंटोनमेंट से निकल ही नहीं पाती है, निकलती है तो उनको मार दिया जाता है। और बलूचिस्तान में जो बलूच लड़ाके हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो अब अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में, गांवों में, कस्बों में, खुले में घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सेना निकल ही नहीं पाती। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में तो स्वात के आसपास टीटीपी का इतना वर्चस्व है, इतना राज उनका वहां चलता है कि पाकिस्तान की सेना अपने पेट्रोल को निकालने के लिए पहले उनसे इजाजत मांगती है, इजाजत मिलती है तो उनकी पेट्रोलिंग होती है। ये जरूरी है आपके लिए समझना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पहले आतंकवाद फैलाया, उनको मुजाहिदीन का नाम लिया, वही अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को ही मार रहे हैं। बेहद गंभीर स्थिति पाकिस्तान के लिए, एक मुल्क के तौर पर टिकेगा या नहीं यह भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक के बाद एक मुश्किलों से पाकिस्तान घिरता जा रहा है। जब भी संकट आता है वो भारत को, भारत का डर दिखाने का चूरन बेचने लगता है। जी हां, ये बिल्कुल सही बात है। इसी कोशिश में पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो जाली चुनाव, फर्जी चुनाव हो रहे हैं, धांधली हो रही है, वहां के लोगों का दमन हो रहा है, लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारी जा रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के दखल का और ऑपरेशन सिंदूर का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर इस समय इतनी लचर व्यवस्था है, कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 ना हो जाए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है, और अगर वहां चुनाव नहीं कराए जाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करा देते। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, सुनिए।
4: अब उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो।
5: किसका?
4: आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
0: ये डर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान में। अब उनको डर सता रहा है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का, तो उन्होंने कहा किसी तरह चुनाव करा लो वरना सिंदूर 2.0 होगा। ये सब उनकी अनर्गल बातें हैं। वैसे आपने पाकिस्तान के नेता का ये मक्कारी भरा बयान भी सुन लिया। अब समझिए इस झूठे और बेबुनियाद आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल इस समय पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दशकों से पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर कश्मीर कश्मीर कश्मीर का राग अलापता रहा है। यही पाकिस्तान कहता रहा, यह हमारी शहरग है। अब असलियत सामने आई। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में जब लोग अपना हक मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आटा मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, और बेनकाब कर रहे हैं पाकिस्तान की सेना को जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों का खून चूस रही है। अब जब लोग सड़कों पर आए तो पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? वही जो जनरल डायर ने किया था। जी हां, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे रावलाकोट हो, कश्मीरियों की लाशें सड़कों पर बिछा दी। कुछ आंकड़े कहते हैं 40 लोग मार दिए, कुछ आंकड़े कहते हैं 90 लोग मार दिए। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोग कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोगों को या मार दिया या अगुआ कर लिया। चुनावों में धांधली कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुमत हासिल कराया। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी यह आरोप लगा रहे हैं। अल जजीरा जैसे चैनल, पाकिस्तान कल तक तो अल जजीरा को बिल्कुल एक धार्मिक रूप में देखता था कि वह अल जजीरा ने कह दिया तो सच ही होगा, लेकिन जब अल जजीरा के कतर के टीवी चैनल के रिपोर्टर ने यह कह दिया कि पीओके के लोगों को मारा जा रहा है, वहां चुनाव का बॉयकॉट हो रहा है, तो क्या किया पाकिस्तान ने? अल जजीरा को बैन कर दिया। यानी भारत के कहने पर नहीं बल्कि लोगों ने अपनी नाराजगी के चलते चुनावों का बहिष्कार किया, यह सच जब दुनिया के सामने आ रहा है तो पाकिस्तान मीडिया को बैन कर रहा है। सच के सामने आते ही पाकिस्तान ने पत्रकारों का वहां उनकी आवाजाही रोक दी है। विदेशी मीडिया के लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के अलावा कहीं और जाने पर एक तरह से अंकुश लगा दिया कि जब तक पाकिस्तान की सेना से इजाजत नहीं लेंगे नहीं जाएंगे। अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान एक पुरानी ट्रिक आजमा रहा है, यानी अपनी करनी विद्रोह हो तो भारत पर इल्जाम मढ़ दो। देखिए कैसे एक पत्रकार ने, और ये पाकिस्तानी पत्रकार है, एक विदेशी नेटवर्क के लिए काम करता है, कैसे उसने पाकिस्तान को बेनकाब किया, जिससे ध्यान भटकाने के लिए राणा सनाउल्ला ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर देते, इसीलिए चुनाव कराना जरूरी था। देखिए,
5: दे विल टेल यू दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। शॉप्स एंड मार्केट्स आर कंप्लीटली क्लोज फॉर द लास्ट 3 days. As the protest has now spread to Muzaffarabad, the turnout at the polling stations is low. People are now admitting that most of the people are not casting their vote because they want to show their solidarity with the people of Rawalpindi who have been under siege, and many, of course, have been killed. Internet services throughout the valley are also disrupted. People are not able to use their internet. They're not able to reach out to their loved ones. And the area, of course, is at a standstill, as you can see.
0: तो पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश पाकिस्तान की ही पसंदीदा मीडिया की एक रिपोर्ट में कर दिया गया। ठीक यही बात भारत भी कह रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एडिशनल सेक्रेटरी रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में हुआ यह जो तथाकथित चुनाव है, यह मात्र छलावा है, दिखावा है। सच्चाई वहां के लोगों के प्रदर्शन और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हो रहे दमन से दुनिया के सामने वो तस्वीरें आ गई हैं। मानवाधिकार की आवाज उठाने वालों का जो जमीर है ना, वो फिर भी नहीं जागा है। भारत ने वो भी जगाने की कोशिश की, उसको झकझोरा और कहा, भाई आंखें खोलो, पाकिस्तान के मुठखोटे का सच तो देख लो, दुनिया के सामने जो पाखंड पाकिस्तान कर रहा है, जुबान खोलो और दुनिया के सामने उसे उजागर करो। सुनिए,
6: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: पाकिस्तान का दरअसल नाम तो पाखंडीस्तान ही होना चाहिए था। वैसे भारत की अगर बात करें तो भारत के गृहमंत्री से लेकर विदेश मंत्री पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को भारत में लाने का जो संकल्प है उसे बार बार दोहरा चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान कहते हैं कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर अलग है, दूसरे देश का मुद्दा है, वहां के लोग जाने। सोचिए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बेहद विवादास्पद बयान दिया है, एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा के, जब उन्होंने बार बार उनसे पूछा कि हो क्या रहा है, आप उस पर बताइए, जब हमने टोका उन्हें, वो अपने बयान पर अड़े रहे। पहले उनका बयान सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे उनके बयान पर देश में समय राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि भारतीय संसद 1993 में यह कह चुकी है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। सुनिए,
7: हमें इस सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है कि दैट इज अलग कंट्री, ये उस कंट्री का मामला है। हम यहाँ मुल्क के साथ यहाँ पर वाबस्ता है, हम अपने रियासत जो इस विभाग में रह रही है, इस कंट्री में रह रही है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर को सिर्फ याद दिलाने के लिए आए हैं, आप अपना वादा पूरा करो।
8: यूके से कोई मतलब नहीं,
7: हमें क्या उसके साथ, वो देखेगी वहाँ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मामला वो देखेगी, यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री वो देखेगी, हमें उसके साथ कोई लेना हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं।
8: आपको लगता सर कि पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वो हमारा है,
7: वो जो भी है वो उनका मसला है, आपको आगे ये क्वेश्चन करना है, आप ये उनको क्वेश्चन कर लीजिए। हमें अपने कंट्री से जिन्होंने हमें महरूम रखा स्टेटहुड से, हमें उनसे ये बात कर
8: रहे हैं, हमारे देश का हिस्सा
7: है, हम उनसे बात कर रहे हैं,
8: यूके भी तो हमारे देश का हिस्सा है।
7: मैं वही कहता हूँ, आप इस सवाल में आप उनसे बात कर लीजिए, हमारे साथ इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मुतालबात जो है हम वो बात कर रहे हैं, हमें पीओके के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उन्होंने हमें इस पार्लियामेंट में नहीं भेजा है कि आप हमारे मुद्दा जो है उसको रिप्रेजेंट करो, लिहाजा हम उनके लिए कोई बात नहीं कर।
9: सोचिए, सरहद के उस पार या एलओसी के उस पार भी तो कश्मीरी भाई ही हैं, मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की सेना उन पर दमन कर रही है, कह रहे हैं हमें क्या। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी मोहम्मद रमजान के इस बयान को देशद्रोह करार दिया है। सुनिए बीजेपी नेता सुरेंद्र रैना ने इस पर क्या कहा।
10: पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह जी ने जब 26 अक्टूबर 1947 को संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था, तो उसमें पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भी और गिलगित बल्टिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र भारत के साथ विलय किया गया था। संविधानिक तौर पर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली सारा का सारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान जी द्वारा जो बयान दिया गया है वो घोर निंदनीय बयान है, बहुत गलत बयान है। ये राष्ट्रद्रोह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर के वहां जो हालात खराब हुए हैं वो वहां की सरकार देखेगी।
9: तो बीजेपी नेता रविंद्र रैना का आपने ये बयान सुना, इसे देशद्रोह करार दे रहे हैं ये कहना कि पीओके की बात वहां के लोग जाने या वहां की सरकार जाने। इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
13: कुछ तो बात है इस दिल में।
14: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
15: सरसो
16: आगे आगे
15: करेक्ट करेक्ट
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: In association with
5: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

बारिश के बाद सड़कों पर हुए जानलेवा गड्ढों से बचकर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचना बड़ी चुनौती बन गया है। यहां तक कि जिस हाईवे पर चलने के लिए टोल देना पड़ता है उस पर भी लंबे चौड़े गड्ढों में गिरकर लोगों की जान जा रही है। सरकार के दावों और सड़कों की रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुंबई नासिक हाईवे पर पहुंची। ठाणे में ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। यहाँ दो दिनों में जानलेवा गड्ढों ने दो लोगों की जान ले ली। शाहपुर में इस गड्ढे में बाइक गिरने से एक TDRF जवान की मौत हो गई, जिसके बाद से शाहपुर के बामनी गांव में मातम पसरा है। TDRF के जवान विकास कुरे सोमवार सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। TDRF के जवान विकास कुरे के परिवार में उसकी पत्नी और 9 महीने की जुड़वा बेटियां हैं। ठेकेदारों ने भले ही सड़क पर वो गड्ढा भर दिया हो जहाँ विकास गोरे की मौत हुई थी, लेकिन सवाल है कि ऐसे गड्ढों पर तभी ध्यान क्यों जाता है जब किसी की जान चली जाती है। वहीं ठाणे के भिवंडी में भी एक गड्ढे की वजह से बाइक पर पीछे बैठी सुनीता नाम की महिला की मौत हो गई थी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए किरण रिजिजू और राहुल गांधी ने फोन पर की बात। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। रांची में हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल। आज ही वार्ता होने की संभावना। विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जाने पर अड़े राहुल गांधी। कहा, स्टूडेंट्स की आवाज उठाने से डरी सरकार। प्रशासन से राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं।

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया सर्वेक्षण, केंद्र की मदद का दिया आश्वासन, पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात।

0: मैं हूं गौरव सावंत। बड़ी खबर इस समय आ रही है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। सदन में गतिरोध खत्म करने के लिए यह बातचीत हुई है। इस पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि इंडिया ब्लॉक सहयोगियों से बात करके वो सरकार को अपना रुख बताएंगे, आगे की रणनीति या आगे क्या करेगी इंडिया गठबंधन वो बताएंगे। बातचीत का जो मुख्य मुद्दा था वो परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक रहा। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि परिसीमन का समर्थन मिलने से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने का रास्ता आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ तो महिला समाज में नाराजगी बढ़ सकती है। सुनिए।
1: अच्छा, मतलब कांग्रेस का नुकसान है और कांग्रेस के जो कुछ एक दो नए एमपीस आए हैं उसका ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो नुकसान किसका है? उनके एमपीस का है। जो इश्यू खत्म हो गया, अब देश आगे बढ़ रहा है और नारा लगाते रहते हैं हर दिन, एक ही विषय लेकर के नारा लगाते रहते हैं। छात्रों का मामला है, प्रधानमंत्री ने इतना क्रांतिकारी फैसला लिया, एग्जाम लीक्स को लेकर के इतना काम कर चुके हैं और ये लोग यहाँ एक इश्यू को लेकर के सुबह सुबह ड्रामा करता है और भगवान राम को अपमान करने का नाटक करते हैं, इस तरह का काम करते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं, तो ठीक बात नहीं है।
2: सर आप सर राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, बात किया आपकी बात समझ
1: नहीं बात कर रहे। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
2: सर अपोजिशन बिल्कुल रिजिड है कि गृहमंत्री आके स्टेटमेंट दे, चर्चा
1: देखिए, वो तो मैंने बता दिया। गृहमंत्री जी ने अपना जो बिल वगैरह भी यहाँ पेश किया और गृहमंत्री जी तो है ही पार्लियामेंट में, सुबह से शाम यही बैठते काम कर रहे हैं और यहाँ पार्लियामेंट में तो उस दिन वही रहेंगे ना मंत्री जिसका बिल है।
3: पर सर गृहमंत्री डेली आते हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि वो सदन में नहीं आते, जबकि हम डेली देखते हैं कि
1: सुबह आते हैं और देर रात तक पार्लियामेंट में बैठते हैं गृहमंत्री जी।
2: तो राज्यसभा चेयरमैन ने एक सलाह दिया है,
1: उसने सलाह नहीं दिया, वो अपोजिशन ने ऐसे कहा है, बताया।
2: थैंक यू सर।
0: तो विपक्ष चाहता है कि गृहमंत्री संसद में आए और संसद में वो बयान दे कि छात्रों पर जो पैलेट गन्स चलने का दावा किया जा रहा है या जो कुछ वहां हुआ, किसने उसका आदेश दिया, इस पर गृहमंत्री अपना पक्ष रखे। आज सभापति ने भी संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि आप जो विपक्ष का मत है वो गृहमंत्री तक ले जाएं। इसके बाद फिर बातचीत हुई है अब राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच। कैसे रास्ता निकलेगा ये बड़ा सवाल, क्योंकि गतिरोध झारखंड में भी है और बड़े तरीके से वहां भी छात्र इस समय जबरदस्त आंदोलित है। वहां पर भी पेपर लीक के मुद्दे पर वो हेमंत सोरेन सरकार से उत्तर चाहते हैं।
4: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
5: पेपर लीक की है सरकार, राष्ट्रीय आंदोलन।
6: ऐसे हॉल में नहीं बात करेंगे हम। हम आइए मेरे यहाँ टेंट में। हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
0: झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का जो रण है वो इस समय भी चल रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के मामले को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज 13 दिन हो गए और छात्र हड़ताल पर है। छात्र मांग ये कर रहे हैं कि जो 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है वो रद्द तो की ही जाए। आयोग के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भी सुधार किए जाए, मामले की जांच सीआईडी नहीं सीबीआई से कराई जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत के लिए अब 8 छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। 8 छात्रों का दल हेमंत सोरेन सरकार से बातचीत करने के लिए जाएगा। इसके अलावा एक वकील और 2 तकनीकी जानकार भी इसका भाग होंगे, यानी कुल मिलाकर 11 लोगों का एक दल होगा जो सरकार से बातचीत करेगा। वहीं हेमंत सोरेन सरकार बैठक का समय और स्थान तय कर छात्रों को बताएगी। अगर समय और जगह तय हो गई तो आज ही सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच बातचीत की संभावना है। छात्रों ने प्रतिनिधिमंडल की सूची जो है वो एसडीओ को सौंप दी। एसडीओ आपको याद है कल मिलने भी गए थे छात्रों से। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच आज 4 मंत्रियों का एक दल बनाया है। दूसरी तरफ छात्रों की मांग ये थी कि सीधे वो किसी मंत्री मंडल से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करें, हेमंत सोरेन छात्रों से बात करें और यह बातचीत मीडिया के सामने हो, अगर पूरा मीडिया नहीं तो मीडिया के 2 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाए। प्रदर्शनकारी छात्र सीबीआई की जांच पर अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सीआईडी जांच नहीं सीबीआई जांच चाहिए। उनका मानना यह है कि सीआईडी झारखंड सरकार के अधीन है और वो निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। आज से रांची में झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है। इस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार पाक साफ है तो सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है। इस बीच एक और खबर महाराष्ट्र से आई, जहां कांग्रेस जनता पार्टी का 2 दिनों का अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र में। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने झारखंड में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को अपना समर्थन मौखिक तौर पर तो दे ही दिया है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बारिश भी हो रही है और लगातार 13 दिनों से छात्रों का यह आंदोलन चल भी रहा है। प्रतिनिधिमंडल 8 सदस्य, क्या वो सरकार से बातचीत करने के लिए कहां जाएंगे यह तय हो पाया है?
7: शुरुआती दौर पर उन्होंने कहा था कि बंद कमरे में बातचीत नहीं होगी क्योंकि उसे पारदर्शिता की कमी होगी, लेकिन फिर छात्र ये भी समझते हैं कि अगर इस तरह खुले मंच में जिस मैदान में धरना चल रहा है यहां बुलाएं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो अब वो अंततः तैयार हैं, मुलाकात होगी, लेकिन उनकी पहली शर्त यह है कि वो मुख्यमंत्री से ही मिलना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री ने कल भी कहा था कि मैं न्योता देता हूं, आइए बात करें। उन्होंने 4 मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल बनाया है, तो क्या मुख्यमंत्री भी इस चर्चा में शामिल होंगे उस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन हां, ये बातचीत आज देर शाम भी कराई जा सकती है। जो एसडीओ जिनका आपने जिक्र किया, वही समय दोनों के बीच मध्यस्थता की भूमिका में हैं, तो वो बातचीत कर रहे हैं। समय विशेषज्ञों की भी एक टीम होगी और पहले दौर की बातचीत में जो सबसे प्रमुख मांगे, क्योंकि कल ही सरकार के भीतर इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो अभी जेपीएससी के नतीजे हैं उनको एक बार रद्द करके पुनर्विचार किया जा सकता है। तो सरकार में चर्चा तो सकारात्मक है, लेकिन उस पर अहम जो फैसला लेना है उसका आधार होगी सीआईडी की जांच। क्योंकि मान लीजिए सरकार अगर इस पर इस तरह परीक्षा रद्द कर देती है तो जिनकी भर्तियां या नियुक्तियां हुई हैं वो क्या करेंगे? वो भी अदालत जा सकते हैं, वो सड़क पर बैठ सकते हैं। तो सरकार को एक कानूनी ग्राउंड चाहिए इस परीक्षा को रद्द करने के लिए, जिसका आधार है 19 अब तक गिरफ्तारियां, यानी प्रथम दृष्टया लापरवाही मिली है। छात्र तैयार हैं, 8 लोग जाएंगे, कुल जो डेलीगेशन है 11 लोगों का होगा। जब वो बातचीत करेंगे तो चाहते हैं कि सीबीआई की मांग की जांच हो। यहां दरअसल इस मामले में अब ये बहुत मुश्किल लगता है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए माने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर केंद्रीय एजेंसी शामिल हुई तो फिर झारखंड में कहीं पूरी सरकार पर ही मुसीबत ना आ जाए।
0: ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और कुछ छात्रों की तो यहां तक मांग निकल कर आ रही है कि सीबीआई के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो प्रवर्तन निदेशालय की भी इसमें एंट्री होनी चाहिए। पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया, ये सब बड़े मुद्दे हैं। रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के हवाले से खबर आ रही है। अभिजीत दीप के जो सीजेपी के मुखिया हैं, उन्होंने झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दीप के ने कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर सरकारों का ध्यान होना चाहिए। अभिजीत दीप्य ने कहा है कि सीजेपी का एक दल झारखंड जा रहा है, वो झारखंड पहुंच रहा है। यहां तक वो और उनके दूसरे सहयोगी भी जल्द रांची पहुंचेंगे। अभिजीत दीपके का बड़ा बयान कि न केवल एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा सीजेपी का झारखंड, बल्कि दीपके खुद अपने सहयोगियों के साथ रांची पहुंचेंगे। और इसके साथ ही सीजेपी ने झारखंड में छात्रों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की सभी मांगे मान ले। सुनिए,
8: रूलिंग पार्टी तो रूलिंग पार्टी होती, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो। तो हमारा जो पूरा स्ट्रगल है वो इस देश के सिस्टम चेंज करने के लिए, फिर वो चाहे सेंटर में कोई बैठा हो, स्टेट में कोई बैठा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
9: तीन दिन पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था, अभिजीत भी उस समय कॉल पे था। वहां के छात्रों से बहुत डिटेल में, विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स है उनको बहुत डिटेल में समझा है। सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है। हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है, वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे।
0: आशुतोष मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस समय मौजूद भी हैं। आशुतोष, सीजेपी का समर्थन, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, क्या उससे इस छात्र आंदोलन को और शक्ति मिलेगी? ग्राउंड जीरो पर छात्र क्या कह रहे हैं?
7: दरअसल दोनों गौरव थोड़े से अलग है। देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन हो सकता है, युवाओं का ही मुद्दा हो, जनरेशन जी प्रोटेस्ट में है, वो बात अलग थी। यहाँ पर जो है वो एक राज्य का मामला है, इसीलिए आगे यहाँ के मंच पर एक चीज बहुत स्पष्ट लिखी है, किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, किसी तरह की राजनीति नहीं होगी, हम सिर्फ अपने मुद्दों की बात करेंगे। तो बहुत मुमकिन ये भी है कि अगर सीजेपी के बड़े नेता दीपके अगर ऐसे भी आते हैं तो उन्हें एक सामान्य प्रदर्शनकारियों की तरह आते हैं, समर्थन देकर के चले जाएं। आप ये जंतर मंतर नहीं बन सकता, ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारी वही पहचान बनी रहे। वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी लड़ाई, हम इसे लड़ेंगे, लेकिन चूंकि 10 दिनों तक हमने देखा कि बहुत कुछ सीमित था, ये सवाल उठ रहे थे कि क्या आप देश को इनकी परवाह नहीं है, और आप देखिए कि बीते 3 दिनों से पूरा देश अब इनके साथ जुड़ रहा, हर कोई इनकी आवाज को एम्पलीफाई कर रहा है। वही जनरेशन जी के जो युवा है वो यहाँ पर जो मांग के लिए उठे हैं। तो अब ऐसे में अभी जो हम जानकारी है कि नेहा जो है सबसे पहले वो यहाँ पहुंचेंगी, अभिजीत दीपके, सौरभ दास का अभी तक आना स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि मंडल सीजेपी का जरूर आएगा।
0: आप इस खबर पर नजर बनाए रखे ताजा जानकारी के लिए, फिर मैं लौटूंगा। वैसे छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी उठा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार यह कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो हेमंत सोरेन सरकार सीबीआई जांच से भाग क्यों रही है? सुनिए,
10: पिछले दिनों जो बहालियां हुई है, पिछले दिनों जो जेएससीसी से सीजीएल का जो रिजल्ट आया है, जिस समय से लड़के एग्जाम लिखे उस समय से लड़के लोग विरोध कर रहे हैं, आज भी लड़का सड़क पर है और उन लोगों के पास सबूत है। अगर आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है तो आप फिर जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप सीबीआई को ओवर कर दे जांच के लिए, आप अग्रसरित कर

0: जंतर मंतर की तरह रांची में भी झारखंड के नौजवान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। छात्रों की मांग यह है कि 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, उसे रद्द किया जाए। जेपीसीसी के साथ ही छात्र उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसमें धांधली के आरोप लगते रहे हैं, यानी कि छात्र पूरी परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से साफ उसमें सफाई चाहते हैं। क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट।
1: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
2: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
3: छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
4: जो आवाज अब तक दिल्ली में सुनी जा रही थी वो अब रांची से सुनाई दे रही है। हक की एक और लड़ाई तेजी से परवान चढ़ रही है। झारखंड के नौजवान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की अनोखी जंग लड़ रहे हैं। देश ने बड़े गौर से जंतर मंतर को देखा, देखा कि कैसे नौजवानों ने एक और आंदोलन की बुनियाद रखी, ये भी देखा कि कैसे युवा शक्ति के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया, देखा कि कैसे एक बेहद मजबूत शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। और अब दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक और जंतर मंतर का वजूद मजबूत होते देश देख रहा है। दो आंदोलन, दोनों का मकसद एक, फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में डटे छात्र साधन संपन्न थे तो रांची में जमे छात्रों के सामने संसाधन का संकट है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है।
3: अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले
1: हैं। लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
2: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
1: हम बता दें सर, आज आप लोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए पर हमारे मुख्यमंत्री अभी तक मिलने तक नहीं आए कि मिल लेते हैं छात्र। हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं ना, हम भी उनको नौकरी के नाम पे वोट दिए थे सर।
4: 13
0: छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं, बर्गर पिज्जा खाने वाले छात्र नहीं, मड़ुआ रोटी खाने वाले छात्र हैं। लड़ाई जारी रहेगी और इस खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है।
8: आपने फिर जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था?
7: हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं।
9: जो घटनाएं घटी, इससे पहले जो परीक्षाएं घटित हुई जिनमें स्पष्ट सामने आया था कि नेपाल में परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर उन्हें परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, ये मामले स्पष्ट रूप से प्रकाश में आए थे। और सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह है। अगर केंद्र सरकार आ जाती है तो प्रश्न चिन्ह होता है, अगर केंद्र ना रहे तो निष्पक्ष हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एजेंसियों पर तो प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन फिलहाल जो छात्रों की मांग है हमें लगता है, और सरदार पटेल भी कह के गए हैं कि लोकतंत्र में लोगों का एक बड़ा सा समूह जो अगर मांग करता है उस मांग पर चर्चा करनी चाहिए।
4: संसद में देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर कहते हैं, पीओजे के हमारा है, हम इसे लेकर रहेंगे। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि पीओजेके के सुपुर्द करते ही पाकिस्तान से सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जब तब चुनौती देते हुए पूछते रहते हैं कि पीओजेके पर हमारा कब्जा कब होगा। तो जिस सवाल पर पूरा देश एकजुट है, एक ही सुर और लय में बोलता है, उसी सवाल पर उमर अब्दुल्ला के एक सांसद कुछ ऐसा बोलते हैं कि किसी को भी बुरी तरह चुभ जाए। सुनिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रिजवान का यह बयान।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: सो सॉरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में हुई बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, आज ही वार्ता होने की संभावना, विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जाने पर अड़े राहुल गांधी, कहा स्टूडेंट्स की आवाज उठाने से डरी सरकार, प्रशासन से राहुल के प्रोग्राम की अनुमति नहीं। तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की सजा, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने अरुणाचल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया सर्वेक्षण, केंद्र की मदद का दिया आश्वासन, पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में शुरू होने जा रहे नए आंदोलन या अभियान को लेकर है, और ये बड़ी खबर आज ही आ रही है। सितंबर महीने से देश में एक बार फिर सीजेपी का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। सीजेपी के कन्वेनर अभिजीत दिपके ने कहा है कि क्या बोलती पब्लिक नाम से यह राष्ट्रव्यापी अभियान फिलहाल देश की शिक्षा व्यवस्था, संवैधानिक जिम्मेदारी और बेरोजगारी के तीन बड़े मुद्दे पर होगी। दो दिनों की बैठक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के कोर टीम मेंबर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीजेपी पहले से कहता रहा है कि वो राजनीतिक संगठन या दल नहीं बनेगा, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप बनाकर सरकार के ऊपर सही फैसले लेने का दबाव बनाता रहेगा। अभिजीत दिपके ने फिर साफ किया है कि भारत का संविधान ही सीजेपी की असली विचारधारा है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर का भारत ही उनका सपना है और सामाजिक न्याय उनका मकसद। सीजेपी न तो किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती है न ही विरोध, सिर्फ मुद्दे उठाना उनका मकसद होगा। अभिजीत दिपके की घोषणा के मुताबिक सीजेपी सितंबर महीने से क्या बोलती पब्लिक नाम से देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इसमें तीन बड़े मुद्दे सीजेपी उठाए गए, जिसे लेकर पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा। पहला मुद्दा शिक्षा सुधार का होगा, जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता देना, सार्वजनिक शिक्षा सुलभ और सस्ती करना, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मांग भी रखी गई है। दूसरा मुद्दा सांस्थानिक जवाबदेही यानी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का है, जिसमें राजनीतिक दलों की तोड़फोड़, चुनाव आयोग और न्यायपालिका की जवाबदेही के सवाल भी उठाए जाएंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का भी होगा, जिसके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया जाएगा, लोगों की बात समझी जाएगी, ये भी सीजेपी की तरफ से कहा गया है।
1: कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता है। इसके लिए हम जितने भी लोग हमारी मूवमेंट से जुड़े थे या आगे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी एनजीओज हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो काम करते हैं अलग अलग चीजों पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई इश्यूज हो, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। उन सभी का हम एक ब्रॉडर कोएलिशन बनाएंगे, क्योंकि अभी जो देश को जरूरत है वो जरूरत है सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से ऊपर उठकर एक साथ आने की और देश के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो इस सरकार पर प्रेशर डाल सके, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर डाल सके।
0: तो जंतर मंतर से सुलगाई चिंगारी अब बुझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सीजेपी ने जिस मकसद से आंदोलन किया था वो पूरा हुआ, मंत्री का इस्तीफा हुआ, बाकी कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब समझा जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया, तब आंदोलन के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। इसमें एक हलचल दिल्ली में राजनीति के गलियारे में हो रही है, जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर संसद में लॉक जाम बना हुआ है। दूसरी हलचल महाराष्ट्र में संभाजीनगर में है, जहां सीजेपी के कोर मेंबर्स की बैठक पर बैठक के बाद देशव्यापी आंदोलन का एक ताना-बाना बुना जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सियासत जंतर मंतर वाले प्रदर्शन पर ही ठहरी हुई है। राहुल गांधी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक गन पकड़कर बैठे हुए हैं। कभी संसद के बाहर शोर हो रहा है तो कभी संसद के अंदर हंगामा हो रहा है। कभी देश के अलग अलग राज्यों में जंतर मंतर से आए और 20 जुलाई की लाठीचार्ज के पीड़ित स्टूडेंट्स को लेकर राहुल गवाही दिलवा रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि गृह मंत्री से जवाब मांग सके। दोनों सदनों में सिर्फ यही शोर है कि गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे। लॉकडाउन को लेकर राहुल की किरण रिजिजू से मुलाकात भी हुई है, लेकिन बात वही ढाक के तीन पात। अब खड़गे ने कहा है कि सदन नहीं चलने के पीछे सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि अमित शाह सदन में आकर अपना बयान नहीं दे रहे।
2: इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये तो ये अरोगेंस ही बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते।
0: उधर सरकार है कि शोर शराबे हंगामे के बीच भी कामकाज चलाने की कोशिश कर रही है। एंटी पेपर लीक कानून तो बन ही चुका है, अब फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल और परिसीमन बिल जैसे विधेयकों पर सरकार मंथन करना चाहती है, लेकिन खबर है कि कांग्रेस ने परिसीमन बिल को सिरे से खारिज कर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिद्धार्थ यादव इस चर्चा में होंगे, निखत अब्बास कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस चर्चा में होंगी, आशुतोष और सत्य प्रकाश मिश्रा हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और अभी को कन्वीनर, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी कमेटी भी घोषित की है सौरभ, तो अभी आप को कन्वीनर बन चुके हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास भी चर्चा में होंगे। लेकिन जिस तरह सीजेपी ने सितंबर से क्या बोलती पब्लिक नाम का अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, तो हमने भी देश की कुछ चुनिंदा पब्लिक से सीजेपी को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। और 30 जुलाई को सी वोटर का यह सर्वे देश भर के करीब 1400 लोगों के ऊपर किया गया है। देश की जनता ने सीजेपी को लेकर अपनी क्या राय रखी है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं और फिर मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अब सीजेपी का एजेंडा भी सीजेपी की तरफ से देश के सामने रखा गया है। पहला सवाल ये पूछा गया था, शिक्षा सुधार के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी। मंत्री का इस्तीफा कहने वाले 27.2% लोग निकले। सख्त एंटी पेपर लीक कानून 31.7%। एनटीए में आमूलचूल बदलाव 11.9% और शिक्षा सुधार के लिए एक्सपर्ट पैनल 16.7%। अन्य सुधार 6.9% और पता नहीं कहने वाले भी 5.7% लोग थे। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से क्या आप संतुष्ट हैं? हां कहने वाले 33.2%, लेकिन नहीं कहने वाले 50.7% लोग कहते हैं कि वो उन कदमों से संतुष्ट नहीं है, यानी और भी उम्मीदें बाकी है। तीसरा सवाल, युवाओं में सबसे लोकप्रिय नेता फिलहाल कौन है? नरेंद्र मोदी 39.8%, राहुल गांधी 27.9% और नए एंट्रेंट्स है सीजेपी 12.6% लोग ने कहा कि युवाओं में सबसे लोकप्रिय सीजेपी भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी 29.8% से सबसे आगे है। चौथा सवाल, पेपर लीक पर संसद में क्या संतोषजनक चर्चा हुई? हां कहने वाले 35.6%, लेकिन नहीं कहने वाले 39.39% लोग कहते हैं कि नहीं, सदन के भीतर संतोषजनक चर्चा नहीं हुई। पता नहीं कहने वाले 25.3%। पांचवा सवाल यह था, प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमों पर सरकार को क्या करना चाहिए, सारे मुकदमे वापस किए जाए? हां कहने वाले 35.5%, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के मुकदमे वापस हो 23.3%, सबकी जांच करके ही फैसला हो 33.8%, पता नहीं कहने वाले 7.4%। अहम सवाल जिसको लेकर संसद के भीतर लॉक जैम बना हुआ है, प्रदर्शन में बर्बरता के आरोपों की जांच क्या होनी चाहिए? हां कहने वाले 62.7% लोग कहते हैं कि जो बर्बरता हुई आंदोलन के खिलाफ उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं कहने वाले 17.1%, पता नहीं कहने वाले 20.1%। सातवां सवाल, गाली गलौज आपत्तिजनक कंटेंट सोशल मीडिया पर डालने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हां कहने वाले 54.2% लोग कहते हैं कि हां ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कहने वाले 26.9% लोग। आठवां सवाल, सीजेपी आंदोलन को बढ़ते समर्थन का क्या कारण नजर आ रहा है? पेपर लीक पर गुस्सा 27.6% लोगों को लगता है कि पेपर लीक के गुस्से के वजह से सीजेपी को समर्थन मिल रहा था, लेकिन युवाओं में सत्ता विरोधी लहर 39.5% यानी करीब करीब 40% लोगों को लगता है कि युवाओं में सत्ता विरोधी लहर है। राजनीतिक दलों का समर्थन 16%, सोशल मीडिया ट्रेंड्स 7.7% और पता नहीं कहने वाले 9.3% लोग। नौवां और आखिरी सवाल, क्या दूसरे मुद्दों पर भी सीजेपी का समर्थन आप करेंगे? हां कहने वाले 49.5% लोग, नहीं कहने वाले 29.4% लोग। सबसे बड़ा सवाल, 50% लोग कहते हैं कि हां हम उनका समर्थन करेंगे, अन्य दूसरे मुद्दों पर भी हम समर्थन करेंगे, करीब 50% लोग ये कह रहे हैं। सौरभ, आज आपकी मीटिंग हुई है, आपने अपना एजेंडा भी रखा है, हमारा सर्वे भी आपने देख लिया है, 50% लोग इस सर्वे के मुताबिक, सी वोटर के सर्वे के मुताबिक कहते हैं कि आपको समर्थन मिलेगा, अन्य मुद्दों पर भी समर्थन मिलेगा, बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात इसमें नजर आती है कि युवाओं में सत्ताधारियों के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है, फिर वो सेंटर में हो या झारखंड में, जिस तरीके से हम आंदोलन देख रहे हैं, किस तरीके से आपका ये आंदोलन आगे बढ़ेगा?
3: साहिल, जो आपने सर्वे किया है उसके हिसाब से तो लगता है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको तो अलार्म बेल बज जाना चाहिए उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में, क्योंकि युवाओं के अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है बहुत चीजों के ऊपर। सिर्फ पेपर लीक नहीं, पेपर लीक तो हमने शुरू से बोला था साहिल कि वो बस एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई बढ़ चुकी है, संस्थान जो अब तमाम किस्म के संस्थाने हैं, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या मीडिया हो टू अ लार्ज एक्सटेंट, इन सब के ऊपर भी लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो हम लोग जैसे आज हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया, हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ वो एक हमारा बैटल था, लेकिन ये जो वॉर है इट इज अ वॉर अगेंस्ट अ करप्ट सिस्टम, जो सिस्टम लोगों के लिए काम नहीं करता, इसको हम लोग ग्रास रूट्स पे पहुंचाएंगे। हम लोग पूरे देश भर जाएंगे सितंबर से। हम लोगों ने उस कैंपेन को नाम भी दिया है हम लोगों ने उस कैंपेन का नाम भी दिया है क्या बोलता इंडिया, क्या बोलती पब्लिक, एग्जैक्टली। एंड साथ साथ हम लोगों ने और
0: मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है
3: कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसा, एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट जैसा जो मेन मुद्दा है उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जंतर मंतर में भी हम लोग जब थे साहिल, तब लोग आके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें बताते थे, तो उनको सुनने वाला कोई नहीं है, वो प्रॉब्लम है। तो क्या बोलती पब्लिक जो कैंपेन है, वो हम लोग चाहते हैं कि देश भर में जाए एंड लोगों से हम लोग वार्तालाप करें।
0: ठीक है, सिद्धार्थ यादव के पास जाने से पहले सौरभ, एक सवाल का जवाब आपसे यह भी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने यह भी कहा कि आप किसी भी दल के समर्थन में नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ भी नहीं है, सिर्फ मुद्दों पर आप बात उठाते रहेंगे, यह बात आपने उसमें रखने की कोशिश की है। क्या यह पॉलिटिकल आंदोलन मानकर हम चले, और अगर यह बात है कि किसी भी दल के समर्थन में नहीं, किसी भी दल के विरोध में नहीं, तो यह जो गुस्सा नजर आ रहा है वो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ है, भले वो बीजेपी की सरकार हो, कहीं कांग्रेस की सरकार हो या बाकी राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार हो, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, क्या ये आपका आकलन है इस पूरे
3: बात? बिल्कुल, जब हम लोग बोलते हैं रूलिंग पार्टी, जी बिल्कुल, जब हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, उसमें सारे पार्टीज, कोई भी पार्टीज के हो जो सरकार में बैठे हैं, जिनसे लोगों का गुस्सा है, उन सब के मुद्दे हम लोग उठाएंगे, उन सब पे हम लोग फोकस करेंगे। इट विल बी पॉलिटिकली एग्नोस्टिक, क्योंकि देखिए साहिल, जो हमारे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी आए थे एंड पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट किया था वहां पे आए थे लोग, सारे आइडियोलॉजीज के थे। तो हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो एक अम्ब्रेला मूवमेंट जैसा बने, जहां पे सारे लोग, सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लोग जुड़े, सारे इंक्लिनेशंस के लोग जुड़े, डिफरेंट विचारधारा के लोग जुड़े, क्योंकि सब लोग अफेक्टेड है इस टाइम पे। तो डेफिनेटली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, हम लोग सब जगह जाएंगे इंडिया में एंड जो युवाओं के मुद्दे है उस पे फोकस करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। एंड जो भी सत्ता में बैठा है, जो भी पावर में है एंड जो भी पावर चाहता भी है, उनसे हम लोग जवाबदेही मांगेंगे।
0: प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश रहेगी सिद्धार्थ यादव, और कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि युवा कहते हैं कि हाँ, अगर प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। ये सर्वे में साफ नजर आता है कि 50% लोग कहते हैं कि हाँ, अगर नए मुद्दे उठाएंगे, अलग मुद्दे उठाएंगे, तो हम सीजेपी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। क्या ये चुनौती है, क्योंकि पहली बार इस तरीके से देखा गया है, और सिर्फ आपकी सरकार के खिलाफ नहीं, तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन को जाके बातचीत करनी पड़ रही है, कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है।
4: मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो साहिल जी, मैं काफी देर से प्रयास कर रहा था कि जो सी वोटर का ये सर्वे जिसका उल्लेख आप अपने चैनल पर कर रहे हैं, मैं इसका सैंपल साइज चेक कर पाऊं, पर वो मेरे को मिला नहीं। सी वोटर की वेबसाइट पर एक सैंपल साइज जो मेंशनड है उनके लेटेस्ट सर्वे का,
0: हमने सैंपल साइज बताया है सिद्धार्थ जी, हमने सैंपल साइज सर्वे के पहले ही बताया हुआ है, सर्वे के पहले हमने सैंपल साइज बताया, मैंने घोषणा की है उसकी।
4: कितना सैंपल साइज है साहिल जी? साहिल जी कितना कितना सैंपल साइज है? 1500 के करीब। हाँ, वो मैं, मेरे से 150 लोग कम गिने गए। वो 1324 मुझे दिख रहा था, 1500 के करीब, 1324 ही है अभी लगभग आपके आपके हाँ आपके शो को लगता अभी लगभग YouTube पर 2 लाख लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो युवा देख रहा है वो तो आपके कमेंट्स में जाकर के YouTube पर ही ज्यादा उनका एक ओपिनियन और फेयर ओपिनियन आ सकता है, पर फिर भी मैं डेटा पर नहीं जाता। मेरे को आज जो विषय का सब्सटेंस है ना उस पर 2 बात कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं हर उस व्यक्ति को जो देश में प्रयास करके मेहनत करके युवाओं के पास जाए और युवाओं के पास जाकर के उनकी समस्या है तो समस्या को सुने, कोई समाधान उनको लगता है तो समाधान बताएं, बहुत अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए। पर एक मुश्त होकर के बिना किसी बायस के, बिना किसी राजनीतिक इंटेंशन के, बिना किसी हिडन एजेंडा के ऐसे जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अभी महाराष्ट्र में एक मीटिंग कंक्लूड हुई, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से भी सुना साहिल जी, जो सौरभ जी यहां बैठे हैं उन्होंने करी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रांची में भी होनी चाहिए थी जहां पर छात्र इतने लंबे समय से बैठा हुआ है, इतनी मांगों को मांग रहा है, सब लीडरशिप का इंतजार भी कर रहा है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली और रांची में काफी चीजों का फर्क है। हो सकता है कि डोमिनोज पिज्जा मेन्यू पर नहीं है, सूखे चावल मेन्यू पर है, दिनकर की कविता मेन्यू पर है, वहां पर शायद गालियां नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास कारण भी कुछ और हो, व्यस्तता भी हो, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मेरा कहना यह है छात्र देश का किसी भी हिस्से का हो वो छात्र है। अगर छात्र और युवाओं की बात हो रही है और मन में ईमानदारी के साथ उस बात को रखा जा रहा है तो वो ईमानदारी हमारे काम में झलकनी चाहिए। अगर वो झलकेगी नहीं तो छात्र छला हुआ महसूस करेगा। और याद रखिएगा साहिल जी, अगर छात्र छला हुआ महसूस करेगा, युवा छला हुआ महसूस करेगा तो कांच का जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है, वो एक ही बार चढ़ती है। आप उसको एक बार जाएंगे और फिर उस हिपोक्रेसी दिखाने लग जाएंगे, या अगर आप उसके वास्तव मुद्दों पर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि उसके मन में भी युवाओं के मन में आए। पर मैं फिर भी कहता हूं ये देशव्यापी आंदोलन कोई भी करे, अभी जो आपने आपके पैनल पर बैठे हुए हैं वो लोग आग्रह कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं देश का हर युवा करे। और जब वो जाकर के करेंगे तो उनको सब IITs में जाना चाहिए, और थोड़ा सा कठिनाई उनको होगी क्योंकि 2014 से पहले 16 IITs थे, उनको 16 ही जगह जाना पड़ता, अब उनको 23 जगह जाना पड़ेगा। पहले 13 ही IIMs थे, अब उनको 21 जगहों पर जाना पड़ेगा। पहले 9 ही IIITs थे, अब उनको 25 जगहों पर जाना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत भी लगेगी, पर वास्तव के अंदर मैं साहिल जी अगर आप मुझे 10 सेकंड दें तो मैं अपना एक मत इस पर आपके शो पर आपके दर्शकों को ले बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर हमारे संविधान निर्माता जब देश के संविधान में जितने देश की सरकार के द्वारा करे जाने वाले काम थे उसमें एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में डाल करके गए थे। 42nd अमेंडमेंट में पहली बार स्टेट लिस्ट से निकाल करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया कि यह सेंटर और स्टेट दोनों का काम है। दोनों जगह सरकारें चुनी जाती हैं, दोनों जगह नेताओं को चुना जाता है, दोनों जगहों पे रादर स्कूलों के अंदर जो स्टेट के पास जितने देश में स्कूल्स हैं वो सेंटर के पास नहीं है। सेंटर तो पीएम श्री स्कूल चला रहा है, केंद्रीय विद्यालय चला रहा है, पर जो राजकीय महाविद्यालय जो राज्यों के चल रहे हैं उनकी दिशा पर भी किसी को बात करनी चाहिए। और जब आप राज्यों की बात करेंगे तो आपको तमिलनाडु की भी बात करनी पड़ेगी, आपको पंजाब की भी बात करनी पड़ेगी, आपको झारखंड की भी बात करनी पड़ेगी।
5: सिद्धार्थ यादव,
4: आपको राजनीतिक,
5: आपको याद होगा कि बंगाल में जीत के बाद आपके तरफ से दावा किया गया था कि 72% आबादी पर आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का राज है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही है, ये भी आपके तरफ से दावा किया गया। और आपने 1359 लोगों के साथ में जो सर्वे किया हुआ है उस पर उसी में नरेंद्र मोदी अभी भी 40% से युवाओं के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, मतलब उनकी उनका रेटिंग अभी भी सबसे ज्यादा है, तो उसको भी नहीं ठुकराना चाहिए। अगर आप सर्वे को रखना चाहते हैं तो देखिए 39.8% लोग अभी भी प्रधानमंत्री मोदी को ही सबसे बड़ा नेता मानते हैं,
4: आज भी सबसे लोकप्रिय नेता मानता है। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर कोई देश का युवा, देश का जनजन, देश का हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को सबसे लोकप्रिय मानता है, ये डिमेरिट नहीं है। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर 72% पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो हम 28% को देखेंगे ही नहीं। अरे झारखंड का छात्र साहिल जी छात्र नहीं है क्या? वो बारिश में बैठा सूखा चावल खा रहा है।
5: आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी की देखिए, उसका जवाब हालांकि सौरभ दास देंगे लेकिन उन्होंने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा। बात यहां पर सरकार के चरित्र की है, फिर वो सरकार किसी की भी हो, और सरकार का रवैया किसी भी आंदोलन को लेकर जो होता है उसकी भी बात वहां पर होती है। ये तेरा आंदोलन, ये मेरा आंदोलन, इस तरीके से बातचीत अब नहीं होगी, यही कहने की कोशिश है। मुद्दों पर बात करिए, सरकार किसी की भी हो, आज की स्थिति में भी किसी सारे विद्यार्थी की क्या गलती थी? पेपर लीक रोकने को लेकर सरकार कदम उठा रही है, वो 50% लोग कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। और मैं इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि झारखंड में भी लोग ये कह रहे हो कि हम संतुष्ट नहीं है हेमंत सोरेन जिस तरीके से वहां पर कदम उठा रहे हैं। वहां भी 10 दिन के बाद छात्र वहां जाकर ये कह रहे हैं कि हमसे मुख्यमंत्री मिलने के लिए क्यों नहीं आए, और वही बात जंतर मंतर पर भी कही जा रही थी, क्यों नहीं सरकार का प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने के लिए आया। तो दोनों जगह पर जो सत्ता में बैठा हुआ है उस पर सवाल उठ रहा है यहां पर। सौरभ दास आप पहले इसका जवाब दे दीजिएगा जो सवाल सिद्धार्थ यादव यहां पर उठा रहे हैं। आईआईटीज में भी जाइए और बाकी चीजें भी देख लीजिएगा, उसका पहले जवाब दीजिए फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं।
3: देखिए साहिल जी, जो जो बीजेपी के सज्जन बैठे हुए उनसे तो मैं वो ना बोले हमें कि हमें कितना दिक्कत होगा कहां जाने के लिए। हम लोग जब जंतर मंतर पे बैठे थे 35 दिन से बैठे थे, 2 किलोमीटर दूर था सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स है वो तो चल के नहीं आए कभी भी प्रदर्शनकारियों के बीच में, 2 किलोमीटर चलना था सिर्फ उनको। तो हम लोग तो बोल रहे हम लोग 2 महीने ओल्ड मूवमेंट है, 2 महीने पहले हमारा गठन हुआ है, हम लोग चाहते हैं हम देश भर जाए। तो हमारा एम्बिशन आप देखें, हमें मत बताइए कि हमें कहां दिक्कत होगा जाने का, कितने जगह जाने का। दूसरी बात, आप सैंपल साइज पे बात कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रोड पे उतर आए क्या? मतलब कि हमारे जंतर मंतर में लाखों की संख्या में लोग आए थे, तब भी आप लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग है, कुछ लोग नाराज है वगैरह वगैरह, लेकिन तब भी सरकार को मानना पड़ा। तो आप नंबर के चीजों पे मत जाइए, 1500 लोग अगर कुछ बोल रहे हैं किसी सर्वे में तो सरकार का यही रवैया सही नहीं है। इसी वजह से आज भी ये जो सर्वे है उसमें पता चल रहा है कि लोग 50% लोग सपोर्ट करेंगे अगर हम कोई मुद्दा उठाए। और तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इनके रवैया से लोग खुश नहीं है, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर युवा कुछ बोल रहा है, अगर युवा कुछ डिमांड्स रख रहा है तो उसको सुनना चाहिए, ये नहीं कि पुलिस भेज के उनका सर फोड़े, उनको अंधा बना दे, पैलेट गन चलाए। तो डेफिनेटली मुझे लगता है झारखंड में भी जो बच्चे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो कॉल के माध्यम से अभिजीत ने और आशुतोष ने उनसे बात भी की, हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी जाएंगे झारखंड। तो डेफिनेटली हमारे ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस है। हमें अच्छा लगा कि बीजेपी वाले जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना चाहिए झारखंड। एक्सपेक्टेशंस पूरे देश का है सीजेपी के तरफ, तो हम लोग उसको निभाएंगे।
5: ठीक है, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए।
4: साहिल जी देखिए, साहिल जी मैं तो कहूंगा, बाकी किसी का तो पता नहीं पर व्यक्तिगत मेरा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर युवा ने, चाहे 5 युवाओं ने भी आप पे भरोसा किया, उस भरोसे की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। अब उन 5 में से 4 युवा ये कहने लग जाएं कि आप तो हिपोक्रिट थे, आप दिल्ली में कुछ और बात करते थे पर आप झारखंड में नहीं कहते और आप पंजाब में नहीं कहते, झारखंड में आप मुंह मोड़ के नहीं देख रहे जहां से 15 दिन बैठे हैं, तो उन 5 में से 4 छात्रों के मन में बुरा लग रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और कृपया नंबर पे मत जाइएगा, नंबर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, 5 भी छात्र बहुत बड़ी बात है। जैसे 3000 का सर्वे, 1500 का सर्वे बहुत बड़ा है, उसमें से 50% लोग, मतलब 750 लोगों ने बता दिया कि आपकी आप सभी अपेक्षाओं को पूरा, नंबर पे मैं नंबर पे डिस्प्यूट नहीं कर रहा, पर मैं कहता हूं किसी को भी, साहिल जी जब जिम्मेदारी कंधे पर आपके आ गई है तो हिपोक्रेसी को पीछे छोड़कर के आना पड़ेगा, उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। और मैं सौरभ जी को तो व्यक्तिगत कह सकता हूं, मैं 10 साल खुद छात्र नेता रहा हूं, 20 दिन मैं इनके पुराने बॉस जो थे अरविंद केजरीवाल उनके घर के बाहर धरने पे बैठा सोता रहा, कोई मिलने नहीं आया। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, कोई मिलने नहीं आया। दिल्ली का एक कॉलेज था गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज, वो बंद कर दिया था, गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा, उसके खिलाफ हम धरने पर बैठे रहे। ये तो काम होता है, हम युवा हैं, हम छात्र हैं, हमारा आंदोलन काम है, आवाज उठाना हमारा काम है, उस आवाज को सामने रखना हमारा काम है, उस आवाज के साथ लोग जुड़ते हैं उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना भी हमारा काम है। झारखंड पे मुंह मोड़ लेंगे और दिल्ली में कुछ और कहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संभाजीनगर जाएंगे, पंजाब पर नहीं कहेंगे, ये हिपोक्रेसी भी युवा देख रहा है। आप सर्वे से खुश है, मैं तो विनम्रता से कहता हूं बिल्कुल खुश रहना चाहिए, पर आगे आने आने समय में कांच की हांडी बार बार नहीं बढ़ती, इतना ही मेरी सलाह है। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे साहिल जी आप भी इनको सलाह दीजिए, जैसा अच्छा
5: क्यों आपको हिपोक्रेसी नजर आती है, क्या आपको लगता है कि एक आंदोलन सफल होने के बाद हर जगह जाके उन्हें आंदोलन करना चाहिए, यही आपको लगता है, यानी उम्मीद है उनके साथ में, यही बात है ना
4: साहिल जी? क्यों नहीं आएगी?
5: मैंने सहकारिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारिता वो भी
4: सुन लीजिए, बता देता हूं क्यों।
5: सिद्धार्थ जी एक मिनट, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। जिस दिन हम संभाजीनगर में थे उसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकार्यवाह अतुल लिमय भी वहां पर थे और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी छात्रों के मुद्दे उठाने चाहिए। आपको भी सजग होना चाहिए कि कैसे सीजेपी के आंदोलन को इतनी सफलता मिली। एबीवीपी को उन्होंने कहा कि आप भी जरा उतरिए सड़क पर, और उसके बाद पंजाब में हम देख रहे हैं कि एबीवीपी के एक्टिविस्ट एक्टिव हो गए वहां पर, तो वो तो सीख ले रहे हैं ना। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तब थोड़ी देर में मोहन भागवत बात करने वाले हैं जेन जी के साथ में।
4: मैं छोटा सा ही उत्तर दे रहा हूं आपको, बिल्कुल छोटा। देखिए उस बात को तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जो आप अतुल लिम्बे जी के लिए कह रहे हैं, पर आपने मेरे से पूछा आपको हिपोक्रेसी क्यों लग रही है। झारखंड में बैठे हुए एक छात्र से मेरी फोन पर बात हुई साहिल जी, और उसने मुझे कहा कि हम लोगों ने वीडियो कॉल करी है, ये नए नए सीजेपी वाले आए हैं, इनको भी रिक्वेस्ट किया है भैया कि ये लोग भी हमारे पास आए, पर पता नहीं कोई आता नहीं, शायद हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद हमारे पास यहां पर अच्छा खाना महंगा खाना नहीं मिल रहा शायद इसलिए कोई नहीं आ रहा, शायद मीडिया की गाड़ी हम तक नहीं पहुंच रही। 15 दिन साहिल जी वो बच्चे भी बैठे हुए हैं धूप में बारिश में, वो भी अपनी मांगों को मांग रहे हैं। एक दिल्ली के आंदोलन के तुरंत बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ और मुंह मोड़ लेना और पीछे चले जाना,
5: सरकार ने गलती की, हिपोक्रेसी मत करिए।
4: अपने आपको नहीं रोक
5: उन्हें वहां पर फंडिंग मिल रहा था इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, महंगा खाना मिल रहा था इसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हुए थे, तो सरकार ने बातचीत करके गलती तो नहीं कर दी कहीं पर कि ऐसे तो लोगों के साथ बातचीत की सरकार ने कि जिनको महंगा खाना और फंडिंग के वजह से वहां पर आंदोलन के लिए बैठे थे, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए सौरभ, उसके बाद आपको जवाब देना है कि आपको अभी हर जगह जाना पड़ेगा वरना हिपोक्रेसी का आरोप लगेगा। अन्ना हजारे पर भी यही आरोप लगता आया है बाद में कि तब कहां थे यहां कहां थे और इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया सिद्धार्थ पहले, उसके बाद सौरभ।
4: ओहो साहिल, साहिल जी मेरे को तो जो एक छात्र ने बोला मैंने वो आपको बता दिया, अब उस छात्र को भी आप दोषी ठहरा दीजिए, बता दीजिए कि उस छात्र ने भी गलत किया अगर, और आपका कैमरा भी जाकर के बता सकता है कहां डोमिनोज के पिज्जा थे कहां सूखा चावल है। मैं कहता हूं मैं सब गलत हूं, सरकार भी गलत है साहिल जी, वो 15 दिन से बैठे हुए बच्चे उनका दर्द दर्द क्यों नहीं है मुझे ये जवाब दे दीजिए। आपके शो पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, उन बच्चों का दर्द दर्द नहीं है क्यों,
5: उनका भी दर्द है,
4: ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरा प्रणाम है।
5: सौरभ जवाब दीजिए, डोमिनोज का पिज्जा आपको रांची में शायद नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ यादव
3: मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि छात्रों का दर्द वगैरह पे ये बात कर रहे हैं, जब उन्होंने 20 तारीख को इतना बर्बरता से उनको मारा उसका क्या, एंड पार्लियामेंट में इतना डिमांड हो रहा है कि अमित शाह जी आए एंड जवाब दे वो 20 जुलाई को जो हुआ छात्रों के साथ उसका क्या। तो हिपोक्रेसी की तो वो बात ना करें, व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किन स्टूडेंट्स से, क्या वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे जिनसे उन्होंने बात किया एंड फिर वो आके नेशनल मीडिया पे ये सब बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ बोल दे कि मेरी व्यक्तिगत तौर से जेपी नड्डा जी से बात हुई थी कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सही काम नहीं कर रहे, उन्होंने गलत बोल दिया छात्रों के बारे में, तो ये सब चीजों पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए आपकी सरकार ने गलती की, स्टूडेंट्स पे बर्बरता की, उसके लिए आप माफी मांगिए, साथ साथ जो हमारे डिमांड्स थे वो अभी तक सारे पूरे नहीं हुए हैं, जो हम लोगों ने डिमांड चार्टर दिया था उस पे क्या हुआ उसका हमें ब्यौरा दीजिए। हमने बोला था कि बहुत सारे जो दूसरे पॉलिसी रिलेटेड डिमांड्स थे उस पे क्या हुआ उस पे भी आप जवाब दीजिए। तो मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पे फोकस करना चाहिए, हमें अच्छा लग रहा है कि आपके भी कुछ एस्पिरेशंस है हमारे तरफ, एक्सपेक्टेशंस है, हम लोग जहां जहां जा सकते हैं हम सब जगह जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे, वेस्ट बंगाल भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, एंड ऐसा ही होना चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की बात आगे बढ़नी चाहिए, युवाओं की बात आगे बढ़नी चाहिए, एंड आपको सुनना चाहिए, आप सुने नहीं इसलिए ऐसा सर्वे आ रहा है, आगे जाके बड़ा सैंपल साइज आएगा तो उससे भी खराब।
5: मैंने जैसे जिक्र किया अन्ना हजारे पर भी कई बार बाद में सवाल उठते रहे कि इन मुद्दों पर अन्ना हजारे कहाँ हैं, और आखिरकार जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ तब वो अहिल्या नगर में महाराष्ट्र में आंदोलन के लिए बैठे हुए थे। सिद्धार्थ यादव जल्दी से, उसके बाद निखत अब्बास।
4: साहिल जी केवल 5 सेकंड दीजिएगा, मैं साहिल जी मैं बार बार 2-3 बार सौरभ जी के मुंह से सुना कि हम जब जा पाएंगे तब हम झारखंड जरूर जाएंगे। मुझे लगता है 2 दिन की मीटिंग हुई है, कुछ तो तय हुआ होगा, वहां भी छात्र बैठे हैं। मेरी व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, संभाजीनगर की टिकट सस्ती थी, झारखंड की महंगी लग रही है, मैं व्यक्तिगत अपनी जेब से उनको टिकट भी मुहैया कराता हूं। आज आपके शो पर बता दें कि उस बेचारे छात्रों से
5: फंडिंग मिल जाएगा आपको,
4: इतना बता दें, मेरी व्यक्तिगत रुचि है,
5: फंडिंग मिल जाएगा।
4: हां मैं फंडिंग मैं करता हूं फंडिंग साहिल जी, मेरी फंडिंग है,
3: फंडिंग
4: के लिए फंडिंग
3: फंडिंग पे ज्यादा रुचि उनको होगी, हमें फंडिंग पे कोई रुचि नहीं है। हमारा तो सारा जो गुडविल से चला है, लोगों के प्यार से चला है, हम लोगों ने पूरे देश में
4: आगे
3: भी करते रहेंगे, ऑलरेडी ऐलान किया कि सब जगह जाएंगे,
4: झारखंड
3: भी जाएंगे, आप हमारे साथ चलिएगा झारखंड, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका
6: उनके भी कब जाएंगे झारखंड,
3: जैसे आपने सही बोला
6: मैं कह रहा हूँ
3: एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट पे है,
6: कंकरेंट लिस्ट पे है,
3: तो उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, आप सुनिएगा जरूर। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सरकार में बैठे हुए 80% पॉपुलेशन पे उनका राज है, वो हम लोगों से दो महीने ओल्ड अपडेट बता दीजिए, सारी चीजें
6: मेरी रुचि है,
3: बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस है
6: सौरभ जी मेरी,
3: हम लोग तो पूरा पब्लिक ने डिक्लेयर
5: कर दिया, कुछ कहना चाह रहे
6: हैं झारखंड में छात्र बैठा है, लोगों
3: ने आज जो बोला
6: वो नहीं बता रहे हैं वो,
5: ठीक है आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने उंगली उठाई थी आशुतोष जी,
6: दो दिन की मीटिंग के बाद कोई डेट तय हुई
5: होगी
6: उनको पूछना चाहिए था।
7: साहिल
5: बोलिए,
3: देखिए मैं यही बोलूंगा कि मैं ये पूरी अमित शाह जी भी बता दे जब वो पार्लियामेंट आएंगे एंड बर्बरता पे जवाब देंगे।
7: साहिल मैं ये पूरी बातचीत तो सुन रहा था,
3: पूरा देश का युवा जानना चाह रहा है कि अमित शाह जी बर्बरता पे कब जवाब देंगे वो बता दे।
6: आपकी रांची के
5: दोनों अपने अपने डेट
3: मिनिस्टर है उनका तो दायित्व बनता है पार्लियामेंट में आना
6: जाइएगा और वहां देख लीजिएगा, पर रांची भी जाइएगा और देख लीजिएगा,
5: ठीक है।
6: अरे मैं कह रहा हूँ आपका पार्लियामेंट का पास भी रांची की टिकट के साथ लेता हूँ, वहां जाना वहां देख लेना, पर रांची भी तो जाओ, एक बोल तो दो मुझसे।
7: साहिल ये जो एरोगेंस है ना भारतीय जनता पार्टी का जो उनके प्रवक्ता के माध्यम से बाहर आता है, ये यूं ही नहीं है। मेरा तो ये प्रश्न है, क्या नितिन नवीन गए झारखंड, क्या नितिन नवीन पंजाब जा रहे हैं, क्या नितिन नवीन हरियाणा गए, क्या नितिन नवीन संभाजीनगर गए, क्या वो जंतर मंतर गए, यानी इन लोगों ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है, संघ परिवार के बस का नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के बस का है युवाओं के गुस्से को शांत करना। और क्यों ये बात कह रहे हैं, अभी अतुल्यमय कौन है, अतुल्यमय आरएसएस में नंबर 3 के नेता, वो कहते हैं छात्रों का जो आंदोलन है ये एंटी नेशनल है। टीजे मोहनदास आरएसएस का आइडियोलॉग है, वो क्या कहते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो 4 किलोमीटर वर्ग में कर्फ्यू लगवा देता, उसके बाद 3 बार वार्निंग देता, फिर गोली चलवाता,
6: गोली चलवा के वहां पे
7: लोगों की लाशें गिरती। ये है मोहन, ये है आरएसएस के, आरएसएस का माइंडसेट, यह है भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट, इससे आप इनसे उम्मीद मत करिए।
6: साहिल जी ने कुछ और बोला कि अतुल जी ने क्या बोला, आपने कुछ और बोल दिया।
7: इन बच्चों ने और युवाओं ने
5: नहीं नहीं वो दोनों साथ में
7: चेहरे पर प्रधानमंत्री के चेहरे की जो आभा थी उसको नोच दिया है और ये बता दिया है कि आपको युवा ही
6: बोली,
7: युवा 2014 में लेके आए थे, अब युवा आपके साथ नहीं क्योंकि आपने उनके साथ धोखा किया, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के
5: लेकिन आशुतोष सवाल तो ये भी उठ रहा है ना,
7: सौरभ के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं ये बिल्कुल,
5: देखिए लोगों की राय बड़ी साफ नजर आती है आशुतोष, बड़ी दिलचस्प बात है इसमें। देखिए सर्वे को आप कोई भी नकार सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्वे को मानकर कोई भी चले, लेकिन लोग समझदार नजर आते हैं, लोगों को लगता है कि जो गाली गलौज जिन्होंने की उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR अगर आपको हटाने हैं तो पूरी जांच करके भी आप FIR हटाइए, और जो छात्र आंदोलनकारी थे उन पर हटा दीजिएगा, लेकिन बाकी लोगों पर जांच करके हटाइए, बर्बरता देखी गई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सदन के भीतर जो चर्चा की उम्मीद उन्हें थी वो सदन के भीतर चर्चा नहीं हो पाई है, यानी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर भी जा रही है, जो सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, जो अपेक्षा उन्हें थी वो पूरी नहीं हो रही है, ये भी कहा जा रहा है उसमें।
7: ये जो गुस्सा है ये पॉलिटिकल क्लास के एरोगेंस के खिलाफ गुस्सा है, जो पॉलिटिकल क्लास एरोगेंस अहंकार दंभ ईगो जो आ जाती ना उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। आप देखिए जो सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा है वो कौन सा है कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार के उठाए कदमों से संतुष्ट है, सरकार का दावा है कि उसने एक कमेटी बना दी है, सरकार का दावा है उसने संसद के अंदर एक बड़ा कानून बना दिया है, क्या ये कदम उचित है, क्या ये कदम अपने आप में पूर्ण है? 50% लोग कह रहे हैं कि ये पूर्ण नहीं है, ये ठीक नहीं है। दो इसका मतलब क्या है, छात्रों के अंदर ये गुस्सा है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है, बजाय ओवरहॉल करने के अगर बीजेपी के प्रवक्ता एरोगेंस से बात करेंगे, सौरभ दास को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अभिजीत दिपके को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, फंडिंग की बात करेंगे, जोमेटो की बात करेंगे, तो इन लोगों का नुकसान होगा, ये अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, ये युवाओं का नुकसान नहीं कर रहे।
5: सिद्धार्थ, इसका आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले जरा निखत अब्बास आपसे भी पूछना है इस बात को लेकर, क्योंकि सर्वे बड़ा साफ कहता है, जिसका जिक्र भी मैंने किया, कि सदन के भीतर जो चर्चा हुई उससे लोग संतुष्ट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो गुस्सा नजर आ रहा है वो गुस्सा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। सीजेपी अगर अगला आंदोलन करेगी तो 50% लोग कहते हैं उसको समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सर्वे नहीं है ये, कांग्रेस पार्टी के लिए। और जिन नेताओं के नाम आशुतोष ले रहे थे उसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है कि वो वहां पर थे कि
8: नहीं। साहिल जी, सबसे पहले तो साहिल जी, सबसे पहले तो आपको मेरे को प्रदर्शन होगा क्या? सबसे पहले तो साहिल जी, आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, बड़े इत्तेफाक की बात है, एंड दिस इज दी आयरनी, कि देश के सदन से, पार्लियामेंट से, देश के प्रधानमंत्री विश्वगुरु मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी गायब चल रहे हैं और सदन ना चलने का आरोप विपक्ष पे लग रहा है। मतलब ये तो हर बार का खेला हो गया, इसको अब हमें बंद करना चाहिए। और आपने कहा पोलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, मैं कहूंगी पोलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। ये क्या है ना साहिल भाई, कि ये जो युवा है ये फैन क्लब नहीं चला रहे हैं अमृतकाल का, ये पोर्टल को रिफ्रेश कर रहा है, और जब पोर्टल को रिफ्रेश करता है तो सवाल वो है जो डेटा के साथ सामने आते हैं। सिद्धार्थ यादव जवाब दें कि ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 22,000 से ज्यादा पद खाली हैं, 5,000 से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं, आईआईटी आईएम्स की बात हो रही थी, एनआईटी की बात हो रही थी, ये वही आईआईटी आईएम्स और एनआईटीज हैं जहां पर आज भी 56% से ज्यादा प्रोफेसर के पद खाली हैं। मोदी सरकार के अंतर्गत पिछले 10 सालों से 94,000 स्कूल बंद हो गए, हर दिन 25 स्कूल बंद करते। सिद्धार्थ यादव, उस पर जवाब दे, आज तक की भी रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगी सिद्धार्थ जी को अलग से। उसके अलावा 1,00,000 से ज्यादा स्कूल है जो मोदी जी ने मजबूर कर दिए कि एक स्कूल पर सिर्फ एक टीचर रहेगी, 150 से 200 स्टूडेंट्स पर सिर्फ एक टीचर। मतलब कौन सा अमृतकाल चल रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ाई चल रही है। मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस में मैं याद दिला दूं सिद्धार्थ यादव को और भारतीय जनता पार्टी को, 54% से ज्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है। मतलब
5: कंकरेंट लिस्ट है निखत, अभी सौरभ बता रहे थे, कंकरेंट लिस्ट है ये, और ये लगातार चलती आ रही है। और ये जो पूरा सिस्टम बिगड़ा है ना पब्लिक एजुकेशन का, जिस तरीके से सिस्टम बिगड़ा है, महंगा हो रहा है। आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार के समय पे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया गया, और ये कहकर किया गया कि सरकार स्कूल नहीं चला सकती, सरकार उच्च विद्यालय नहीं बना सकती, और इसीलिए हम प्राइवेट एजुकेशन लाना चाहते हैं। और ये प्राइवेट एजुकेशन आज हम दिख रहे हैं, आज सीजेपी के तरफ से ये भी कहा गया था कि हम जो शिक्षा महंगी हो रही है उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। ये सिस्टम है यहाँ पर निखत, आप हाथ नहीं झाड़ सकती इससे। आज सरकार में बीजेपी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि गूंज, छात्रों की गूंज क्या रांची के भीतर भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, या सिर्फ प्रयागराज जाएगी?
8: क्यों नहीं निकलेगी? ये वो गूंज है जो कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी जाती है, और ये गूंज आज से नहीं हो रही, छात्रों की गूंज। तो अब हमने बात करनी शुरू करी है कि छात्रों की गूंज है, छात्रों के लिए आवाज देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है। उन्होंने पूरा देश घूमा, देश के युवा से बातचीत करके उनसे सवाल जाने हैं कि क्यों, क्या सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल तो लगातार राहुल गांधी जी उठाते हैं। मैं नहीं कहती कि
5: आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां वहां देखी जानी चाहिए जहां पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है उनको सपोर्ट के लिए।
8: मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। बड़ी मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मेरे भाई सिद्धार्थ यादव ने कहा कि मैंने झारखंड के छात्र से फोन कर बात करी थी। अरे आपसे हम कह रहे हैं साहिल से बात करिए ना, साहिल जोशी जी, आप ही का नाम उस बच्चे का है जिस पर पैलेट गन चलाई गई, उसके छर्रों के निशान देखे थे। हम कह रहे हैं उन बच्चियों से बात करिए ना जिनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां बरसाई गई। हम कह रहे हैं उस बच्चे से बात करो ना जिसके पीछे आपका पुलिस वाला लेकर AK-47 भागा था। उन बच्चों से बात करो, उन बेटियों से बात करो ना जो जंतर मंतर पर बैठकर गालियां खा रही थी पुलिस की, और उन्हें कहा गया कि तुम्हें थाने ले जाकर
5: सत्यप्रकाश मिश्रा सर्वे के भीतर भी यही दिखाई देता है कि सरकार किसी की भी हो, मुद्दे नहीं उठाएंगे तो सीजेपी जैसी पार्टी खड़ी हो जाएगी या संगठन खड़ा होगा और एक प्रेशर ग्रुप बनेगा और लोग उसको समर्थन देने के लिए तैयार भी दिखेंगे। और इस देश में यह कई बार देखा गया।
9: लगभग 35 मिनट के बाद आपने मुझे मौका दिया है, ठीक है। देखिए, जीवंत लोकतंत्र कहते किसको है? लोकतंत्र सिर्फ 4 खंभा नहीं है, उन 4 खंभों में जीवंतता हो तो लोकतंत्र है। अगर सीजेपी ने कोई बात सामने आकर रखी, मेरा मानना है कि उसको सुना जाना पहले चाहिए। अगर पेपर लीक इस देश में कालिक के समान हर सरकार के चेहरे पे पुतता रहा तो कोई तो रोकेगा। कोई सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती कि उसके समय में पेपर लीक किसी भी प्रकार का नहीं हुआ। अगर सरकार 12 बजे रात में आकर युवाओं से बात कर रही है तो भाषा तो वो होगी मेरे दोस्तों, मेरे जान के दोस्तों, प्रधानमंत्री ने तो बात करी। अगर उस भाषा के खिलाफ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, प्रवक्ता कोई भी है, तो अपने प्रधानमंत्री के लिए संकट पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़कर क्या कहा कि वो हमारे ही बच्चे हैं, उन्हें हमें रास्ता दिखाना होगा, अगर किसी ने गाली दी उनको गले लगाना होगा। तो प्रधानमंत्री की भाषा तो देश के युवाओं के लिए है, इसलिए लोकप्रियता में आगे भी है। तो मैं उनसे इनकार करता हूं, कहते हैं ना कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, मुझे फूलों की सियासत, फूलों की राजनीति की सियासत की हकीकत मालूम है। वो जो खुद अपने गिरेबा में नहीं झांकते, ये दर्द है। मेरा मानना है किसी भी छात्र, किसी भी प्रदेश में, कहीं भी कोई लोकतंत्र में एक आवाज, एक आंसू भी बहता हो, हुकूमत के लिए वो खतरा समान होना चाहिए। उसको
5: तो ये मुद्दे सही है, आपको लगता है प्रकाश मिश्रा,
9: उसको कहते हैं तो जीवंत लोकतंत्र। एरोगेंसी सरकार के कांधे पर नहीं होनी चाहिए, सरकार के कांधे पर जिम्मेदारी होनी चाहिए।
5: एजुकेशन का इस्तेमाल रोजगार पाने के लिए नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, ये सारे मुद्दे सही है कि नहीं है?
9: बिल्कुल सही है। बेरोजगारी का
5: मुद्दा, युवाओं का सत्ताधारियों के खिलाफ रोष था और इसीलिए सीजेपी के आंदोलन को समर्थन मिला था, ये भी बात सही है।
9: मेरा मानना है, आप एक आंदोलन की बात करते हैं, कोई भी रोष सरकार के खिलाफ हो और कोई आंदोलन हो, मेरा स्वागत है। आंदोलन लोकतंत्र का आभूषण है साहिल जोशी जी, आंदोलनों से लोकतंत्र और मजबूत होता है। और सरकार को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, सरकार मेरी हो, आपकी हो, उसकी हो, किसकी हो, लोकतंत्र रहेगा, सरकारें तो बनती रहेंगी। आज इसकी है, कल किसी और की होगी,
5: जेंजी बड़े होंगे, उनकी सरकारें होंगी।
9: मैसेज क्लियर है, सरकार के कार्य जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन लोकतंत्र में करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने वोट जिम्मेदारी वहन करने के लिए दी है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया है कि मैं अगर कोई आंदोलन कर रहा हूं तो एरोगेंस दिखाऊं। और एक सवाल, किसी भी राज्य का आंदोलन, जैसे झारखंड में 15-20 दिन से छात्र बैठे हैं, उसमें पॉलिटिकल टच दिल्ली में आ जाता है, मीडिया का बड़ा हब है और यहां राजनीति भी बड़े चरम शिखर पर चढ़कर बोलती है, देश की सरकारें बदल जाती हैं। राज्यों में यह स्थिति नहीं है, स्विगी जोमैटो का यहां डिलीवरी हो जाता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा है, क्या छात्रों का जो मुद्दा या डिमांड है, क्या वो जायज है या लोकतंत्र में नाजायज है? वो डिमांड जायज था, तो जायज डिमांड पर सरकारों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो पेपर लीक से रिलेटेड मसला हो। सरकार को झुककर इस देश के युवाओं के प्रति हमेशा
5: सरकार को झुकना होगा,
9: होकर आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मेरा मत यही है,
5: किसी भी पार्टी की झुकना होगा,
9: ये करना पड़ेगा।
4: साहिल जी मेरे को उत्तर देने दीजिएगा, सबके प्रश्न सरकार से थे।
10: मैं एक चीज
5: आता हूँ आपके पास,
10: परमिशन देंगे हमें,
5: पहले आशुतोष बोल रहे हैं उसके बाद आता हूं। आशुतोष जी,
7: नहीं मुझे सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं स्विगी जोमैटो की बात कर रहा हूं, मैं सौरभ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके घर भी जरा जोमैटो स्विगी से कुछ भिजवा दें, सिद्धार्थ क्या भी भिजवा दें।
9: मैंने बहुत उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल तंज दिया है आशुतोष जी, मेरा उससे कोई इनकार नहीं।
7: आपने आपने आपने बहुत कायदे से तंज कसा है, सार्काज्म उसमें है, मैं समझ सकता हूं। ये स्विगी जोमैटो क्यों है, ये आपके घर क्यों नहीं आता, मेरे घर क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि लोगों का समर्थन इनको,
9: लोगों का दुबई से समर्थन है, स्वागत है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे।
7: सत्यप्रकाश जी इस देश
9: मैंने समर्थन को नतमस्तक होकर स्वागत किया, लेकिन पॉलिटिकल टच होगा उसका भी जवाब देना पड़ेगा हमें।
7: एक बात सुन लीजिए, एक बात
9: जी बताइए
7: विनम्रता से, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात समझनी चाहिए कि देश का युवा पॉलिटिकल क्लास से क्यों नाराज है, क्योंकि जो काम उसको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, वो उसमें तंज कसता है।
9: मैं उसकी नाराजगी को सलाम करता हूं, मैं कभी भी युवाओं की नाराजगी को
7: और किसी को ये दिक्कत है कि जोमैटो और स्विगी से
9: पक्षधर व्यक्ति लोकतंत्र में
7: ये हमें धन्यवाद कहना चाहिए सौरभ जैसे लोगों का, बच्चों का, कि जिन्होंने इस देश के अंदर लोगों की आंखें खोली है, उस सरकार को झुकाया है जो 12 साल से कहती थी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये सरकार झुकी है। अगर इस गुस्से को नहीं समझेगी सरकार, तो ये सरकार का वही असर होगा जो 2014 में हुआ था।
9: पक्ष है उसका लोकतंत्र में सर झुकाकर हमेशा स्वागत किया। मैं छात्र राजनीति से निकला व्यक्ति हूँ
4: साहिल जी, मैं उत्तर
9: तो मुझे मालूम है,
5: ठीक है,
4: थोड़ा सा उत्तर देना चाह रहा हूँ। मेरी आपत्ति एक बात पर, एक डिस्कशन का पॉइंट ऐसा चल रहा है कि मेरी आपत्ति, आप मुझे 30 सेकंड का समय दीजिएगा।
5: बिल्कुल, सौरभ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उसके बाद सिद्धार्थ यादव बात कर।
4: मैं बोलूं साहिल जी?
5: जी जी
4: ठीक
5: सौरभ,
10: देखिए मैंने यही बोला कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं या जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर वो सोचते हैं कि स्विगी बोल के या जोमैटो बोल के या लोग पार्टी करते हैं, बच्चे पार्टी करते हैं, कैजुअल है, ऑनलाइन रहते, ये सब बोल के उनको दबा देंगे तो वो गलत फहमी में है। मैंने तो ट्वीट भी किया था कि जेंजी का जो लैंग्वेज है ये सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। आप अगर ये सब बोलोगे तो जो 65% यूथ पॉपुलेशन है जो अंडर 35 के एज का है उनका तो ये लाइफस्टाइल है, आपको उनका लाइफस्टाइल समझना पड़ेगा। एंड आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उनका जो आक्रोश है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि अहंकार है आपके अंदर, वो अहंकार ड्रॉप करिए। अहंकार आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जैसे लोग रोड पे निकले इतने
5: सौरभ को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची में जो 35 साल से कम उम्र का युवा है उसकी भाषा कुछ और है, वो स्विगी जोमैटो की भाषा शायद नहीं समझ रहा हो।
6: मैं
5: जो दिल्ली में बैठा हुआ युवा है उसकी भाषा कुछ और है, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं।
10: जिनका भी जो भी अंडर 35 के है, जो भी अंडर 35 के जो भी युवा है उनका भाषा आप समझने का कोशिश करिए। वो भले स्विगी जोमैटो का हो या वो शुद्ध हिंदी का हो या कुछ भी भाषा हो, वो समझने का प्रयास करिए। एंड थोड़ा ऑनेस्टली दिखाइए कि आप समझ रहे हो, समझना चाहते हो, ये ना कि उनको मॉक करिए। क्योंकि आप मॉक करेंगे तो आप उनको अपने एंटी बना रहे हो, फिर आप वो आपको
5: तोड़ाइए। सिद्धार्थ यादव, कुल मिलाकर वो कहने की एक कोशिश कर रहे हैं।
6: देखिए
10: सरकार
6: करके ऐसे कहा जा रहा है जैसे ऑर्डर कर पाएंगे। ऑर्डर करना स्विगी और जोमैटो इस बात का प्रतिबिंब है कि जहां पर मीडिया का कैमरा पहुंचता है वो वही जगह होती है जहां स्विगी और जोमैटो
10: ऐड कर दू।
6: ये टीयर वन सिटी और टीयर थ्री सिटी के बीच का फर्क है। ये देश के ग्रामीण इलाके और देश के शहरी इलाकों का फर्क है। जो देश के ग्रामीण इलाके में कौन बोल रहा है बीच में, मैं तो नहीं बोल रहा था। जो देश के ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ बच्चा वो भी जेंजी है।
10: आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहे हो तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि स्विगी जोमैटो क्यों उतर गए। नहीं तो जो बेरोजगार है वो और ज्यादा संख्या में और लोग बाहर आते हैं।
6: सौरभ जी मैं जेंजी हूँ। अरे सौरभ जी मैं जेंजी हूँ, आप बदतमीजी पे क्यों उतर गए? मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। डोंट गेट सो रैटल्ड। आप अभी भाषा समझा रहे थे ना, मेरा उत्तर सुनिए उसके बाद बोल लीजिएगा। जो देश के ग्रामीण परिवेश में है साहिल जी वो भी देश का जेंजी है। जो देश के टियर वन सिटीज में है, एलिट इलाकों में रह रहा है वो भी है। जब स्विगी जोमैटो का उल्लेख किया जा रहा है तो मैं उसको एक सिंबॉलिक करके आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ग्रामीण बच्चे की आवाज आप हमारे कानों तक आ रही है? क्योंकि झारखंड और रांची वाले की नहीं आ रही, उसके आगे की कहां आ रही होगी? ये सिंबॉलिक क्वेश्चन है आपसे। आपको स्विगी और जोमैटो पे बहुत दर्द होगा। आशुतोष जी को पता नहीं क्यों इतना दुख हुआ। मतलब कहो कहीं और, दर्द कहीं और होता है तो कारण नहीं समझ में आ रहा। पर तुलना की जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कहां जाएंगे?
10: अरे सीजेपी साहिद जी, बिल्कुल मैं विनती के साथ कहता हूँ,
6: कंडक्ट टूडे इज अ पॉलिटिकल कंडक्ट। सौरभ जी
5: मैं अपने दो शब्द बोलूं जरा, मैं दो शब्द सिर्फ बोलता हूं। नाम मैं जेंजी हूं।
6: सर्टिफिकेट दूं आपको? आपको सर्टिफिकेट दूं? सौरभ दास और अभिषेक दिप के तय करेंगे। सौरभ जी दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप कैसे पूछ सकते हैं मेरे से? आप 96 बोर्न आप मेरे से पूछेंगे क्या?
10: नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं आप बांटेंगे देश में कि जेंजी कौन है कौन नहीं है। अगर आपको नहीं पता जेंजी कौन से एज ग्रुप में कॉल करता है तो मतलब आप उनसे कम्युनिकेट कहां कर रहे हो?
6: सौरभ जी बताइए देश में नीट की सीटें कितनी
10: है? एज क्या है तो उनका लैंग्वेज आप कैसे समझोगे?
6: आपको लग रहा होगा कि वाइब चेसिंग कहना,
5: जरा दो शब्द मेरे, मेरा समय खत्म हो रहा है।
6: जरा
5: प्लीज मेरा समय खत्म हो रहा है। सौरभ प्लीज, सिद्धार्थ सौरभ प्लीज, मैं ना जेंजी हूं ना मिलेनियल हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जेंजी भले दिल्ली का हो, जेंजी भले मुंबई का हो, या जेंजी भले रांची का हो, वो स्विगी से ऑर्डर करता हो या ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।

0: पीएससी की परीक्षा हो या नीट की पेपर परीक्षा हो, हमारा पेपर लीक रोक दीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हमारा भविष्य निर्भर है। और यही बात लेकर वो सत्ताधारियों के पास जा रहा है, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उनकी आवाज सुनना जरूरी है। यही सबसे बड़ा संदेश इस सर्वे के जरिए लोगों के सामने रखने की कोशिश हुई है। तो इस पर हम नजर रखेंगे, फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: अभी तो चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को पीवीआर आईनॉक्स में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस टू अ नेशन।
2: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?
3: एसी में जाकर क्यों बात करेंगे हम? एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम? हम आइए मेरे यहाँ टेंट में।
4: अभी तक छात्रों के मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
5: जो आवाज अब तक दिल्ली में सुनी जा रही थी वो अब रांची से सुनाई दे रही है। हक की एक और लड़ाई तेजी से परवान चढ़ रही है। झारखंड के नौजवान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की अनोखी जंग लड़ रहे हैं। देश ने बड़े गौर से जंतर मंतर को देखा कि कैसे नौजवानों ने एक और आंदोलन की बुनियाद रखी। ये भी देखा कि कैसे युवा शक्ति के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया। देखा कि कैसे एक बेहद मजबूत शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। और अब दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक और जंतर मंतर का वजूद।

0: मजबूत होते देश देख रहा है। दो आंदोलन, दोनों का मकसद एक, फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में डटे छात्र साधन संपन्न थे तो रांची में जमे छात्रों के सामने संसाधन का संकट है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है। 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर रांची में छात्र डटे हैं। न धूप बारिश की परवाह है, न भूख प्यास की चिंता। इनकी दो टूक मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा और अन्य विवादित परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई या ईडी से जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य की सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो, मुख्यमंत्री सीधे छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करें और लिखित आश्वासन दें। इन छात्रों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जंतर मंतर का प्रकरण सोरेन सरकार के जहन में जरूर दर्ज हुआ होगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने छात्रों से बातचीत की पेशकश की है।
1: उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।
0: मुख्यमंत्री की इस पहल का अब तक ज्यादा असर नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि जो कुछ होगा सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री का आवास 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करें। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
2: ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज 5वां दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है।
3: आपने फिर जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था?
2: हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं।
4: जो घटनाएं घटी, इससे पहले जो परीक्षाएं घटित हुई जिनमें स्पष्ट सामने आया था कि नेपाल में परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर उन्हें परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, ये मामले स्पष्ट रूप से प्रकाश में आए थे। और सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह है। अगर केंद्र सरकार आ जाती है तो प्रश्न चिन्ह होता है, अगर केंद्र ना रहे तो निष्पक्ष हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एजेंसियों पर तो प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन फिलहाल जो छात्रों की मांग है हमें लगता है, और सरदार पटेल भी कह के गए हैं कि लोकतंत्र में लोगों का एक बड़ा सा समूह जो अगर मांग करता है उस मांग पे चर्चा करनी चाहिए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, अब लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के उस पार हल्ला बोल अंजनाओं कश्यप के साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: संसद में गतिरोध खत्म करने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, बिल के विरोध में है विपक्ष। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल, आज ही वार्ता होने की संभावना, विधानसभा में बीजेपी का हल्ला बोल। हरियाणा के चरखी दादरी में गैंग वॉर से दहशत, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार में 7 लोग बुरी तरह से जख्मी, गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
3: अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी का अपमान हुआ तो ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ। गांव गांव में जमीनें कब्जा कर ली, हर 3 महीने पे भाषा बदलते हैं।
4: पवन पांडे जी जो अयोध्या से इस बार जीतने जा रहे हैं,

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज उत्तर प्रदेश की जो जंग अभी से ही चुनावों की छिड़ गई है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जात जात पात पात हर तरीका अपनाया जा रहा है। अभी से ही अपने अपने वोट बैंक को सहलाने की कोशिश शुरू हो गई है। पीडीए का विस्तार, जातियों पर अखिलेश धुआंधार। आज हल्ला बोल का मुद्दा यही है, क्यों हम ये विशेष चर्चा आज लेकर आए हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। याद कीजिए 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव, पहले समाजवादी पार्टी का MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती थी, लेकिन उसको अखिलेश यादव ने पलटा है। वो पिछले चुनाव से लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए की बात को अगर उन्होंने यादव जाति और अल्पसंख्यकों के अलावा सभी जो पिछड़े हैं, दलित जातियों को साधने की शुरुआत की, लेकिन अब पीडीए के पीडी का मतलब पंडित भी हो गया, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। और ऐसे अगड़ा की बात पहले ही उनकी पार्टी करती रह चुकी है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए का यह विस्तार बीजेपी के उस हिंदुत्व के दाव की काट है, जिसमें हिंदुओं को जाति से ऊपर उठकर जोड़ने की बात होती है। अखिलेश यादव ने अयोध्या से पवन पांडे को 2027 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी का पहला उम्मीदवार घोषित करके भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि 2024 में इसी अयोध्या में बीजेपी को हरा देना सबसे बड़ी कामयाबी समाजवादी पार्टी की मानी गई थी। और इसी में अगर आप देखिए तो क्या चढ़ावा चोरी मसले के बाद अयोध्या से पांडे जी को अखिलेश यादव का टिकट बीजेपी पर भारी पड़ने वाला संकेत है। जाति जाति नहीं, पीडीए के नए नए मायने। हल्ला बोल में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव का पीडीए क्या है? मौका बदलता है, जगह बदलती है, वोट बैंक बदलता है और पीडीए नई परिभाषा के साथ आ जाता है।
1: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
0: पीडीए में पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, अगड़ा आधी आबादी और आदिवासी पहले ही बताया जा चुका है। जो पीड़ित वो पीडीए का ऐलान भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। पीडी माने पंडित बताने से पहले फरवरी महीने में अखिलेश यादव ने पीडीए का रिश्ता बहुजन से भी जोड़ा था।
2: बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है, इससे सौहार्द भाईचारा

0: हम सब का मेलजोल बढ़ेगा।
1: पीडीए पर अखिलेश की इस बदलती परिभाषा को बीजेपी चौकन्ना होकर देख रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में लिखा है, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को एक ऐसी पहेली में तब्दील कर दिया है जो गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदलती है, कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित, तो कभी पी से पंडित। दरअसल इस अटखेली में उनका पीडीए और कुछ नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका मक्का मदीना केवल सैफई है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कृष्ण सुदामा दोस्ती के नाम पर अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर भी पलटवार किया।
2: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
3: ब्राह्मण केवल सुदामा नहीं है, ब्राह्मण चाणक्य भी है, ब्राह्मण चंद्रशेखर भी है और ब्राह्मण पेशवा बाजीराव भी है। सुदामा और कृष्ण वंशजों का साथ बहुत पुराना है, सदियों का साथ है। लेकिन अखिलेश जी यहाँ भी आप चूक रहे हो, आप भगवान कृष्ण के वंशज ही नहीं हो। यदि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो चलिए मथुरा चलिए ना, शुरुआत करिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कलंक से मुक्ति दिलाइए। हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, केवल आप लोगों को ठगना ही जानते हो। आप पीसे चाहे पंडित बताओ, चाहे पीसे पिछड़ा, लेकिन पीसे आपके लिए केवल और केवल परिवार ही है और उसमें भी शिवपाल नहीं, आपके बाद अर्जुन का ही नंबर आना है।
1: समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का विस्तार साफ तौर पर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध की कोशिश नजर आती है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में अनोखा प्रदर्शन कर रही है, तो उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या से पवन पांडे को समाजवादी पार्टी का पहला टिकट देकर अपने इरादे जाहिर किए हैं।
4: मर राम राम करते करते चढ़ावा चोरी करने वाले जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की आस्था पर डकैती डाली है, इस बार जनता ने मन बना लिया कि इनको कुर्सी से हटाएंगे और पूरा प्रदेश जीतेंगे और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।
1: अखिलेश को काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बार बार समाजवादी पार्टी का अयोध्या मुद्दे पर पुराना स्टैंड गिनाया है।
5: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं।
1: उधर आज योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू जातियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही।
6: जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है।
1: यूपी के चुनावों में जाति कभी जाति नहीं, लेकिन पीडीए की पॉलिटिक्स और उस पर बीजेपी के पलटवार से मुकाबला और दिलचस्प हुआ है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राघवेंद्र द्विवेदी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिये, जातियों को साधने की बात पर सिर्फ अगर आप विपक्ष को या अखिलेश यादव को घेरेंगे तो कैसे चलेगा? आप तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दो चुनने में ही जातियों का ख्याल रख रहे हैं, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ऐसा है कि नहीं है सुधांशु जी?
7: देखिए, एक यथार्थ समझना चाहिए। भारतीय समाज संरचनात्मक दृष्टि से उसमें एक जाति प्रधान समाज है और भावनात्मक दृष्टि से धर्म प्रधान समाज है। अब आप देखिए, पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक जितने भी राज्यों में ज्यादातर क्षेत्रीय दल बढ़े, मतलब मैं पंजाब हरियाणा से लेके कर्नाटक और तमिलनाडु तक देख लिए, सबने क्या थ्योरी अपनाई, पहले एक जाति पकड़ लो जो उस राज्य में 10-12% हो और घनघोर जातिवाद की बात करो, घनघोर एकदम, ताकि वो जाति आपके साथ आ जाए। फिर क्या करो, कोई राज्य भारत का ऐसा नहीं है मिनिमम 10% से लेके और 25-30% तक मुसलमान ना हो, फिर घनघोर सांप्रदायिकता की बात करो और मुस्लिम्स को साथ में ले लो, और एक बार 25-26% के वोट बैंक पे आप पहुंच गए फिर 3-4% वोट औरों का मिलने लगता है, तो या तो आप सत्ता के मेन क्लेमेंट हो जाते हैं या आप बहुमत तक आ जाते हैं। ठीक इसी पैटर्न के ऊपर समाजवादी पार्टी भी बनी और यह दर्शाता है

0: कि स्वतंत्र भारत के इन 75 सालों में सभी विचारधाराएं अपनी बलिवेदी पर अपनी सांस तोड़ चुकी हैं। बताइए, समाजवाद, कभी कोई कल्पना कर सकता था कि समाजवाद में जाति का नाम आएगा, और वो भी जनेश्वर मिश्र, मतलब छोटे लोहिया। आज बताइए, राम मनोहर लोहिया जी की भी जाति बताई जाती है। मुझे याद है मुलायम सिंह जी ने पहली बार वैश्य सम्मेलन किया था तो लखनऊ के रविंद्रालय में, राम मनोहर लोहिया ब्रैकेट में अग्रवाल लिखा था, यानी उनकी जाति बताई गई थी। आज जनेश्वर मिश्र की जात बताई जा रही। तो होता क्या है, एक पॉलिटिक्स का प्रिंसिपल है कि इट इज वेरी इजी टू राइज फ्रॉम एक्सट्रीम बट यू हैव टू रूल फ्रॉम मिडिल। तो एक्सट्रीम जातिवाद करके आप अपना एक हिस्सा बना के ऊपर तोड़ सकते हैं, पर जब आपको सबको साथ में लेना पड़ता है तो उस जाति के केंचुल से बाहर निकलना पड़ता है। अब यहां पे समस्या आती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर चलती है, और जो आप जातिवाद की बात करते हैं, रिडक्शनिस्ट अप्रोच है। कोई भी नेता जो आज तक खड़ा हुआ है वो वर्ग का नेता नहीं रहा है, आखिर में वो घटकर केवल जाति का नेता बनता है, और जाति में भी अंततः परिवार पे आके जाता। मुलायम सिंह जी क्या थे, हम लोग जब बच्चे थे तो क्या नाम सुनते थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह, बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल, मजदूर किसान दोनों के नेता थे। वहां से संकुचित हुए पिछड़ों के नेता, वहां से संकुचित हुए यादवों के नेता, और आखिर में जब देने की बात आई तो मैं, मेरे भाई शिवपाल, मेरे भाई रामगोपाल, मेरे बेटे अखिलेश, फिर मेरी बहू डिंपल, तो फिर मेरे भतीजा धर्मेंद्र, और अब लास्ट में जब वो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे तो यही नहीं तय हो पा रहा था कि वो भाई के नेता हैं कि पुत्र के नेता हैं। धरती पुत्र वहां तक पहुंच गए थे। आज समाजवादी पार्टी उसी क्राइसिस से गुजर रही है कि उसके सामने समस्या यह है कि वो जाति के उस पैरामीटर को बढ़ाए कैसे, यानी समाजवाद ने दम तोड़ दिया। गांधीवाद देखिए कांग्रेस का, वो अल्पसंख्यकवाद और उन चीजों में फंसता हुआ कहां कहां तक जाके दम तोड़ता चला जा रहा है। और जो हिंदुत्व है सिर्फ यही एक वो है जो सबको साथ में लेके आता। मैंने कहा ना, धर्म और जाति दो हैं, जाति रिडक्शनिस्ट अप्रोच है और हिंदुत्व जो है वो कंसेंसस है, इसलिए हम सब जातियों को स्थान देते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो भी लोग ये कहने का प्रयास करते हैं वो आज ये लोग करते हैं, 1984 में कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। किसी भी पार्टी ने, राष्ट्रीय दल ने किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो 84 में बताइए। 1986 में विनय कटियार जी बजरंग दल के चीफ बने थे। 1988 में उमा भारती जी हमारी नेता बनकर स्थापित हो गई थी, और 1989 में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास की ईंट हम लोगों ने कामेश्वर चौपाल जी से, जो दलित समाज के थे, उनसे रखवा दी थी। इसका मतलब समाज को साथ में लेके चलना। इसलिए जो आप कहती हैं जातियों का ध्यान, मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जाति एक वास्तविकता है, पर हमारी अप्रोच क्या है, जातियों की पहचान, जातियों का सम्मान, जातियों का उत्थान, सभी का उत्थान, और उसके साथ समाज में सकारात्मक समाधान। इनका क्या है, जातियों के नाम पे घमासान, और उसके बीच में से निकालना अपने सत्ता का रास्ता। तो हमारा जातियों के समाधान का अप्रोच, इनका
1: पवन पांडे जी को टिकट दे दिया है सुधांशु जी,
0: अल्टीमेटली ये लगता है
1: ना सुधांशु जी, सुधांशु जी आज पर आइए ना, पवन पांडे को टिकट दे दिया इन्होंने अयोध्या से, कह रहे वही जीतेंगे, पांडे जी को टिकट।
0: देखिए ये उन्होंने, उनका अधिकार है, वो बिल्कुल दे सकते हैं, और दे, और जीतेंगे कौन ये तो जनता तय करेगी। अब ये कहना ही कि वही जीतेंगे, कहीं नहीं थोड़ी अहंमन्यता नहीं दिखाता है। और रही बात इसकी, मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, इन्होंने आज ब्राह्मण समाज की बात कही पवन पांडे को ये देने के लिए। कल अखिलेश जी ने बड़ी मार्के की बात कही कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो 5000 साल से है। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, ये जरा लेफ्टिस्ट सेक्युलरिस्टों को से सुनिए, कृष्ण सुदामा की दोस्ती 5000 साल से है, और कहा जाता वो सुदामा जो फटी धोती पहन के भिक्षा मांगने गए थे कृष्ण के द्वार पर, वो कृष्ण जो द्वारिकाधीश थे, समृद्धि के शिखर पर बैठे थे, जिस सुदामा के लिए कहा गया था सीस पगा न झगा तन में, और उपाय उपान ही को नहीं सामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, यानी न सर पे पगड़ी है न पैर में जूता है, फटी धोती पहन के पता नहीं कहां से आके बैठ गया है। उस सुदामा के वंशजों ने हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है समृद्धि के शिखर पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के साथ।
1: ठीक है, अब
0: सोचिए मैकाले और मार्क्स का ये घटिया नैरेटिव कैसे दिमागों में बैठाला गया है। धन्यवाद देना चाहूंगा अखिलेश जी ने कि आज क्या चीज याद दिलाई है, और मुझे लगता है इसके बाद भारत के हर प्रबुद्ध व्यक्ति को, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, यथार्थ क्या था और मैकाले और मार्क्स का चश्मा क्या।

0: आशुतोष जी, सुधांशु जी तो धन्यवाद दे रहे हैं कृष्ण जी और सुदामा जी की दोस्ती पर बोलने के लिए, स्वीकार करने के लिए। अखिलेश जी, इसके बाद आपके पास फौरन आएंगे, बड़ी पार्टी तो वहां समाजवादी है, तो आशुतोष जी से पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण है लगभग 10-12% है, 60 सीटों पर 20% से ज्यादा उनकी आबादी है, और 110 से 115 सीटें ऐसी हैं जिनको वो प्रभावित करते हैं, तो एक वोट बैंक के रूप में भी क्या ये मायने रखता है, जिसकी वजह से ये टैक्टिक्स में चेंज है? क्योंकि अभी तक पीडीए का फुल फॉर्म आप लोग खत्म नहीं, मतलब सील नहीं हो पाया, जैसे जवाब होता है कि भाई सील हुआ, वो नहीं हो रहा है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, प्रयागराज, इन तमाम जगहों पर 15% से अधिक ब्राह्मण वाली आबादी है। और इसी के साथ साथ ब्राह्मणों का वोट किसे मिला जब हम दिखाते हैं, तो लगातार जो बीजेपी प्लस है 2017 में 83%, फिर 2017 में 7% आपको, और 2022 में देखिए 89% और 6%। फिर भी आपको यकीन है कि वो आपकी तरफ आएंगे आशुतोष जी, तो इसकी वजह क्या है? और पीडीए का सर एक फुल फॉर्म आप लोग सील तो कीजिए, पहले मुझे ए से कहते थे कि अगड़ा और अल्पसंख्यक है, अब आधी आबादी भी कह देते थे, अब आप लोग पी डी का खुद कह रहे हैं अखिलेश जी कि पी डी मतलब पंडित, तो फिर पिछड़ा दलित कहां गए?
1: धन्यवाद अंजना जी, बिल्कुल बढ़िया आपने बोला। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतनी ज्यादा उत्तेजित होकर परेशान हो गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको क्यों इतनी परेशानी हो रही है। आपने अपने वक्तव्य में खुद बोला कि 83% ब्राह्मण वोट सीडीएस के नाते बताया भी कि वो चला गया भारतीय जनता पार्टी में, तब ये समाजवादी पार्टियों क्या हो गया, न गणित समझ पा रहे हैं ना कुछ समझ पा रहे हैं, तब भी ये पंडित पंडित कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है ना कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं, जो 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, हम उससे भी कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी के ये क्या बोले उन्होंने प्रवक्ता कि जाति की राजनीति रिडक्टिव होती है, ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के अपनी जाति बताई है, मैं फलाना जाति से आता हूं, मैं सबसे बड़ा पिछड़ी जाति से आता हूं। ये वो पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि 2019 में कैबिनेट मंत्रियों की पहली बार भारत के इतिहास में जातियों के साथ लिस्ट निकली थी, और इस पे डिबेट भी अंजना जी आप लोगों ने हमेशा हमारे साथ करी थी। अनुप्रिया पटेल कुर्मी जाति से आती हैं, फलाना वैश्य जाति से आती हैं, हम सबको याद है। ये वो पार्टी बता रही है जो कहती है कि केशव प्रसाद मौर्य नॉन यादव ओबीसी हैं, इसलिए उनको वोट दीजिए। ये नॉन यादव ओबीसी का शब्द पहली बार किसी ने अगर क्वाइंड किया तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में आए के बोले, नॉन जाटो दलित, ये शब्द हमने कभी अपनी राजनीति में नहीं सुने थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड चाणक्य ने बनाए थे। ये इसी गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी किनारे हो, यही सुधांशु जी जैसे लोग जाते थे, आज मौर्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, आज वैश्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, आज ब्राह्मण सम्मेलन कर, वो हमसे बता रहे हैं कि हम जातिवादी। अरे क्या बात करते हैं सुधांशु जी, आपके अंदर तो ये इतिहास है कि आप अगर जातियों की बात ना करें तो आपकी सुबह शाम की रोटी ना चले। अंजना जी, हमने क्यों ये बात करी? हमने इसलिए ये बात करी कि पिछले, पहली तो बात ये क्लियर कट गई कि पवन पांडे जिस सीट से 2012 लड़े, 2017 लड़े, 2022 लड़े, उसी सीट से 2027 भी लड़ेंगे, और आप लोगों के आशीर्वाद से, अयोध्या की जनता से, जो व्यक्ति 54,000 वोट 2017 में पाया था वो 94,000 वोट 2022 में लेके आया है, और ऊपर वाले की दया रहेगी तो 1,94,000 वोट उसको फिर से मिलेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना, जिसको जब कुछ ब्राह्मण एमएलसी बैठ के अपनी परेशानियां बोलते हैं तो उनके खिलाफ एक मेमोरेंडम निकल जाता है कि कोई जातियों की बात नहीं करेगा, लेकिन अगर वो प्रधान मुख्यमंत्री की जाति का हो तो ये सब अक्षम्य है, उसके लिए कुछ नहीं बोलना है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हाथरस मामले में इसलिए शांत हो गई क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो जिसने अत्याचार किया है वो एक मुख्यमंत्री की जाति का है तो वो कुछ नहीं बोला जाएगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अगर मुख्यमंत्री की जाति का है, हिस्ट्री शीटर है, तो उसको एमएलसी बनाने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बाकी किसी जातियों के बारे में सोच लेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, जब हमने विकास दुबे की बात करी तो विकास दुबे की बात करते करते खुशी दुबे की जब हमने बात आई तभी हमसे जातिवादी करने लगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है।

0: जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे फला जाति से होने में गर्व होता है, तो वो लोग हमको जातिवाद का पाठ ना पढ़ाए।
1: ठीक है,
0: जनेश्वर
1: जल्दी
0: मिश्रा,
1: जल्दी से एक बार
0: जनेश्वर
1: अखिलेश जी
0: मिश्र,
1: को दिखा दीजिए, अखिलेश
0: जनेश्वर
1: जी का।
0: मिश्र कभी समाजवादी पार्टी में इसलिए नहीं थे कि वो ब्राह्मण थे, वो समाजवादी थे, उम्र में भी मुलायम सिंह से बड़े थे। उन्होंने सदैव कहा कि हमने नेता किसी और को माना है,
1: ठीक है, अब अखिलेश जी एक
0: हम
1: बार बोलिए,
0: जातिवादी
1: सुधांशु
0: नहीं
1: जी
0: करते
1: जवाब
0: हैं,
1: देंगे।
0: जो आप करते
1: अखिलेश
0: हैं
1: जी,
0: वो
1: हाँ
0: बताइए।
1: अखिलेश जी, अखिलेश जी, जात जात का खेल चल चल रहा है, क्या हो रहा है, आपकी क्या राय है इस पर, पीडीए का
2: कोई
1: फुल
2: जात
1: फॉर्म?
2: जात का ये तो बीजेपी चाहती है। इस देश में आस्था का खेल चल रहा है, इस देश में राम भक्तों का खेल चल रहा है, इस देश में हर परिवार में एक छात्र है, दो छात्र हैं, और घर घर राम भक्त हैं, और इन दोनों को ठगा और लूटा है बीजेपी ने, इसलिए ये दाएं बाएं भागने का प्रयास कर रहे हैं। अंगड़ाई ले चुके हैं छात्र और राम भक्त दोनों, क्योंकि दोनों को आपने लूटा है, और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, न छात्र बर्दाश्त करेंगे और न राम भक्त बर्दाश्त करेंगे, और यही कारण है कि मुंह छुपाए घूम रहे हैं गलियों गलियों में, कमरों कमरों में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ पा रहे हैं। उस सब डींगे तमाम हाकेंगे, बहादुरी के किस्से कमरों में सुनाएंगे, सदन फेस करने का साहस नहीं है। यही मैं इलाहाबाद में बैठा हूं, राहुल जी की रैली है छात्रों की गूंज की, कार्यक्रम निरस्त करते हैं ऐन वक्त पे, परमिशन पहले सब मिल चुका, पैसा जमा हो चुका है, हर लीगल कार्रवाई पूरी हो चुकी है, वह सारी व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। डर के मारे डरे हुए हैं भाजपा ही, क्योंकि इन्हें पता है हर घर में छात्र है, हर घर में इन लोगों को 24 में हम लोगों ने हाफ किया है, 27 में पूरा साफ करेंगे, 3 डिजिट नहीं टच कर पाएंगे यूपी में। अंजना जी, राहुल जी ने बोला 1 साल है मोदी जी की सरकार, 1-1.5 महीने बीत गया है, 10-11 महीने और है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री, नहीं रह पाएंगे। बच्चों से माफी मंगवाते हैं, 15-15 साल की बच्चियों से माफी मंगवा के अपने आप तो सुपरमैन बनते हैं। अरे अच्छा साहस है तो चीन से माफी मांगो, बोलो बोलो अमेरिका माफी मांगे, मांगने से तो छोड़ो बोलते भी नहीं हो उससे तुम, बोलो पाकिस्तान हिंदुस्तान से माफी मांगे, रोज चीन के गुस्ताखियों पे क्यों ना चीन के खिलाफ बोलते हो कि माफी मांगे, छोटे छोटे बच्चों पे FIR लिखाओगे, बताओगे कि 2500 बच्चे पहचान लिए गए हैं उसे क्रिमिनल थे, नकलची नहीं पहचान पा रहे हो, पर्चा करने वाले नहीं मिल पा रहे हैं, एनटीए में भ्रष्ट मिल बिठाए पड़े उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, मंदिर का पैसा लूट लिया उनको नहीं पहचान पा रहे, वहीं बने बैठे हैं वो, जो उनके उन्हें ईडी CBI नहीं जा पा रही है, बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है कि ड्राइवर भाग गया है, जनता देख नहीं रही है क्या, सब समझ रही है कि जाति जात के खेल में नहीं आने वाली है, रगड़ के रख देगी अब की, हत्थे चढ़े हो, सांस नहीं ले पा रहे हो पार्लियामेंट में, देख रहे हो नौजवान कैसे, ये देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, भारत के जो युवा है उनमें दम है, विजन है, उनमें आत्मविश्वास है, किसी से लड़ने का मादा रखते हैं, अपनी गलत पे अपनी आवाज उठाने का साहस रखते हैं, हम इन नौजवानों को सलूट करते हैं, सुरक्षित भविष्य भारत का है, और उन नौजवानों से आप टकराने का प्रयास करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 लफ्ज अपने नागरिक है अपने ही बच्चे हैं, 2 लफ्ज खेत के व्यक्त कर दो ना,
1: सुधांशु जी ठीक है जवाब दीजिए, सुधांशु जी दोनों जी, दोनों की बातों का जवाब
2: दीजिए, इसके लिए भी परोपकारी करोगे,
1: हाँ।
2: आप खेत
1: दोनों पर
2: करो,
1: दोनों पर एक तरफ कह रहे हैं कि जाति का कार्ड आप खेलते हैं आशुतोष जी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए बच्चों से।
3: मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं, पहले अखिलेश जी का फिर आशुतोष जी का। वैसे आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे प्रश्न क्या पूछा गया और डिबेट क्या है और अखिलेश जी बोल क्या रहे हैं, मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं तो वही हो गया कि पेपर में क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया और वो हिस्ट्री बता रहे हैं, विषय के संदर्भ में कुछ भी नहीं बोले। अब आइए साहब, आपने कहा कि बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा ये है, गिरा देंगे गिरा देंगे, साहब इस पार्टी के नेतृत्व की वो हैसियत नहीं है कि अपने दम पे चुनाव जीत सके। सोनिया गांधी जी राजनीति में आई थी दिसंबर 97 में, 98 के लोकसभा में वो चुनाव नहीं लड़ी थी, अमेठी से कैप्टन सतीश शर्मा लड़े थे, 99 में वो पहली बार लोकसभा लड़ी है, और राहुल गांधी 2004 में, मगर 99 से लेके गांधी परिवार आज तक समाजवादी पार्टी के दम पर अमेठी और रायबरेली जीतता चला आया है क्योंकि सपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी। हैसियत नहीं है कि सपा के बगैर जीत के दिखा दें अमेठी और रायबरेली। और वायनाड किसके दम पे जीतते हैं? मुस्लिम लीग के दम पे जीतते हैं। हैसियत नहीं है कि मुस्लिम लीग के दम के बगैर गांधी परिवार अपनी केरल की सीट जीत के दिखा दे। और अभी 2024 में जब राहुल गांधी जी दो सीटों से चुन लिए गए थे तो उनकी दिल की धड़कन तो वायनाड के लिए थी, पर काहे नहीं छोड़े रायबरेली? क्योंकि उनके मन में शक था। रायबरेली छोड़ते तो इंदिरा जी की सीट प्रियंका गांधी को मिलती तो ज्यादा मैसेज जाता है। चर्चा भी थी कि पता नहीं समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद अगर साथ न दी तो क्या हो जाएगा। और आज देखिए क्या बोल रहे हैं, एकदम लगता अति आत्मविश्वास से लबरेज होकर, जो दबंग फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, भैया जी भावनाओं में बह के क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं, वह दिखाई पड़ता है। अब रही बात इसकी जातिवाद की, तो देखिए जातिवाद का कार्ड तो सबसे पहले कांग्रेस ने खेला था। जातिवाद, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार सब कांग्रेस ने खेला था। और फिर जातिवाद के दंगल में मुलायम सिंह जी ज्यादा तगड़े पहलवान थे, उत्तर प्रदेश में ऐसी पटकनी मारी कांग्रेस को कि कांग्रेस का पता ही नहीं लगा। और 1990 के बाद से आज तक कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, लुप्त प्राय जीव हो गई है। और आज कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि जहां से कभी ये लोग रूल करते थे, गांधी परिवार का गढ़ था, कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब मैं आशुतोष जी की बात,
1: अरे सर दोनों साथ लग रहे हैं, कांग्रेस को आप अलग क्यों मान रहे हैं सुधांशु जी?
3: समाजवाद से
1: मुझे इंटरव्यू में अखिलेश जी ने कहा कि हम फिर से साथ चुनाव लड़ेंगे।
3: मैं ये
2: अपना
3: हाँ, इसलिए मैंने कहा चूंकि 2024 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें सपा साथ में नहीं रही है। बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें सपा कांग्रेस गठबंधन नहीं रहा। जितने बाई हरियाणा में, दिल्ली में समाजवादी पार्टी चाहती थी, इन्होंने सीट नहीं दी। आम आदमी पार्टी से इनका गठबंधन टूट गया, डीएमके से गठबंधन टूट चुका है। तो अभी इस आधार पे कहना कितना मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं सपा के दम पे कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस के दम पे सपा नहीं जीतती है, यथार्थ यह है। मगर आप देखिए आशुतोष वर्मा जी से ज्यादा बढ़ चढ़ कर अखिलेश जी बोल रहे हैं, ये मतलब चाय से ज्यादा केतली गर्म वाली बात दिखाई पड़ रही है। हाँ, मगर मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, कास्ट की पॉलिटिक्स करने की बात जो लोग कहते हैं, हमने सभी वर्गों को साथ में लेकर किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिंदी पट्टी में हमने जितने सीएम डिप्टी सीएम बनाए हैं 10-12 के करीब बनाए हैं, और लगभग सभी अलग अलग जातियों के हैं। यह होता है कि जातियों वर्गों का गुलदस्ता बना के आगे बढ़ना। और ये लोग क्या करते हैं, एक वर्ग और एक जाति के व्यक्ति के अलावा कभी किसी दूसरे को कोई दूसरा स्थान ही नहीं देना है। मगर कोई भी पार्टी आगे बढ़ ले, आज देश का नागरिक प्रबुद्ध हो चुका है, सब पार्टियों को अपनी लिमिटेशन समझ में आ गई है। एक जाति और एक मजहब के आधार के ऊपर राजनीति करके सत्ता में आना संभव नहीं है। और हेट की राजनीति जो पार्टियां करती वो जातिवाद है। जैसे लालू यादव कहते थे भूरा बाल निकाल रहा हूं, जैसे किसी जमाने में बसपा कहती थी तिरक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार, मगर उनको भी बदलना पड़ा, इनको भी बदलना पड़ा, और वक्त के अनुसार इनको भी बदलना पड़ा। हम जहां थे वही हैं, हम हिंदुत्व पे थे, हिंदुत्व पे हैं, और आज पर बड़ी मजेदार बात है।
1: सुधांशु जी, विधानसभा से ज्यादा केतली गरम क्या बोला था आपने, उसी पे जवाब ले लो।
3: उत्तर प्रदेश की
1: क्या बोला आपने?
3: हाँ, चाय से ज्यादा केतली गरम, चूंकि दम तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में है ना, और यहाँ पर अखिलेश जी में कांग्रेस में।
1: ठीक है, अखिलेश जी का जवाब ले लेते हैं इसमें, फिर
3: एक लाइन बोल।
1: अच्छा ठीक है, एक लाइन खत्म कीजिए, खत्म कीजिए,
3: एक मिनट, एक लाइन बोल दो।
1: अरे अरे,
3: एक लाइन अखिलेश जी, एक लाइन बोल देता हूँ। देखिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज ये कहा कि जब राम मंदिर के तथा कथित चढ़ावा चोरी के ऊपर सपा के विधायक बोल रहे थे तो इनको आपत्ति लगी, तीन तीन मुस्लिम विधायकों का नाम लेके उन्होंने कहा कि भाई आप लोग भी बोल रहे हैं। तो मुझे याद आता है 1993 का चुनाव था, ढांचा गिरने के बाद हम 178 थे, सपा 107 थी, बसपा 67 थी, कांग्रेस 56 थी। तो सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी, यद्यपि हम सबसे बड़े दल थे, तो नारा लगा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर अंजना जी आज तो ऐसा देख के लग रहा क्या मुलायम तक काशीराम, अब तो मियां भी बोल रहे हैं जय श्री राम, और मियां तो वाले मियां भी राम राम राम राम राम राम बचने लगे।
1: अखिलेश जी, अखिलेश जी,
3: प्रभु की मैया,
1: एक लाइन बोले थे
3: जनता जनार्दन की, अपने विचार को बदलने के लिए मजबूर होना।
2: सुनिए ए भैया, मुख में राम दिल में नाथू राम वाले भैया, एक शेर है कि पैर के नीचे जमीन नहीं है लेकिन फिर भी यकीन नहीं है, पूरा नहीं आधार, वही हाल आपका है। 405 थे ना,
3: तो कांग्रेस
2: अधिया के रह गए यूपी में, अधिया के रह गए हो, जातिवाद तो पहले डिसाइड कर लो आपको है किधर,
4: जातिवाद, पहले कह रहे हम जातिवाद के विरोधी हैं, फिर गिना रहे हमारे पिछड़े पिछड़े कौन कौन लोग रहे हैं प्रदेश में, देश में नेता, उसको भी गिना रहे हैं। अरे आप तो इतने बड़े पिछड़ेवादी हैं कि अभी आपके राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन आए थे, उनके लिए आपने पिछड़ों के, हर पिछड़ों के अलग अलग जात के बनाए थे आपने समूह, ये जात के लोग यहाँ खड़े होंगे, ये जात के लोग यहाँ खड़े होंगे,
2: ऑफिशियल चिट्ठी जारी करके, प्रेस नोट जारी करके,
4: ये सब चीजों में नहीं आने वाले हैं। लाख हथकंडे अपना लो, दिल में नाथूराम मुंह में रासुरी, जय श्री राम वालों को पहचान गई है जनता, पूरी तरफ आपका हिसाब लेने वाली है। आप लोग अभी बताया इन्होंने कि मोदी जी ने अपनी जात बताई थी, अरे जात इन्हें गोत्र भी बताया था। चिट्ठी रात को 12 बजे सेल्फी से बना करके वीडियो जारी करेंगे और बताएंगे कि मेरे नौजवान साथियों दोस्तों, लेकिन उन दोस्तों से क्षमा नहीं मांग सकते हो, उन दोस्तों से क्या क्यों लाठी चलवाए सदन में आके बता नहीं सकते हो क्या कारण था। वो एक ट्रक वो गुम में पत्थर कैसे पुलिस की कस्टडी से वहां पहुंचे, कौन सा षड्यंत्र था वहां पे, किसके कहने पे पुलिस की कस्टडी का ट्रक वहां आया, कौन लेके आया, किसके इशारे पे आया, उसको किसने आदेशित किया था, राम मंदिर का चंदा कहां कहां तक गया, कहां कहां तक तार जुड़े हैं, सब मिलकर क्यों बचा रहे हैं, जो बचा रहे हैं तार क्या वहां तक नहीं जुड़े हैं क्या, ये दोनों बातें देश की जनता जान गई है। फिर चेता रहा हूं, हर घर में छात्र हैं, हर घर में राम भक्त हैं, इसी छात्रों से बात करने राहुल जी देहरादून गए, आपने आयन वर्क पे वहां का परमिशन कैंसिल कर लिया, किया आपने, क्या कर लिया, कार्यक्रम नहीं रोक पाए ना, हुआ नौजवान अंगड़ाई ले चुका है,
1: और कुछ प्रयागराज में भी होने वाला है ना अखिलेश जी,
4: कार्यक्रम होगा
1: प्रयागराज वाला,
4: एकदम हो रहा है, होगा, हम प्रयागराज में बैठे हैं,
1: कोई रोक रहा है क्या उसको,
4: कार्यक्रम असल एक निरस्त किया ना कार्यक्रम,
1: अच्छा
4: परमिशन निरस्त किया ना सरकार ने, क्यों डरे हुए हो, अभी तो निरस्त किए हो, मोदी जी के तो भाड़े के बीच भी भीड़ भी 2000-4000 आते हैं, यहाँ लाखों लाख नौजवान आ रहे हैं, नौजवानों से छल कर रहे हो आप, पर्चे लीक करा रहे हो, 200 से ऊपर पर्चे लीक करा चुके, 30 पर्चे यूपी में लीक करा चुके, कोई भी पर्चा पूरा नहीं हुआ अभी तक, यूपी में 2-3 पर्चे छोड़ करके पिछले 9 सालों से नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी आपने बर्बाद कर दी, जो 18 साल के थे 2014 में, वो आज जो 28 साल से ऊपर के होने जा रहे हैं, अब उनको अवसर भी नहीं मिलेगा, और आप चाहते हो नौजवान आपको छोड़ दे, सोचो कि आप किस पार्टी में हो, आपका नेता सदन को सम्मुख नहीं रह पा रहा है,
1: सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए,
4: ज्ञान बगा रहे हो,
1: और ये वाले सवाल जो है ना ये यूपी के चुनाव तक पीछा करेंगे, जो शेर वो भूल गए थे वो मैं अखिलेश जी आपके बिहाफ पे पूरा कर लेती हूँ आपकी अनुमति से, कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, ये वो आप पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो आपका पीछा करते रहेंगे दिल्ली के प्रोटेस्ट वाले यूपी चुनाव तक, तो इस पर सरकार सामने आकर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोल देती है, इससे क्यों पीछे भाग रहे हैं।
3: उत्तर प्रदेश में औसतन पिछले कई विधानसभा चुनावों से 90% सीटों पर जमानत जब्त करने वाली कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे पैर के नीचे जमीन नहीं है और हमें इसका यकीन नहीं है। अब ये दर्शक तय कर सकते हैं किसके पैर के नीचे जमीन नहीं है और किसको यकीन नहीं है। और मैंने बोल दिया, जब से सोनिया जी राहुल जी आए हैं सपा के समर्थन के बगैर कभी अपनी व्यक्तिगत सीट नहीं निकाल पाए हैं, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब रही बात छात्रों की, बात तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि छात्रों को लेकर जो संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है और जो असंवेदनशीलता इन्होंने दिखाई, छात्रों की गूंज, जिन 20 दिन राहुल गांधी विदेश में थे छात्रों की गूंज म्यूट कर दी गई थी, कौन कार्यक्रम नहीं होगा पोस्टपोन, क्योंकि साहिब आलम गए हैं धरती के किसी कोने पे विचरण करते हुए आनंद मंगल करने के लिए, फिर जब वो आएंगे इस धराधाम पर अवतरित होंगे, फिर आकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोटपोट होंगे, तब फिर गूंज को अनम्यूट किया जाएगा और तब वो आकर बोलना शुरू करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, छात्रों के मन में अगर रत्ती भर का विश्वास होता इस नेतृत्व के प्रति तो वो राहुल गांधी के पास जाते, कोई छात्र नहीं गया राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी की हिम्मत, वो खुद भी नहीं गए जंतर मंतर में, छात्रों का आंदोलन था। अखिलेश जी आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, जयप्रकाश नारायण थे तो सारे छात्र गए थे जेपी के पास, चौधरी चरण सिंह जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, उन लोगों ने नेतृत्व किया था। आप आइए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब निकले थे, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में गए थे, तब भी लोग उनके साथ आके खड़े थे। आज धेले भर का कोई व्यक्ति खड़े होने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि इनके पैर के नीचे जमीन नहीं। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, आज जो चुनौती हमारे लिए, उससे कहीं बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए। आप देखिए, तमिलनाडु में डीएमके गई, टीवीके खड़ी हो गई, दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी खड़ी हो गई, बिहार में प्रशांत किशोर आके खड़े हो रहे हैं। यानी ये जो विपक्ष आज दावा करता है, इसके लिए स्पेस खत्म होती जा रही है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष के ऊपर जनता कोई विश्वास नहीं है कि ये कोई समाधान दे सकता है। उसके बाद भी किस कदर ये शेर और शायरी सुना रहे हैं, तो विपक्ष के लिए और विशेषकर कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपकी तो स्थिति वो है जनाब कि आग लगे हमरी झोपड़िया में हम गावे मल्हार, मतलब बर्बादियों का जश्न ऐसा मनाते हुए चल रहे हैं, और उसके बाद आप इस हकीकत को नहीं समझ रहे। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और सारे लोगों का हित अनहित सारी चीजें देख के समझती है। जात बिरादरी के नाम पे आप कुछ भी करना चाहें, जो आपके असली चेहरे हैं वो सभी को पता। बिल्कुल, हम कहते हैं हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, हम सभी जातियों के उत्थान की बात करते हैं। जातिवाद और जाति में अंतर ये, जातिवाद मतलब सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, जैसे पूंजी सबके पास होती है, पूंजीवाद मतलब सब कुछ मेरे पास, एक ही जाति पे सब कुछ हो, यह जातिवाद है, और सभी जातियों का सम्मान हो, यह जातिवाद नहीं है। तो अगर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जुड़ रहे हैं तो यह जातिवाद नहीं है। जब एक ही जाति बोलती है वो जातिवाद होता है, एक ही परिवार बोलता है वो परिवारवाद होता है।
1: अच्छा, आपने अभी खुद ही माना है कि प्रशांत किशोर खड़े हो गए बिहार में, माना है ना सुधांशु जी, बांकीपुर आपके अध्यक्ष जी की सीट जीतकर?
3: मैं तो कह रहा हूं ना, विपक्ष की स्पेस भाई हमारे खिलाफ, सुनिए, हमारे खिलाफ कौन लड़ा है? प्रशांत किशोर और आरजेडी की जमानत जब्त हो गई। अब बताइए अंजना जी,
1: ठीक है, आरजेडी का कोई है नहीं कि वो बोले।
3: दिल्ली में
1: राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, उसके बाद से आशुतोष जी तुरंत आए,
3: कांग्रेस खत्म हो गई दिल्ली में।
1: राघवेंद्र जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कि दिल्ली, मतलब ये जात जात वाली पॉलिटिक्स चलती रहेगी, या ये दिल्ली और युवाओं का जो आंदोलन हुआ है ये सब भी उत्तर प्रदेश में सवाल पूछे जाएंगे?
5: अंजना जी, अभी जो स्थिति समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की है वो असमंजस में है। उनको पीडीए का फुल फॉर्म बार बार बदलना पड़ रहा है, वो एक फाइनल पैच नहीं कर पा रहे हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। हमारे जो नेता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने एक पीडीए का फुल फॉर्म बताया, पीठ देगा यही, वही वास्तव में पीडीए का फुल फॉर्म है। इनकी जब जब सरकार रही, अभी मैं तत्कालिक सरकार 2012 से 2017
1: बताऊं। एक बात बताइए, आपकी पार्टी और आपके नेता तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, कभी उधर कभी इधर, इतना सुनिए ना, इतना सुबह सुबह उठ के अखिलेश जी के लिए इतना जो वो रोज पोथी लिख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? पर्सनल हो गए?
5: भाजपा के साथ थे 2017 में विधायक अपने पार्टी से, 22 में सपा के साथ गए, भाजपा के साथ थे तब भी आप स्थिति देखी पूर्वांचल में क्या था, सपा के साथ गए तब भी आप स्थिति देखी कि पूर्वांचल में क्या था। 27 में हम सपा के साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए सपा के लोग बौखलाए हैं। वो बार बार, चूंकि क्या है ना, अखिलेश यादव के चचा हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो वो हमेशा सलाह देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं कि अभी भी अखिलेश यादव जी जो चंद लोगों से घिरे हुए हैं वो उनकी नफरत से और उनकी सोच से निकले। समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, अब अवसरवादी पार्टी रह गई है। समाजवादी पार्टी में जब ब्राह्मणों को गाली दिया जाता था, सनातन धर्म का जब ग्रंथ फाड़ा जाता था, जलाया जाता था, और समाजवादी पार्टी के जब शीर्ष प्रवक्ता जो राज्यसभा में जाने की सपना देख लिए थे, जब वो ब्राह्मण को वैश्या से तुलना कर रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कहां थे? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही, इनके पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई किया, चाहे वो देवरिया का रामपुर दुबे जो महुआडी चौकी कांड हुआ, या वो इटावा का मालवीय परिवार, वाजपेयी परिवार, तब कहां थे? कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बहुत हास्यपद बात कहे कि हमारी पार्टी 3 डिजिट में आएगी। क्या हास्यपद बात है? जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी लोकसभा हार के गए हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 2 सीट इनके पास है, वो 3 डिजिट में आएंगे, इससे बड़ा क्या हास्यपद हो सकता है? जिनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं है, अगर राहुल गांधी जी लखनऊ न आए तो 300 कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जुट पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी जो समाजवादी पार्टी के कैरियर पे बैठी हुई है, ये कह रही है कि हम 3 डिजिट में आएंगे, ये जनता है, जनता
1: अखिलेश जी, अखिलेश जी की इजाजत के बिना ही मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, अखिलेश जी कांग्रेस के लिए नहीं बोल रहे थे, मिली जुली की बात कर रहे थे, है ना अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर।
4: मैंने तो अभी अभी चुनाव में क्या बीजेपी 3 digit तक नहीं कर पाएगी यूपी में।
1: ठीक है,
4: आशुतोष जी सुनने को ये कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका अपना रहने दीजिए।
1: आशुतोष जी ये क्या डैमेज कंट्रोल भी है? आपके एक प्रवक्ता ने अपशब्द कहा था ब्राह्मणों के लिए, जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ इस वक्त। वो पूछ रहे हैं कि क्या डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ गई है?
0: नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मैं इनकी क्या बात करूं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, ये पता नहीं कब तक ये भाजपा के साथ में रहेंगे। हो सकता है कि चुनाव आते आते हमारी तरफ फिर भी चले आए। जो उधार के एमएलए लेके बैठे हुए हैं उनकी बातों का क्या करना। लेकिन बात बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी का आरोप लगाती है। हमको बस खाली ये बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन निषाद पार्टी के साथ आपने गठबंधन किस बिना पे किया है, अपना दल पे किस बिना पे किया है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से और आरएलडी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब योगी आदित्यनाथ को ओपी राजभर उठते उठते गाली ना दें, और जो गंदी गंदी गालियां कोई देने के बाद भी उनको चिपका के बैठा हुआ है। तो क्या उनकी राजनीतिक क्षमताओं को देखते हुए आपने इनसे गठबंधन किया है, ये आप जरा स्पष्ट करें। और भारतीय जनता पार्टी, इस बात को हमने पहले भी कहा कि वो पार्टी है जो कैबिनेट मंत्रियों के जातियों के साथ में प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से लिस्ट निकलती है। सुधांशु जी चुपचाप उस बात को दबा के चले गए। इन दोनों बातों का अगर जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आप दूसरे के ऊपर जातिवाद का ताला नहीं लगा आरोप नहीं लगा सकते। रही बात समाजवादी पार्टी की, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जो पीड़ित है, और फिलहाल इस समय सबको पता है कि अगर कोई सवर्ण जातियों में सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वो ब्राह्मण जाति है। अब वो सुधांशु जी की मजबूरी है वो ना बोले, लेकिन इस उत्तर प्रदेश का एक एक जन जानता है कि किस प्रकार के उनके ब्राह्मण एमएलओ को, ब्राह्मण एमएलसीओ को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार अपना कारण बताओ नोटिस तक दे पाए।
1: क्यों ये स्थितियां हैं? आशुतोष जी ऐसा क्यों है?
0: नहीं, क्योंकि देखिए बार बार लड़ाई वही है कि वर्चस्व की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। दो जातियां
1: किसके बीच में है?
0: नहीं नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इस जाति से आता हूं, और मुख्यमंत्री के लोग जो हैं उनकी जाति के लोग हैं, तमाम तरीके का प्रोग्राम करते हैं, जाति सूचक काम करते हैं, कोई नहीं बोलता।
1: सुधांशु जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री के होते हुए राजपूत वर्सेस ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणों को पीछे किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको तो चिंता नहीं सता रही है कि ये जो 83% आपके तरफ आया था 2017 में, फिर 89% 22 में आया था, फिर से एक बार दिखा दीजिए ग्राफिक्स, छिटक जाएगा।
3: देखिए, जब जो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि अब उनको अपने दम पर चुनाव जीतने पे भरोसा नहीं दिख रहा है। वो भाजपा के अंदर के काल्पनिक समीकरणों और काल्पनिक मतभेदों के आधार की नींव पर अपने जीत की इमारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो बात दिखाया ये CSDS ने असेसमेंट किया था अंजना जी, उसके अनुसार ब्राह्मणों ने 89% वोट किया था। कब? 2022 में, जब ये चरम पे था कि एंटी ब्राह्मण माहौल है। और CSDS ने बताया था कि यादव समाज ने 87% वोट किया था सपा को, और छत्री समाज ने 83% दिया था। ये CSDS, और CSDS योगेंद्र यादव वाला है, तो मतलब इस पे आप कोई आरोप नहीं लगा सकते कि हमसे कोई कनेक्शन है। आप लोगों के अनुसार तो वो एकदम सार्वभौम सत्य होना चाहिए। मगर ये जातिगत समीकरणों का यथार्थ क्या होता है, ये भी मैं अंजना जी कहना चाहता हूं। इसी उत्तर प्रदेश में एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। किसने लगाया था? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध दलितों ने लगाया था। और 2007 में उसी के दम पे मायावती जी आई थी। अभी बिहार के चुनाव में अंजना जी आप ही के ग्रुप का एक चैनल है ललन टॉप, जिसको दिए गए इंटरव्यू में मुकेश साहनी ने यह बात बोली थी कि अधिकतर मल्लाह समाज की प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, इसलिए वोट ट्रांसफर कराना मुश्किल हो रहा है। ये ललन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में यह बात उल्लेख होकर आई थी। तो इसलिए यथार्थ क्या है आज, और ये जो राहुल गांधी जी लोग बैठ के अपना अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई करते रहते हैं 70-80 के दशक में, वो सब गई। और मैं ऑन द लाइटर नोट एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए पीडीए का फुल फॉर्म क्या है अंजना जी, अगर आज ये पूछा जाए तो मुझे लगता है AI और जेमिनी भी चकरा जाएगा कि हम पीडीए का फुल फॉर्म क्या बताएं। और एंट्रेंस एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि बच्चों को चार ऑप्शन दिए जाएं, पीडीए का मतलब ABCD, तो मुझे लगता है एआई भी चकरा के कहेगा कि नन ऑफ द एबव का तो ऑप्शन ही नहीं है, या मैं पी कौन सा वाला पी बताऊं। आखिर में आप समझ लीजिए
1: आशुतोष जी, एक बार आशुतोष जी बोल रहे क्योंकि पीडीएफ लोग कह रहे हैं।
3: मैं एक चीज
0: देखिए, ये पजल, ये जो पजल है,
1: क्या करना है, पीडी से पंडित करना है, पिछड़ा करना है, क्या करना है?
0: मैं अभी बिल्कुल देखिए, ये पजल भारतीय जनता पार्टियों के पास जो है वो मार्च तक रहेगा, वो आज तक खोज नहीं पाएंगे, जैसे वो आज तक समझ नहीं पाए हैं कि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी अपने दम पे कैसे जीती, जो हम पे आरोप लगाते हैं। और जहां तक दलितों की बात करते हैं ना, अभी पिछले हफ्ते ही चिराग पासवान साहब जो है उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, जब उनसे पूछा गया, आपके ही लोग थे पत्रकार लोग, कि भाई आप क्या करने उत्तर प्रदेश में आए, कैन पासी पासवानों की स्थिति बड़ी खराब है उत्तर प्रदेश में, हम उनके लिए ताकत लगाने आ रहे हैं। हमने पूछा सरकार किसकी है, कहने सरकार किसी की भी हो, पासी पासवानों की इज्जत बचाने हम आए हैं। अरे अपने मुंह में अपने लोगों से पूछो कि वो क्या बता रहे हैं आपके बारे में। देखिए आप सब जानते हैं, निषाद समाज के लिए, कुर्मी समाज के लिए, राजभर समाज के लिए, जाट समाज के लिए, इनकी बैसाखियों पे भारतीय जनता पार्टी की किसी तरीके से सरकार चल रही है। एक भी नाराज हो गया ओपी राजभर 500 गाली दे दे, इनकी हिम्मत नहीं ओपी राजभर से पूछ ले कि भाई तुम मुझे गाली क्यों देते हो। निषाद समाज रोज बैठ के अपनी उल्टी सी सरकार पे आरोप लगे। अरे आशीष पटेल तो इनकी सरकार के खिलाफ चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे धरने बैठ गए, कह रहे सरकार मेरी हत्या कराने जा रही है। पूछ के हिम्मत है दिखा के दिखाए भाई, कौन हत्या कराने जा रहा है आपकी। ये सब जातिवाद करते हैं, और जब हम समाज के उन सब तबकों को लेने की बात कर रहे हैं जो पीड़ित हुए हैं, जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिसका तिरस्कार किया है, और बिल्कुल सार्वजनिक तिरस्कार किया है ब्राह्मणों का, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इनके
1: सार्वजनिक तिरस्कार हुआ है ब्राह्मणों का, जवाब दीजिए सुधांशु जी, तो फिर क्यों ना वो लपके। हालांकि इससे पहले लौटूंगी मैं, बहुजन को भी ऐड किया था एक बार अखिलेश,
3: मैं एक लाइन होता
1: बहुजन और समाजवादी पार्टी का रिश्ता गहरा है। ठीक है, पहले आप इसका जवाब दीजिए, कह रहे ब्राह्मणों का तिरस्कार हो रहा है, और आप तो खुद ही यूपी से हैं।
3: मैं बता दूं, अब मैं सार्वजनिक तिरस्कार का उदाहरण देता हूं, होता क्या है। अरे ये बाकी छोड़िए, यादव जाति का तिरस्कार होता है और ये कुछ नहीं बोल पाते। 2007 आजमगढ़ का दंगा, और मुलायम सिंह जी के सबसे खास रमाकांत यादव काहे छोड़ के आए थे, जब यादवों और मुसलमानों में संघर्ष हो गया था, तो क्या कहा था मुलायम सिंह जी ने, माफी मांगो मौलवियों से। और उस समय आरोप यह लगा था कि यादव समाज की बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी, और रमाकांत ने कहा माफी नहीं मांगेंगे। तब किसके पास सहारा मिला था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए थे और तब जाके सांसद बन के आए थे। भाई साहब अपने समाज के सम्मान का तिरस्कार की रक्षा नहीं कर पाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने सबके तिरस्कार की रक्षा की है। और अखिलेश जी के तब कहना नहीं चाहिए, मौलाना खालिद रशीदी ने तो क्या अभद्र कमेंट कर दिया था डिंपल जी के ऊपर, उसके बाद चुप्पी साधे रहे। यहां पे सारी जातिगत जो स्वाभिमान है वो जैसे बड़का वाला वोट बैंक दिखता है ना, उसके सजदे में ऐसा झुक जाता है कि जब अपनी यादव जाति का सम्मान नहीं रख पाए, बाकियों के तो सम्मान की बात ही क्या।
1: एक बार आशुतोष जी जवाब दे लें इसका, दो लाइन में, उसके बाद से अखिलेश जी बोलेंगे जल्दी, सिर्फ दो लाइन में। वो कह रहे हैं कि अपनी खुद की नेता का अपमान पर आप लोग चुप रह जाते हैं।
0: नहीं, ये जबरदस्ती की बातें निकाल रहे हैं। रमाकांत जी उस समय बीएसपी में थे, वो क्या बातें थी वो आप भी जानते हैं, वो जबरदस्ती की बात खोल, आज वो हमारे नेता है, और आपने कौन सम्मान कर दिया है, पिछले 5 सालों से उनको जबरदस्ती झूठे मुकदमे में जेल में डाल के रखा है। आप ये मत बताइए कि यादव का सम्मान कैसे है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि भाई आपने केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे राजनीति करी, 2017 में पिछड़ों को झुंझुना पकड़ाया, आखिरी में उनको किनारे हटा के एक छत्री जाति को बना दिया मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, स्थूल दे दिया। मैं कह रहा हूं विधानसभा अध्यक्ष बना देते,
1: ठीक है,
0: कुछ भी नहीं बनाया।
1: एक सेकंड, आपको टोक रही हूं, खबर इस वक्त एक आ रही है, शिक्षा के लिए 6% बजट की चर्चा, और इसी के साथ साथ जेन जी से संवाद कर रहे संघ प्रमुख, समाज माने तो कानून बनना जरूरी, जेन जी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, और ये कोशिश है जनसंपर्क करने की उन जेन जी युवाओं से जो उनके साथ आज इस टाउन हॉल में शामिल हो रहे हैं। आंदोलन भी संवाद का एक तरीका है, ऐसा मोहन भागवत कह रहे हैं, आंदोलन देश के खिलाफ नहीं। सुना लेते हैं आपको,
6: वो ज्यादा लाइक्स मिलते हैं, आज शायद से राहुल द्रविड को T20 टीम में मौका भी ना मिले, तो जमाना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए।
7: अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वी यानी
8: जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट? ये हमको विचार करना पड़ेगा. सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा. तो वहां एक बात, यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा.
6: दूसरा,

0: विषय, दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस. यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो,
1: तो आप सुन रहे थे मोहन भागवत को, जेंजी युवाओं के साथ वो संपर्क साध रहे, कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो देश के खिलाफ नहीं था.

0: नहीं था। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन आज रात 9 बजे जरूर रहेगा हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे, वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार करने वाले समाज से पूछेंगे कि क्या देश में संस्कारों का भी अंतिम संस्कार हो गया है। वीडियो कॉल पर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार, इतना समय नहीं कि खुद जा पाए। इसके बाद आपको बताएंगे कि अब माफिया आती कि अहमद का छोटा बेटा कैसे मारा गया, और आखिर में पनीर और खोया के शौकीन लोगों को शौक देने वाला स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे। एनालॉग पनीर क्या होता है, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आगे आगे
4: करेक्ट।
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पापा
7: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया
7: है। हाँ ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
10: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
14: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
13: असली शहद असली स्वाद।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक, the mustard specialist since 1933.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।
2: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
3: आज सबसे बड़ा महापाप, आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।
4: इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है। तो ये तो ये अरोगेंस ही बताती है कि 15 दिन से सदन चल रहा है और होम मिनिस्टर गायब है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, एक या तो वो पार्लियामेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट है ही नहीं, या तो वो डर के हाउस में आकर रिप्लाई देना नहीं चाहते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: हल्ला बोल में आज उत्तर प्रदेश की सियासत पर आप देख रहे थे चर्चा। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक सईद के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं और आज तक के इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में दिनभर की सभी बड़ी खबरें हम लेकर आपके लिए आए हैं। लेकिन आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, यह भी संवाद का एक तरीका, 6% होना चाहिए शिक्षा बजट। संसद में गतिरोध खत्म करने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। मेटा अफसरों से मुलाकात में सरकार की दूर, कहा भारत में नहीं चलेगा अमेरिकी कानून, AI डीप फेक पर भी सख्ती, महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट। हरियाणा के चरखी दादरी में गैंगवार से दहशत, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोग बुरी तरह से घायल, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। और इस शो की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जहां मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी से संवाद किया। संवाद के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जेनजी और जेन अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी अधिक देशभक्त और ईमानदार हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। मोहन भागवत ने दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के 4 दिन बाद कहा था कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें आदेश देने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए, हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए।
1: ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
2: आप क्या मानते हैं?
1: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह, बढ़िया है।
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: क्या बात है, वाह,
1: जैन फील्ड वर्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं है। अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है, मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ, मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खाके मैं पेट भरता हूं, लेकिन मेरी इज्जत ज्यादा है, मेरे पास कैश है, उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है। ये हमको, इसको कहते श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर, वी हैव टू रिगेन दैट। वो नहीं है, और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेबली नियर हिज होम ऑफिस शुड बी देयर, एंड एवरीबडी रशेस एट द सेम डोर एंड नो वन गेट्स इन, व्हाइल देयर आर फील्ड्स वेयर इज वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल। I also see what we call menial jobs. Doing that, people have earned wealth. There are buildings, panthela wala, puncture wala, aise log. Ek bachcha 8th mein padhai chhod ke hotel mein kaam kar raha tha. Consensus banane ka ek tarika hai. Lot of youth come together and a consensus is evolved. After discussion, that discussion may happen through dialogue. Due to various reason, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus. नॉट टू क्रिएट डिविजन्स. अब जेनजी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है. भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है. तो डायलॉग होना चाहिए. डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है. और मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में, हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे. तो उस समय की परिस्थिति. अभी जेनजी वो जेन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए.
2: करेक्ट.
1: और इसके साथ प्यार चाहिए.

0: संघ प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना। जेन जी आपकी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए उस हादसे की जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में कार हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक दोस्त सोनू, दोनों की मौत हो गई, दोनों की जान चली गई।
1: इस क्रेटा कार की तस्वीर देखने के बाद अंदाजा लगाना आसान है कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। कार के पर खच्चे उड़ गए हैं, क्रेटा कार कबाड़ हो गई है। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अपने चार दोस्तों के साथ इसी क्रेटा कार में सवार होकर प्रयागराज से झांसी जा रहा था, झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने। लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले कार ने बैलेंस खोया और कार डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि देखने वाले सहम गए।
2: गाड़ी के आगे गाय थी, उसने उसको बचाया, फिर पीछे से जीत थी गाड़ी।
3: अच्छा, उस गाड़ी जो आगे चली तो उसका क्या हुआ?
2: उसको वो चली गई,
4: गेट तोड़ के निकाला उनको बाहर।
3: फिर
4: एम्बुलेंस आ गई, उसमें
3: कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची?
5: लगभग तक्का लगाई थी, ऐसी सूचना दी गई पुलिस को।
1: हादसे में बच गए अबान के दोस्त से सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
6: डिवाइडर में कार लड़ गई, फिर जा रहे थे झांसी।
4: झांसी किस लिए जा रहे थे?
6: भाई से मुलाकात।
4: कौन भाई?
6: अली भाई।
4: कौन कौन था उसमें?
6: अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे।
1: मोहम्मद जायद, उमर और फारूक तो इस हादसे में बच गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई।
7: एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है और बाकी तीन लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए है, उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है।
1: उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान और उसके भाई अहजम को नाबालिग होने के कारण बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। अक्टूबर 2023 में दोनों को बाल संरक्षण गृह से रिहा कर दिया गया था। एक संयोग ये भी है कि अतीक अहमद के एक और बेटे असद का इसी झांसी में एनकाउंटर हुआ था। अब एक बार फिर झांसी में ही दूसरे बेटे की भी हादसे में जान चली गई। पुलिस अब इस हादसे की पूरी तफ्तीश में लगी हुई है। प्रमोद गौतम, झांसी आज तक।
0: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से अपनी अपनी रणनीति को तैयार भी किया जा रहा है।
8: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
9: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है। कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
8: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
10: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है।
11: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है,
10: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ दिया। कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती? कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती?
8: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
12: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
8: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है। जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
13: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
8: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: हर रोज की तरह आज भी संसद में जमकर हंगामा बरपा। लोकसभा राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया। सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से एक बार फिर से आज भी जवाब मांगा गया।
8: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
14: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
8: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं, मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
15: हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उनके उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
8: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खड़गे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या है।
14: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए।
8: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
16: हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
8: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने आज तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया और 10 साल जेल 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए भी कहा है।
8: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
17: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
8: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
18: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस था उसको किसी नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
0: और अब खबर उस सिस्टम की जिसमें एक आदमी अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि वो जिंदा है। दरअसल अधिकारियों की लापरवाही से एक जिंदा व्यक्ति का मृतक प्रमाण पत्र बना दिया गया मृत्यु प्रमाण पत्र। अब वो इस बात के लिए लड़ रहा है कि कागज पर दोबारा उसे जीवित दिखाया जाए।
8: कैमरे के सामने कागज लिए ये जो आदमी खड़ा है ना, ये मर चुका है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में टहल रहा ये आदमी जिंदा नहीं है। अरे यकीन कीजिए, ये सच में मर चुका है। शिवपुरी के साहबों ने इसे कब का दिवंगत कर दिया है। ये साहबों से कहता है कि ये जिंदा है मगर साहब कहते हैं कि जिंदा हो तो कागज दिखाओ, क्योंकि कागज पर तो लिखा है कि ये मर गया है और सरकारी काम मौखिक नहीं कागजी होते हैं, इसलिए ये आदमी साबित करने में लगा हुआ है कि ये जिंदा है। दरअसल हुआ यूं कि शिवपुरी में ससई निवासी गिटला आदिवासी के पिता का निधन 2022 में हो गया था। अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने ये नगर परिषद पहुंचे, मगर प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों ने लापरवाही से इनके पिता की जगह इनका नाम लिख दिया।
19: पिताजी का नाम क्या है?
20: जगनी आदिवासी।
19: तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना था?
20: हाँ, उनका बनना था।
19: और बना दिया? आपका बना दिया। क्या नाम है आपका?
20: गिटला आदिवासी।
8: अब इसका नुकसान ये हुआ कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना इन्हें बंद हो गया, लेकिन अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी।
21: और मेरे की जानकारी में भी नहीं है पूर्ण प्रकरण, आपके द्वारा मालूम पड़ा है और आपने अभी बताया है कि जनसुनवाई में शायद उन लोगों ने आवेदन भी दिया है, तो मेरे पास यदि आता है आवेदन तो मैं उसकी पूरी जाँच कराऊंगा।
8: बाबू साहब के एक दस्तखत ने एक जिंदा आदमी को रिकॉर्ड में मार डाला। सिस्टम कितना सड़ चुका है उसको बताने के लिए ये तस्वीर काफी है, जिसमें एक जिंदा आदमी कह रहा है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, विश्वास करो मेरा। मनोज भार्गव, शिवपुरी, आज तक।
0: कारोबार के दौरान शेयर घरेलू बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स 374 अंक चढ़कर 78,955, निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,636 पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरे चुनिंदा हैवीवेट शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स को सहारा मिला। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के असर और निवेशकों के सतर्क रुख के चलते निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की मजबूती के बावजूद रुपए पर दबाव बना रहा और डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते रुपए पर दबाव रहा। हालांकि कच्चे तेल की अपेक्षाकृत नर्म कीमतों ने इसकी गिरावट को सीमित रखा। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा। सोना 2,735 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,48,361 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 931 रुपए बढ़कर 2,25,493 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, घरेलू मांग के चलते सराफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को लगातार मिल रही है। और अब खबर पीओके की, जहां पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया, तो वहीं अब पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बता रहा है।
8: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता बार बार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
2: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो।
3: किसका?
2: आजाद कश्मीर में ये संदूर टू वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर टू का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
8: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोप आ गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
22: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर ऑल्सो डिस्ट्रप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones. And the area, of course, is at a standstill, as you can see.
8: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ke ek report ne kar diya. Theek yahi baat Bharat bhi keh raha hai.
23: Pakistan adhikrit Kashmir mein yah tathakatit chunav puri tarah se ek dikhawa hai. वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
8: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
1: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: पापा।
11: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का?
12: सब कैशलेस हो गया
11: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
12: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
11: चार्ज हुआ यार।
13: बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।
15: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
16: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है उसे इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बीच नाला पूरे उफान पर है। लहरें घरों के किनारों को छूती हुई तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुदरत के रौद्र रूप को देखकर लोग बेहद डरे हुए हैं। दिलों में खौफ है कि कहीं सैलाब का प्रहार उनके मकान को ही नुकसान न पहुंचा दे।
7: मौसम विभाग ने कहा है कि ये सिलसिला जो है एक हफ्ता और जारी रहेगा क्योंकि क्लाउड बर्स्ट को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी जा सकती है। कहां पर ये फटेगा, कहां फ्लश फ्लड आएगा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही इसका जो इलाज है कि लोग सतर्क रहे।
6: अब बांदीपोरा की ही एक और तस्वीर को देखिए। लहरें किस तरह उफनाई हुई हैं और हाहाकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। कई इलाके भी इन लहरों के जद में आ रहे हैं। राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फ्लैश फ्लड से यहाँ भी खतरा बढ़ा हुआ है। तमाम जगहों पर घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा है। गुरेज के कोरकबल इलाके में बादल फटने के बाद कुछ लोग लहरों के बीच फंस गए और कई मवेशी बह गए। वहीं पहलगाम में अचानक आई बाढ़ ने सड़क के कई हिस्सों को बहा दिया है जिससे पहलगाम का संपर्क प्रभावित हो गया है। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन बारिश के बीच इसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं बोले, संवाद को लेकर कहीं न कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। संसद में गतिरोध खत्म करने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। मेटा अफसरों से मुलाकात में सरकार की दो टूक, भारत में नहीं चलेगा अमेरिकी कानून, AI डीपफेक पर भी सख्ती, महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कॉन्टेंट। हरियाणा के चरखी दादरी में गैंगवार से दहशत, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोग बुरी तरह से घायल, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज हम करेंगे बात रांची की, जहां दिल्ली की तरह जंतर मंतर सज गया है। दिल्ली के जेंजी आंदोलन जैसा बड़ा हाइप तो नहीं है, लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके बाद अब पूरे देश में होने लगी है, लेकिन ये प्रदर्शन दिल्ली के आंदोलन से बहुत मायने में अलग है, जिसकी आज हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या झारखंड के जेंजी और जेंजी की आवाज वहां की सरकार नहीं सुन रही। देखिए रिपोर्ट।
1: एक जंतर मंतर रांची में भी सजा है। पिछले 13 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं, कुछ छात्र भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और तुलना हो रही सीधे दिल्ली के आंदोलन से। दिल्ली के आंदोलन में आरोप लगा कि जेंजी का यह प्रदर्शन हिंसक है, गाली गलौच वाला है, अपशब्दों वाला है। छात्रों ने अपने नारों, अपने पोस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी भी खूब आलोचना हुई। लेकिन रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन दिल्ली से इस मामले में बिल्कुल अलग है। मंच पर ही यह पोस्टर लगा है जिसमें सीधा लिखा है, बड़े शहरों की बदतमीजी देखा, झारखंड में संस्कार देखा, विरोध देखा पर हिंसा नहीं, आवाज देखी पर अपमान नहीं, न पत्थर देखा, न हिंदुओं का अपमान देखा, न गाली गलौच देखी। और अपने आप यही एक पोस्टर ये बताने के लिए काफी है कि रांची का आंदोलन दिल्ली से अलग क्यों है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये तय किया हुआ है कि उनके मंच का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक या धार्मिक वक्तव्य के लिए नहीं होगा।
2: जब हम इस मंच पर आते हैं तो आपको यहाँ बाबा अम्बेडकर दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी यहाँ दिखाई देते हैं, शिबू सोरेन भी दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ एक नियम ये जरूर है कि मंच से किसी प्रकार का राजनीतिक धार्मिक जातिगत व्यक्तित्व वक्तव्य नहीं होगा। आंदोलन के मूल निर्देशों पर ही अपनी बात होगी। और ये भी कहा है कि लड़ाई व्यवस्था में सुधार की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित न करें, अपशब्दों का प्रयोग न करें। और उसी के साथ जो तिरंगा है वो राष्ट्र का प्रतीक है। और इसी के साथ साथ आपको इस आंदोलन के वो रंग दिखाते हैं जो अहिंसा से है, सादगी से है, लेकिन नया है और इसीलिए बहुत प्रभावशाली है। न्याय नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए, तुमसे ये उम्मीद नहीं था हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, AI के जरिए बनाई गई इन तस्वीरों को, एजुकेशन इज आवर राइट नॉट अ प्रिविलेज, ये है वो जेंजी का आंदोलन। वो इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि इनके तरीके नए हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं।
1: आंदोलन जब ऐसा हो तो सरकारों का घबराना भी लाजमी है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं, सरकार थोड़ी झुकती दिख रही है। झारखंड सरकार से बातचीत के लिए 8 छात्रों का दल बनाया गया, उनके अलावा एक वकील और 2 तकनीकी जानकार भी हों। झारखंड सरकार बैठक का समय और स्थान छात्रों को बताएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र आंदोलन के बीच 4 मंत्रियों का एक दल बनाया, लेकिन छात्रों की मांग थी कि सीधे हेमंत सोरेन छात्रों से बात करें और ये बातचीत मीडिया के 2 प्रतिनिधियों के सामने।
2: 13 दिनों से यहाँ झारखंड में JPSC, JSSC उन परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ ये छात्र यहाँ पर धरने बैठे हैं। कोई अनशन पर है तो कोई इस उम्मीद में है कि सरकार उनकी मांगों के आगे झुकेगी। एक छोटा सा राज्य जिसका जन्म ही एक आंदोलन से हुआ था, आज उसी की अगली पीढ़ी, भविष्य जो है वो इस आंदोलन में है, वो इस धरने में है। बैनर, पोस्टर, युवाओं की जो पहचान, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, AI, हर वो व्यंग ऐसा है जिसको देख करके आगे सरकार झुकती है क्योंकि इसका दबाव महसूस होता है। वाली आप लोगों की अब क्या तैयारी है बातचीत को लेकर?
3: सरकार ने हम लोग को अंततोगत्व बात मानी और हम लोग को बुलाई है। अब हमारा डेलीगेट टीम, उनके द्वारा बोला गया कि आप डेलीगेट टीम को मेरे पास समक्ष रखिए। हम लोग ठीक है, टाइम हम लोग को दीजिए। आज हम लोग को फाइनल मीटिंग हुआ है और टाइम अभी तो नहीं आई है और टाइम बता दिया जाएगा। और हम लोग कोर कमेटी में जो मेंबर है ना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि किन किन को हम लोग को भेजना है, तो उसमें जो भी रहेंगे एक्सपर्ट रहेंगे।
2: कितने लोग हैं आप लोग जाने वाले?
3: सर अभी तय तो 10 आदमी को हम लोग किए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कितने लोग को बुलाया जाता है ये कुछ देर में आप लोग को हम लोग बता पाएंगे।
2: ये आप लोग बातचीत के लिए अब जा रहे हैं।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायत लेकर बैठे इन सभी छात्रों की अलग अलग कहानियां हैं। कोई 8 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से, कोई प्री मेंस सब निकाल लेता है तो इंटरव्यू में छंट जाता है। छात्रों का आरोप है कि नौकरियों में सीधे खरीद फरोख्त होती है, रेट लगता है जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिलती।
2: परीक्षाओं में अनियमितताओं ने अब छात्रों के धैर्य की परीक्षा लेनी शुरू कर दी, और अगर ऐसा नहीं होता तो झारखंड में 25 साल की ये मनीष आते नहीं। जो जेपीएससी है 11, 12, 13, 14 चार परीक्षाएं दे ली, सीजीएल की परीक्षाएं दे ली, इन परीक्षाओं के बाद हुआ क्या?
4: इन परीक्षाओं के बाद बस पेपर लीक हुआ है, क्या कट ऑफ है कुछ पता चल नहीं पा रहा है। 25 साल हो गया, एक पीढ़ी का तो मतलब उम्र पार हो गया। उन्होंने भी देखा अपने सामने नौकरी को बिकते हुए, धांधली लगते हुए कि पारदर्श, और ये उन्होंने हमें बताया है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता, बैकडोर एंट्री होता है, पैसा दो नौकरी लो। अगर आप पढ़े लिखे हुए भी नहीं है ना, तो झारखंड में ये व्यवस्था है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा ले लीजिए, और उसके बाद फिर कोई एजेंसी परीक्षा ले रही है तो वहाँ पे पैसा देके नौकरी ले लीजिए। ये व्यवस्था है झारखंड में, हम लोग सेट लगाते रह जाते हैं, बैकडोर से आके सेटिंग करके चल जाता है।
1: समस्या ये है कि छात्रों की उम्र होती जा रही है, अनुशासन भी है, इंटेलिजेंस भी है, डेडिकेशन भी है, नौकरी की चाहत भी है, मेहनत भी है, लेकिन जब नौकरियों में धांधली हो जाएगी तो ये छात्र करेंगे।
5: सर, बचपन से जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद पिताजी से बात हुई कि मैं आगे क्या करूं, तो पिताजी का बड़ा शौक था कि सिविल सेवा का तैयारी करो, और आसपास में कई सारे भैया लोग भी सिलेक्टेड थे तो उनको देखो मैं भी तैयारी शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे इस दलदल में घुसते चला गया, समय निकलते जा, आज सब मैं 29 के एज में पहुंच चुका हूं। आज मेरे पास कोई भी एक जॉब नहीं है, नहीं तो कोई एक सोशल सिक्योरिटी मेरे पास, तो बहुत मतलब अभी क्या हो रहा है कि कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं, उसमें या तो पेपर लीक हो जाती है या तो पर्दे के पीछे इस तरह का सेटिंग हो जाती है, तो पूरा सर हौसला ही टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है करूं तो करूं क्या, मतलब आगे कुछ भी समझ नहीं, पूरा ब्लैंक हो चुका है, आगे का भविष्य पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है।
1: सरकारों तक अपनी बात पहुंचवाने के लिए अब इन्होंने ये लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है, और इसी की वजह से सरकार उनकी सुन रही है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब इस बातचीत का कोई नतीजा निकल पाएगा।
2: छात्र ये कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। ये दरअसल नई पीढ़ी है, ये इस तरह के हंगामे नहीं करती। इनके हंगामे इनके पोस्टर में, बैनर में, ये एआई के नारों में पीछे लगा रखा है ना उन्होंने, कुछ पुच्चू जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर दो ना, अब इस तरह के नारों में इतना दम है कि इससे आप कहते ना कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई। ये नई पीढ़ी है, ये हंगामा नहीं करती, ये बस शांति से बैठ के अपने नारों से सरकार हिला देती है। और संभवतः इसीलिए सरकार को अपने मंत्रियों को बना भेजना पड़ा है, यहां से 10 छात्र हैं उनका डेलीगेशन भी तैयारी रहा है जाने के लिए, और वो चाहते हैं कि सारी बातचीत कैमरे पर हो। अभी इस तरह के हालात बने हैं कि हम तो एक परीक्षा देख रहे हैं। ये मनीष है 25 साल के, इनके पिता झारखंड मुक्ति के आंदोलन में थे, माता शिक्षिका थी और वो उस आंदोलन में शामिल रहे अपने अधिकारों के लिए। यहाँ तो पेट से ही आंदोलन सीख करके बच्चे आए हैं, अब इतनी तैयारियां, तीन परीक्षा दी, नतीजे नहीं आए, कहीं पेपर लीक हो गया, तब ये धरने पर बैठ गए। अगर झारखंड के छात्रों का देखें प्रतियोगी को, कि सरकार का आकार यहां छोटा है, सरकारी नौकरियां कम है, साल तीन साल चार साल पांच साल में 150 की सीट निकलती है या तो पर्चा लीक हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि सीआईडी जांच से भरोसा नहीं है, वो भी जेपीएससी परीक्षा करके दिए एएसपी डीएसपी बने हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? ये ब्रिज किशोर देवघर से छोड़ करके आए, दो परीक्षा दी, एक में मेंस तक पहुंचे, दूसरे में अभी मेंस का नतीजा नहीं आया, कहीं प्रीलिम्स फंसा हुआ है। इस तरह की स्थिति में चाहते हैं कि सरकार एक आश्वासन दे, कम से कम 14वीं परीक्षा के जो नतीजे उसे रद्द किया जाए।
1: आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।
0: दिल्ली की ही तरह रांची में भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त से चल रहा है। आंदोलन में सैकड़ों छात्र शामिल हैं, दिन रात यहीं पर टिके हुए हैं, 7 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन बाकी जो सैकड़ों लोग वहां मौजूद हैं उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम हो रहा है। रांची के लोकल से लेकर किसानों तक और बाकी दूसरे बड़े शहरों तक के लोग इनकी मदद कर रहे हैं, ऑनलाइन ऐप से खाने की डिलीवरी भी हो रही है।
1: रांची में प्रदर्शन का मंच सजा, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, और दिल्ली की ही तरह यहां भी खाने पीने का पूरा इंतजाम है। रांची से बाहर के लोग ऑनलाइन ऐप से खाना भेज रहे हैं, और कुछ लोग यहीं आकर खाना खिला रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बिरयानी बांटने वाले जुनैद भी रांची पहुंच चुके हैं। जुनैद से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है, सवाल उठा चुकी है कि उनके पास छात्रों को बिरयानी खिलाने का पैसा कहां से आया, लेकिन अब वो रांची पहुंच गए।
2: दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों को खाना खिलाने जब जुनैद पहुंचे, बड़ा बवाल, बड़ा सवाल हुआ, बड़ा पूछा जा रहा था इंस्टाग्राम पे, आप कहां हैं जुनैद भाई, क्या लेकर के आया फिर आपको रांची?
6: हम छात्र छात्राओं के हित के लिए आए हैं और छात्र हित के साथ ही देश का हित जुड़ा हुआ है। यहाँ की बहुसंख्या आबादी युवाओं की है और युवाओं के साथ अगर अन्याय होगा, उनके साथ अहित होगा, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा।
2: आप ताने सुनने को मिले थे क्या कि जुनेद भाई जंतर मंतर पहुंचे, यहाँ क्यों नहीं आ रहे?
6: अरे हम उस तरफ नहीं देखना चाहते हैं। हमारे आपको पता ही है किस तरह पुलिस के हमारे घर वालों के साथ और हमारे साथ किस तरह व्यवहार चल रहा था, तो हम उसके कारण उसमें फंसे हुए थे। और कुछ छात्र छात्रा हमारे डिटेन थे, उनको भी हमने छुड़वाने का प्रयास किया, उसी में लगे रहे, इसलिए नहीं आ पाए। हमारी टीम के लोग यहाँ पर आए हैं।
2: और क्या क्या लेके आए आप बच्चों के लिए?
6: और लोग भी आए हैं, अभी हम नमकीन लाए थे, बिस्किट लाए थे और बहुत सारी चीजें लेकर आए थे, और इसी तरह लगातार यहाँ पर जारी रहेगा।
2: जब पुलिस ने तो नहीं नोटिस किया, घर वाले पहुँच गए?
6: अभी तक तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, अब देखते हैं यहाँ पर और क्या कहते हैं।
7: रांची के आसपास के किसान भी छात्रों की मदद कर रहे हैं। कुछ किसानों ने वॉलंटियर्स को बुलाकर छात्रों के लिए 3 एकड़ में लगे खीरे ही भिजवा दिए।
2: गर्मी उमस का मौसम है ना, तो खाने पीने के लिए अब खाना तो आ ही रहा है, अब तो खीरा वीरा भी आने लगी है, तो कैसे पहुंचे यहाँ पे?
8: भैया ये हमें, मेरा नाम भैरव है, डे फर्स्ट से हम लोग 2 टाइम का भोजन व्यवस्था यहाँ करवा रहे हैं। जितना हो सकता है ब्रेड फ्रूटी पानी का बोतल, रात्रि का भोजन दाल चावल हम लोग व्यवस्था प्रतिदिन 2 टाइम करवा रहे हैं। लेकिन कल हमारे साथ एक घटना घटती है कि रात को कुछ किसानों का फोन आता है रांची के ग्रामीण क्षेत्रों से, वो बोलते भैरव भैया हम लोग भी कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आप लोग कल आइए। सुबह हम लोग पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र में, 10 किसान आए और उन्होंने कहा 3 एकड़ खेत में हमारा खीरा लगा हुआ है,
2: सारा यहाँ भेज दिया।
8: और उन्होंने स्वयं बोला कि आप लोग भी मिलिए और हम लोग सब मिल के तोड़ते हैं। पूरे गांव के लोगों ने खीरा तोड़ा, हम लोग तोड़े और गाड़ी में भर के लाए, और सुबह से खीरा न खत्म होने का नाम ले रहा, न विद्यार्थी खत्म होने का नाम।
7: ऑनलाइन एप्स के डिलीवरी बॉयज लगातार यहाँ डिलीवरी कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई रांची झारखंड से उन्हें ऑर्डर आ रहे हैं, कभी समोसे कभी कचौड़ी सीधे डिलीवर हो रहे हैं।
2: आप लोग कहाँ से आए खाना लेके ये, और भेज कौन रहा है पता है? हाँ। किसके लिए भेजा इन्होंने?
9: ये तो यहाँ पे कम्युनिटी के लिए भेजा गया है। यहाँ पर
2: बता रहे हैं किसको देना है?
9: नहीं बताया, नहीं कुछ
2: कह रहे, किसी को भी दे दो। आप क्या लाए हैं?
9: वही है, साथ में।
2: अच्छा, इनके साथ ही हैं। कौन कौन कहाँ से आ रहा है खाना, कौन भेज रहा है?
9: ऐसे तो देखिए कन्फर्म नहीं हुआ, बहुत आदमी धनबाद से भी किया है, बहुत दिल्ली से भी किया है।
2: और ये कब से शुरू हुआ है?
9: अभी तो हम लोग लगभग लगता है 2 हफ्ते से पहुँचा रहे हैं।
2: 2 हफ्ते से यहाँ पे। आप क्या लेके आए भैया?
10: समोसा लेके।
2: ये समोसे हैं। अच्छा, किसने भेजा पता है?
10: कमेटी से यहाँ।
2: किसको बोला उन्होंने देने के लिए यहाँ पे?
10: जो आएगा दे देने बोला, सब वही तो ग्रुप में सब पर।
7: रात होते ही यहाँ केसर वाला दूध बंटने लगता है। बांटने वाले भी रांची के ही रहने वाले लोकल हैं।
11: सर आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं?
12: हम यही झारखंड से ही है।
11: झारखंड से ही है। और आज ये केसर दूध जो आप यहाँ पे बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे रहे हैं, किस उससे दे रहे हैं?
12: हम एज एन सेवा दे रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ पे।
11: आज सेवा दे रहे हैं? आर यू विद देम ऑन देयर कॉज?
12: बिल्कुल, हम उनके साथ ही है, तभी हम यहाँ आज खड़े हैं उनके लिए,
11: उनके लिए, बच्चों के लिए खड़े हुए। देयर डिमांड्स आर जस्टिफाइड।
12: बिल्कुल।
11: सब
13: प्रोटेस्ट लोगों के हित के लिए, और जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो सब लोगों के हित के लिए हो रहा है। सब कोई अपने लिए लड़ रहे हैं और जो लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं।
11: So you want to be counted for?
13: बिल्कुल।
7: प्रदर्शनकारी भी यहाँ दिन रात डटे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पहली बार ऐसा प्रदर्शन हो रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। हालांकि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों के खिलाफ आवाज तो पहले भी उठी, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन पहली बार बना है।
14: मैम, जैसा कि शिबु सोरेन जी को झारखंड निर्माता जाना जाता है, उनके कुछ सपने थे झारखंड को लेकर के, उनके कुछ एस्पिरेशंस थे झारखंड को लेकर के, उन सपनों पे उनके पुत्र और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पानी फेरने का काम किया है।
0: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: अब रिजू से इसे मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम डीएसओ में पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। And this rule book, what it says, you are insulting.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: अब रिजु से इसे मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए तो मैं पढ़ू? अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, when to speak, how to speak. This is the rule book. And this rule book, what it says, you are insulted by member. And Pawan Khera, you took his name and you are insulting him as if you are everything. And sir, just I want, we raised only junior questions concerning to the country, concerning 140 crores people asked us question, and we are asking only Home Minister come, Prime Minister should come to your statement.
5: No, we are asking nothing.
3: This is about irrelevance of reputation. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious reputation, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. Har din Kharge ji khade hote hain, jo likh ke laate hain, same cheez padhne lag jata hai. Baar baar usko aap mauka dete hain, chairman sir aur Kharge sir same cheez bolte hain. ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए। और सर, कांग्रेस के ये नए सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा, इनका अभी मैदान स्पीच भी नहीं हुआ, इनका अभी मैदान स्पीच भी नहीं हुआ,
5: और
3: सदस्य को
5: समझे।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: ये भ्रामक खबर है, झूठी खबर है। सोनम वांचुक सर से बात करने के बाद जो मैं जल ग्रहण नहीं कर रहा था, बस जल ग्रहण कर रहा हूँ और अभी भी भूख हड़ताल जारी है और आज पांचवा दिन है। कैसे झूठा खबर और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है।
5: आपने फिर जल ग्रहण किया था, अन्न नहीं लिया था?
4: हाँ, अभी भी भूख हड़ताल जारी है, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा हूँ और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी। साथ ही साथ झारखंड के समस्त स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हो जाते हैं।
6: जो घटनाएं घटी, इससे पहले जो परीक्षाएं घटित हुई जिनमें स्पष्ट सामने आया था कि नेपाल में परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में जाकर उन्हें परीक्षा पत्र रटवाए जा रहे हैं, ये मामले स्पष्ट रूप से प्रकाश में आए थे। और सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह है। अगर केंद्र सरकार आ जाती है तो प्रश्न चिन्ह होता है, अगर केंद्र ना रहे तो निष्पक्ष हो जाती है। तो मेरे हिसाब से एजेंसियों पर तो प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन फिलहाल जो छात्रों की मांग है हमें लगता है, और सरदार पटेल भी कह के गए हैं कि लोकतंत्र में लोगों का एक बड़ा सा समूह जो अगर मांग करता है उस मांग पर चर्चा करनी चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आपसे कुछ ही क्षणों में देखिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, कहा जेन जी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं। बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। विधानसभा चुनाव से पहले जेंजी पर योगी सरकार का फोकस, नई युवा नीति बनाने पर सीएम ने की समीक्षा बैठक। योगी ने कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। संसद में गतिरोध खत्म करने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा। अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी। ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। मेटा अफसरों से मुलाकात में सरकार की दो टूक, कहा भारत में नहीं चलेगा अमेरिकी कानून। AI डीप फेक पर भी सख्ती, महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कॉन्टेंट।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo।

0: के 8 बज रहे हैं और वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जेन जी से संघ प्रमुख मोहन भागवत के संवाद की, जिसमें सरकार की कार्रवाई से लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का आज मोहन भागवत ने जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या जंतर मंतर पर छात्रों से पहले ही बात करनी होती तो आंदोलन नहीं होता, तो इसके जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि जो नहीं होना चाहिए जब होता है कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती है, लेकिन गलती ठीक कर ली जाएगी। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
0: दूसरा अहम सवाल पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर हुआ। मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या ऐसा होना चाहिए था। मोहन भागवत ने कहा कि सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक भरोसे की बात है तो मैं जेन जी पर विश्वास करूंगा।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात,
2: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें हैं ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
0: शिक्षा के सवाल पर जेन जी को जिस तरह से देश भर में समर्थन मिला उसे देखते हुए सरकारों के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देना अब सियासी जरूरत होता जा रहा है। शिक्षा से जुड़े सवाल पर मोहन भागवत ने कहा कि वो मानते हैं कि शिक्षा का बजट जीडीपी का 6% होना चाहिए।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: आरएसएस प्रमुख ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी पहले की तुलना में अलग सोच रखती है। उन्होंने कहा कि जेन जी और जेन अल्फा के युवा किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार नहीं करते, वे हर विषय पर तार्किक और तथ्य आधारित जवाब चाहते हैं। वो हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त हैं।
2: हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए. पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है. तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी ये जो 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह, तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका?
1: आपके प्रश्न में ही उत्तर है. नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले. न तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है. तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के, वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना. हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका. तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है.
0: जेन जी और जेन अल्फा से सीधा संवाद करने की अगुवाई सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देखी गई. इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक वीडियो पीएम की तरफ से पोस्ट किए गए. जेन जी को इसी तरह का भरोसा देने की कोशिश शायद संघ प्रमुख की तरफ से भी की गई है. इसके लिए उन्होंने जेन जी के लोकप्रिय शब्द क्लॉक इट का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब सहमति होता है, यानी मैं आपसे सहमत हूं. जेन जी की संख्या इस वक्त देश के वोटरों में करीब 20% से ज्यादा है, यानी हर 10 वोटर में अभी 2 जेन जी हैं, जिनकी संख्या 2029 तक और भी ज्यादा होने वाली है. उससे पहले सबको जेन जी की चिंता है, इसी चिंता पर आगे आपको हम खबरदार करेंगे. लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से आई खबर से खबरदार कर दें, जहां आज अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की कार पलट गई जब वो झांसी में जेल में बंद अपने भाई से मिलने जा रहा था. अतीक के 5वें बेटे की इस हादसे में मौत हो गई.
3: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आदरणीय श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं.
4: तीन साल पहले 3 दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद. अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
5: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है. उस इंसाफ को दिलाने में मुकदमा मुकदमा जेल चप्पल जो भी हो जाए उसकी कभी हमने परवाह नहीं किया, कभी परवाह नहीं किया.
4: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था.
6: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए, वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है.
4: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी.
7: इसी हाउस को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे.
4: इसके 3 साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया. फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का 5वें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान समेत 2 लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
8: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
9: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
4: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
10: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
11: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते हैं।
10: तूफान और हम जब भी आते हैं
11: कसम फाड़ के जाते हैं।
4: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
9: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज।
4: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हो। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
12: डिवाइडर में कार जा रहे थे झांसी।
13: आज किस लिए जा रहे थे?
12: भाई से मुलाकात।
13: कौन भाई?
12: अली भाई।
13: वन कौन था उसमें?
12: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
13: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
12: हाँ, छोटे वाले।
13: क्या नाम था उनका?
12: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
13: जेल में?
12: जी।
4: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
8: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
4: 100+ थी। इस तरह आबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के 5वें बेटे आबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: इस वक्त अतीक अहमद के परिवार का हाल देखें तो अतीक खुद 2023 में मारा जा चुका है, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 2023 से फरार है, उस पर 50,000 का इनाम है, 6 केस है। वहीं अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरे नंबर का बेटा अली झांसी जेल में बंद है, जिससे मिलने के लिए 5वें नंबर का बेटा आबान जा रहा था, हादसे में मारा गया। तीसरे नंबर का बेटा असद 2023 में एनकाउंटर में मारा गया। चौथे नंबर का बेटा अहजम इस समय अतीक के रिश्तेदार के साथ रहता है। 5 बेटों की मां शाइस्ता बेटे असद के एनकाउंटर और पति अतीक की हत्या के बाद दोनों के जनाजे में नहीं पहुंची थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाइस्ता अबान के जनाजे में शामिल होगी, जबकि कल यानी शुक्रवार को प्रयागराज में ही अतीक की कब्र के पास ही सुपुर्द खाक किया जा सकता है। वहीं इसी अतीक का भाई अशरफ भी 2023 में मारा जा चुका है, जबकि अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार चल रही है।
4: 3 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ की आपराधिक संपत्ति मिट्टी मिट्टी की गई, 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति या तो कुर्क हुई या बुलडोजर से खत्म हुई, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो सीधे बुलडोजर चलाकर अतीक के कब्जे से आजाद कराई गई।
14: सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए।
4: जिंदा रहते जिस अतीक अहमद को अपने माफिया राज को मिट्टी में होने और वर्चस्व को रगड़े जाने का डर रहा, सच है कि सिर्फ अतीक के आतंक को रगड़ा ही नहीं गया, अतीक के वर्चस्व की जमीन पर उसके आतंक को दफनाकर गरीबों का महल भी खड़ा किया गया। योगी आदित्यनाथ ये दिखा चुके हैं कि बुलडोजर से सिर्फ विनाश अपराधी का नहीं होता, बल्कि बुलडोजर से आगे फिर गरीबों के घर का विकास भी किया जा सकता है। लेकिन अतीक लोग खत्म करने के बाद अब एक सवाल ये भी, जहां प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में वो खुद अपने भाई अशरफ अपने बेटे असद और दूसरे पुरखों के साथ दफन है, क्या प्रयागराज के उसी कब्रिस्तान में जब झांसी के सड़क हादसे में मारे गए बेटे आबान का शव मिट्टी में दफन होगा, तो क्या 3 साल से फरार शाइस्ता आबान को आखिरी बार देखने आएगी। एक चुनावी मंच की आपको हम याद दिलाते, मंच पर तब सबसे आगे बढ़ती एक बुर्का नशी महिला को देखिए, इसका नाम है शाइस्ता परवीन। इस महिला के पीछे दूसरी बुर्काधारी महिला, फिर पीछे तीसरी बुर्का पहने एक महिला और फिर चौथी बुर्का पहने महिला चुनावी मंच पर चढ़ती है। ये तस्वीरें 2023 जनवरी की है, पीछे पूरी एक लाइन जिन्होंने बुर्का पहन रखा। ये वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा इसमें खास क्या है, खास यही है कि बुर्का पहनकर 2023 तक चुनावी मंच पर अपने शौहर अतीक की राजनीतिक कमाई को बचाने के लिए जान लगाने वाली शाइस्ता हमेशा ऐसे ही बुर्काधारी महिलाओं के इर्द गिर्द घिरी रहती है, जो 2023 से अतीक के मिट्टी मिट्टी होने से अब तक फरार है। अब प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पर प्रशासन और पुलिस की नजर रहेगी, क्या इस कब्रिस्तान में बेटे आबान को जब दफनाया जाएगा तो शाइस्ता पहुंचेगी।
15: ये अतीक अहमद के परिवार की कब्रें यहां पर सुपुर्द खाक कब्रें हैं, जहां पर अतीक के परिवार के लोगों को डेथ होने के बाद सुपुर्द खाक किया जाता है। मेरे अगर कैमरे में देखेंगे तो कुल 5 कब्रें नजर आ रही है, आगे की 2 कब्र जो है अशरफ और अतीक की है, जिसमें से जब उनकी हत्या हुई थी तो उन दोनों का यही इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया था, यानी पहले नंबर वाली कब्र अशरफ की है, दूसरे वाली अतीक अहमद की है। उसके पीछे आप देखेंगे तो ये अतीक अहमद के अम्मी की और उसके बाद अतीक अहमद के अब्बू, और उसके बगल में जिस देखेंगे तीसरे नंबर की उधर की तो वो असद अहमद की है, जिसे उमेश पाल मर्डर केस के बाद पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था, उनकी कब्र। यानी ये 5 लोगों की कब्र अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए लोगों की है। अबान अहमद की भी जब डेड बॉडी अगर प्रयागराज पोस्टमार्टम के बाद आएगी तो इसी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
0: अब बात यूपी के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की, जो मरम्मत होने तक टोल फ्री हो गया। हम लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। उद्घाटन के 20 दिनों के अंदर 5 बार सड़क धंसने की वजह से यह सुर्खियों में है, लेकिन आज उसकी चर्चा फर्राटेदार पंखों की वजह से हो रही है। मरम्मत की इस तकनीक पर लोग लिख रहे हैं, कोई इसे चुरा न ले।

0: 13 जुलाई को जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को अमेरिका जैसे हाईवे होने का वचन दिया गया, जो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे, उसकी गत को सारा देश देख और समझ रहा है। जिस एक्सप्रेसवे के 1 किलोमीटर के हिस्से को बनाने में जनता के 75 करोड़ रुपए तक लगे, वो शुरू होने के बाद 5 जगह तक धस गया और अब इन पंखों की वजह से सुर्खियों में आया है। जिस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का अभिमान बताया गया, उसका मजाक उड़ रहा। इसकी वजह एक्सप्रेसवे पर चलते ये पंखे,
1: जहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है।
2: लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है, मिट्टी गीली है।
0: सारा देश सोच रहा है कि 4,700 करोड़ रुपए में जिस एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक से बनाने के दावे किए गए, उसकी मरम्मत में ये पंखे कहां से आ गए।
2: NHAI ने ये प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं, यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए NHAI ने देखिए पंखे लगवाए, इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर, जिससे कि मिट्टी सूखे और काम में तेजी लाई जा सके।
0: इस वीडियो को साझा करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है, यह है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेसवे स्पीड से मरम्मत को सुखाने के पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह हास्यास्पद है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि 2-3 हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा, उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा। 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को धूमधाम से हुआ, लेकिन 23 दिनों के अंदर 5 जगह सड़क धंसने की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया।
3: इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर, जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि 2 बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है।
0: इसी मरम्मत के दौरान पैचवर्क को जल्दी सुखाने के लिए 10 बड़े पंखे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सवाल उठा कि दावा तो इस एक्सप्रेसवे पर हवा में सफर का किया गया, लेकिन 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले इस हाईवे पर नौबत पंखा चलाकर नमी को हटाने और सड़क को बनाने की आ गई।
3: टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करके ये पता चला कि जब सड़क बनाई जाती है, जब ये एक्सप्रेसवे की सड़क बन रही थी, तो जिस तरीके से गिट्टी और साथ ही साथ सीमेंट या तमाम जो बाकी तार कोयल उसका इस्तेमाल होता है, वह सही मात्रा में होना चाहिए और साथ ही साथ सही टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर सही टेम्परेचर पे इस्तेमाल नहीं किया गया, गिट्टी नहीं बिछाई गई, अगर वह थोड़ी बहुत भी ठंडी रह गई, तो होता क्या है, कुछ समय बाद जब रोड बन जाती है, पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाने के बाद कंपोजिशन जो है वो अपने आप को गिट्टी छोड़ने लगती है, अलग होने लगती है, जिसकी वजह से पूरी सतह जो है वो खिसकने लगती है।
0: सड़क सुखाने के लिए फर्राटा पंखों के इस्तेमाल की तकनीक पर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस तरह कितने दिन में सड़क सूखेगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर है। सवाल है कि जिसके उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद पोल खुल गई, जिसके बाद इस एक्सप्रेसवे को बनाने वाली कंपनी को 2 कारण बताओ नोटिस दिए गए, परियोजना के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निलंबित कर डिबार कर दिया गया, साथ ही स्वतंत्र इंजीनियरिंग टीम के लीडर को भी निलंबित किया गया है। NHAI ने बार बार गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को लेकर PNC इंफ्राटेक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और नॉन परफॉर्मर यानी खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनी घोषित करने के लिए NHAI ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, पर सवाल है कि गंभीर आरोपों और संभावित कार्रवाई का सामना कर रही PNC इंफ्राटेक कंपनी को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते रहे, जहां अब पंखा चलाकर सड़क सुखाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है।
4: यूपी की अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप खुद खबरदार हो जाइए और खबरदार करते हुए सवाल करिए। एक तरफ एक्सप्रेसवे जो 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जाता है, कोई आनन फानन में नहीं बल्कि तसल्ली से पूरा समय लेकर तैयार होता है, लेकिन लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेसवे जिसमें 1,000 करोड़ लगते हैं, वो 20 दिन में बता देता है कि यहां ईमानदारी में मिलावट की गई। और यही ईमानदारी की मिलावट उस मिड डे मील में भी देखी गई, जहां केवल 6.78 रुपए प्रति छात्र प्राथमिक स्कूल में सरकार मिड डे मील के लिए देती है। जहां सीतापुर में कल हमने दिखाया किस तरह मिड डे मील के नाम पर पानी वाली सब्जी बच्चों को खिलाई गई। मकसद ये बताना है कि हजारों करोड़ का काम हो या फिर चंद रुपयों का, बेईमानी की मिलावट हर जगह हो जाती है, जिसका नुकसान जनता भुगतती है। सड़क और स्कूलों में मिड डे मील का हाल आपने देख लिया है। संसद के हाल से अब आपको हम खबरदार करते हैं। 14 दिन का सत्र बीत चुका है, अब केवल 5 दिन का मॉनसून सत्र बचा है। हालत यह है कि लोकसभा में केवल 14 घंटे 54 मिनट काम हुआ, जबकि राज्यसभा 14 दिन में केवल 20 घंटे 6 मिनट चल पाई। 14 दिन में लोकसभा में 19% उत्पादकता रही और राज्यसभा में केवल 26%। संसद की शुरुआत में ही पहले नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा होता रहा। विपक्ष अड़ा रहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों की मांग मानी जाए, तब बात होगी। इस्तीफा हुआ, सरकार ने बात मानी, तब जाकर केवल पेपर लीक रोकने वाले सख्त प्रावधान के नए बिल पर सदन में चर्चा हो पाई। इसके बाद से लगातार गृह मंत्री को लेकर विपक्ष सवाल करता रहा। विपक्ष चढ़ावा मामले और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सदन में अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा है। चढ़ावा मामले को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया जा रहा है, सदन अब तक नहीं चल पाया है। सरकार की तरफ से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से 2 बार जाकर बातचीत की गई है ताकि सदन चलाया जा सके। विपक्ष और सरकार के बीच की इस तनातनी में बड़े बिल भी बिना चर्चा के पास होते जा रहे हैं। केवल पेपर लीक रोकने वाले बिल पर लोकसभा में 12 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे चर्चा हुई, जिससे कुल चर्चा का समय 22 घंटे हो गया। लेकिन इसके अलावा बाकी बिल की हालत यह है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में सिर्फ 2 मिनट की चर्चा के बाद दोनों सदनों से पास हुआ। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 लगभग 14 मिनट की चर्चा के बाद दोनों सदनों से पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 बिना किसी चर्चा के लोकसभा से पास हुआ। इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल 2026 केवल लोकसभा में पेश किया गया। बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 केवल लोकसभा में पेश किया गया। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 केवल लोकसभा में पेश किया गया। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार चल रहे गतिरोध ने संसद के विधायी कामकाज पर ऐसा असर डाला जहां सियासत और हंगामा ज्यादा है, चर्चा कम।
5: आप राहुल गांधी से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन
6: नहीं बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में है, हम सब मिलके काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
7: सर, अपोजिशन बिल्कुल,
8: विपक्ष का मतलब विरोध होता है या लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को रखना होता है
7: जी।
8: यहाँ तो विपक्ष सड़क पर आता है जिससे लगता है कोई नाटक का रिहर्सल करने के लिए आए हैं। और संसद में जिस तरीके से अगर आप लोग देखे, मैं तो राज्यसभा में देखता हूँ, वो हो करके एकदम से आवाज जिसे छोटे बच्चे भी नहीं करते होंगे।
9: जिस राम मंदिर से इतने ज्यादा उनको प्यार था कि चुनाव के लिए मुहूर्त बिना मुहूर्त के जाके उद्घाटन कर आए, वहाँ अगर चोरी डकैती हो रहा है तो उसमें बोलती क्यों बंद है? हम रोज एडजमेंट मोशन देते हैं कि इन पर बुलवा दीजिए इनसे और चर्चा करा दीजिए, तैयार हो जाए। हम कल से सारे हम आपको बोल रहे हैं, सारे मुद्दों पर हम बहस कर रहे हैं।
10: हल्ला भी तो सर आप लोग ही करते हैं।
11: असल सरकार भाग रही है इन मुद्दों पर जवाब देने से, क्योंकि सरकार जो डकैती हुई है, जो ये अपराध हुआ है, इसमें सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन पार्लियामेंट चलने लगेगी। सरकार चलाना तो चाहे।
12: होम मिनिस्टर साहब पिछले हम देख रहे हैं एक दिन भी जो है फ्लोर ऑफ हाउस में आए नहीं है और हमें पता लगा कि पार्लियामेंट रोज आते हैं, तो किस बात का डर है? उनको आना चाहिए और जवाब देना चाहिए।
13: सरकार जवाब जो हम मांग रहे हैं
12: जो दो इशू हैं उस पे जवाब दे दो तो पार्लियामेंट चल जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
7: लेकिन अगर आप ही वो मुद्दे उठाएं,
12: सरकार के इशू है उस पे ही संसद चले, जो लोगों के इशू उस पे संसद चले,
7: जब संसद चलती है तो आप तब भी तो जवाब मांग सकते हैं।
12: वही तो हम मांग रहे हैं।
7: एक तरफ जहां विपक्ष लगातार चंदा चोरी का मुद्दा और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से लगातार जवाब मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष एक सुनियोजित साजिश के तहत न सिर्फ जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है बल्कि संसदीय समय की भी बर्बादी हो रही है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में कि क्या सार्थक चर्चा हो पाएगी, क्या विपक्ष और सरकार के बीच में कोई समन्वय बैठ पाएगा ताकि महत्वपूर्ण विधेयकों पर एक गहन चर्चा हो सके। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा आज तक के लिए।
4: झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। कई छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में सुधार को लेकर शुरू हुआ छात्रों का ये आंदोलन राज्य में हुए सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, जिसमें शामिल होने के लिए झारखंड के अलग अलग इलाकों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन सबकी चुनौती एक है,
10: पापा 500 रुपए दिन का कमाते हैं, उसमें हम लोग ऐसे पेपर लीक
13: 15,000 पूरा महीना चल जाता है। कितने लोग परिवार?
10: हम लोग 6 जन हैं।
14: झारखंड के युवा हर दल और हर नेता से ये पूछते हैं कि अगर चुनावों में धांधली रोकने के इंतजाम हो सकते हैं तो फिर परीक्षाएं फुल प्रूफ क्यों नहीं बन सकती?
10: कोई भी स्टेट में कोई भी सेंटर में जब इलेक्शन होता है पूरा पूरी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है, एक महीना में रिजल्ट देता है, पूरा काउंटिंग एक महीना में रिजल्ट देगा सर, एक महीना में, उसमें कुछ धांधली नहीं होगा, एग्जाम में बार बार धांधली क्यों हो रहा?
14: रांची में प्रदर्शन कर रहे ये छात्र अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि झारखंड में कोई भी परीक्षा ठीक से क्यों नहीं हो पाती है?
15: अभी सर यहाँ झारखंड में ये स्थिति है सर, एक कांस्टेबल का परीक्षा अच्छा से झारखंड सरकार ले नहीं सकती है। अरे मैट्रिक का, यहाँ मैट्रिक इंटर का भी परीक्षा होता है ना, उसका भी पेपर लीक हो जाता है।
14: आसमान से बरसती बारिश के बीच रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के खुले मैदान में जमीन पर बैठे युवा 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के हौसले टूटे नहीं। झारखंड सरकार भले कहती हो कि वो छात्रों के साथ बातचीत के लिए तैयार, लेकिन सवाल पूरी तरह चरमरा चुकी व्यवस्था के दुरुस्त होने को लेकर है, जिसके सताए छात्रों का दर्द बहुत ज्यादा है।
13: इनके हंगामे, इनके पोस्टर में, बैनर में ये एआई के नारों में पीछे लगा रखा है ना उन्होंने, कुछ पुच्चू जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर दो ना, अब इस तरह के नारों में इतना दम है कि इससे आप कहते ना कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई, ये नई पीढ़ी है, ये हंगामा नहीं करती, ये बस शांति से बैठ के अपने नारों से सरकार हिला देती है। और संभवतः इसीलिए सरकार को अपने मंत्रियों को बना भेजना पड़ा है, यहां से 10 छात्र हैं, उनका डेलीगेशन भी तैयारी कर रहा है जाने के लिए।
14: रांची में प्रदर्शन कर रहे ब्रिज किशोर की कहानी खबरदार करती है कि झारखंड में किस तरह ईमानदार छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ब्रिज किशोर ने जेपीएससी की परीक्षा दी और वो लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिली। शुरुआत में इन्हें लगा कि इनकी कोशिश में कमी रह गई, लेकिन बाद में इस असफलता की असलियत पता चली।
16: प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, मैं फिर इंटरव्यू भी दिया सर, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय लगा मुझे शायद मेरा ही कहीं पे होल्ट होगा। उस समय से इंटरव्यू में मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया। उस समय ये देखा गया कि वहाँ पे चार बोर्ड है सर, जितने सारे मेंबर है जेपीएससी के अंदर, वो सभी मेंबर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, कोई किसी से है, और उन लोगों का अपना पर्सनल बायस होता है। तो वह एक बोर्ड सबको 65+ दे रहा है, एक बोर्ड सबको किसी को 15 दे रहा है, किसी को 20 दे रहा है, मुझे मात्र 40 नंबर दिया गया।
14: साल 2018 में ग्रेजुएट हुए ब्रिज किशोर जैसे छात्रों की झारखंड में कमी नहीं है, जिनकी सरकारी नौकरी की तैयारी में उम्र निकली जा रही है, लेकिन सरकार परीक्षा तक ठीक से नहीं करवा पा रही। दावा है कि मिली भगत करके बाहरी छात्र परीक्षा पास करके नौकरी ले जा रहे हैं,
16: त्यास में 29 के एज में पहुंच चुका हूं। आज मेरे पास कोई भी एक जॉब नहीं है, नहीं तो कोई एक सोशल सिक्योरिटी मेरे पास। तो बहुत मतलब अभी क्या हो रहा है कि कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं, उसमें या तो पेपर लीक हो जाती है या तो पर्दे के पीछे इस तरह का सेटिंग हो जाती है, तो पूरा पूरा सर हौसला ही टूट चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या, मतलब आगे कुछ भी समझ नहीं, पूरा ब्लैंक हो चुका है, आगे का भविष्य पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है। एक नई दिल्ली का लड़का है, नहीं सोनू कुमार यहाँ 40 रैंक है सर उसका, वो ऑलरेडी किसी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था और यहाँ पे वो 40 रैंक प्राप्त करा भी अधिकारी है। यहाँ
14: झारखंड में नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी परीक्षा में धांधली से बेरोजगार होने का दंश झेल रही है, लेकिन नाइंसाफी खत्म होने का नाम नहीं लेती।
17: 25 साल हो गया एक पीढ़ी का तो मतलब उम्र पार हो गया, उन्होंने भी देखा अपने सामने नौकरी को बिकते हुए, धांधली लगते हुए कि पारदर्श, और ये उन्होंने हमें बताया है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं होता है, बैकडोर एंट्री होता है, पैसा दो नौकरी लो। अगर आप पढ़े लिखे हुए भी नहीं है ना, तो झारखंड में ये व्यवस्था है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा ले लीजिए और उसके बाद फिर कोई एजेंसी परीक्षा ले रही है तो वहाँ पे पैसा दे के नौकरी ले लीजिए, ये व्यवस्था है झारखंड में।
14: मनीष बताते हैं कि इनके पिता ने झारखंड बनाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन राज्य बनने के बाद एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब उन्हें पछतावा ना हुआ हो।
17: देखिए मेरे परिवार में मेरा मिला के 3 जन है, मेरे पापा, मेरी मम्मी और हम। तो मम्मी भी एक दौर का आंदोलन किया झारखंड में एज ए पारा टीचर, उन लोगों को पर भी सरकारों ने लाठियां बरसाई है।
13: आंदोलन आपको जन्म से मिल गया?
17: हाँ, आंदोलन मैंने जन्म से देखा, और पापा नारा देते थे ना कि घर में कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, तो पापा कभी कभी बोलते हैं कि झारखंड ले लिए लेकिन हम झारखंडियों को क्या मिला है।
14: सोचिए जिन पिता ने झारखंड बनाने के लिए संघर्ष किया, वही पिता अब अपने बेटे को बाहर के राज्यों की परीक्षा की तैयारी करने की सलाह देते हैं ताकि बेटा भ्रष्ट शिक्षा तंत्र के हाथों ठगाना जाता रहे।
17: परीक्षा देकर आते थे, बस में बैठते थे, पेपर लीक का खबर आ जाता था, मम्मी फोन करके बोलती थी कैसा परीक्षा गया, मम्मी को बोलते थे मम्मी पेपर लीक हो गया, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। सरकार से गुहार लगाने के लिए आते हैं तो पिछले बार भी धोखा खाए थे हम लोग CGL में, सरकार ने कुछ हमारी सुनी नहीं। 2 बार SIT का गठन हुआ था, उन्होंने केस बदल दिया, हमारा जो सही मांग था केस ने भी उसको, कोर्ट ने भी उसे निरस्त कर दिया।
14: रांची में छात्रों का यही दर्द उन्हें धरना स्थल से हिलने नहीं देता, जहां जंतर मंतर की तरह जेन जी की भाषा में नारे और व्यंग का इस्तेमाल हो रहा है।
13: अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। JSSC जो स्टूडेंट कह रहे हैं अब तो नौकरी पक्की है, फिर क्या होता है पेपर लीक। इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। उपहास कहते ना कि इतने गंभीर विषय को भी ऐसा उपहास बनाया कि मार सीधे सिस्टम को लगती है। पेपर मत बेचो प्लीज, क्या लिखा देखिए, जेंजी बाबू पेपर मत बेचो प्लीज। जेंजी की जो भाषा है ना इन बच्चों की, वो भाषा अपनी इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, लेकिन प्रभावशाली है। ये 3D के जरिए एनिमेटेड AI का इस्तेमाल हमने कहां नहीं देखा था, और किसने सोचा था कि भारत में AI का इस्तेमाल आंदोलनों में भी होगा।
4: झारखंड में छात्रों की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर भी खूब हंगामा हुआ। मॉनसून सत्र से के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने खूब नारेबाजी की। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी छात्रों को भरोसा दिया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनके ही मंत्री ने यह कहकर छात्रों के जख्म पर नमक छिड़क दिया कि झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है।
18: ये रेट चार्ट ये सीमित समय के लिए है, न तो रेट बढ़ने वाला है, इसलिए हेमंत सोरेन बहुत जल्दी रेट बढ़ाएगा। ये सेल भी है, अगर 4 को लाइएगा तो 1 फ्री मिलेगा।
14: झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया ताकि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सरकार तक पहुंचे, लेकिन झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने छात्रों की सबसे बड़ी समस्या को ही खारिज कर दिया।
19: हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, चीजों का समझिए आप लोग, त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है, चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में है और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
14: कुछ छात्र जिस पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर भड़के हुए उससे सरकार के मंत्री मुद्दा मानते ही नहीं, जबकि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्रों ने कट ऑफ तय करने, मेरिट लिस्ट और ओएमआर शीट में धांधली पर सवाल उठाए। वहीं जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में लंबे समय से पेपर लीक, देरी और धांधली के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है।
20: झारखंड में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें धांधली हुई। हमने कई परीक्षाएं दी, हमने जेट में अभी जेट के एग्जामिनेशन दिया, हमने सीजीएल के एग्जामिनेशन दिया, तो कई सारे एग्जामिनेशन में जो है ये चीजें देखने को मिला। यहाँ तो लोगों का कार्बन कॉपी बाद में रंगा जा रहा है सर।
21: एग्जाम ऐसा है सर कि 10 साल से नहीं हुआ, जैसे जेट का एग्जाम हो गया, प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, इस झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका भी 10 साल से एग्जाम नहीं, बस फॉर्म बनाता है और लिखता है कि अपरिहार्य कारण से कैंसिल कर दिया गया एग्जाम। जो भी एग्जाम लेना वो ऐसे कंपनी को ठेका ना दे जिस कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर का चयन एग्जाम में हो जा रहा है, उसका अकाउंटेंट का पीटी में एग्जाम हो जा रहा है, हम लोग क्या करें।
14: सरकार को छात्रों की इसी समस्या से खबरदार करने के लिए ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ पानी पीना शुरू किया, लेकिन भूख हड़ताल जारी है। झारखंड सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छात्रों से 4 मंत्रियों की कमेटी बात करेगी।
4: झारखंड में कांग्रेस से आने वाले मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। वहीं उन्हीं के नेता राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ते हुए झारखंड सरकार से कार्रवाई करने की बात कही।
22: झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और अलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ओप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
4: जनता को केवल भर्तियां लटकाकर ही परेशानी के जाल में नहीं उलझाया जाता, बल्कि जहां जनता शिकायत करने जा सकती है वहां भी पद खाली छोड़कर आम लोगों को दौड़ाया जाता है। उदाहरण राजस्थान है, जहां भजन लाल सरकार में जनता की मदद के लिए बने आयोग हो या बोर्ड या प्राधिकरण, सब बेकार पड़े हैं। परीक्षाएं कराने वाली संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग हो या सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यायिक प्राधिकरण हो या लोकायुक्त और महिला आयोग, सभी खाली पड़े।
14: जिस सरकार में दावा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, वहां राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का दफ्तर ही बेरोजगार है। आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों का पद खाली है। 10 सदस्य में केवल 5 लोग हैं और बात केवल इतनी नहीं, राजस्थान महिला आयोग के दफ्तर में जब आज तक संवाददाता शरद कुमार दाखिल होते हैं, दरवाजा खोलते ही पता चल जाता है कि आयोग में खाली पदों का कितना अंधेरा है। जहां महिला आयोग के अध्यक्ष का पद ही खाली है, कांग्रेस राज में महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी वो चली गई। नई सरकार में ना तो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, ना सदस्यों की। रोजाना सैकड़ों महिलाओं की सुनवाई जहां होती थी, अब वहां कोई नहीं आता। महिला आयोग के दफ्तर में संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर मानो मुंह चढ़ाकर कहती हो कि हम भारत के लोग किससे अपनी बात कहें, जहां महिला आयोग का पद ही खाली पड़ा हो।
13: ये राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष का दफ्तर है, जहां पर आप देख सकते हैं कुर्सियों पर धूल पड़ी हुई है और इस तरह से पिछले 1.5 साल से कोई अध्यक्ष नहीं है, 3 सदस्य होते हैं, सदस्यों तक की नियुक्ति नहीं हुई है। राजस्थान के महिलाओं की पीड़ा यहां पर सुनी जाती है, मगर कोई नियुक्ति नहीं होने की वजह से यहां पर कोई नहीं बैठने वाला है। सरकार की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। कांग्रेस सरकार के दौरान नियुक्त हुई अध्यक्ष पद छोड़ दी है कार्यकाल खत्म होने के बाद, तब से ये पूरा दफ्तर यूं ही खाली पड़ा हुआ है।
14: राजस्थान सरकार के 10.5 लाख कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए बने राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण की हालत भी आज आप देखिए और खबरदार हो जाइए, क्योंकि यहाँ अप्रैल से कोई चेयरमैन नहीं। दो सदस्यों की जरूरत है तो मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी को रिटायरमेंट के बाद लगा रखा है। यहां 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की केस पेंडिंग है और प्राधिकरण का पद बड़ा सा बड़ा खाली पड़ा है, जिसकी वजह से राजस्थान हाईकोर्ट तक को अल्टीमेटम देना पड़ा।
13: ये राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन का कमरा है, जहां आप देख सकते हैं कि लंबे समय से पद खाली है, जबकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं रहती है। आप इस बोर्ड को देख लीजिए, 1978 में इसके अध्यक्ष जब बने उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पद खाली है और इस तरह से यहां पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर स्थिति यह है कि आप देख सकते हैं कुर्सी खाली पड़ी है, कमरा खाली पड़ा है और अध्यक्ष का इंतजार सिस्टम कर रहा है।
1: चेयरमैन नहीं है,
2: चेयरमैन साहब नहीं आए सर,
13: तब से खाली है पोस्ट।
2: ये सर 4-5 महीने से खाली है सर।
3: नंबर ऑफ केसेस में ट्रांसफर हुए हैं, जिससे कर्मचारी और वकीलों को दोनों को ही सफर करना पड़ रहा है इसकी वजह से। और कई बार सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय में हमने गुहार भी लगाई, पर उस पर कोई विचार नहीं किया गया।
14: जयपुर में लोकायुक्त का पद मार्च 2026 से खाली है, अब यहाँ कोई शिकायत लेकर भी नहीं आता। पूरा लोकायुक्त सचिवालय खाली पड़ा है, जस्टिस पी के लोरा मार्च में चले गए, नेम प्लेट हटाने तक की सुध लोगों को है ही नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा मुख्यालय खादी निगम का है, जिसके भवन का शिलान्यास कभी पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। यहाँ भी चेयरमैन और 8 सदस्यों की विदाई गहलोत सरकार के साथ हो गई, मगर कोई नियुक्ति नहीं हुई। चेयरमैन का पद कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। सुबह से शाम तक यहाँ कर्मचारी आते हैं, बिना काम के बैठे रहते हैं। गहलोत सरकार ने इस भवन में शांति एवं अहिंसा निदेशालय बनाया था, उसके अध्यक्ष का पद भी खाली पड़ा है।
13: ये राजस्थान का सबसे बड़ा खादी भवन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी ने इसका शिलान्यास किया था और माननीय मुरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया था। मगर हालत क्या है आप देख सकते हैं, यहां पर सरकार नहीं आ गई है पर अध्यक्ष कोई नहीं है। यहां पर कमरे में ताला लगा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से दरवाजों पर इस तरह से धूल जमी हुई है। स्टाफ के नाम पर यहाँ पर जो लोग हैं वो दफ्तर में कोई आता है कोई नहीं आता है और इस तरह से ये चेयरमैन का कमरा लॉक पड़ा है, जो धूलों से भरा हुआ है। आप समझिए कि इतने बड़े भवन में इस तरह से जो कर्मचारी हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो सब गायब हैं। कैसे काम होता होगा उन बनकरों का, उन खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से जुड़े हुए काम करने वाले कर्मचारियों का, सदस्यों का, कामगारों का, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
23: ब्रज किशोर जी थे लास्ट, उसके बाद नहीं है,
13: नई सरकार में कोई नहीं आया।
24: नहीं, बिल्कुल सही है, ये कह रहे हैं जो सही है।
14: 2023 से भजन लाल सरकार बनने के बाद से अभाव अभियोग आयोग, 20 सूत्री कार्यक्रम, समाज कल्याण बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड और पर्यटन निगम में भी चेयरमैन का पद खाली है। फिलहाल राज्य में बोर्ड, निगम, आयोग और प्राधिकरण में 100 से ज्यादा पद खाली हैं और मंत्री कहते हैं हम क्या करें, फैसला तो मुख्यमंत्री करेंगे।
25: राजनीतिक नियुक्तियों के प्रकरण का निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद अधिकृत हैं। निश्चित रूप से वो इस दिशा में विचार विमर्श कर रहे होंगे और जल्दी

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
1: असली शहद, असली स्वाद।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: Papa!
5: Sorry, यार ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ। ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर। आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
12: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
11: सुपर स्ट्रॉन्ग
12: और मॉइस्चर प्रूफ।
11: वारंटी
12: 15 साल की।
11: कदम
12: सर प्लीज
11: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
13: क्रॉसबॉन्ड HMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
2: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं वे आज आस्था की बात करते हैं, और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
3: आज सबसे बड़ा महापाप, आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।

0: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ, और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको माफिया अतीक अहमद के कुनबे के बारे में बताएंगे, जिसमें एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी है। आज सुबह अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ ओवर स्पीडिंग है और बारिश के कारण हुआ एक भयानक हादसा था या फिर कोई साजिश है। पुलिस और चश्मदीदों का दावा है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें अबान की मौत हो गई। आज सवाल ये है कि क्या अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में आएंगी, और ऐसी क्या कोई संभावना बनती है कि अगर वो सामने आती है तो गिरफ्तारी की भी नौबत आ जाए। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल पर बवाल क्यों मचा है। भारत सरकार विदेशों से मिलने वाली फंडिंग यानी FCRA नियमों को और सख्त करने के लिए एक नया संशोधन बिल ला रही है, लेकिन इस बिल को लेकर कई संगठन विरोध में आ गए हैं। विरोध करने वालों का सबसे बड़ा डर यह है कि लाइसेंस रद्द होते ही किसी भी NGO, किसी अस्पताल या स्कूल की संपत्ति क्या सीधे सरकारी अथॉरिटी के कब्जे में चली जाएगी। सरकार कह रही है कि यह बिल विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे। और आखिर में आपको दूध, पनीर और खोआ का एक रासायनिक सूत्र बताएंगे। भले आप मानते हो कि गाय भैंस से दूध मिलता है, इसी दूध से पनीर और खोआ बनता है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली NCR में कहीं रहते हैं और पनीर और खोआ खा रहे हैं तो काफी हद तक गारंटी है कि वो उस फॉर्मूले से नहीं बना होगा जो बचपन से आप मानते थे कि दूध से पनीर बनता है, क्योंकि अब मिलावटखोरों ने बिना गाय भैंस के दूध, पनीर और खोआ बनाना सीख लिया है। और वो इसे कैसे बनाते हैं और आपकी थाली में ये बहुत ही, जिसे कहते हैं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज, कैसे पहुंच रही है, किन राज्यों ने इसको बैन तक कर दिया है, इसका पूरा खुलासा करेंगे, जिसे देखकर पनीर का शौक रखने वाले तगड़े शौक में जाने वाले हैं। कम से कम हम और आप थोड़े से और सतर्क तो होंगे। बहरहाल आज खबरें तो बहुत हैं, लेकिन उन तमाम खबरों से पहले अगर हम ये घटना नहीं दिखाएंगे तो शायद हमारा ये शो और इसका मकसद दोनों अधूरे रह जाएंगे। कई लोग शायद राष्ट्रीय चैनल पर रात 9 बजे की खबर इसे ना माने और इसके महत्व को ना समझे, लेकिन हम ये खबर आपको दिखाना चाहते हैं। कहा जाता है कि किसी देश की महानता सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार विकास से नहीं मापी जा सकती। किसी राष्ट्र की असली पहचान उसके समाज, उसके तौर तरीके, उसकी संवेदनशीलता से होती है और इस बात से भी होती है कि वो अपने सबसे कमजोर और सबसे बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो सिर्फ बागबान जैसी फिल्म देखकर दो आंसू बहाता है, या घर जाकर ये समझता है कि जो उन्हें इस दुनिया में लाए उनकी क्या कीमत है। अगर बात भारत की करें तो दुनिया हमेशा हमारे देश को उसके पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों, बड़ों के लिए, सम्मान के लिए पहचानती है। कहते भाई इतने बड़े बड़े लोग नौकरी कर रहे फिर भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हाँ, हमारा देश है ऐसा, हमारे लिए रिश्ते बड़े अहम होते हैं, जीवन से भी बड़े होते हैं। सदियों से यही कहा जाता रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है, जहां माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय होते हैं, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि क्या हमारा समाज अब भी वैसा ही है जैसा हम उसे मानते हैं, और क्या रिश्तों की वही गरिमा आज भी बची हुई है। आज हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि हमारे समाज के सामने रखा गया एक आईना है। पहली तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है। एक बुजुर्ग पिता जिसने जीवन भर अपने परिवार का ख्याल रखा, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उनके भविष्य के लिए संघर्ष किया, जब उनके जीवन की अंतिम यात्रा शुरू हुई तब उनकी बेटियां ही उसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए अंतिम संस्कार में आना संभव नहीं होगा, इसलिए वो वीडियो कॉल पर ही अपने पिता के इस अंतिम संस्कार को देख पाएंगी, वीडियो कॉल पर। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब यह वीडियो कॉल किया गया तब एक बेटी ने अपने पिता की चिता जलने से पहले ही यह पूछ लिया कि इस अंतिम संस्कार में और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर उसे और यह सब देखना होगा। एक पल ठहर कर सोचिए उस पिता की आत्मा पर क्या बीती होगी जिसने अपने अंतिम दिन एक वृद्धाश्रम में ही बिताए। जिनके पास परिवार था, बेटियां थी, रिश्ते थे, लेकिन विदाई की घड़ी में कंधे समाज ने दिए। अपनों की मौजूदगी मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गई। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहां एक मां पर आरोप है कि उसने अपने ही नवजात बच्चे को सिर्फ इसलिए 3 लाख रुपए में बेच दिया ताकि उन पैसों से वो नया मकान बनवा सके। जब ये खबर पहली बार हमारे सामने आई तो हमें वाकई विश्वास नहीं हुआ। बच्चे से बड़ा घर, हमें लगा कि शायद कहीं कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मामला ऐसा नहीं होगा, ऐसा सीधा नहीं होगा। लेकिन जब हमने FIR पढ़ी तो उसमें लिखी बातें पढ़कर हम स्तब्ध रह गए। सबसे हैरान की बात ये थी कि आरोप सिर्फ मां पर नहीं, आरोप यह है कि जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ वही के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद की और रिश्वत लेकर पूरे सौदे को अंजाम तक पहुंचाया, यानी जिस जगह पर एक बच्चे का स्वागत होना चाहिए वहीं उस मासूम की जिंदगी का सौदा हो गया। मां की गोद नहीं मिली, पैसों के लिए बेच दिया गया। ये दोनों घटनाएं इतनी विचलित करने वाली थी कि हमने तय किया कि आज सबसे पहले हम समाज का यही कड़वा सच आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हमारे बीच हो रही हैं, अगर बच्चे वीडियो कॉलिंग पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो उसको किसी भी श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनाएं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, रिश्तों को देखने का लोगों का नजरिया है, वो बदल रहा है और वो शायद धरातल से भी नीचे पहुंच रहा है। इस बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं जिसमें 3 बेटियां ये कहते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची कि उन्हें मुंबई, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और नेपाल से आने में वक्त लग जाएगा। और जानते हैं इन्हें आना कहां था? इन्हें सोनीपत के उस वृद्धाश्रम में जाना था जहां शिवचरण गुप्ता ने बीमारी के दौरान अपना दम तोड़ा। जब बेटियों के कहने पर वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया तब सबसे बड़ी बेटी नेपाल से वीडियो कॉल पर जुड़ी। हमारे पास जो वीडियो है उसमें वो एक जगह भावुक भी नजर आती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर अपने पिता को खोने का अफसोस तक नहीं है, वो शायद गलत है, क्योंकि एक जगह पर वो भावुक भी नजर आ रही है। नेपाल से वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही अनीता एक पल के लिए भावुक हुई थी, लेकिन सवाल तब उठे जब बाद में उन्होंने मुखाग्नि से पहले ही ये पूछ लिया कि अंतिम संस्कार में और वक्त कितना लगेगा। वृद्धाश्रम के लोगों का कहना है कि ये सुनकर उनका शरीर ठंडा पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटी समय की कमी के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आई, उसके पास वीडियो कॉल पर भी उनका अंतिम संस्कार देखने के लिए वक्त नहीं था। देखिए,
1: दिक्कत कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
2: अच्छा, 20 तारीख से पहले तो देखते हैं। अभी
3: मैं आपको
2: बताती हूँ ना।
3: हाँ जी, हाँ जी,
2: अच्छे से हो गया ना सारा काम?
3: हाँ बिल्कुल अच्छे से हो
2: गया। ठीक है ठीक
3: है,
2: तो मैं
3: सारा काम अभी
4: ठीक है भेज दूँगा।
3: भले आपके आने पे होगा सारा काम।
4: हाँ बाकी तो आप आलोगे जब होगा ना।
3: ये संस्कार हुआ है
4: अभी, तो संस्कार हुआ है
2: अभी। और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाएंगे, शिमला जलाएंगे?
3: नहीं अभी समस्या है ना, मैं पिता को अपनी बेटी
5: लगे रहो देता
3: टिकट दे बना के फिरो। नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। अच्छा 10-15 मिनट में हो जाएंगे सर। हाँ हाँ
0: कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर कुछ भी कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शिवचरण गुप्ता कभी महाराष्ट्र के एक बड़े कपड़ा कारोबारी होते थे। उन्होंने मेहनत से अपना संसार बसाया, उनके पास किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। 3 बेटियां थी जिन्हें वो अक्सर अपना बेटा कहकर पुकारते थे। उन्होंने तीनों को अच्छी शिक्षा दिलाई, उनमें से 2 बेटियां आगे जाकर टीचर भी बनी। समय बीता, बेटियों की शादियां हुई, फिर वही हुआ जो अक्सर हर पिता के जीवन में होता है, घर धीरे धीरे खाली होने लगा। शिवचरण गुप्ता और उनकी पत्नी अकेले रह गए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से शिवचरण गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं हुए। करीब 1 साल पहले वो सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे जहां पहले उनकी पत्नी मीना गुप्ता का देहांत हुआ और शिवचरण गुप्ता अकेले पड़ गए। 1 महीने पहले जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसके बारे में उनकी बेटियों को बताया गया तो आरोप है कि वो उन्हें देखने नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता ने ही उन्हें आने से मना कर दिया था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत थी। जब पिता एक वृद्धाश्रम में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे तभी बेटियों को जिद करके वहां आना चाहिए था, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। शिवचरण गुप्ता इस आघात से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपनी मौत से पहले अपना शरीर दान करने का फैसला किया। जब मृत्यु के बाद ये बात बड़ी बेटी को पता चला तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आंखें दान करके उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम को 5,100 रुपए भी भेजे, लेकिन बाद में वृद्धाश्रम के लोगों ने यह पैसा भी वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि अंतिम संस्कार का खर्च समाज खुद उठाएगा, और यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। उन लोगों का यह मानना था कि जब जीते जी कोई बेटी उन्हें देखने नहीं आई तो मरने के बाद ये 5,100 रुपए के क्या मायने। और जब उनके अस्थियों के विसर्जन की बात आई तब भी बेटियों ने यह कहा कि उन्हें आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने ही उनकी अस्थियों का विसर्जन करने का फैसला लिया। हालांकि यहां इस बात को साफ करना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में अब तक बेटियों का पक्ष सामने नहीं आया है। अगर वो सामने आती हैं, कोई उनकी मजबूरी है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, और जैसे ही उनका पक्ष हमारे सामने आएगा हम वो जरूर आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई कुछ पारिवारिक ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से तीनों बेटी नहीं आ पाई। ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्या वजह थी। लेकिन अभी वृद्धाश्रम के लोग क्या कह रहे हैं, उनके अंदर कुछ टूटा है, उनकी बात सुनिए।

0: देखिए बड़ी बिटिया थी, भावुक तो थी वो, इसमें मतलब हम ये कहें कि नहीं थी, इतनी भावुक थी, ये तो हर कोई होता है।
1: मैं तो बड़ा दुख का विषय है कि उन बच्चों के माथे पे सिनक तक नहीं थी, आंसू तक मैंने आंखों में नहीं देखे, मैं बिल्कुल सब कुछ लाइव देख रहा था वहां पे। एक बेटी का ये बोलना कि जब बाप की चिता सामने जल रही हो, कि ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, तो आप मानिए कि जब हम सारी क्रिया करने लग रहे हैं तो बच्चियों का ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, ये मतलब एक बहुत बड़ी क्रूरता है।
2: आजकल जो आज की पीढ़ी है वो मोबाइल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में उलझी हुई, रील में उलझी हुई, लेकिन जो बुजुर्ग थे इनकी बेटियां तो उम्र दराज हैं, बड़ी उम्र की हैं, नेपाल में रहती हैं, बॉम्बे में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी।
3: कहते कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं। मैंने ये जरूर सुना था कि लड़के अपने माँ बाप से विमुख हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो आधी रात को भी आवाज दो तो भागी आती है। कैसी विडंबना इस कार्य के अंदर जो कल घटित है, सारा शहर क्या जिस आदमी से बात होती है कि ये ऐसा कलयुग आया जरूर था, लेकिन तो घोर कलयुग आ गया है।
4: आपका भी दिल शायद भारी हो गया होगा इस खबर को देखकर। कई लोग ये लिख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है। अब ये इस तरह की कोई पहली आखिरी घटना नहीं है। इसी साल 21 जुलाई को अमरोहा में एक बुजुर्ग पिता का अंतिम संस्कार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके चारों बेटे संपत्ति के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। यही नहीं, इन लोगों ने अपने पिता के शव को तब तक अर्थी नहीं चढ़ने दिया जब तक पंचायत बुलाकर संपत्ति के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ। पैसा कितना बड़ा हो जाता है। इसी साल फरवरी महीने में जालौन में भी एक बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार को इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि उनके दोनों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था और इन दोनों बेटों ने इस विवाद के कारण अपने पिता की अर्थी उठाने से इनकार कर दिया। 15 मई 2025 को तो राजस्थान के कोटपुतली में सारी मर्यादाएं टूट गई थी। एक बेटे ने इसलिए अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया क्योंकि वो उनके चांदी के कंगन मांग रहा था। सोचिए हमारे देश में हुआ, उस देश में जिसे श्रवण कुमार का देश कहा जाता है। अरे श्रवण कुमार ना बन पाइए तो मत बनिए, लेकिन कम से कम आंखों का पानी इतना तो रखिए कि उनके चले जाने के बाद ये सब ना करना पड़े। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिन्हें बताने के लिए ये शो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हाँ इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बागवान जैसी फिल्म जाकर देखकर बहुत लोग उस पर आंसू बहाते हैं। अब देखिए इन घटनाओं में सबसे दुखद बात जानते हैं, अपने बूढ़े माता पिता का वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार करना। क्या आप यकीन करेंगे कि आज हमारे देश में इसका पूरा बाजार बन चुका है। हमने इस खबर को देखने के बाद इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को समझने की कोशिश की तो जो हमारे सामने आया उस वो हमें हैरान कर रहा है। अलग अलग शहरों में ऐसी कई कंपनियां काम कर रही है जो वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कराने का काम करती है। ये कंपनियां अंतिम यात्रा, शव वाहन, फ्रीजर बॉक्स, शमशान बुकिंग, धार्मिक अनुष्ठान, ऑनलाइन श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार की लाइव स्ट्रीमिंग, विदेश से पार्थिव शरीर लाने जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सहूलियत की भी हैं, लेकिन जब अपने ही बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉल पर अपने पिता, अपनी माँ का अंतिम संस्कार देखें, इससे दुखद क्या हो सकता है। पैकेज बने हुए हैं इन लोगों के, दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, ऐसे शहरों में कई लोग इन कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी, किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते, और इसके लिए ये लोग इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। उन्हें हजारों रुपए देकर एक पैकेज खरीदते हैं जिसमें अंतिम संस्कार इन कंपनियों द्वारा किया जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग उनके बच्चों को दिखा दी जाती है। सोचिए ये वो चीजें हैं जो हमारे समाज में हो रही है और लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें ये चीजें अब विचलित भी नहीं करती। और ये भी तब हो रहा है जब हमारे देश में अभी बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में 15 से 59 साल के लोगों की आबादी 64.8% है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी लगभग 11.5%। यानी जब इस देश में बुजुर्गों की आबादी कम है तब कई लोग उनका वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। या उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेज रहे हैं। सोचिए आज से 10 साल बाद 2036 में जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी तब हमारे देश में क्या होगा। इस स्थिति को देखते हुए केरल में पहली बार बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाया गया है। इसका नाम है एल्डरली वेलफेयर डिपार्टमेंट और ये विभाग इसलिए बनाया गया है क्योंकि केरल में बुजुर्गों की आबादी 20% हो चुकी है जबकि भारत में ये लगभग 12% है। केरल में कई माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, वो वीडियो कॉल्स पर ही उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। और पता है इन कंपनियों की सेवाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये कंपनियां कहती हैं कि दूर कहीं से आकर अंतिम संस्कार करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, वक्त ज्यादा लगता है, काम से छुट्टी नहीं मिलती या लेनी पड़ती है। यही देखते हुए अब भारत जैसे देश में वीडियो कॉल पर दूर से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी में कई बुजुर्ग तो इतने ज्यादा, मतलब क्या ही कहा जाए उनके बारे में, दुखद स्थिति में रहते हैं कि उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। एम्स के मुताबिक भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा ऐसे शवों का अंतिम संस्कार होता है जो लावारिस होते हैं या जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इस वक्त देश में 1,658 वृद्धाश्रम सरकारी मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम है, 600 से ज्यादा निजी वृद्धाश्रम है जिनमें अधिकतम 21,525 बुजुर्ग रह सकते हैं। यानी जो बुजुर्ग अपने घरों को छोड़ देते हैं उनमें कईयों को तो रहने का भी ठिकाना नहीं मिलता, कई मामलों में संपत्ति लेकर माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। और ये फैसला क्यों जरूरी था उसके लिए आप साल 2021 की इन तस्वीरों को भी देखिए। आगरा में जब एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो कुछ रिश्तेदार उनकी संपत्ति हड़पने के लिए एक वकील लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब उन्होंने इस बुजुर्ग महिला का शव इस एम्बुलेंस में देखा तो जमीन के कागजातों पर उनका अंगूठा लगवाने के लिए इन लोगों ने शव को नहीं बख्शा, मृत हालत में एक वकील ने शव का अंगूठा पकड़कर कई जमीनें उनके रिश्तेदारों के नाम करा ली। और जब ये तस्वीरें लोगों ने देखी तो उनके मन में एक बात आई कि ये कैसा कलयुग है। खैर, इस कलयुग को देखना हो तो ये घटना भी कम विचलित कर नहीं करती। दक्षिणी दिल्ली में रहने वाला एक पिता अपनी 18 साल की अविवाहित गर्भवती बेटी को आगरा लेकर गया। सबको ये बताया गया कि उसका इलाज कराने के लिए वो आगरा ले जा रहा है, लेकिन वहां जाकर इसने अपनी बेटी को चंबल नदी में डुबोकर जान से मार दिया। यही नहीं, अपनी बेटी की हत्या करने के बाद इस पिता ने उसके पैर छुए, ये कहा कि शादी से पहले गर्भवती होकर इस बेटी ने पाप किया था इसलिए उसे मारना ही उसके लिए उचित था। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें भी आज कई सवाल खड़े कर रही हैं। तो हमने सोचा आज कुछ अंदर झांका जाए, कुछ अपने आंखों से हवा होते पानी को वापस लाया जाए और ये समझा जाए कि जिन लोगों ने दुनिया में लाया उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं और जिन्हें हम दुनिया में लेकर आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गाड़ी पलटने का सच क्या है। ये खबर सुबह से काफी चर्चा में है और बहुत सारे लोग इस सड़क दुर्घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इस घटना को संदिग्ध भी बताया है। लेकिन हम आपको इस घटना से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिनकी पुलिस ने पुष्टि की है और जो बातें खुद चश्मदीदों ने हमें बताई हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अबान अहमद की गाड़ी पलटी कैसे। पुलिस का कहना है कि अबान अहमद अपने 4 दोस्तों के साथ एक गाड़ी में प्रयागराज से झांसी की डिस्ट्रिक्ट जेल जा रहा था। ये वही जेल है जहां अबान अहमद के बड़े भाई अली अहमद को 9 महीने पहले प्रयागराज की नैनी जेल से भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक 21 साल का अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए झांसी की इस जेल जा रहा था और ये सारे लोग एक सफेद ह्यूंडई क्रेटा कार में सफर कर रहे थे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो प्रयागराज से झांसी की ये जेल कितनी दूर है, 650 किलोमीटर। और जिस नेशनल हाईवे से अबान अहमद की एक गाड़ी जा रही थी उसका नाम कानपुर झांसी नेशनल हाईवे है। अब बड़ी बात यह है कि झांसी के जिस पुंछ इलाके में अबान अहमद की गाड़ी पलटी वो जगह झांसी की जेल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच सिर्फ 67 किलोमीटर की दूरी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अबान अहमद अपने दोस्तों के साथ एक घंटे के अंदर झांसी की इस जेल पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर एक डिवाइडर से टकराई और इस घटना में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। इनमें अबान अहमद भी मारा गया और उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद मोहम्मद जायद, मोहम्मद उमर, फारूक घायल हुए जिन्हें अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया। पुलिस कह रही है कि सड़क दुर्घटना के पीछे कोई साजिश नहीं है, कार ओवर स्पीड कर रही थी और भारी बारिश के कारण सड़क पर भी फिसलन ज्यादा थी और इसी के कारण अबान अहमद, अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी बेकाबू हुई और बाद में डिवाइडर से टकरा कर ये इस तरह पलट गई। यहां जो लोग इस घटना को संदिग्ध बता रहे हैं उनका कहना है कि ये कार उसी इलाके में कैसे पलटी जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन ऐसे सवालों को पुलिस गलतफहमी पैदा करने वाला मान रही है। पुलिस का कहना है कि चश्मदीदों ने खुद बताया कि गाड़ी ओवरस्पीड होने की वजह से पलटी है और अबान अहमद का जो दोस्त मोहम्मद उमर कार में मौजूद था उसने खुद इस घटना के बाद ये कहा कि कार अचानक असंतुलित हुई और इसके बाद डिवाइडर से टकरा गई। यानी जो दोस्त अबान अहमद के साथ इस कार में जा रहा था वो खुद कह रहा है कि एक हादसा है। दूसरी बात, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस गाड़ी को चला कौन रहा था। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी मोहम्मद जायद के नाम पर रजिस्टर्ड थी जो इस सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के नाम पर कई चालान दर्ज हैं जिनमें सबसे ज्यादा चालान ओवर स्पीडिंग के हैं, फिर नो पार्किंग के हैं। इस गाड़ी के नाम पर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने का चालान भी दर्ज किया गया है और इससे यह सवाल भी उठता है कि इस गाड़ी को चला कौन रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। देखिए,

0: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है, और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है, जो सीट है वो बाहर निकली हुई है।
1: अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया,
2: फिर सभी लोग घायल हो गए।
1: हाँ, उसके बाद नहीं यार, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए।
3: एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग एक अवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है।
4: बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए।
5: यहाँ ये भी देखिए कि अतीक अहमद के बेटों की मौत का झांसी कनेक्शन क्या है। 13 अप्रैल 2023 को जब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद को एक एनकाउंटर में मारा था, तब ये एनकाउंटर झांसी के ही पारीछा डैम के पास हुआ था। यानी झांसी में जिस जगह असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था वहां से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर, और 45 किलोमीटर दूर अबान अहमद की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, और इसीलिए कई लोग शक जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है इतनी बड़ी कैसे ये कोइंसिडेंस हो सकता है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि झांसी में असद अहमद के एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस घटना के वक्त अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा, ये देखिए ये वो लाइव था जो सिर्फ हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ था, और अतीक अहमद उस वक्त अगर आप देखिए तो छोटा बेटा अबान जिसकी आज मौत हुई है, ये उस वक्त की लाइव तस्वीरें आज तक पर हमारे सहयोगी चूंकि वहां पर मौजूद थे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ये घटना घटी थी तब अबान अहमद नाबालिग हुआ करता था, तब पुलिस ने कहा था कि अतीक अहमद की हत्या के बाद उसने अबान अहमद और एहजम अहमद को लावारिस हालात में घूमते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। ये तब की तस्वीर है। अब ये दोनों भाई पूरे 221 दिनों तक वहां रहे, और इसके बाद इन्हें इनकी बुआ परवीन कुरैशी के पास भेज दिया गया। ये तस्वीरें उसी समय की है जब अबान अहमद और एहजम अहमद बाल सुधार गृह से छूटने के बाद अपने पिता अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे थे, और अब अतीक अहमद की इसी कब्र के पास अबान अहमद को दफनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए
6: हम जहां पर खड़े हैं ये अतीक अहमद के परिवार की कब्रें यहां पर सुपुर्द-ए-खाक कब्रें हैं, जहां पर अतीक के परिवार के लोगों को डेथ होने के बाद सुपुर्द-ए-खाक किया जाता है। 5 कब्रें नजर आ रही है। उसी सड़क हादसे में डेथ के बाद अब उनके जानने वालों में थोड़ा सा शोक है, संवेदना है, और अब प्रयागराज के जिस कब्रस्तान में हम खड़े हैं ये कसारी मसारी का कब्रस्तान है, और अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोगों को इसी कब्रस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाता है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है अबान अहमद की भी जब डेड बॉडी अगर प्रयागराज पोस्टमार्टम के बाद आएगी तो इसी कब्रस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।
5: यहाँ एक और सवाल ये है कि क्या 2023 से फरार चल रही शाइस्ता परवीन अपने सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के नमाज जनाजे में शामिल होंगी। इस वक्त शाइस्ता परवीन पर कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उमेश पाल की हत्या का मामला भी शामिल है, और पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 2023 में जब अतीक अहमद को दफनाया गया था तब भी शाइस्ता परवीन नमाज़े जनाजा में शामिल नहीं हुई थी, और अब भी पुलिस की गिरफ्तारी के डर से शायद वो अपने सबसे छोटे बेटे को दफन करने की रस्म में शामिल ना हो। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चलकर ये दिखाना चाहती हूँ कि एक जमाने में अतीक अहमद उसके बेटों और परिवार का जो उत्तर प्रदेश में खौफ माना जाता था वो कैसे बिल्कुल अलग रूप ले चुका है और शायद इस परिवार के सबसे बुरे दिन आ गए। तो हम अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है वो आज आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की हत्या होती है। अब इनके परिवार में कौन है, सबसे पहले एक तो आप शाइस्ता परवीन को देखेंगे, उनकी पत्नी। अच्छा, 2023 से साल 2023 से ये फरार चल रही हैं। इन पे ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है जिसकी वजह से सामने आने पर गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप इनका पूरा परिवार देखिए जिसका एक वक्त पर जबरदस्त रुतबा होता था और एक तरह का रौब होता था, लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे तो उबर अहमद कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 बेटे। पांच बेटे में सबसे पहले आप देखिए उमर अहमद को, ये अभी कहां है, उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद कहां है, ये झांसी जेल में बंद है। फिर आ जाइए असद अहमद पर, 2023 में एनकाउंटर में अगर आपको याद हो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वहां पर मौत होती है। कोलकाता में एहजम अहमद पढ़ रहा है इस वक्त और अबान अहमद सड़क हादसे में इसकी आज मौत हुई है। तो आपको एक बार अगर हम ये दिखाएं एक एक करके तो ये पूरे परिवार के जो लोग हैं ये देखिए, ये अबान अहमद इसी की मौत हुई है और ये दूसरा एक और बेटा एहजान अहमद जो कोलकाता में पढ़ रहा है, ये असद अहमद का जहां पर एनकाउंटर हुआ था उसी के पास अबान अहमद की गाड़ी पलटी है। और फिर इधर देखिए एक झांसी जेल में एक बेटा और एक अली अहमद और एक उमर अहमद लखनऊ जेल में। अतीक अहमद कि तो हत्या 15 अप्रैल को हो ही गई थी, शाइस्ता परवीन पर लेकिन अब सारा फोकस है कि क्या ये अपने बेटे के नमाज़े जनाजे में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आती हैं तो वहां पर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस परिवार का एक वक्त पर जबरदस्त रुतबा रहता था, जबरदस्त रौब रहता था, वही परिवार आज किस तरह से बिखरा हुआ एक तरह से सामने दिख रहा है। तो यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि अबान अहमद बाल सुधार गृह में रहा जरूर, लेकिन नवंबर 2025 में उसका एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें वो हथियारों की बात कर रहा था। वो वीडियो देखिए।
7: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी।
8: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से पहाड़।
7: तूफान और हम जब भी आते हैं
8: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
5: खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बारे में बताते हैं जिस पर आज दिन भर हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए ये लिखा कि भारत सरकार अब यात्री विमानों के जेट फ्यूल में इथेनॉल मिलाकर उन्हें उड़ाने जा रही है जिससे इंजन बंद होने का खतरा होगा। यानी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि जब यात्री विमानों के फ्यूल में इथेनॉल मिला दिया जाएगा उसके कारण विमानों का इंजन हवा में ही बंद हो जाएगा, तो क्या लोग विमानों में सफर करने जाएंगे। अब इसको लेकर एक बहस छिड़ गई। अब ये कल्पना सुनने में तो बहुत डरावनी स्थिति लगती है और कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस दावे के बाद चिंता जताई, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेट फ्यूल को लेकर झूठी खबर फैला रहे हैं और वो इसको इनकार कर रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने कहा है कि जेट फ्यूल में सरकार की इथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं है और ना ही जेट फ्यूल में इथेनॉल मिलाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जिन वैकल्पिक तेल की अनुमति को इथेनॉल से जोड़ा जा रहा है उसे हकीकत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं। अब ये क्या है, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के नाम से ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे आने वाले वक्त में भाई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी, ये क्या होता है। तो इसका मतलब है ऐसा जेट फ्यूल जो कम कार्बन उत्सर्जन करे, जो कच्चे तेल पर निर्भरता घटाए और जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करे। इसे इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, कचरे, लकड़ी के बायोमास, गन्ने, मक्के और सिंथेटिक फ्यूल की मदद से बनाया जाता है। अब इसमें इथेनॉल एक संभावित रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन यह पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने जैसा नहीं है, यह बात सरकार कह रही है और यह बात अब इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने तो अपनी खबर पूरी तरह बदल दी और अब आप देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे पोस्ट पर लिखा है, उसको लेकर अभी भी चर्चा हो रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले में यहाँ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन खुद कहती है कि अब तक दुनिया में 360,000 से ज्यादा फ्लाइट्स में इस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल हो चुका है और इनमें भी अमेरिका और यूरोप में इस फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब भारत ने भी कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन के तहत इसके कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए साल 2027 तक जेट फ्यूल में 1%, 2028 तक 2%, 2030 तक 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में लाया जाएगा। लेकिन ये इथेनॉल नहीं है और ये दुनिया कहती है, लेकिन इन सब के बीच कई लोगों के मन में इसके बाद आशंका पैदा हो गई। अब लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, क्योंकि हम रांची को नहीं भूले हैं, जिसे हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों के मार्च के बाद से लगातार खबरें की, अब झारखंड की भी बारी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और धांधली का जो आरोप लग रहा है, उन सब के बीच छात्रों का आक्रोश लगातार अब बढ़ रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस आंदोलन का 13वां दिन है, जबकि देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का 5वां दिन। लगातार 1,000 से ज्यादा लोग 24 घंटे उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि टकराव की स्थिति ना हो। हालांकि आज दोपहर सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की सुगबुगाहट जरूर दिखाई दी, लेकिन अभी संशय बरकरार है। सरकार की ओर से एसडीओ कुमार रजत, एसडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर सीएम और का जो एक संदेश है वो छात्रों तक पहुंचाया था, हमने आपको कल भी दिखाया था, जिसके बाद छात्रों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के नाम तय कर दिए हैं। सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के नामों की सूची एसडीओ को सौंप दी है। एसडीओ को इसमें 8 छात्र, 2 तकनीकी जानकार और 1 वकील शामिल है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति को संभालने के लिए 4 मंत्रियों की एक विशेष समिति का गठन किया है। उसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये, और कल्याण मंत्री चमरा लंडा और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव सभी शामिल किए गए। छात्रों का कहना है कि पिछले आंदोलनों में बंद कमरे की वार्ताओं का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, इसलिए वो इस बार किसी भी छिपे या सीमित दायरे वाली बैठक के पक्ष में नहीं है। फिलहाल छात्रों द्वारा सूची सौंपे जाने के बाद सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों का आंदोलन और तेज होगा, जिसमें विधानसभा का घेराव भी शामिल है। रांची में 13 दिन से जारी छात्रों के इस आंदोलन को अब जोरदार समर्थन मिलने लगा है। देश भर से अलग अलग तरह के से जाहिर कर रहे हैं लोग इसे, कई लोग उनके साथ खड़े हैं। रांची के स्टेडियम में अब देश के अलग अलग शहरों के लोग पेमेंट कर फूड डिलीवरी ऐप के जरिए खाना भी भेज रहे हैं, समोसे कचौरी पिज्जा और अन्य खाना भी भेज रहे हैं। किसान भी छात्रों के समर्थन में पीछे नहीं है। आसपास के जो किसान हैं, आप सोचिए, छात्रों के लिए विशेष तौर पर ताजा खीरे, जो भी मतलब वहां पर खाया जा सकता है। आंदोलन स्थल पर लोकल लोगों ने बिस्किट पानी खाने के साथ साथ मेडिकल कैंप सब कुछ लगा दिया है, ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कई जगहों पर बारिश में भीग रहे हैं, तबीयत खराब होने का डर है।
9: ऑनलाइन खाना ऑर्डर होकर के आने लगा है, तो दिल्ली मुंबई कोलकाता शहर बेंगलोर जो लोग भी इस आंदोलन में आ नहीं पाए, इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो खाना ऑर्डर करते हैं, इन बच्चों के लिए यहाँ पहुँच जाता है। आपको पता है फिर खाना कौन भेज रहा है?
10: जी, ये सारे स्टेट से आ रहा है, लाइक दिल्ली मुंबई हर जगह से आ रहा है, और वो लोग बहुत लोग अपना हाइड रखते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद बस ऑर्डर हो जाता है।
9: खाना तो आ ही रहा है, अब तो खीरा वीरा भी आने लगी है, तो कैसे पहुंचे यहाँ पे?
11: 10 किसान आए और उन्होंने कहा 3 एकड़ खेत में हमारा खीरा लगा हुआ है,
9: सारा यहाँ भेज दिया।
11: उन्होंने स्वयं बोला कि आप लोग भी मिलिए और हम लोग सब मिल के तोड़ते हैं। पूरे गांव के लोगों ने खीरा तोड़ा, हम लोग तोड़े और गाड़ी में भर के लाए, और सुबह से खीरा न खत्म होने का नाम ले रहा, न विद्यार्थी खत्म होने का नाम।
9: आप लोग कहाँ से आए खाना लेके? ये और भेज कौन रहा है पता है? किसके लिए भेजा इन्होंने?
11: ये तो यहाँ के कम्युनिटी के लिए भेजा गया है।
9: बता रहे हैं किसको देना है?
12: नहीं बताया नहीं कुछ।
9: कह रहे किसी को भी दे दो। आप क्या लाए हैं?
12: वही है साथ में।
9: अच्छा इनके साथ ही हैं। कौन कौन कहाँ से आ रहा है खाना, कौन भेज रहा है?
12: ऐसे तो देखिए कंफर्म नहीं हुआ, बहुत आदमी धनबाद से भी किया है, बहुत दिल्ली से भी किया है।
9: और ये कब से शुरू हुआ है?
12: अभी तो हम लोग लगभग लगता है 2 हफ्ता से पहुँचा रहे हैं।
5: इस बीच परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही झारखंड सीआईडी ने रांची और यूपी पुलिस के सहयोग से बड़ी छापेमारी कर 5 और आरोपियों को दबोचा है। अब तक इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपको देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सुनवाते हैं। मुंबई में छात्रों के साथ एक खास संवाद के दौरान मोहन भागवत ने युवाओं की खुलकर तारीफ की, कहा कि देश की व्यवस्था को सुधारने में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कहा कि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार है, कहीं ज्यादा देशभक्त है। उन्होंने चेताया कि अगर युवाओं से संवाद में कमी रहती है तभी जंतर मंतर जैसे आंदोलन होते हैं। संवादहीनता ही इन टकरावों की सबसे बड़ी वजह है। आंदोलनों और प्रदर्शनों के मुद्दे पर भागवत ने दो टूक कहा कि अगर जेंजी सड़क पर उतरते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एंटी नेशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन सिस्टम में सुधार के लिए और पूरी मर्यादा में ही होनी चाहिए।
13: इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर मैं कह रहा हूँ कि जेल भी अगर एजुकेशन कर दें तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
14: जी सर,
13: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए।
15: और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
16: आप क्या मानते हैं?
15: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
16: अरे वाह बढ़िया है।
15: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
5: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप हो या फिर किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू, जब वेजिटेरियन इंसान उसमें पनीर की डिश देखता है तो उसके उसको सबसे अच्छा वही लगता है। मेन्यू में पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, पनीर दो प्याजा, पनीर लबाबदार, बहुत सारी चीजें हैं, तुरंत ऑर्डर करता है। लेकिन कभी आपने रेस्टोरेंट में ये नहीं पूछा होगा कि वो जो पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा वाला पनीर है। अब आपने तो सोचा भी नहीं होगा, हर कोई यही मानता है दूध वाला डेयरी वाला पनीर है। आपको हो सकता है इसके बारे में पता ना हो, लेकिन मार्केट में 3 तरह के पनीर बिक रहे हैं। पहला है डेयरी पनीर जो दूध से बनता है, असली पनीर है। दूसरा है टोफू जो सोया मिल्क से बनता है, कई लोग पूछ कर या ऑर्डर करके टोफू खाते हैं, इसे भी आप असली पनीर कह सकते हैं। और तीसरा है एनालॉग पनीर, इसे कई तरह के केमिकल से तैयार करते हैं। ये अलग बात है कि देखने भर से डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, यही सबसे बड़ा खतरा है, और फर्क ना कर पाना ही आपको बीमार बना रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन 3 राज्यों में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन राज्यों का कोई भी दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड वेंडर एनालॉग पनीर वाला व्यंजन नहीं बेच पाएगा। इन राज्यों ने एनालॉग पनीर के खतरे को पहचान लिया है। हालांकि FSSAI इसको खतरनाक नहीं मानती है, उसने राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। असली पनीर बताकर एनालॉग पनीर बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी हो रही है, उसे नष्ट किया जा रहा है। सच यह है कि आप पनीर, दूध या खोया के नाम पर जो चीजें बहुत खुश होकर खा रहे हैं उसके असली होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलावट खोरों की लैब में बनाई जा रही हैं। तो सुनिए, वनस्पति तेल, वो भी सस्ता वनस्पति तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर जैसे केमिकल से एनालॉग पनीर बनाया जा रहा है। सोडा वनस्पति घी से नकली दूध बन रहा है, फ्रेंच चौक से नकली खोया तैयार हो रहा है। यानी इस वक्त बाजार में मिलने वाला पनीर, दूध, खोया कितना असली है ये कहना लगभग नामुमकिन है। इस खेल की सच्चाई को उजागर करती है हमारे संवाददाता नितिन जैन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, देखिए।
14: दूध पनीर खोया, दिखने में असली लेकिन सेहत के लिए बहुत घातक। डिमांड एंड सप्लाई के खेल में मिलावटी बाल बेचने वाले सस्ते दाम पर जहर बेचकर निकल जाते हैं और आप उनसे हुए नुकसान की भरपाई अस्पतालों के बिल भरकर करते हैं। दिल्ली एनसीआर की ही बात कर लें तो यहाँ पर नकली पनीर या कहें एनालॉग पनीर की सप्लाई का केंद्र है हरियाणा का मेवात, और इसके अलावा नकली दूध और खोए की सप्लाई हो रही है यूपी के शामली और बागपत से। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि कई बड़े संस्थानों के किचन में भी नकली एनालॉग पनीर ही सप्लाई हो रहा है। हमारी टीम हरियाणा के मेवात में ऐसी ही एक फैक्ट्री में पहुंची जहां कई तरह के केमिकल मिलाकर एनालॉग पनीर बनाया जा रहा था। यहां हमारी मुलाकात नकली पनीर बनाने वाले सबसे बड़े सप्लायर हाजी करार से हुई।
17: मुझे दो तरह का माल चाहिए, एक तो मीडियम लेवल का और एक बिल्कुल ही डाउनग्रेड, मुझे उससे मतलब नहीं है।
18: मतलब आप एक तो मीडियम चाहिए, आधी सोयाबीन आधी दूध। दूसरा कौन से, फुल सेपरेट है या थर्ड क्वालिटी वाला?
17: थर्ड क्वालिटी, थर्ड और फोर्थ तो कोई भी हो,
18: मतलब वही एक ही चीज है।
17: लेकिन रेट चाहिए उसको, जिस दिन वो जो जो लो क्वालिटी वाला है जिस दिन चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा 200-300 किलो के करीब।
18: तो मीडियम का माल लगा दे दूंगा जो मैं आपके 140 में, और जो सबसे थर्ड क्वालिटी का माल है रगड़ूंगा, सैंपल देख सको आप, यही माएगा या सो घटिया ना आगे बढ़िया तो आ जाएगा, तो आपको मैं लास्ट 80 रुपए में देगा।
17: तो रगड़ा कहाँ दे रहे हो
18: है जी?
17: रगड़ा,
18: रगड़ा मतलब
17: ये वाला,
18: ये 80
17: नहीं, ये कहाँ दे रहे हो ये सप्लाई?
18: ये सब्जी के जाओ, जो जा भी पार्टी पे जा रहे हो अब सब एक ही माल जा रहे हो?
17: नहीं, कौन कौन है जैसे?
18: मतलब जैसे वो पार्टी है ना, वो सब तीन चार मेड़कान बनते हैं।
14: अब आप सोचिए कि ब्रांडेड कंपनी का पनीर बाजार में 450 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, लेकिन हाजी करार हमें 80 रुपए किलो में पनीर उपलब्ध करवा रहा है। इसे वो रगड़ू पनीर कहता है और ये पनीर दिखने में तो पनीर जैसा है लेकिन इसे बनाने में दूध का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ये रगड़ू पनीर बनता कैसे है ये हमें दूसरे आदमी ने बताया।
19: दूध प्योर कितने का बनता है?
20: प्योर का तो रेट घना महंगा।
19: कितना है
20: इसमें बचे ही ना कुछ, सेपरेट सेपरेट हमें बताओ क्या करें, कुछ रिफाइंड डाल देते हैं, कुछ वो सा दूध डाल देते हैं, प्योर बिल्कुल रिफाइंड ही नहीं डाल। जैसे आधा तो दूध चढ़ गया, आधा की जैसे क्रीम निकाल ली, जैसे 10 क्विंटल दूध चढ़ता है एक ना, उसमें आधा दूध खींच लेते हैं, आधा नुकनी बिगर क्रीम खींच चढ़ा देते।
19: मिल्क पाउडर नहीं मिला रहे?
20: मिल्क पाउडर मिला
19: और फिर ये रिफाइंड।
20: मिल्क पाउडर से ही तो हो रही है पूर्ति, नहीं होते पूर्ति ना हो दूध से तो दूध कितना, दूध में तो माल कितना निकलता है पाउडर गिर के। जब
14: हर दिन करीब 1200 से 1300 किलो नकली पनीर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रहा है। शादियों या त्योहारों के सीजन में तो ये सप्लाई बढ़कर करीब 2500 किलो तक पहुंच जाती है। ये सप्लाई दिल्ली में करीब 15 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर होती है जहां से पूरी दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होती है। हमें लगा कि मेवात में शुद्ध पनीर भी जरूर मिलता होगा लेकिन हमारी गलत फहमी मुस्तफा ने दूर कर दी। मुस्तफा इसी खेल का पुराना खिलाड़ी है।
21: प्योर से मिलेगा,
22: फुल प्योर से मिलेगा, फुल प्योर में नहीं मिलेगा,
21: नहीं मिलेगा।
5: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मैं करता हूँ ना,
1: मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
0: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
0: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर किधर?
4: करेक्ट करेक्ट।
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
8: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
7: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
8: सुपर स्ट्रॉन्ग
7: और मॉइस्चर प्रूफ।
9: वारंटी
7: 15 साल की।
8: कदम
7: सर प्लीज
8: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
10: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
11: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together.

0: मैं करता हूँ ना,
1: मैं करूँगा।
2: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
0: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
2: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
0: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
2: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर
3: उधर किधर,
4: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
7: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
6: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग,
7: सुपर स्ट्रॉन्ग
6: और मॉइस्चर प्रूफ,
7: वारंटी
6: 15 साल की।
7: कदम
6: सर प्लीज,
7: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
8: क्रॉसबॉन HDMR मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
9: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एसी हॉल में नहीं बात करेंगे हम। हम आइए मेरे यहाँ टेंट में। अभी तक छात्रों का मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं।
1: जो आवाज अब तक दिल्ली में सुनी जा रही थी वो अब रांची से सुनाई दे रही है। हक की एक और लड़ाई तेजी से परवान चढ़ रही है। झारखंड के नौजवान अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की अनोखी जंग लड़ रहे हैं। देश ने बड़े गौर से जंतर मंतर को देखा, देखा कि कैसे नौजवानों ने एक और आंदोलन की बुनियाद रखी, ये भी देखा कि कैसे युवा शक्ति के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ गया, देखा कि कैसे एक बेहद मजबूत शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। और अब दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में एक और जंतर मंतर का वजूद मजबूत होते देश देख रहा है। दो आंदोलन, दोनों का मकसद एक, फर्क सिर्फ इतना कि दिल्ली में डटे छात्र साधन संपन्न थे तो रांची में जमे छात्रों के सामने संसाधन का संकट है, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं है। 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर रांची में छात्र डटे हैं। न धूप बारिश की परवाह है, न भूख प्यास की चिंता। इनकी दो टूक मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा और अन्य विवादित परीक्षाएं रद्द हो, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई या ईडी से जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य की सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो, मुख्यमंत्री सीधे छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत करें और लिखित आश्वासन दें। इन छात्रों ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जंतर मंतर का प्रकरण सोरेन सरकार के जहन में जरूर दर्ज हुआ होगा। मुख्यमंत्री सोरेन ने छात्रों से बातचीत की पेशकश की है।
2: उसकी विस्तृत रिपोर्ट और अनुसंधान की जो स्थिति है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से लेने की आवश्यकता है। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहां जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है।
1: मुख्यमंत्री की इस पहल का अब तक ज्यादा असर नहीं हुआ है। छात्र कह रहे हैं कि जो कुछ होगा सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री का आवास 1 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करें। सत्यजीत कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, रांची आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक मोबाइल फोन में डाला है। एक बार हाथ से चिपक गया तो आंखें बंद होने तक नहीं छूटता। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल ने वीडियो जारी कर सरकार से कार्रवाई की मांग की। संसद में गतिरोध खत्म करने पर किरण रिजिजू राहुल गांधी में बात, परिसीमन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। और FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, ईसाई समुदाय से भी मिले। मेटा अफसरों से मिलने में सरकार की दो टूक, कहा भारत में नहीं चलेगा अमेरिकी कानून, AI डीप फेक पर भी सख्ती, महज 3 घंटे में हटाना होगा गैर कानूनी कंटेंट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में सबसे पहले बात जेन जी से संघ प्रमुख मोहन भागवत के संवाद की आइए करते हैं, जिसमें सरकार की कार्रवाई से लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जवाब दिया। और जब संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया कि क्या जंतर मंतर पर छात्रों से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी तो आंदोलन नहीं होता, तो इसके जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि जो नहीं होना चाहिए था तब होता है, कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती है लेकिन गलती ठीक कर ली जाएगी। हम आपको ये बता दें कि मुंबई में हुए इस कार्यक्रम में 11 से लेकर 19 साल की उम्र के करीब 2000 छात्र शामिल हुए। तो आइए हम आपको दिखाएं संघ प्रमुख मोहन भागवत और जेन जी के संवाद की कुछ बड़ी बातें।
1: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर
1: नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूं हाँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
2: आप क्या मानते
1: हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह, बढ़िया है।
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात
2: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं, बहुत प्रांतों में उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: जेन ज़ी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात कही जेन ज़ी से संवाद करते हुए। और अब खबर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दिपके के अगले प्लान की। जी हां, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी कि दिपके के घर हुई 2 दिन की बैठक के बाद सीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी मेगा प्लान तैयार किया है, और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी इसकी शुरुआत अगले महीने सितंबर से करने जा रही है। दिपके ने ऐलान कर दिया कि वो देश भर में क्या बोलती पब्लिक, जी हां क्या बोलती पब्लिक नाम से अभियान शुरू करेंगे। पब्लिक की हर समस्या को मुद्दा बनाएंगे, युवाओं की बात उठाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाएं अभिजीत दिपके की पूरी रणनीति और उनके दिमाग में जेन ज़ी को लेकर अब क्या चल रहा है।
3: महाराष्ट्र में 2 दिन की बैठक के बाद दिपके का मेगा प्लान। कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करेगी क्या बोलती पब्लिक अभियान। सितंबर से पब्लिक के बीच चर्चा, दिपके खोलेंगे नया मोर्चा। जेन ज़ी को लेकर दिपके ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी सीजेपी। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर 36 दिन के आंदोलन से कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करवाया और ये भी ऐलान किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
4: झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
3: और अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर यानी दिपके के घर सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक से जो एजेंडा निकल कर आया है उसमें दिपके की पूरी रणनीति एकदम क्लियर है। जी हाँ, दिपके देश को बता रहे हैं कि जंतर मंतर के आंदोलन ने जेन ज़ी से उन्हें कौन सा मंत्र मिला है। दिपके ये भी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनके आंदोलन की कामयाबी नहीं है, बल्कि कामयाबी कुछ और है।
5: कई सारे लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, इस आंदोलन का सबसे बड़ा सक्सेस था। वो तो एक सक्सेस था, लेकिन हम मानते हैं कि इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो चुका है। जिन लोगों को, जिस देश को इस सरकार ने पिछले 10-12 साल में डरा कर रखा था, धमका कर रखा था कि खबरदार अगर किसी ने भी सवाल किया सरकार से तो उनके ऊपर केसेस करे जाएंगे, जेल में डाला जाएगा, उसके बाद भी देश के युवा सड़कों पर उतरे और इस तरह उतरे कि सरकार को झुकना पड़ा। तो हम मानते हैं इस आंदोलन की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है लोगों के मन के अंदर का डर खत्म होना।
3: कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने 2 दिन की बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, सीजेपी सितंबर के महीने से क्या बोलती पब्लिक कैंपेन शुरू करने जा रही है।
5: कॉकरोच जनता पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी।
3: अब सवाल ये है कि क्या बोलती पब्लिक कैंपेन के तहत दिपके क्या प्लान कर रहे हैं, ये पूरा कैंपेन क्या है सुनिए। महंगी शिक्षा, दिपके के मुताबिक देश में स्कूल कॉलेज और कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसे कम करवाने के लिए और सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सीजेपी काम करेगी। बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। संस्थागत जवाबदेही, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं में जनता का भरोसा बहाल करने के लिए दबाव बनाना।
5: कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी ये भी एक बहुत क्यूरियोसिटी है, तो इस पर मैं बोल देता हूँ। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि आज हमारी देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रिनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने क्या चुना? सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहां बची इन इंस्टीट्यूशन में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। लोग कहते कि जो कॉमन इंसान जुडिशरी में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा बिजनेसमैन चला जाता है उनकी अर्जेंट हियरिंग लग जाती है। हमने तो देखा है कैसे कैसे मिडनाइट हियरिंग्स भी हुई है कुछ केसेस में। जहां सरकार गिरानी है वहां अर्जेंट हियरिंग हो जाती है। जो मीडिया हाउसेज है उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, देश की जनता आपसे काफी नाराज है। वो नाराज इसलिए क्योंकि आप उनकी बात नहीं कर रहे हो, आप एक पार्टी के गुणगान करने में लगे हुए हो।
6: सितंबर से कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और दीपके अपने क्या बोलती पब्लिक कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन इस कैंपेन में कॉकरोच जनता पार्टी का फोकस किस पर होगा ये भी दीपके ने आज साफ क्लियर कर दिया। और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी बनने की गलती इस समय नहीं करेगी। तो आखिर ऐसा क्यों कहा ये भी देखिए।
3: महाराष्ट्र में दीपके के घर हुई कॉकरोच जनता पार्टी की इस बैठक से एक और बड़ी बात निकल कर आई है, वो ये कि सीजेपी का पूरा फोकस 35 साल से कम उम्र वाले लोगों पर है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल की उम्र के लोग 21.19% है, महाराष्ट्र में 19.82%, दिल्ली में 18.89%, झारखंड में 28.38%, बिहार में 22.80%, मध्य प्रदेश में 27.18%, राजस्थान में 27.78%, पश्चिम बंगाल में 24.07%, पंजाब में 21.44%, हरियाणा में 22.20% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है। इसीलिए दीपके कहते हैं कि जंतर मंतर के आंदोलन से उन्हें इसका तजुर्बा मिल चुका है।
5: हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो। तो कॉकरोच जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है इनकी।
6: और अब खबर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। NHAI ने घटिया निर्माण को लेकर बड़े एक्शन का दावा किया, लेकिन एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी से जुड़े बीजेपी के सांसद के तार कई सारे सवाल उठा रहे हैं। और सवाल की वजह यह है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या सांसद के कारण कंपनी को हाईवे और एक्सप्रेसवे के ठेके मिल रहे हैं और वो भी बीजेपी के सांसद।

0: भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी, तो डर काहे का? एक्सप्रेस वे हो या फिर हाईवे, टेंडर भला कौन रोक सकता है? फिर चाहे गड्ढे में एक्सप्रेस वे हो या फिर एक्सप्रेस वे में गड्ढा।
1: आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है।
0: सियासी रसूख और पहुँच ऐसी कि NHAI का पूरा निजाम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा रहा। सांसद नवीन जैन के भाई की कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के घटिया निर्माण पर नजर रखने वाले अपनी आंखें मूंद कर बैठे रहे।
2: ऐसा नहीं कि NHAI का रोड खराब होता, आप दूसरे रोड भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं। ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहाँ रहते हैं वहाँ तक रोटी आती है।
0: सोचिए 13 जुलाई को पूरे तामझाम के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के लिए नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज जिम्मेदारों को घटिया निर्माण करने वाली BJP सांसद के भाई की कंपनी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ घटिया निर्माण का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के फेल होने का है। एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है।
3: ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के राजमार्ग है।
4: मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ।
0: आज जिम्मेदारों को गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक को मिल रहे ठेकों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की नहीं हो, PNC इंफ्राटेक कंपनी के घटिया निर्माण पर उठे सवालों की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। BJP के मौजूदा सांसद के भाई की कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इन दो तस्वीरों से समझिए। साल 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का 50 फीट हिस्सा धस गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई थी। कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO अवधीश कुमार अवस्थी ने माना था जहाँ एक्सप्रेसवे धसा वहाँ घटिया निर्माण PNC इंफ्राटेक कंपनी ने किया था। यानी 2018 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर PNC इंफ्राटेक कंपनी पर सवाल उठे, लेकिन उसके बावजूद इसी कंपनी पर पाबंदी लगाने के बजाय इनाम मिला। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का ठेका मिला, परिणाम सामने है। उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जगह जगह धस रहा है। मतलब यूपी का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे आज निर्माण में हुई अंधेर गर्दी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। सोचिए 2018 में कागजों पर PNC इंफ्राटेक को नॉन परफॉर्मर घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका कंपनी को मिलता रहा। अंधेर गर्दी ऐसी है कि गड्ढे वाला एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी को NHAI से करीब 3483 करोड़ के दो नए हाईवे प्रोजेक्ट मिल गए हैं।
1: मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी कंपनी को, जिसका नाम PNC इंफ्राटेक लिमिटेड है, इसको NHAI के दो बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसकी कीमत 3483 करोड़ रुपए है। ये 16 जुलाई को टेंडर जो है वो इनके नाम हुआ, यानी इस एक्सप्रेसवे के 3 दिन बाद। आप देखेंगे और इस पूरे डिटेल्स आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे 4-लेन हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है, एक बाराबंकी में जो होगा उसकी कीमत 1728 करोड़ है, दूसरा 4-लेन हाईवे जो मुस्तफाबाद में होगा उसकी कीमत 1755 करोड़ है। तो कैसे जो कंपनी 4200 करोड़ से एक एक्सप्रेसवे बनाती है, जिसके मात्र 20 दिन बाद ये स्थिति बनती है कि लगातार कई दिनों से यहाँ पर पैच वर्क किया जा रहा है, दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, कई बार गड्ढे हो गए, कई जगह सतह खिसक गई, उसी कंपनी को दो बड़े प्रोजेक्ट्स अलॉट कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि क्या कंपनी ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरे होने तक वो काम शुरुआत कर देती है या फिर उनसे वो काम छीन लिए जाते हैं, इसका जवाब NHAI के ऑफिशियल्स को देना होगा।
5: पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी का अतीत और वर्तमान दोनों विवादों से जुड़ा रहा, बावजूद इसके कंपनी को एनएचआई की तरफ से विभिन्न बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते आए, और ये तब है जब कंपनी के दामन पर घटिया निर्माण का दाग है। कंपनी के डायरेक्टर से लेकर कर्मचारियों पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई रिश्वतखोरी का केस दर्ज कर चुकी है। अब सवाल यही है कि जिस कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए, आखिर उसे किसका संरक्षण मिला हुआ है जो उसे लगातार इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं।
0: आज जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए। क्या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण में फंसी कंपनी को नए हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने का टेंडर मिलना चाहिए? क्या लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता से खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करने वाली कंपनी को मिला नया टेंडर निरस्त होना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरी कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए?
1: इस वक्त मेरे पास मौजूद है वो डॉक्यूमेंट, वो एफआईआर कॉपी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज करी थी कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ और साथ ही साथ एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ। आप देखेंगे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो एनएचआई के जो अधिकारी हैं पुरुषोत्तम लाल चौधरी इनको घूस दे रहे थे। वो अपना काम निकलवाने के लिए उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए था, काम चाहिए था, जिसके आधार पर ये घूस दी जा रही थी। सीबीआई ने रंगे हाथ इस कंपनी को, इसके अधिकारियों को पकड़ा था, जिसके बाद कई लोग जेल भी गए थे। यहां पे आप देखेंगे तो नाम लिखे हुए हैं, पुरुषोत्तम लाल चौधरी जनरल मैनेजर हैं एनएचआई के छतरपुर मध्य प्रदेश के, साथ ही साथ कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जिसमें योगेश जैन, टी आर राव और तमाम एम्प्लॉयज हैं, उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करी गई थी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कंपनी जो पहले भी एनएचआई के अधिकारियों को घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने के खेल में शामिल रही है, उसको कितनी आसानी से तमाम प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तमाम टेंडर्स मिलते रहे और किसी ने कोई उंगली तक नहीं उठाई।
0: एनएचआई के अधिकारियों को घूस देकर प्रोजेक्ट पाने का खेल पुराना है। आरोपों पर यकीन करें तो इस खेल में पीएनसी पुरानी खिलाड़ी है। 2024 में सीबीआई ने हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रिश्वत मामले में केस दर्ज किया था। मामले में एक एनएचआई अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी। पीएनसी से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की गई थी। यही नहीं, अवैध खनन से जुड़े मामले में कंपनी पर करीब 104 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। पीएनसी कंपनी के दामन पर दाग ही दाग हैं, लेकिन एनएचआई को ये दाग अच्छे लगते हैं। क्या इसकी वजह कंपनी से जुड़ा बीजेपी सांसद का नाम है?
1: कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में घटिया निर्माण करने वाली पीएनसी इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि कंपनी का सीधा नाता भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन से जुड़ रहा है, जो कि खुद इस कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय होने के बाद कंपनी का पूरा ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के पास चला गया, जिसमें से एक योगेश जैन के ऊपर सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि कंपनी सुर्खियों में रही।
0: पीएनसी इंफ्राटेक के घटिया निर्माण के बावजूद मिल रहे ठेकों पर उठ रहे सवालों की कई वजह हैं, क्योंकि कंपनी का सीधा कनेक्शन बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सांसद नवीन जैन 2017 तक पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर रहे। साल 2017 में नवीन जैन बीजेपी के टिकट पर आगरा के महापौर बने। फरवरी 2024 में नवीन जैन को बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया। राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पीएनसी के 291 करोड़ के शेयर होने की घोषणा की। साथ ही ये भी बताया कि नवीन जैन कंपनी में सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन बड़े शेयर होल्डर होने की वजह से उनके हित जुड़े हुए हैं। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन नवीन जैन के बड़े भाई प्रदीप कुमार जैन हैं। नवीन जैन के भाई योगेश कुमार जैन और चक्रेश कुमार जैन कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। नवीन जैन खुद कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं, वक्त के साथ राजनीति में सक्रिय होते गए और कंपनी के ऑपरेशंस और कंट्रोल उनके भाइयों के हाथ में रहा, लेकिन कंपनी के शेयरों में बड़ी हिस्सेदारी आज भी बीजेपी सांसद नवीन जैन की है। यही वजह है कि कंपनी और कंपनी से जुड़े सांसद की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास हाईवे देने का दावा करते हैं, अमेरिका जैसे हाईवे की उम्मीदें जगाते हैं, लेकिन अमेरिका तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की मरम्मत आज पेडेस्टल पंखों के भरोसे है।
1: अब फिलहाल उसी एक्सप्रेसवे की मरम्मत के काम में देसी जुगाड़ का इस्तेमाल हो रहा है। ये टेबल फैन या जिसे फराटा भी कह लें, इसका इस्तेमाल करके फिलहाल रोड को सुखाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये दो टेबल फैंस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पीछे पूरा कनेक्शन दिया गया है और इसी तरीके के टेबल फैंस आपको पूरे स्ट्रेच पर देखने को मिलेंगे और समय समय पर नमी को सोखने के लिए जैसा अधिकारियों द्वारा बताया गया है इन टेबल फैंस का इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ अभी डामर बिछाई जा रही है, बीच बीच में जब लगता है उनको कि नमी ज़्यादा हो जा रही है तो उसको सुखाने के लिए इन पंखों का सहारा लिया जा रहा है, उस देसी जुगाड़ का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल NHAI का कहना है कि बारिश की वजह से जो सतह है वो गीली हो गई थी और वो सब किया जा रहा है जिसकी वजह से नमी को सुखाया जा सके।
5: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, राहुल गांधी ने रांची में जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात की है, वीडियो कॉल के द्वारा बात करते हुए कहा है कि हर संभव मदद हम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और हम जो भी मदद कर सकते हैं छात्रों की वो जरूर करेंगे। रांची में जो छात्र बैठे हुए हैं धरने पर, उनसे राहुल गांधी ने बात की है और आज ही इन छात्रों का एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है सरकार से भी बात करने जा रहा है। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे पाकिस्तान के होने जा रहे हैं एक बार फिर से टुकड़े। देखते रहिए दस्तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
8: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया
8: है। हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: तो चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
17: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 6000 करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया.
3: ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़. यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया. एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड. एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर. उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना. सिर्फ महीने की 1.5 लाख की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर.
0: सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री. देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर.

0: टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेस वे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेस वे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेस वे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई, तो आने वाले दिनों में क्या होगा। अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेस वे की पोल खुल गई। हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेस वे धस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है, मतलब एक्सप्रेस वे बना है या गड्ढा वे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है। ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे की कलई खुलने के बावजूद NHAI के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनी और NHAI का नहीं। इनका नाम है गौतम विशाल, NHAI के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया। मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेस वे के गड्ढों को NHAI के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है। एक्सप्रेस वे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ, तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा। धसा हुआ एक्सप्रेस वे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेस वे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेस वे की खूबियां गिना रहे हैं।
1: टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, पांचों लोकेशन मिलाकर के 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता, और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्ट्रेच में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है, और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है।
0: सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेस वे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला। सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ छाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेस वे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेस वे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

0: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाएं कि कैसे पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक और खैबर पख्तूनवा से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक एक कोहराम सा मचा हुआ है। खुद पाकिस्तान के गृह मंत्री ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम फेल हो चुका है। पीओके में JAAC, बलूचिस्तान में BLA, खैबर पख्तूनवा में TTP अपना दबदबा कायम कर चुके हैं। पाकिस्तान में विद्रोह की आग में धधकते राज्यों के बीच मुनीर ने इस्लामाबाद में सत्ता पलटने की साजिश शुरू कर दी है, तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही सड़कों पर आ गया है। देखिए क्या टुकड़े टुकड़े होने वाला है पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान में गदर, मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने का डर। पाक का सिस्टम फेल, क्या कामयाब होगा तख्ता पलट का खेल। मुनीर के खिलाफ भड़का आक्रोश, सड़कों पर इमरान खान समर्थक। मुनीर का डबल गेम एक्सपोज, पीओके से इस्लामाबाद तक विरोध।
2: लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए
3: लगातार
2: फायरिंग, ये गोलियां लग चुकी है, ये देखिए ये सामने आके।
1: पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर का फौजी प्लान फेल। पाकिस्तान में हालात कितने बेकाबू हैं, सड़कों पर इमरान खान के समर्थकों का सैलाब सारी कहानी बयान कर रहा है। 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाले जाने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उनकी पिटाई की गई। विरोध की आग फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक पहुँची।
4: चांद जी क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त, ये जो तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं जनेवा के अंदर इस वक्त?
5: जिनेवा के बीच में बैठा यूनाइटेड नेशन,
6: मैं जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के ठीक सामने बैठा हूँ। आप पीछे झंडे और बिल्डिंग देख रहे होंगे, जहाँ हमारे अधिकारों की बात होती है, वहाँ मैं अपनी बेबसी जाहिर कर रहा हूँ। आपको पूरी दुनिया खड़ी दिख रही होगी, लेकिन मैं इस तानाशाह की वजह से बेबस बैठा हूँ। वही तानाशाह जिसकी एक आँख मैंने खुद पेन चलाकर फोड़ी थी और जिसकी वजह से मेरा खान जेल में है। हमारे पाकिस्तान में जिसे इस्लामी जमहूरिया ए पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ से लोकतंत्र को खींच लिया गया है, निचोड़ लिया गया है। और बेबसी का आलम यह है कि यूनाइटेड नेशंस जो न जाने किस साल बना था, वह अंधा होकर बैठा है। उन्हें किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। दुनिया भर के लोग विरोध कर रहे हैं।
5: खान की कहंदा वा, खान सिर्फ मेरी जंग,
6: ये लोग हमें पागल बनाकर मारना चाहते हैं। खान क्या कहता है? खान सिर्फ मेरी लड़ाई लड़ता है। अगर मेरा खान उस पाकिस्तान में न हो तो क्या मैं वहाँ सिर्फ कत्ल होने जाऊँ? क्या मैं वहाँ मरने जाऊँ? यहाँ भी हमले, वहाँ भी हमले, लोगों का अपहरण, बहनों और माताओं को उठा लिया गया। क्या हर कोई आतंकवादी है? बस 7 लाख लोग ही देशभक्त हैं और बाकी हम सब आतंकवादी हैं।
1: आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अब भी इमरान खान ही हैं। आसिम मुनीर ने सीधी चुनौती देने वाले इमरान खान को 3 साल से जेल में डाल रखा है। और बड़ी खबर ये है कि उनकी रिहाई के लिए उनकी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च करेगी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि इस मार्च से पहले सरकार इमरान खान पर लगी पाबंदियां हटा ले, उनके डॉक्टर, परिवार और वकीलों को उनसे मिलने दे, नहीं तो उनकी पार्टी इस्लामाबाद कूच करेगी।
7: मेरे नौजवानों, आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है, तैयार हो तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
1: अब सवाल यह है कि सोहेल अफरीदी ने 27 सितंबर यानी डेढ़ महीने बाद की तारीख क्यों दी। इस बात से इमरान खान की बहन नाराज हैं। उनका कहना है कि ये लोग इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं, उनके बाहर आने में जानबूझकर देरी की जा रही है। हालांकि अलीमा खान ने कहा कि इस्लामाबाद मार्च का फैसला पीटीआई का है और वो ऐसे फैसलों पर पार्टी से बात नहीं करती है।
3: मैं तो फोन पे यही देख रही
8: हूं। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे?
9: ठीक बात,
3: इमरान खान को इंतजार से बात है ना, और किसके लिए? मैं तो खुद ही समझ आई कि क्यों
10: आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से,
3: नहीं डिस्कस
10: करते
11: जी।
1: आपको बता दें कि पंजाब और सिंध प्रांत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है।
4: गवर्नमेंट पीटीआई की जो पार्टी है, सोहेल अफरीदी एंड पार्टी है, वो कर रही है। मीना गुल हो गया, ये खटक हो गया, गोबर खान वगैरह हो गए जो असेंबली में बैठे हुए इमरान खान के नाम के ऊपर, हुकूमत तो ये कर रहे हैं ना जी। और फिर अलीमा खान से एक्सपेक्ट करना कि अलीमा खान जो है वो अनाउंसमेंट करेंगी, तो अलीमा खान ने तो ना एमएनए ना एमपी है, अपने भाई की आजादी के लिए कर रही हैं जो वो कर रही हैं, उनसे इस किस्म की एक्सपेक्टेशन करना, आप मुझे बताएं कि क्या जायज है? क्या उनसे ये एक्सपेक्टेशन रख के ये मामला आगे चलाना जायज है? एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि अलीमा के साथ डील हो गई है, इमरान को रस्ते से हटाएंगे, उसको लाएंगे। जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया था बेनजीर के बाद, इमरान के बाद अलीमा लगा देगी। ये क्या बकवास है आपके ख्याल के अंदर? क्या ये डिवाइड एंड रूल का एक पुराना जो इनका तरीका है वारदात है वो नहीं है?
1: एक तरफ इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी पाकिस्तानी फौज का दमन अपने चरम पर है।
12: ये देखे लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखे लगातार फायरिंग।
4: अगर ये तस्वीर दुरुस्त है तो सवाल ये है कि गैर मुसल्ला प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इतनी सख्त फोर्स का जो ये हार्ड स्टेट बनाई जा रही है, जिसके अंदर जो है इस वक्त हालात तो आपके सामने ही है, अब ये क्या आवाम की आवाज के जवाब में गोलियां चलाना एक नॉर्मल सी बात बन गई है? लगता तो यही है, हम वीडियो की आपको आवाज नहीं ज्यादा सुना सकेंगे। लगातार फायरिंग हो रही है, जो विजुअल्स हैं वो आपके सामने हैं, और जाहिर बात है कि विजुअल्स हम इससे ज्यादा आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुआ है, इसके ऊपर इनके अपने जो अंदर झगड़े बन गए हैं, जो सिस्टम तो फेल हुआ है लेकिन इनके अपने अंदर भी झगड़े शुरू हो गए हैं। जमात-उद-दावा लश्करे तैयबा जो इनका है, जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बना के बैठा हुआ है, उनके अंदर भी मामला जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त इस इलेक्शन की तरफ अब जब देखते हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अब तक 45 में से 23 सीट्स जो है वो उनको दान की जा चुकी हैं, उनके हवाले की जा चुकी हैं, उनको जो है वो गिफ्ट की जा चुकी हैं। आसिम मुनीर अपनी मशूक को जो है वो तोहफे के अंदर जो है 45 में से 23 सीट्स दे चुकी हैं।
1: सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर सूबा जल रहा है। पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर सड़कों पर भीषण जंग छिड़ी हुई है और राजनीतिक घमासान चरम पर है, तो बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह और आजादी का रण छिड़ चुका है। बलोच स्वतंत्रता सेनानी पाकिस्तानी कब्जे को उखाड़ फेंकने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
0: और अब खबर बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट में तनाव की। बांग्लादेश में शेख हसीना के वापस लौटने के ऐलान के बाद से ही बवाल हंगामा शुरू हो गया। शेख हसीना की पार्टी के समर्थकों ने इस ऐलान का स्वागत किया तो रहमान सरकार सपोर्टर्स ने शेख हसीना के विरोध में सड़कों पर उतरने की धमकी दे दी, और यहां तक कि हसीना का समर्थन करने के कारण से बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के घर पर हमला कर दिया गया। मतलब यही है, हसीना के बांग्लादेश लौटने से पहले ही हंगामा शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को लेकर ईरान की नई धमकी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा हम पर हमला किया तो खाड़ी देशों की दो रिफाइनरीज और गैस प्लांट्स बचेंगे नहीं, उन्हें हम निशाना बनाएंगे।
1: बांग्लादेश में शेख हसीना पर मचा बवाल। हसीना की प्रेस वार्ता के बाद बढ़ा तनाव। क्रिकेटर शाकिब हसन के घर पर हमला। दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना। क्या बांग्लादेश में फिर भड़केगी आग?
9: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा तनाव। ईरान की धमकी निशाने पर है मिडल ईस्ट। बीते 24 घंटे से बांग्लादेश और मिडल ईस्ट में तनाव है। बांग्लादेश में तनाव की वजह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने दिसंबर तक बांग्लादेश वापस लौटने का दावा किया है। हसीना के ऐलान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। वहीं शेख हसीना की वापसी को लेकर बांग्लादेश सरकार ने दावा किया है कि अब मुल्क की राजनीति में हसीना का अध्याय बंद हो चुका है। सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के देशों में ईरान की धमकी के बाद तनाव है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडल ईस्ट की तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट पर हमला होगा। सबसे पहले बात बांग्लादेश की। बुधवार को दिल्ली में शेख हसीना ने प्रेस वार्ता की। वर्चुअल प्रेस वार्ता के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर बवाल शुरू हो गया। हसीना का समर्थन करने की वजह से बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब हसन के घर पर रात को पेट्रोल बम से हमला हुआ। बांग्लादेश आवामी लीग ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेट आइकॉन शाकिब अल हसन के आवास पर पेट्रोल बम से एक भयावह हमला हुआ। ये हमला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें विश्व प्रसिद्ध स्टार क्रिकेटर ने सम्मानित पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना के साथ हिस्सा लिया था। दरअसल पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब शेख हसीना ने बीते दिन बांग्लादेश वापस लौटने का ऐलान किया। हसीना ने यही दावा किया कि दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी।
11: After going back, they may arrest me. I am telling you one thing. That is 81, when I returned home. That time also they tried to stop me. Dr. Rahman was in power, but I went there. But 1983, I was arrested. Then again in 1985, 1987, there are several times. Even 2007, that time also I was outside the country. But when I wanted to return home, they tried to stop me, but they could not. I return home. So I know that they may put me in the jail or they may kill me, they may, anything may happen, but still I have to go back. You are friend of Bangladesh. You are here. I know you will support me. So the people's support, it is very important for me.
9: शेख हसीना के इसी ऐलान के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, इस देश की जनता ने जुलाई क्रांति की भावना को अपनाते हुए दृढ़ संकल्प लिया है कि हमारा राष्ट्र कभी भी फांसीवाद के उन अंधेरे दिनों में वापस नहीं जाएगा और बांग्लादेश कभी किसी का वफादार या संरक्षित राज्य नहीं बनेगा। जनसंहार की दोषी हसीना और उनका माफिया गिरोह अब कभी बांग्लादेश की राजनीति में जगह नहीं पाएगा। अफसोस की बात है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत दोषी अपराधी हसीना को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश की ओर से बार बार किए गए अनुरोधों पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से हसीना की प्रेस वार्ता को लेकर सवाल उठाए गए थे। प्रेस वार्ता से पहले ही भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था। सरकार की तरफ से यही कहा गया कि शेख हसीना की प्रेस वार्ता का आयोजन एक निजी मीडिया संस्था कर रही है जिसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है और न ही वो प्रेस वार्ता में रखे जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। अब देखना यही है कि शेख हसीना के वापस लौटने के ऐलान के बाद बांग्लादेश में मचा बवाल आने वाले दिनों में हिंसा की वजह तो नहीं बनेगा। दूसरी तरफ हुर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाबी सैन्य कार्रवाई सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान के निशाने पर मिडल ईस्ट के तेल और गैस के प्लांट रहेंगे। वजह है कि चेतावनी के बाद सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन तक हलचल तेज हो गई है। क्या ईरान अब दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर तेल का नया संकट तय है।
13: पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके कई सारे वीडियोज आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया इंस्टाग्राम वीडियो आया है, हम आपको दिखाते हैं, सुनिए आप।
14: साथियों,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों,
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: In association with
8: Cera Sanitaryware, it's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं।
10: आज सबसे बड़ा महापाप, आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को।
11: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
12: समाजवादी पार्टी अराजकता, गैर लोकतांत्रिक और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। पूज्य जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था कि जब सदन चल रहा हो तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनता की आवाज को सदन में उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूज्य लोहिया जी और पूज्य जनेश्वर मिश्र जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो केवल व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स कर रही है और खासकर अराजकता, गुंडई और पूरी तरह से प्रदेश को दंगों में झोंकने वालों को समर्थन करने वाली पार्टी बन चुकी है। प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है।

0: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
1: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barso se sarso.
2: Kuch to baat hai is dil mein.
3: अखिलेश यादव का पीडीए क्या है? मौका बदलता है, जगह बदलती है, वोट बैंक बदलता है और पीडीए नई परिभाषा के साथ आ जाता है।
4: जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है।
3: पीडीए में पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक, अगड़ा आधी आबादी और आदिवासी पहले ही बताया जा चुका है। जो पीड़ित वो पीडीए का ऐलान भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। पीडी माने पंडित बताने से पहले फरवरी महीने में अखिलेश यादव ने पीडीए का रिश्ता बहुजन से भी जोड़ा था।
4: बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है, इससे सौहार्द भाईचारा हम सब का मेलजोल बढ़ेगा।
3: पीडीए पर अखिलेश की इस बदलती परिभाषा को बीजेपी चौकन्ना होकर देख रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में लिखा है, अखिलेश यादव ने अपने पीडीए को एक ऐसी पहेली में तब्दील कर दिया है जो गिरगिट की तरह हर क्षण तेजी से अपना रंग बदलती है, कभी पी से पिछड़ा, कभी पी से पीड़ित तो कभी पी से पंडित। दरअसल इस अटखेली में उनका पीडीए और कुछ नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका मक्का मदीना केवल सैफई है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कृष्ण सुदामा दोस्ती के नाम पर अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर भी पलटवार किया।
5: भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
6: ब्राह्मण केवल सुदामा नहीं है, ब्राह्मण चाणक्य भी है, ब्राह्मण चंद्रशेखर भी है और ब्राह्मण पेशवा बाजीराव भी है। सुदामा और कृष्ण वंशजों का साथ बहुत पुराना है, सदियों का साथ है, लेकिन अखिलेश जी यहाँ भी आप चूक रहे हो, आप भगवान कृष्ण के वंशज ही नहीं हो। यदि आप भगवान कृष्ण के वंशज हो तो चलिए मथुरा चलिए ना, शुरुआत करिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को कलंक से मुक्ति दिलाइए। हिम्मत है आपके अंदर? नहीं, केवल आप लोगों को ठगना ही जानते हो। आप पीछे चाहे पंडित बताओ, चाहे पीछे पिछड़ा, लेकिन पीछे आपके लिए केवल और केवल परिवार ही है और उसमें भी शिवपाल नहीं, आपके बाद अर्जुन का ही नंबर आना है।
3: समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का विस्तार साफ तौर पर बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध की कोशिश नजर आती है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में अनोखा प्रदर्शन कर रही है। तो उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या से पवन पांडेय को समाजवादी पार्टी का पहला टिकट देकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। अखिलेश को काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बार बार समाजवादी पार्टी का अयोध्या मुद्दे पर पुराना स्टैंड गिनाया है।
7: जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं।
3: यूपी के चुनावों में जाति कभी जाति नहीं, लेकिन पीडीए की पॉलिटिक्स और उस पर बीजेपी के पलटवार से मुकाबला और दिलचस्प हुआ है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क और
2: मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं न कहीं हुई चूक, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म करने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, में शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने दी जानकारी, ईसाई समुदाय ने भी मुलाकात की। और ओडिशा से चांदीपुर से भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया, रक्षा मंत्री ने SFC और DRDO को दी बधाई, कहा सफल परीक्षण से रक्षा क्षमता और मजबूत।

0: फोन की घंटी का इंतजार करते करते बूढ़ी आंखों के सपने हो गए बेनूर। दौड़ती दुनिया में वक्त नहीं किसी के पास, आज अपनों से ही हो गए हम कितने दूर। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तीन तीन बेटियों का बाप होने के बावजूद एक बुजुर्ग बाप वृद्धा आश्रम में रह रहा था। तीनों बेटियां शादीशुदा हैं, एक बेटी बैंक में नौकरी करती है, एक बेटी टीचर है। वृद्धा आश्रम में ही पिता की मौत हो जाती है, मगर तीनों बेटियों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाती। अब चूंकि उनके पास वक्त था ही नहीं, तो वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी कर ली। जिस्म का घाव हो गया बूढ़ा, दर्द की ऐनकें बदलता है।
1: अभी और कितना टाइम लगेगा? हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट भी कितना खिलाएंगे?
2: नहीं, अभी तो नहीं है ना, कितना बोर नहीं बैठी, 10-15 मिनट में।
0: अभी और कितना टाइम लगेगा? हमें नहाना भी है, चूल्हा भी जलाना है, खाना भी खाना है, और भी बहुत सारे जरूरी काम है। ये चिता की लकड़ियां हैं, जल्दी क्यों नहीं जल जाती? पापा, जल्दी राख क्यों नहीं बन जाते? और कितना इंतजार करूं? टाइम नहीं है हमारे पास। जिंदगी का सबसे बड़ा सच जो सचमुच सच्चा है वो मौत है। पर मौत से पहले एक जिंदगी भी होती है, और वो जिंदगी अपने साथ इतनी भाग दौड़ लेकर आती है कि किसी के पास उसी जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं होता। अब जब जिसके पास जिंदगी के लिए वक्त ना हो, तो वो भला मुर्दों के लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद करे? जिस बेटी को कभी उसने बहुत बहला फुसला कर अपने हाथों से रोटियां खिलाई थी, आज उसी बेटी के पास अपने उसी पापा के लिए शमशान तक आना या अग्नि देना तो दूर दूर बैठकर मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए चिता की आग को बुझने तक भी देखने का टाइम नहीं है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। आज समझ में नहीं आ रहा कि इस वारदात के शो में आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, जो कायदे से कोई वारदात ही नहीं है। एक बुजुर्ग की मौत ही तो हुई है, तीन बेटियों का एक बाप ही तो मरा है, उसे किसी ने मारा भी नहीं। बताने वाले बता रहे हैं कि मौत बीमारी से हुई, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि तीन बेटियों की भरी पूरी दुनिया आसपास होने के बावजूद तन्हाई और अकेलेपन ने उसकी जान ले ली। किसी थाने में इस बुजुर्ग की मौत का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी इस बुजुर्ग की मौत हर किसी को झकझोर रही है। जो भी इस तस्वीर को देख रहा है, जो भी इस वीडियो में इस बेटी की बात सुन रहा है, वही हैरत में है। हैरत इस बात पर कि क्या सचमुच अब हम सब के पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम मरते हुए मरने जा रहे हैं, या मर चुके अपने माँ बाप को देखना तो छोड़िए, उनके लिए शमशान या कब्रिस्तान तक नहीं जा सकते। अब माँ बाप का अंतिम संस्कार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल पर ही देखना पड़ेगा। छोड़िए जिन बच्चों के पास अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने का भी वक्त नहीं, वो चिता ठंडी होने के बाद उसी शमशान में जाकर अस्थियां चुनने का वक्त कहां से निकाल पाएंगे? अस्थियां चुन भी ली तो कौन उन्हें कलश में भरकर हरिद्वार छोड़िए आसपास की किसी नदी में प्रवाहित करने की तकलीफ उठाएगा। सुनिए ना, इस बेटी के पास सचमुच टाइम नहीं है,
3: कराना पड़ेगा हमें। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
1: अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो देखते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ ना।
3: हाँ जी हाँ जी।
0: अभी तक टुकड़ों में मैंने आपको इस बेटी की आवाज सुनाई, दिल के टुकड़े कर देने वाली इस कहानी की पहले आप बिना टुकड़ों में एक साथ अब पूरी बातचीत सुनिए।
3: तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
1: अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ ना।
3: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छे से हो गया ना सारा काम?
4: हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
1: ठीक है,
4: भेज दूंगा
5: या आपके आने पे होगा सारा काम?
4: हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना।
5: ये संस्कार हुआ है
4: अभी, तो संस्कार हुआ है
1: अभी। और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नाएंगे, खुला के
5: रहेंगे? नहीं अभी तो है ना, मैं साहब और नहीं दे दी।
2: दस 10-15 मिनट में हो जाएंगे। हाँ
0: दिल्ली की लगभग चौखट पर मौजूद ये सोनीपत का एक शमशान है और ये है 74 साल के बुजुर्ग शिवचरण राम रत्न गुप्ता। हालांकि 74 की उम्र इतनी ज्यादा बुजुर्गियत की भी नहीं होती, लेकिन औलाद चाहे तो उम्र से पहले माँ बाप को बूढ़ा बना सकती है, और अगर वही माँ बाप को उनके बच्चे अपने घरौंदों से निकाल कर किसी वृद्धा आश्रम में फेंक दे तो इंसान सिर्फ बूढ़ा नहीं होता, मर जाता है। यही राम रतन के साथ हुआ। एक दौर था जब राम रतन का हंसता खेलता परिवार था, मुंबई में शानदार घर और कपड़ों का कामयाब बिजनेस, करोड़पति हुआ करते थे राम रतन। 3 बेटियां थी, तीनों को मुंबई के अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, कॉलेज भेजा, तीनों को कामयाब बेटी बनाया, फिर बड़ी धूमधाम से तीनों की शादियां की। 3 में से 2 इस वक्त टीचर भी है। तीनों का अपना भरा पूरा परिवार है, पर अचानक किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि राम रतन का कारोबार बर्बाद हो गया, सब कुछ डूब गया। फिर भी किसी तरह मुंबई में गुजर बसर चलती रही, लेकिन जिंदगी जब गर्दिश में आई तब राम रतन को पहली बार एहसास हुआ कि दौलत के जाते ही उनकी अपनी बेटियां भी बदल चुकी हैं। अपनी ही बेटी का घर उन्हें खाने लगा। बाकी की 2 बेटियों में से 1 यूपी के आजमगढ़ और दूसरी नेपाल में रहती थी। बेटियों की बेरुखी शायद राम रतन बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए 3 साल पहले अपनी पत्नी को साथ लिए दिल्ली पहुंच गए।
6: पहले तो ये बताए, कपड़ा व्यापारी थे मुंबई में, कोई अच्छा ठाडा ब्यों था इनका, पैसे वाली सामने थी, मगर समय तो पता नहीं किसके साथ क्या करा दे। तो इनके हालात ऐसे बने कि ये सोनीपत आश्रम में आ गए, मियाँ भी आए थे।
7: एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है बॉम्बे, और एक नेपाल में रहती है इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है।
0: दिल्ली में रहने के दौरान ही राम रतन को पहली बार सोनीपत में मौजूद एक वृद्धा आश्रम के बारे में पता चला। दोनों पति पत्नी दिल्ली से सोनीपत इसी वृद्धा आश्रम में पहुंचे। 3 शहर में 3 बेटियां थी और माँ बाप अब एक वृद्धा आश्रम को अपना घर बनाने जा रहे थे। वृद्धा आश्रम में आने के 2 साल बाद शायद राम रतन की पत्नी से अपने पति का दुख देखा नहीं गया। 1 साल पहले उनकी मौत हो गई, 2025 में। मोबाइल, वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तब भी सब कुछ मौजूद था। तब भी तीनों बेटियां सोनीपत से सिर्फ 1500 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई, आजमगढ़ और काठमांडू में मौजूद थी। लेकिन पिता से पहले माँ की मौत पर भी तीनों बेटियों के पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपनी माँ को आखिरी विदाई देने या अंतिम संस्कार के लिए वो सोनीपत आ पाती। पर बदनसीब राम रतन की पत्नी खुशनसीब थी, क्योंकि कम से कम उनकी चिता को उनके अपने सुहाग ने शमशान जाकर अग्नि तो दी, बेटियों की तरह वीडियो कॉल कर अंतिम संस्कार की रस्म देखने की रस्म अदायगी तो नहीं की।
8: महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी शिवचरण अपनी पत्नी के साथ सबसे पहले सोनीपत के इस अपना घर आश्रम में पहुंचे थे। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए ये उसकी पत्नी मीना है और ये शिवचरण है। ये अपना घर वृद्ध आश्रम है, सोनीपत के सेक्टर 7 में स्थित है। हमारे साथ जो इसकी संचालक है सारिका कालरा, हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैडम, ये शिवचरण जो कपड़ा व्यापारी थे अपनी पत्नी के साथ कब आपके पास पहुंचे थे?
9: हमारे पास तो शिवचरण जी 4 मार्च 2024 में पहले अकेले ही आए थे, उसके बाद मई में उनकी पत्नी हमारे पास आई थी।
8: क्या कहा उन्होंने, क्या बताया आपको, कहाँ से आई है, हम क्या काम करते हैं, कुछ बताया? पर जब पहुंचे
9: तो ये बताया था कि ककरोई में उनके कोई रिलेटिव्स पहले रहते थे और बॉम्बे में उनका कपड़े का कोई बिजनेस था जिसमें वो काफी लॉस हो गया था उनको, इस वजह से वो यहाँ पर अपने रिश्तेदार के पास आ गए थे ककरोई।
8: फिर उसके बाद बताया कि बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं?
9: उन्होंने ये बताया था 3 बेटियां हैं, एक बेटी उनकी नेपाल में रहती है, एक सूरत में रहती है और एक यूपी में कहीं रहती है, उसके बारे में हमको जानकारी थी।
8: कुछ बताया क्या करती है बच्चे बेटियाँ?
9: बड़ी बेटी के बारे में बताया था, एक बेटी उनकी जो छोटी बेटी थी वो IDFC बैंक में नौकरी करती थी और जो दूसरी बेटी है वो नेपाल के स्कूल में टीचर थी। बीच वाली बेटी का मुझे नहीं पता।
8: उसकी पत्नी की मौत कब हुई थी, देहांत कब हुआ था, यहीं पे हुआ था या वापिस चली गई?
9: उनकी पत्नी का देहांत यहीं पे हुआ था 12 अक्टूबर को, वो आई मई में थी, 12 अक्टूबर को उनका देहांत यहीं पर हुआ था
8: 2024 में। क्या उस समय परिवार से बेटियों से बातचीत की गई थी? बेटी उनको बताया गया था कि आपकी माँ का देहांत हो गया है, अंतिम संस्कार करना है?
9: जब उनकी मम्मी यहाँ पर आई थी तो वो बहुत ट्रॉमा में थी, तो हमने जानने की कोशिश की थी क्या हुआ था, तब हमें ये पता चला था कि उनके कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से वो ट्रॉमा में है। और जब उनकी मम्मी ज़्यादा बीमार हो गई थी तब भी उनकी बेटियों को इन्फॉर्म कर दिया गया था, अंकल खुद इन्फॉर्म कर रहे थे उनको।
8: बेटियों से लगातार पिता की बात होती थी?
9: डेली दिन में 2-3 बार बात करते थे बेटी से।
8: फिर उसकी अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं पहुंचा?
9: कोई नहीं पहुंचा उनके अंतिम संस्कार में, मैं थी, अंकल थे और हमारा स्टाफ था।
8: कुछ अस्थियां विसर्जन करने का काम भी
9: वो पूरा अंकल और हमारे स्टाफ ने मिलके जाके हरिद्वार करके आए थे।
8: फ्यूचर ने बताई नहीं अपनी कहानी आपको कि?
9: उन्होंने इतना ही बताया कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा व्यापारी था, किसी कारणवश मुझे लॉस हो गया था। लॉस कारण भी उनकी बेटियों का ही था, जो अब मैं नहीं बता सकती क्योंकि हो सकता है वो इन्होंने जब इतने साल किसी को डिस्क्लोज नहीं किया तो हम भी नहीं करना चाहते।
0: तीनों बेटियों की बेरुखी तो रामरतन फिर भी सह गए, लेकिन जिंदगी के सुख दुख में हमेशा साथ देने वाली पत्नी की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। जिस वृद्धाश्रम में वो अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे वहां की हर चीज उन्हें अपनी पत्नी की याद दिलाती, इसीलिए 1.5 साल पहले वो वृद्ध आश्रम ही छोड़ दिया। इसके बाद वो सोनीपत के ही इस आश्रम में पहुंच गए। पत्नी के जाने के बाद रामरतन की जिंदगी में अब सिर्फ 3 बेटियां थी, लेकिन शायद तीनों बेटियों की जिंदगी में रामरतन नहीं थे। हाँ, फोन पर कभी कभार बातचीत जरूर हो जाती। पत्नी के गुजरने के बाद रामरतन बीमार रहने लगे। करीब 20 दिन पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई। वृद्धाश्रम के संचालक ने उनकी एक बेटी को फोन किया, बेटी ने कहा आते हैं पर कभी आई नहीं।
6: इसकी तबीयत करीब 20-25 दिन पहले एक बार खराब हुई थी, तो मैं फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गया। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया, भाई इनकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, आप मिलना चाहो तो आ सकते हो। उन्होंने कहा अंकल ठीक है, हम आते हैं। मतलब उनका फिर बस टाइम ना लगने के बाद या किसी को क्या कहे, उनकी अपनी सोच थी, भाई यही करते रहे कि आते हैं और वो नहीं आई।
7: कि 3 बेटियां हैं, इनका फोन से संपर्क रहता था, फोन पर इस पर रहता था, इनके फोन पर ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में। ये जो वो उसकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ एक बार, ये की स्थिति थी ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला जी हम दूर पड़े हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा।
0: इसी हफ्ते रामरतन की फिर तबीयत खराब हुई, पेट में तेज दर्द था। फिर बेटियों को खबर की गई, लेकिन हमेशा की तरह तीनों बेटियों के पास टाइम ही नहीं था। इधर मंगलवार को रामरतन की जिंदगी का आखिरी टाइम भी खत्म हो गया। तीनों बेटियों के रहते हुए एक वृद्धाश्रम में उन्होंने आखिरी सांस ली। वृद्धाश्रम के संचालकों को लगा अब तो बेटियां अपने मुर्दा बाप के लिए कुछ टाइम तो निकाल लेंगी। यही सोचकर रामरतन की बेटी को फोन किया, पिता के मरने की खबर दी। पर इस बार भी वृद्धाश्रम के संचालक गलत निकले, क्योंकि बाप की मौत की खबर सुनने के बाद भी बेटियां टाइम निकालने को तैयार नहीं थी।
7: आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी।
6: रात को 3:30 बजे करीब डेथ हुई इनकी, उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो। मैंने कहा बेटा इन्होंने शरीर दान के बारे में बोला, अभी शरीर दान करा दें। तो उन्होंने कहा कि शरीर दान तो ना करना आप, इसकी खाली आंखें डोनेट करा देना और उसके बाद अंतिम संस्कार कर देना।
0: राम रतन ने जीते जी ये वसीयत की थी कि मरने के बाद उनका अंग दान कर दिया जाए, लेकिन जिस बेटी के पास टाइम ही नहीं वो ये कह रही है कि पूरे अंग दान की बजाय सिर्फ आंखें दान कर देना। और वही हुआ, राम रतन की मौत के बाद अब उनकी आंखें किसी और की आंखों की रोशनी बन चुकी है। बहुत मुमकिन है कि राम रतन ने खास तौर पर अपनी आंखें इसलिए भी दान की ताकि वो फिर कभी उस दुनिया को देखना ही नहीं चाहते थे जिनमें उनकी वो बेटियां भी हैं जिनके पास अपने बुजुर्ग बाप के लिए टाइम ही नहीं। हाँ, बेटियों ने बेटी होने का कुछ फर्ज तो निभाया, कहा मेरे पिता का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह नहीं होना चाहिए, लकड़ियां घी बाकी सारी चीजें वैसी ही होनी चाहिए, पैसे की फिक्र मत करना, टाइम नहीं है तो क्या, पैसे तो हैं, 5100 रुपए भेज रही हूँ, अंतिम संस्कार के लिए काफी होगा। फिर थोड़ा और दिल पसीजा तो बेटियों ने कहा टाइम नहीं है, शमशान नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, वीडियो कॉल पर सब कुछ लाइव देख लूंगी, वीडियो कॉल पर ही शोक भी बना लूंगी। फिर बेटी ने एक खास हिदायत भी दी कि सब कुछ शमशान में रिकॉर्ड करना, वीडियो भेजना, कम से कम बाकियों को तो दिखा सके।
7: और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे।
6: और अंतिम संस्कार करो तो हमें वीडियो पे दिखा देना, भाई आप इसका अंतिम संस्कार करें।
10: वीडियो कॉल पे दिखा?
6: हाँ, वीडियो कॉल पे मैंने उनको दिखा दिया, भाई ये अंतिम संस्कार कर दिया है, जो रीति रिवाज अपने हिंदू में सारी फॉर्मेलिटी करके हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
0: वो बेटियां ही थी जिनके कहने पर राम रतन की अर्थी जब शमशान पहुंची तभी से मोबाइल ऑन हो गया, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था उन बेटियों के लिए जो सिर्फ 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर थी। ट्रेन प्लेन छोड़िए, सड़क से भी आती तो 24 घंटे से कम वक्त में ही पहुंच जाती। पर टाइम नहीं था ना, 5100 रुपए के बदले बेटियों ने जो गुजारिश की थी उसे वृद्धा आश्रम के संचालक ने इस तरह पूरा किया, मोबाइल पर वीडियो कॉल किया और बाप के चिता की लाइव कॉमेंट्री।
3: तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
1: अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना।
3: हाँ जी, हाँ जी,
1: अच्छे से हो गया ना सारा काम?
4: हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
1: ठीक है,
4: भेज दूंगा
10: भैया, आपके आने पे होगा सारा काम।
4: हाँ बाकी तो आप आलोगे जब होगा ना,
10: ये संस्कार हुआ है
4: अभी तो, संस्कार हुआ है
7: माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है और जब अंत समय में दुनिया छोड़कर जाता है उसके लिए टेम नहीं।
8: अंतिम संस्कार हुआ, वीडियो कॉल पे आपने बेटी से बात की थी
11: जी,
8: क्या उन्होंने कहा था आपको वीडियो कॉल पे, क्या क्या बातें हुई थी?
11: देखिए, वीडियो कॉल पर बात करवाई गई थी, हालांकि सामाजिक संस्थाओं का दायित्व बनता है भाई उनको बताने तक कि आप अपने पिता को जो है अंत्येष्टि क्रिया में शामिल हों, परंतु मेरे लिए यह पहला ही मामला था, शोकिंग न्यूज थी ये कि हमें किसी के परिवारजन की अंत्येष्टि क्रिया में शामिल होना है और उसके परिवार को खासकर बेटियों को भाई वीडियो कॉल पर बात करवानी है। मेरे लिए एक तो मतलब श्रद्धांजलि का मानता हूँ मैं, भाई आंखों में आंसू थे पर गुस्सा भी था उन बेटियों के नाम का जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ रह करके अपना जीवन जो है बड़ा किया, पूरी अपनी लाइफ जी रहे थे और अंत समय में पता होने के बाद भी, बताने के बाद भी वो उनकी अंत्येष्टि क्रिया में मुखाग्नि देने का काम नहीं कर सके, यह मेरे लिए काफी शोकिंग था।
0: वैसे तो ये मानना ही गलत था कि जो बेटियां वक्त की कमी के चलते अंतिम संस्कार में नहीं आ पाई, वो अस्थियां विसर्जित करने के लिए इतना वक्त कहां से लाएंगी। हालांकि वृद्धा आश्रम के संचालकों ने ये तक कहा कि अगर उन्हें आने में कुछ वक्त लगे तो कुछ दिनों के लिए वो उनके पिता की लाश सुरक्षित अस्पताल में फ्रीजर में रखवा सकते हैं।
12: वो दर्शन के लिए
6: नहीं आए, वो अगर चाहते तो मतलब जैसे एक दो दिन फ्रिज में बॉडी हम रखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आना चाहते तो मतलब बॉडी भी रखवा देते और आके दर्शन भी कर लेते, मगर उनका मन इतना नहीं था कि मतलब वो आए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो अस्थियां हैं वो उठा के रख देना, हम ले जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, इसकी परसों अस्थियां उठेगी वो रख देंगे, उनको हम 15-20 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। तो बोले कि अंकल जी अब तो पापा भी नहीं रहे, तो अस्थियों को आप ही विसर्जित कर देना। नहीं, बच्चे नहीं करेंगे, मैंने ही जाके करकारी बोलेंगे।
11: हमने उनको ये भी कहा, हमारे साथी ने, कि आपको जो है भाई जो अस्थियां हैं विसर्जन करवाने के लिए आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कब तक, हमने बोला कि 20 तारीख तक आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राय कि 17वीं या 13वीं से पहले ही जो है अस्थि विसर्जन हो जाने चाहिए जिनका परिवार है। तो हमने उनको 20 तारीख का अल्टीमेटम या टाइम दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। यह सुनकर के मेरे को मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात है, अंदर से फीलिंग आई, और ऐसी फीलिंग आई कि मन कचोट उठता है।
0: हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे ही देश में है, लेकिन इन युवाओं के बीच इसी देश में 13 करोड़ के करीब बुजुर्ग भी रहते हैं, और इन्हीं 13 करोड़ बुजुर्गों में से 1 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। इनमें से भी एक बड़ी तादाद उन बुजुर्ग माँ बाप की है जिन्हें उनके अपने ही बच्चों ने घर से निकाल दिया।
7: ये आश्रम ये संस्था ना हो तो ये इंसान भी पशुओं की तरह, जैसे ये गायें फुटपाथों पर घूमती है, ये पन्नी खाती, ऐसे इंसान ना का भी हाल हो। ये तो चलो ये संस्थाएं हैं, चलो इनमें इनका ठिकाना है, अगर ये ना होते ये तो इंसान भी ऐसे घूमते रहे।
13: मैं अपने घर से ही आ रही बेटा, गांव से तो अभी भी नहीं आ रही। गांव तो मेरा मेरे लिए अभी भी इतना है जितना मेरे लिए पहले था, पर मेरे बच्चों ने हरा दी। मैं उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिए 2 बार, एक बार पहले करा था तो मैंने माफ कर दिया, फिर उन्होंने 2 बार अपनी बिरबानियों के साथ मिल के हाथ उठा दिया, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैं एक गांव को और सारे संभाल रही थी तो एक मेरे से 2 बुआ नहीं से मिले थी, तो फिर भी उन्होंने गलत काम किया, तो मैं वहां से निकल ली। मैं 4 दिन बैठी रही फिर भी भूखी थी। शायद
8: कभी बच्चे नहीं आते आपके पास? माता जी क्या नाम है आपका?
14: माय नेम इज नीलम।
8: कहाँ की रहने वाली हो?
14: मैं जम्मू कश्मीर की हूँ।
8: यहाँ कैसे पहुँचे सोनी?
14: यहाँ पे नरेला में, वैसे तो नरेला में आए हम, नरेला बहू से झगड़ा हो गया था थोड़ा। ये मेरे पति हैं, ये बीमार हैं जी, इनको 8-9 साल हो गए, लकवा मार गया था हाथ में, तो मालिक जी ने हमारे पास रखा हुआ है सेवा के लिए।
8: बच्चे नहीं आपके?
14: बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का है।
8: फिर कभी वे फोन नहीं करते आपके पास?
14: मेरा लड़का करता है ना।
8: फिर बुलाता नहीं आपको?
14: हाँ बुलाता है।
8: जाते नहीं आप?
14: जाएंगे कल।
8: कल जाओ?
14: हाँ, बहू से थोड़ा झगड़ाबाजी हो।
8: कितने दिन से यहाँ रह रहे हो?
14: 1 साल 2 महीने हो गए।
8: बीच में कभी बच्चे नहीं आए मिलने या बुलाने?
14: आते हैं, वो लड़का आता है कभी कभी।
8: उसकी वाइफ भी आई जिसके झगड़ा हुआ था?
14: वाइफ नहीं आई। जिस दिन मरे उस दिन 5 गाड़ी थी मेरे पीछे, मगर मतलब सबका लात मार कर, ना बाण क्या कर जानती, ना पलड़ी क्या कर जानती, ना पेट की मां जानती, बेटे दोहरा जाएंगे। और बेटे ने सारे तो खोज दिए, अपने से भी खोज दिए और कितने से भी खोज दिए।
8: फिर बेटी कभी याद नहीं करती?
14: याद क्यों नहीं करती बेटी का, तो रो दफा नाम है।
8: ये नहीं कहती मम्मी चल मेरे साथ?
14: मर वणिया का कौन कोई जानता।
8: बेटी के घर रह नहीं सकती।
0: असल में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है और तरक्की की भूख इतनी ज्यादा कि लोगों के पास अपने माँ बाप के लिए टाइम ही नहीं है। इस जिंदगी की आपाधापी में वो इतने दूर निकल चुके हैं कि घर में तन्हा बुजुर्ग माँ बाप का सोनापन उन्हें नजर ही नहीं आता। कोठियों तक में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग माँ बाप को घर की खाली दरो दीवार हर रोज खोखली करती जा रही है। शाम ढलते ही सिहर जाता है ये बूढ़ा बदन, कोई साया भी यहाँ पास नहीं आता।
7: देखे हमने सेक्टरों में कोठी 500-500 हजार कोठी में बूढ़ा बूढ़ी एकले मायूस बैठे रहे हैं और वो पूरे संपन्न है। ये नहीं कि भाई चलो मजबूरी के लिए हमने जीवन के लिए पैसा जरूरी है, ये नहीं कहते भाई पैसा नहीं कमाना कमाओ, लेकिन आखिर में जरूरत कितनी है इंसान की।
0: वैसे चलते चलते न सिर्फ राम रतन की बेटियों बल्कि उन तमाम बेटे बेटियों से कहना चाहूंगा, कभी टाइम मिले तो अपने माँ बाप के चेहरों की तरफ देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि आपका भविष्य बनाते बनाते वो खुद कितना टूट जाते हैं। एक माँ बाप अपने कई बच्चों को एक साथ पाल लेते हैं, लेकिन कई बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। वाकई कितना मुश्किल है माँ बाप होना। पवन राठी, सोनीपत, आज तक। बुढ़ापा उन पे भी आखिर कभी तो आएगा, जवान होती हुई पीढ़ियां ये क्या जाने। तो इसके साथ ही आज की वारदात के खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
16: घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज में जो राहुल गांधी का प्रोग्राम होने जा रहा है उसको मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था, जो संस्था उन्हें बुला रही थी, कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से बहुत मुश्किलें आएंगी, संसाधनों में भी मुश्किलें आएंगी, इसीलिए यह कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन लगातार कांग्रेस अड़ी हुई थी और उनका कहना यह था कि प्रशासन की शह पर यह सब किया जा रहा है। अभी फिलहाल जानकारी यह है कि इस कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को मंजूरी मिल गई है। 8 तारीख को छात्रों के साथ राहुल गांधी को संवाद करना है और वो इस संवाद पर अड़े हुए थे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आई विटनेस टू अ नेशन।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अगले अभियान का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर यानी कि अभिजीत दीपके के घर पर हुई दो दिन की बैठक के बाद सीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सीजेपी सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी और महंगी शिक्षा मुख्य मुद्दा होगा। टीम दीपके गांव गांव पहुंचेगी, युवाओं से संवाद करेगी। आज बैठक के बाद आज तक ने अभिजीत दीपके से खास बातचीत की और उनसे आगे की रणनीति को जाना।
2: दो दिन की लगातार बैठक के बाद आखिर सीजेपी ने अपना प्लान ऑफ एक्शन डिक्लेयर कर दिया है। कल भी लगातार 6 से 7 घंटे उनकी बैठक हुई और आज सुबह से भी बैठक चल रही थी। हम छत्रपति संभाजीनगर में है अभिजीत दीपके के घर, तो क्या बोलती पब्लिक?
3: हम ये पब्लिक से ही पूछ रहे हैं और उसी के लिए जाएंगे हम देश भर में फिर से और पूछेंगे कि क्या बोलती है पब्लिक।
2: तो ये कहाँ से आया कि क्या बोलती पब्लिक?
3: ये तो मतलब काफी फेमस चीज है जो बोली जाती है आमतौर भाषा में कि क्या बोलती पब्लिक। और मुझे लगता है अब पब्लिक ने बोलना शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है। तो अब सरकार से भी कोशिश करेंगे कि सरकार सुनेगी पब्लिक की। तो पहले हम पब्लिक की सुनेंगे, फिर सरकार को बताएंगे कि सरकार देखिए पब्लिक ये कह रही है और आपको सुननी पड़ेगी इनकी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही होना चाहिए। सरकार को पूछना चाहिए, ये तो सरकार को करना चाहिए था। सरकार ने पूछना चाहिए था ये कि पब्लिक से कि बोलो आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन सरकार वो नहीं कर रही है। तो हमें लगा कहीं ना कहीं हमें ये करना चाहिए और प्रेशर बनाना चाहिए फिर सरकार पर।
2: तो अभिजीत, इनिशियली ये तो जब कॉकरोच वर्ड आया, टर्म आया, तो वहाँ से शुरू हो चुका था। बाद में नीट एग्जाम्स के इशू हो गए, चार्जशीट फाइल हुआ, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है। अब जब आप आगे जा रहे हो तो क्या शुरू में आपके जहन में था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या फिर चलो ठीक है पॉलिटिकल पार्टी नहीं, प्रेशर ग्रुप ही रहेंगे? एग्जैक्टली क्या चल रहा था? व्हाट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन यू गाइस?
3: जहन में तो कुछ भी नहीं था। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जहन में तो ये भी नहीं पता था इतना बड़ा आंदोलन होगा। बट वन थिंग लेड टू अनदर और वो इसीलिए हो पाया बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली लोगों से बात कर रहे थे। जब मैं यूएसए में भी था तो नीट का मुद्दा हम क्यों उठा पाए, क्योंकि जिन जो लोगों ने फॉलो करता उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस भेज रहे थे जी। और बोल रहे थे ये नीट में ये हुआ है। तब तो मैं यूएसए में बैठा हुआ था, मुझे क्या पता इंडिया में क्या हुआ। लेकिन ये स्टूडेंट्स ने बताया और स्टूडेंट्स का हमने सुना और ये सुनने के कारण ही हम इतना बड़ा आंदोलन कर पाए। सो इसलिए हमें लगता है एक लिसनिंग जो चीज है ना, पब्लिक लिसनिंग, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस मूवमेंट, दैट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट। और हमें वही लग रहा था कि अभी इंडिया को जो चाहिए दैट इज अ ग्रुप दैट विल लिसन टू द पीपल, विच विल अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की समस्याएं समझेंगे, लोगों की ये होप्स क्या है, उम्मीदें क्या है, वो समझेंगे। और जब तक वो आप समझोगे नहीं, तब तक आप कोई भी मुद्दा उठा लो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब तक लोगों के बीच जाओगे नहीं, लोगों की सुनोगे नहीं, उनकी समस्याएं समझेंगे नहीं, तो ऐसे ही बस चले जाकर अपने आप से मुद्दा उठाने से आपसे नहीं होगा। हमारा तो मतलब एक्सपीरियंस यही कहता है।
2: तो इस्तीफा तो हो गया, जो आपका पहला पड़ाव था वो आपने पार कर लिया, ऐसे हम समझते हैं। अब बात यह है कि इससे सब प्रॉब्लम्स तो हल नहीं हुए,
3: बिल्कुल नहीं।
2: आज झारखंड में भी यही चल रहा है, छात्राओं का कहना है कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो अब सीजेपी का झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर इस तरीके के कई अलग अलग राज्यों में अगर इश्यूज होते हैं, महाराष्ट्र में अभी सीईटी की भी अटकलें चल रही है, कुछ ना कुछ इशू हुआ होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है पिछले दो दिन में? क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ आपको कॉकरोच कॉन्क्लेव दिखाई दे रहा होगा, ये कॉन्क्लेव जिस सोफे पे अभी हम बैठे हैं यही चल रही थी, क्या प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड हुआ है?
3: प्लान ऑफ एक्शन हमारा यही है कि राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जहाँ जहाँ युवाओं की बात होगी वहाँ वहाँ सीजेपी उनके साथ खड़ी होगी। आज जो स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने दो दिन पहले उनसे फोन पर बात की और हमने कहा कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो करना पड़ेगा कॉकरोच जनता पार्टी वो करेगी। और आज हमारी टीम वहां पहुंच गई है और आगे जाकर हम लोग भी पहुंच जाएंगे वहां पर। लेकिन वही बात है, जंतर मंतर के बाद से लोगों को एक हिम्मत मिली है, लोगों को एक वापस उम्मीद जगी है, लोगों का डर खत्म हो गया है कि अब हम आंदोलन कर सकते हैं, अब हम इस सरकार से सवाल कर सकते हैं। वो जो जीत है जंतर मंतर की, वो सबसे बड़ी जीत है। और वो जीत सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, वो जीत है जो लोगों के मन के अंदर डर था कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमें जेल हो सकती है, अगर हम सवाल पूछेंगे तो हमारे ऊपर केस लग जाएगा। आज लोगों के मन से वो डर खत्म हो चुका है, इसलिए आप देखोगे देश के हर कोने में आज शिक्षा के ऊपर आंदोलन हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, राजस्थान में स्कूल की लड़कियों ने आंदोलन किया अभी कुछ दिन पहले टीचिंग स्टाफ के लिए, और उनकी सुननी पड़ी। तो जैन अल्फा जो है, जो आज 15 साल की नीचे के बच्चे हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा के लिए। तो ये एक देश का कल्चर वापस से शिफ्ट हो रहा है, जहां पर पीपल आर स्पीकिंग अप, पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट।
2: आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि कोर्ट्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जितने भी चार हमारे पिलर्स हैं, वो सब डे बाय डे वो प्रिकॉरसली कोलैप्स हो रहा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे अब किसी को भरोसा नहीं रहा है। तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा अलग अलग राज्यों में, तो ये बात तो सही है कि लोग तो सवाल पूछेंगे, सीजेपी भी वहां रहेंगी, तो प्रेशर बिल्ड यानी कि प्रेशर ग्रुप क्या पॉलिटिकली भी मोबिलाइजिंग रहेगा?
3: देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं हमारी फाइट जो है वो पॉलिटिकल है।
2: हाँ,
3: हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
2: बट योर फाइट इज पॉलिटिकल,
3: योर फाइट इज, आवर फाइट इज पॉलिटिकल, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस कंट्री इज पॉलिटिकल। कोई कैसे कह सकता है कि ब्यूरोक्रेसी हो या गवर्नेंस हो वो पॉलिटिकल नहीं है? जो भी ये चीज कह रहा है, इधर ही इज टू प्रिविलेज्ड और इधर उनको इस चीज से फायदा हो रहा है। आपके घर में जो टूथब्रश भी आ रहा है उसका भी प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? पॉलिटिशियन से डिसाइड कर रहे हैं ना। आप जो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो उसका प्राइस भी पॉलिटिशियन, दाल आटा जो आपके घर में आता है वो भी पॉलिटिशियन से डिसाइड हो रहा है। मुझे एक चीज बता दीजिए आप, जो पॉलिटिक्स से डिसाइड नहीं होती इस देश में। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल एंड दैट इज व्हाई आवर फाइट इज पॉलिटिकल। इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म अ पॉलिटिकल
2: पार्टी। ओके, यू विल बी, यू विल वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप।
3: वी विल वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप, अ सोशल मूवमेंट, एंड आई थिंक इंडिया को अभी उसी की जरूरत है, जहां पर अपोजिशन की पार्टियां खुद ही सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। बिकॉज जिस तरह की विच हंटिंग हो रही है, ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर, पार्टियां तोड़कर, हॉर्स ट्रेडिंग कर, तो उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आप करोगे क्या?
2: तो लोगों ने तो सरकार चुन के दे दी है, तो तब 2019 या फिर 2024 अगर रिसेंट इलेक्शन हम कहें, तो लोगों का जो कहना था वो उन्होंने बैलेट बॉक्स में डाल दिया, जो कुछ भी गुस्सा था वो पूरा बाहर निकला। तो क्या आपको लगता है पहले का ट्रेंड था वो पूरा बदल जाएगा पॉलिटिकली?
3: मुझे लगता है जब भी
2: वो पेंडुलम शिफ्ट,
3: पेंडुलम शिफ्ट एक नेचुरल कोर्स है, बीट लाइफ बीट पॉलिटिक्स,
2: बट देर आर सम डिफरेंट फोर्सेस विच मोबिलाइज।
3: हाँ, वो रहेगा,
2: सो सीजीपी विल बी वन ऑफ
3: दे कैनॉट मोबिलाइज। मतलब आप अगर कहोगे कि ये गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि इस फोर्स को अपोज में कुछ मोबिलाइजेशन करे, दे कैन ओनली डिले इट।
2: ओके,
3: यू कैन ओनली डिले द चेंज, यू कैनॉट स्टॉप द चेंज, एंड आई थिंक राइट नाउ चेंज इज कमिंग इन इंडिया एंड यू कैनॉट स्टॉप दैट चेंज। आप कोशिश कर सकते हो उसे थोड़ी देर रोकने की, दबाने की, बट यू कैनॉट स्टॉप इट।
2: एक आखिरी सवाल मेरे लिए फैसिनेटिंग ये है कि चलो आप एक सोशल इसमें रहोगे, आप पॉलिसी मेकिंग में जाओगे, लेकिन क्या होता है कि हर बार जब चुनाव आते हैं ना, तो ऐसे कोई समाज सोसाइटी में फोर्सेस रहती है अलग अलग जगह से जो ये पूरा मोबिलाइज करते रहते हैं। तो आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है कि जो सीजेपी का कहना है वही कहना अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है और उसे पॉलिटिकल बेनिफिट होता है,
3: तो वो तो पार्टियों के ऊपर है। हम कह रहे हैं अगर मुद्दा उठा लो, ये मुद्दा होना चाहिए देश का, हम किसी पार्टी को नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि इलेक्शन का जो डिस्कोर्स है दैट शुड बी ऑन एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट।
2: ओके,
3: उसके बाद कोई पार्टी उठा लेती तो वो उनकी समझदारी है, उसमें हम कहीं से भी उनको बैक नहीं कर रहे। नाउ इट्स अप टू देम, उसमें हम कहीं पर भी मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सीजेपी एज अ सोशल मूवमेंट वी विल नोवेयर बैक एनी पॉलिटिकल पार्टी। What we will try to do is to change the political discourse, जहाँ पर हम बोलेंगे कि ये देश के युवाओं के ये मुद्दे, फिर उसमें हम सभी पार्टियों से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि आप बताओ आप इस पर क्या करोगे, टेल अस वेयर डू यू स्टैंड, बताओ आप एजुकेशन रिफॉर्म्स पर क्या आप प्राइवेट स्कूलों को इनकरेज करेंगे या रोकेंगे, क्या आप सरकारी स्कूल अच्छे करोगे या नहीं करोगे।
2: चुनाव में जो भी पार्टी होगी सभी को पूछेंगे,
3: सभी से पूछेंगे, फिर उसके ऊपर वो खुद स्टैंड क्लियर कर देंगे, उसके बाद जनता खुद डिसाइड कर लेगी।
1: आज संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंबई में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट द यूनाइटेड नेशंस के 15वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने जेनजी से संवाद करते हुए माना कि अगर समय रहते जेनजीज की आवाज को सुन लिया गया होता तो आंदोलन नहीं होता। यानी उन्होंने माना कि इसे हैंडल करने में गलती हुई। उन्होंने कहा कि जेनजी देशभक्ति से भरे हुए हैं और वो किसी भी सूरत में राष्ट्र विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा हमें युवाओं की बात सुननी चाहिए।
4: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
5: बिल्कुल
4: उसको ठीक करना चाहिए।
5: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
4: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
5: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
4: अब
5: ये सारे विषय के
4: और एक बात,
5: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
4: ये जो बातें है ना
5: जी,
4: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
5: जी।
4: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
5: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
4: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
5: बढ़िया है,
4: हम तो
5: बढ़िया
4: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
5: हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए, पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी ये जो 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह, तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका?
4: आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो दो नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा सरकार सहित, तो तभी ये काम होगा। प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टूगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व आफ्टर डिस्कशन। द डिस्कशन मे हैपन थ्रू डायलॉग ड्यू टू वेरियस रीजन, इफ दैट थिंग इज नॉट हर्ड एजिटेशन पर जा सकते हैं, लेकिन ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स। अब जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है, और मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे, तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी वो जेन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए,
6: करेक्ट,
4: और इसके साथ प्यार चाहिए।
5: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
4: वो मैं कह रहा हूँ ना,
5: इसमें
4: मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
5: जी सर।
4: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
5: अरे वाह बढ़िया है,
4: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। एलजीबीटी और वट एवर दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी,
5: थैंक यू,
4: विच वी बिलोंग टू, एंड इन अवर सोसाइटी देर इज अ ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेटिंग, देर वर सिस्टम्स। Now, marriage is not in our tradition, vivaha, that is not a convenience created so that two people should live together. It is an institution which is created by marriage, family. Family is unit of society, and next generations are trained in kutumba or family to be good citizens of that country. Same sex marriage, don't say that. How the same sex companions can live together, you have to devise some system. You can form a law for that. Society will accept that.
1: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने आज तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया और उन्हें 10 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है।
7: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथ ही महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
8: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum, that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
7: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
9: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस उसको किसे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
7: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।

0: मैंने जज को बोला, आप लोग तो कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी।
1: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
2: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
1: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है।
3: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के यौन उत्पीड़न और रेप के मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2021 का जो गोवा सत्र न्यायालय का आदेश था जिसने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था, उसे रद्द किया और अपने आदेश में ये भी कहा कि पीड़िता के आचरण पर गलत धारणाओं का खंडन किया है। ये भी कहा कि तरुण तेजपाल अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। माफीनामा वाला ईमेल जो तरुण तेजपाल ने पीड़िता को भेजा, ये अहम साक्ष्य साबित हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो सारे सेक्शंस जिसमें तरुण तेजपाल का केस रजिस्टर हुआ था, 376(2), 354A, 354B, इन सारे ही सेक्शंस के अंतर्गत तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया गया है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत, रितेश देसाई और विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
4: महाराष्ट्र में कोर्ट के संज्ञान के बाद बीएमसी एमएआरई यानी कि म्युनिसिपल एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी मांगे पूरी होने तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन ओपीडी और अन्य सेवाएं जो बंद थी अब वो शुरू हो जाएंगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपनी मांगे सरकार के सामने रखें और उनसे बात करें, लेकिन स्ट्राइक न करें क्योंकि हड़ताल से आम लोगों की जान पर बनाती है। इसके बाद डॉक्टर्स ने स्ट्राइक को खत्म कर दिया।
5: हमारे साथ मुंबई के मार्ड डॉक्टर्स का एसोसिएशन है। फिलहाल आज कोर्ट में सुनवाई हुई जहां पर कोर्ट ने कहा कि वो अपना आंदोलन पीछे लें, ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म करें। हमारे साथ हैं उनके डॉक्टर, हम उनसे बात करेंगे। अथर्व जी, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या हुआ कोर्ट में और आपका स्टैंड क्या है?
6: जो सेंट्रल मार्ड, बीएमसी मार्ड, एमएसआरडीए, एमएसएमटीए, आईएमए, इन सबने मिलकर जो स्ट्राइक पुकारा था बीएचएमएस सीसीएमपी के महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सुओ मोटो को रिट पिटीशन लिया था। तो सुओ मोटो केस में आज हम 1 बजे कोर्ट में हाजिर हुए। मैं खुद, मेरे नाम का जो आया था, मैं, डॉक्टर संतोष कुलकर्णी, आईएमए के, वो दोनों हम थे। मार्ड की तरफ से हमें 12:15 बजे नोटिस मिली, इसलिए हमारी तरफ से कोई लर्नेड काउंसिल हम दे नहीं पाए इतने शॉर्ट नोटिस पे। बट मैंने खुद ही रिप्रेजेंट किया मार्ड के एसोसिएशन को। हमारे जो भी डिमांड्स है या हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे, मैंने सबमिशन करने का ट्राई किया ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने, बट उन्होंने जो जितना सुन सकते थे उन्होंने सुन के लिया और दे डायरेक्टेड, उन्होंने हमें निर्देश दिए है कि आज आप स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दीजिए, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। आपकी जो भी मांगे हैं वो हम सरकार को बताएंगे कि वो आपके साथ एक मीटिंग ले और अपनी जो भी मांगे हैं होगी उसको आप कैरी फॉरवर्ड सरकार के पास कीजिए, बट आप इसेंशियल सर्विसेज बंद नहीं कर सकते। हमने कोर्ट को यही बताया है कि हमने किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या इसेंशियल सर्विस बंद नहीं की थी, बट उन्होंने बोला कि किस किस मीडिया में आया था कि जो इसेंशियल सर्विस इमरजेंसी, जो हमने पहले इंटीमेशन दिया था कि हम इसेंशियल सर्विसेज बंद करेंगे, बट जो हमने की नहीं थी। कल रात भी हमने प्रेस नोट डाली कि हम इसेंशियल सर्विसेज बंद नहीं कर रहे। आज हमें कोर्ट ने निर्देश, जब हमें जो रिटर्न निर्देश है जो 6-7 बजे तक प्राप्त होंगे, उसके बाद मार्ड की क्या भूमिका रहेगी और मार्ड का जो प्रोटेस्ट रहेगा वो चालू रहेगा, ये मैं अभी आप सबको बता रहा हूँ। स्ट्राइक ये वर्ड हम नहीं यूज कर रहे, मार्ड का प्रोटेस्ट चालू रहेगा।
4: महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सरकार ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एनालॉग यानी कि नॉन डेयरी पनीर बनाने, बिक्री, स्टॉक, डिलीवरी पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार और एफडीए ने साफ साफ कहा है कि असली पनीर बताकर इसे बेचना लोगों को गुमराह करना है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। इसे नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने तक की जेल होगी, 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर किसी की मौत हो जाती है इस पनीर से तो आरोपी को आजीवन कारावास और कम से कम 10,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
5: एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है

0: वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडर्स रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है, जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर शिनॉय जी। सर, एफडीए ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं?
1: यस यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है, मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो जो सब स्टैंडर्ड जो ये क्या बोलता है पनीर है, उसको इसके बारे ये है करके दिया जाता है, यानी कि सही पनीर को उन लोग एनालॉग पनीर करके देने वाले कुछ लोग है, तो इसलिए इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। और वो एंगल से जरूर हमको एफएसएसआई ने इनके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए, उसके बारे में दो मत नहीं है।
0: सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है, या क्या इसकी ये होती है?
1: इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है, इसमें स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है, वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है, और बाकी बहुत से टेस्ट है जो आज नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं।
0: ये वही पनीर है, यही पनीर है,
1: ये सब यही पनीर है। हम यहाँ बाजू में हमारी जो श्री कृष्ण मिल्क डेयरी है, हम वहीं से लाते हैं, हम बाकी कहीं से भी पनीर और दूध नहीं लेते।
0: सर, ये एनालॉग पनीर कितना नुकसानदायक होता है किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई इसे कंज्यूम करता है?
1: सर देखिए, ये तो दूध का बना है तो इसमें प्रोटीन्स है, और जो भी आपको शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सब मिल जाते हैं। मगर जो एनालॉग पनीर है उसमें आप पाम ऑयल डालते हैं या बाकी कुछ डालते हैं, जो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसीलिए। और सेकेंडली, हमको पता नहीं रहता है कि कौन से जिसने बनाया उसने क्या इंग्रेडिएंट्स वापरे हैं, तो उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंटली कुछ भी नहीं बता सकते।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, पर सीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई। भारत इसराइल रणनीतिक साझेदारी और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की गई। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ के गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण की भी इजाजत। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 10 राज्यों से 5,300 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की बात कही। ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रफ्तार की बात। तमिलनाडु के सीएम विजय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। गोदावरी कावेरी गुंडार नदी लिंक परियोजना जल्द लागू करने की मांग। दक्षिण भारत में पानी की कमी की समस्या को जल्द दूर करने के लिए कहा गया। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर एक बार है अगस्त को संसद में चर्चा हो सकती। अमित शाह ने से मुलाकात के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी। बिल के विरोध में है विपक्ष। दिल्ली में सरकार से मिले मेटा के अधिकारी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने तकनीकी टीम ने दिया प्रेजेंटेशन। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर माफी मांगी थी। मेटा के ऑफिसर से मुलाकात के बाद सरकार की दो टूक। भारत में नहीं चलेगा अमेरिकी कानून। एआई डी फेक पर भी सख्ती। महज 3 घंटे में हटाना होगा गैरकानूनी कंटेंट। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल गांधी में फोन पर हुई है बात। सूत्रों के मुताबिक पारिसी में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। संसद की कार्यवाही में बाधा डाले पर किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सदन में चर्चा के बाद बिल पास हो रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा विपक्ष के लोग खुद ही सदन में नहीं चलने देते। सदन को चर्चा में नहीं हिस्सा लेते हैं। कांग्रेस को ही इसका नुकसान। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जाने पर अड़े हैं राहुल गांधी। कहा छात्रों की आवाज को डराने में लगी हुई है सरकार। इसीलिए प्रशासन से राहुल गांधी के प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी गई। छात्रों पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। एक्स पर किया पोस्ट। लिखा मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज को दबाना है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश। में छात्रों के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने नागालैंड अरुणाचल बाढ़ और भूस्खलन में मौतों पर जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। झारखंड छात्र आंदोलन को राहुल गांधी का समर्थन। नेता प्रतिपक्ष ने वीडियो जारी करके सरकार से कार्रवाई की मांग की। बोले हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे युवा आंदोलन को देशभर से मिला है समर्थन। स्विगी जोमैटो से पहुंच रहा है खाना। लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल। इस दल में 8 छात्र और 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल है जो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे पर भारी हंगामा। विपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई की जांच की मांग की। झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज हुई। कांग्रेस बोली कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी का बड़ा फैसला। आरजेडी ने जिला पंचायत स्तर पर सभी संगठन भंग किए। अब बनेगी नई टीम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले जेएनसी पर योगी सरकार का फोकस। नई युवा नीति बनाने पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। घुमंतू समुदाय के सदस्यों ने घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोर्ड के गठन के बाद पहली बार सीएम योगी ने प्रतिनिधियों से संवाद किया। बोले आजादी के असली सेनानी हैं घुमंतू समाज के लोग। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि पशुहानि और आर्थिक हानि का सीएम योगी ने जायजा लिया। नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेएनसी संवाद। कहा जेएनसी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं है, ये भी संवाद का एक तरीका। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा उनकी शिकायत जायज है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत। 6% होना चाहिए शिक्षा बजट। मोहन भागवत बोले जेएनसी हमारी पीढ़ी से ज्यादा समझदार और देशभक्त है। हमें उनकी बात समझनी चाहिए। उनसे बात नहीं हुई तभी आंदोलन हुआ। जंतर मंतर प्रदर्शन और पैलेट गन के इस्तेमाल पर मोहन भागवत बोले सही या गलत नहीं पता, लेकिन जहां तक भरोसे की बात है तो मैं जेएनसी पर विश्वास करूंगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर बोले मोहन भागवत। कहा बेरोजगारी तभी जाएगी जब नौकरी को छोटा बड़ा न माने। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं। सितंबर से अभिजीत दिपके का नया प्लान। देश भर में शुरू करेंगे क्या बोलती है पब्लिक अभियान। लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझना मकसद। अभिजीत ने कहा बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के मुद्दे पर गांव और शहरों में युवाओं से बात करेंगे। बीजेपी ने नेशनल वर्किंग कमेटी के नामों की घोषणा की। अभिजीत दीप के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक हैं। वहीं आशुतोष राका और सौरभ दास सह संयोजक। स्टूडेंट डेलीगेशन को जोन के हिसाब से सौंपी गई जिम्मेदारी। बिहार में जीत के बाद मुंबई पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से उनके आवास पर मुलाकात की। सियासी हलचल तेज।
तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। रेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दोषी करार दिया। भारत ने मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी। सीमा पर भारतीय सेना की ताकत और मजबूत होगी। एलएसी एलओसी पर सप्लाई के लिए सेना खरीदेगी 2715 लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स, शुरू हुई प्रक्रिया। सेना के ड्रोन बेड़े में बड़ा इजाफा, दुर्गम बॉर्डर पोस्ट तक राशन, गोला बारूद और मेडिकल सप्लाई पहुंचाएंगे ड्रोन्स। ऑटोनोमस सप्लाई सिस्टम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद की रक्षा मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में टेरिटोरियल आर्मी की भूमिका और उपलब्धियों पर चर्चा। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार और एंट्रोफिक के बीच एआई पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। गवर्नेंस और स्किलिंग पर फोकस किया गया। सीएमडी के शिव कुमार ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। शिरडी में दुबई के साई भक्त ने मुराद पूरी होने के बाद चढ़ाया 67 ग्राम सोने का बना हुआ राम अक्षर, कीमत है करीब 10 लाख रुपए। फरीदकोट में 18 साल से प्रभु ज्योत का कमाल, एआई प्रोग्रामिंग और डिजिटल स्किल्स से युवाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। देवगढ़ स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, भोलेनाथ को जलार्पण के लिए रोजाना भारी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आई भव्य हाइड्रोलिक कांवड़, करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई। हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर प्रकट होकर देते हैं दर्शन। सहारनपुर के सोरना गांव में कांवड़ मेला बन गया है श्रद्धालुओं की पहली पसंद। झूलों, खिलौनों, खाने पीने की चीजों की रौनक बढ़ गई है, जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के पानियोर का दौरा किया। केंद्र की हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। चारधाम में बारिश का भारी सैलाब, बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। उफनती अलकनंदा के बीच भी लगातार दर्शनों के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद एहतियातन स्कूलों को बंद किया गया। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद हरिद्वार में चेतावनी के स्तर पर गंगा का जल पहुंच गया है। सुरक्षा कारणों से खाली कराए जा रहे हैं तटीय इलाके। मूसलाधार बारिश हरिद्वार में सड़कें बन गई हैं सैलाब। रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर घुटनों तक भरा पानी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। जल स्तर बढ़ने से नदी नाले उफान पर हैं। टिहरी के पुंडौरी गांव में तेज बारिश के कारण बह गया लकड़ी का पुल, आवाजाही ठप हुई। एसडीआरएफ ने रस्सी के जरिए महिला का रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। शिमला, सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर भर गया पानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तुली हलन में फट गया बादल। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, कई घर जलमग्न हुए। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शोपियां के दूधपत्री में बादल फटने से अचानक से आई थी बाढ़, घरों और होटल को काफी नुकसान, कई गांव प्रभावित हुए। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश की वजह से जलभराव, कई सड़कें पानी में डूबी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। भारी बारिश से गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर वाटर लॉगिंग, सड़कों पर भर गया था पानी, वाहन चालकों को परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से पटेल नगर इलाके में जलभराव, ट्रैफिक की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश बन गई आफत, सिविल लाइंस जॉर्ज टाउन समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से फिरोजाबाद में जलजमाव, शिकोहाबाद थाना परिसर में भरा पानी, जलभराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। झांसी में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। हाईवे पर कार से डिवाइडर से टकराकर हुई थी टक्कर। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे थे। हरियाणा के चरखी दादरी में थाने के बाहर गैंगवॉर की घटना, अदालत से पेशी के बाद लौटे युवकों पर ताबड़तोड़ हमले में 7 घायल। चरखी दादरी गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 3 बदमाश पैदल आए और गाड़ी रुकवा कर कार सवारों पर 10 से 15 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में घर के बाहर बदमाशों ने फायरिंग कर डाली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, 2 युवकों की जान गई। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल हुए। अनंतनाग के अस्पताल में इलाज जारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुआ आरोपी, पुलिस की दबिश जारी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में कॉलेज छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने पर लड़की के पुरुष मित्र ने बीच सड़क पर पटक पटक कर मारा। यूपी के बाराबंकी में दीवार ढहने की वजह से हादसा, 5 बच्चों के मलबे में दबे होने की खबर, 2 की मौत की खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेन यात्रियों से लूटपाट करने वाले लश्कर गैंग का रोहिंग्या कनेक्शन, जांच में जुटी हुई हैं सुरक्षा एजेंसियां। झारखंड के सरायकेला में 3 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, AK-47 समेत भारी हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया।
एमपी के ग्वालियर में एक बाइक पर 6 सवार सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी की गई, पुलिस ने चालान काटा। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के नागझिरा टाइगर रिजर्व में भालू के हमले में वन रक्षक की मौत हुई, जंगल में गश्त के दौरान हुआ था दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक गुजरते ही धस गई सड़क, बीच रास्ते पर फंस गया वाहन, नगर निगम के काम पर उठाए गए सवार। मुंबई के बसई में बालकनी से गिरा 1 साल का मासूम युवक की बहादुरी से बची इस बच्चे की जान। पालघर में नाला सोपारा सब्जी मार्केट में खरीदारी के दौरान फल विक्रेता और युवती के बीच विवाद हुआ, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। गुजरात के नर्मदा में 400 साल पुराने हर सिद्धि मंदिर में चोरी, जेब खर्च के लिए 2500 रुपए चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के गांधीनगर में नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़, केमिकल से बनाया करते थे देसी घी, 1,67,00,000 का सामान जब्त। अमित राय की ओ माई डॉग आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी, इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का जीरो भी आज रिलीज हो रही है, हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली और शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स शामिल। पंजाबी फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी आज थिएटर में रिलीज होगी, फिल्म में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा लीड रोल में है, फीमेल लीड में नजर आएंगी पायल। सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए ओटीटी पर रिलीज को तैयार है मैं वापस आऊंगा, आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी आज रिलीज होगी, देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है सीरीज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 7 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, फरवरी के बाद दर्ज किया गया एक दिन का सबसे बड़ा उछाल। इंसेंट के सर्वे में दावा यह किया गया है कि 40% कर्मचारी अगले 6 महीने में जॉब बदल सकते हैं, गूगल बना देश का सबसे पसंदीदा एम्प्लॉयर। एलपीजी पर नई लेवी लगाने के प्रस्ताव से सिलेंडर्स की कीमत में 18 रुपए तक के इजाफे होने की आशंका है, पेट्रोलियम मंत्रालय के इस कदम से सरकार को होगी करीब 9,500 करोड़ रुपए की कमाई। सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर पंप पर फ्यूल न देने के निर्देश दिए, कोर्ट ने नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की समय सीमा भी बढ़ाने की बात कही। यूपीआई पेमेंट्स के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होने से बैंकों की कमाई में बढ़ोतरी की संभावना है, एमडीआर से अकेले एसबीआई को सालाना 3,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान। अमेरिकी सीनेट में डॉक्टर एंथनी फाउची के खिलाफ अवमानना प्रस्ताव पास, कमेटी ने संसद की अवमानना का दोषी ठहराने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी, कोविड-19 महामारी से जुड़े सवालों का जवाब देने से किया था इनकार। ईरान और ओमान में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर बनी सहमति, 60 दिनों के लिए फिर से खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मंजूरी मिलने के बाद फैसला लिया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ परमाणु समझौते में लगेगा वक्त, ईरान के कुछ लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग शांति चाहते हैं और कट्टरपंथी चाहते हैं जंग जारी रहे। ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से संवाद करना मुश्किल काम है लेकिन उनका होना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत। पूर्वी यमन में सऊदी समर्थित सैन्य टुकड़ियों को निशाना बनाकर ड्रोन मिसाइल से हमला, हूती सेना का दावा हमले में 30 सैनिकों के मारे जाने की खबर। रोम में शांति वार्ता के बीच इसराइल लेबनान में बढ़ गया तनाव, दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमले के बाद भारी तबाही, एक नागरिक की मौत, जवाबी हमले में 2 इसराइली सैनिक भी ढेर। रूस के ब्रांस्क में यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया, 2 नागरिकों की मौत हुई, 5 लोग घायल हुए, यूक्रेन ने कामकाजी ड्रोन के जरिए रिहायशी सीमावर्ती इलाकों को बनाया निशाना। उत्तर कोरिया ने फिर से दागी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पूर्वी सागर की ओर से किया गया परीक्षण, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने दावा किया। चीनी खतरे के बीच ताइवान का एक बड़ा सैन्य अभियान, अमेरिकी राइफल से रिजर्व सैनिकों ने किया शक्ति प्रदर्शन, 10 दिनों तक चलेगा युद्धाभ्यास।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको माफिया अतीक अहमद के कुनबे के बारे में बताएंगे, जिसमें एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी है। आज सुबह अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ ओवर स्पीडिंग है और बारिश के कारण हुआ एक भयानक हादसा था या फिर कोई साजिश है। पुलिस और चश्मदीदों का दावा है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें अबान की मौत हो गई। आज सवाल यह है कि क्या अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में आएंगी, और ऐसी क्या कोई संभावना बनती है कि अगर वो सामने आती है तो गिरफ्तारी की भी नौबत आ जाए। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत में विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल पर बवाल क्यों मचा है। भारत सरकार विदेशों से मिलने वाली फंडिंग यानी FCRA नियमों को और सख्त करने के लिए एक नया संशोधन बिल ला रही है, लेकिन इस बिल को लेकर कई संगठन विरोध में आ गए हैं। विरोध करने वालों का सबसे बड़ा डर यह है कि लाइसेंस रद्द होते ही किसी भी NGO, किसी अस्पताल या स्कूल की संपत्ति क्या सीधे सरकारी अथॉरिटी के कब्जे में चली जाएगी। सरकार कह रही है कि यह बिल विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तथ्य क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे। और आखिर में आपको दूध पनीर और खोआ का एक रासायनिक सूत्र बताएंगे। भले आप मानते हो कि गाय भैंस से दूध मिलता है, इसी दूध से पनीर और खोआ बनता है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली NCR में कहीं रहते हैं और पनीर और खोआ खा रहे हैं तो काफी हद तक गारंटी है कि वो उस फॉर्मूले से नहीं बना होगा जो बचपन से आप मानते थे कि दूध से पनीर बनता है, क्योंकि अब मिलावटखोरों ने बिना गाय भैंस के दूध पनीर और खोआ बनाना सीख लिया है। और वो इसे कैसे बनाते हैं और आपकी थाली में ये बहुत ही जिसे कहते हैं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज कैसे पहुंच रही है, किन राज्यों ने इसको बैन तक कर दिया है, इसका पूरा खुलासा करेंगे, जिसे देखकर पनीर का शौक रखने वाले तगड़े शौक में जाने वाले हैं। कम से कम हम और आप थोड़े से और सतर्क तो होंगे। बहरहाल आज खबरें तो बहुत हैं, लेकिन उन तमाम खबरों से पहले अगर हम ये घटना नहीं दिखाएंगे तो शायद हमारा ये शो और इसका मकसद दोनों अधूरे रह जाएंगे। कई लोग शायद राष्ट्रीय चैनल पर रात 9 बजे की खबर इसे ना माने और इसके महत्व को ना समझे, लेकिन हम ये खबर आपको दिखाना चाहते हैं। कहा जाता है कि किसी देश की महानता सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार विकास से नहीं मापी जा सकती। किसी राष्ट्र की असली पहचान उसके समाज, उसके तौर तरीके, उसकी संवेदनशीलता से होती है और इस बात से भी होती है कि वो अपने सबसे कमजोर और सबसे बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो सिर्फ बागबान जैसी फिल्म देखकर दो आंसू बहाता है, या घर जाकर ये समझता है कि जो उन्हें इस दुनिया में लाए उनकी क्या कीमत है। अगर बात भारत की करें तो दुनिया हमेशा हमारे देश को उसके पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों, बड़ों के लिए, सम्मान के लिए पहचानती है। कहते हैं भाई इतने बड़े बड़े लोग नौकरी कर रहे फिर भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हाँ, हमारा देश है ऐसा, हमारे लिए रिश्ते बड़े अहम होते हैं, जीवन से भी बड़े होते हैं। सदियों से यही कहा जाता रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है, जहां माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय होते हैं, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि क्या हमारा समाज अब भी वैसा ही है जैसा हम उसे मानते हैं, और क्या रिश्तों की वही गरिमा आज भी बची हुई है। आज हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि हमारे समाज के सामने रखा गया एक आईना है। पहली तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है। एक बुजुर्ग पिता जिसने जीवन भर अपने परिवार का ख्याल रखा, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उनके भविष्य के लिए संघर्ष किया, जब उनके जीवन की अंतिम यात्रा शुरू हुई तब उनकी बेटियां ही उसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए अंतिम संस्कार में आना संभव नहीं होगा, इसलिए वो वीडियो कॉल पर ही अपने पिता के इस अंतिम संस्कार को देख पाएंगी, वीडियो कॉल पर। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब यह वीडियो कॉल किया गया तब एक बेटी ने अपने पिता की चिता जलने से पहले ही यह पूछ लिया कि इस अंतिम संस्कार में और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर उसे और यह सब देखना होगा। एक पल ठहर कर सोचिए इस पिता की आत्मा पर क्या बीती होगी जिसने अपने अंतिम दिन एक वृद्धाश्रम में ही बिताए। जिनके पास परिवार था, बेटियां थी, रिश्ते थे, लेकिन विदाई की घड़ी में कंधे समाज ने दिए। अपनों की मौजूदगी मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गई। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहां एक मां पर आरोप है कि उसने अपने ही नवजात बच्चे को सिर्फ इसलिए 3 लाख रुपए में बेच दिया ताकि उन पैसों से वो नया मकान बनवा सके। जब ये खबर पहली बार हमारे सामने आई तो हमें वाकई विश्वास नहीं हुआ। बच्चे से बड़ा घर, हमें लगा कि शायद कहीं कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मामला ऐसा नहीं होगा, ऐसा सीधा नहीं होगा। लेकिन जब हमने FIR पढ़ी तो उसमें लिखी बातें पढ़कर हम स्तब्ध रह गए। सबसे हैरान की बात यह थी कि आरोप सिर्फ मां पर नहीं, आरोप यह है कि जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ वही के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद की और रिश्वत लेकर पूरे सौदे को अंजाम तक पहुंचाया, यानी जिस जगह पर एक बच्चे का स्वागत होना चाहिए वहीं उस मासूम की जिंदगी का सौदा हो गया। मां की गोद नहीं मिली, पैसों के लिए बेच दिया गया। ये दोनों घटनाएं इतनी विचलित करने वाली थी कि हमने तय किया कि आज सबसे पहले हम समाज का यही कड़वा सच आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हमारे बीच हो रही हैं, अगर बच्चे वीडियो कॉलिंग पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो इसको किसी भी श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनाएं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, रिश्तों को देखने का लोगों का नजरिया है, वो बदल रहा है और वो शायद धरातल से भी नीचे पहुंच रहा है। इस बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं जिसमें 3 बेटियां ये कहते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची कि उन्हें मुंबई, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और नेपाल से आने में वक्त लग जाएगा। और जानते हैं इन्हें आना कहां था? इन्हें सोनीपत के उस वृद्धाश्रम में जाना था जहां शिवचरण गुप्ता ने बीमारी के दौरान अपना दम तोड़ा। जब बेटियों के कहने पर वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया तब सबसे बड़ी बेटी नेपाल से वीडियो कॉल पर जुड़ी। हमारे पास जो वीडियो है उसमें वो एक जगह भावुक भी नजर आती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर अपने पिता को खोने का अफसोस तक नहीं है वो शायद गलत है, क्योंकि एक जगह पर वो भावुक भी नजर आ रही है। नेपाल से वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही अनीता एक पल के लिए भावुक हुई थी, लेकिन सवाल तब उठे जब बाद में उन्होंने मुखाग्नि से पहले ही ये पूछ लिया कि अंतिम संस्कार में और वक्त कितना लगेगा। वृद्धाश्रम के लोगों का कहना है कि ये सुनकर उनका शरीर ठंडा पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटी समय की कमी के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आई उसके पास वीडियो कॉल पर भी उनका अंतिम संस्कार देखने के लिए वक्त नहीं था। देखिए,
1: तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
2: अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते अभी मैं आपको बताती हूँ ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
2: अच्छे से हो गया ना सारा काम?
3: हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
2: ठीक है,
3: भेज दूंगा आपके आने पे होगा सारा काम।
4: हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना।
3: ये संस्कार हुआ है
4: अभी, तो संस्कार हुआ है
2: अभी। और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या खाएंगे और नहाएंगे शिमला जलाएंगे?
3: नहीं अभी समस्या है ना, मैं पिता को अपनी बेटी
0: कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर कुछ भी कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शिवचरण गुप्ता कभी महाराष्ट्र के एक बड़े कपड़ा कारोबारी होते थे। उन्होंने मेहनत से अपना संसार बसाया, उनके पास किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। 3 बेटियां थी जिन्हें वो अक्सर अपना बेटा कहकर पुकारते थे। उन्होंने तीनों को अच्छी शिक्षा दिलाई, उनमें से 2 बेटियां आगे जाकर टीचर भी बनी। समय बीता, बेटियों की शादियां हुई, फिर वही हुआ जो अक्सर हर पिता के जीवन में होता है, घर धीरे धीरे खाली होने लगा। शिवचरण गुप्ता और उनकी पत्नी अकेले रह गए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से शिवचरण गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं हुए। करीब 1 साल पहले वो सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे जहां पहले उनकी पत्नी मीना गुप्ता का देहांत हुआ और शिवचरण गुप्ता अकेले पड़ गए। 1 महीने पहले जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई इसके बारे में उनकी बेटियों को बताया गया तो आरोप है कि वो उन्हें देखने नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता ने ही उन्हें आने से मना कर दिया था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत थी। जब पिता एक वृद्धाश्रम में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे तभी बेटियों को जिद करके वहां आना चाहिए था, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। शिवचरण गुप्ता इस आघात से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपनी मौत से पहले अपना शरीर दान करने का फैसला किया। जब मृत्यु के बाद ये बात बड़ी बेटी को पता चला तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आंखें दान करके उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम को 5,100 रुपए भी भेजे, लेकिन बाद में वृद्धाश्रम के लोगों ने यह पैसा भी वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि अंतिम संस्कार का खर्च समाज खुद उठाएगा, और यह कहानी यही खत्म नहीं होती। उन लोगों का यह मानना था कि जब जीते जी कोई बेटी उन्हें देखने नहीं आई तो मरने के बाद यह 5100 रुपए के क्या मायने। और जब उनके अस्थियों के विसर्जन की बात आई तब भी बेटियों ने यह कहा कि उन्हें आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने ही उनकी अस्थियों का विसर्जन करने का फैसला लिया। हालांकि यहां इस बात को साफ करना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में अब तक बेटियों का पक्ष सामने नहीं आया है। अगर वो सामने आती हैं, कोई उनकी मजबूरी है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, और जैसे ही उनका पक्ष हमारे सामने आएगा हम वो जरूर आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई कुछ पारिवारिक ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से तीनों बेटी नहीं आ पाई। ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्या वजह थी। लेकिन अभी वृद्धाश्रम के लोग क्या कह रहे हैं, उनके अंदर कुछ टूटा है, उनकी बात सुनिए।

0: देखिए बड़ी बिटिया थी, भावुक तो थी वो, इसमें मतलब हम ये कहें कि नहीं थी, अपनी भावुक थी, ये तो हर कोई होता है।
1: मैं तो बड़ा दुख का विषय है कि उन बच्चों के माथे पे सिनक तक नहीं थी, आंसू तक मैंने आंखों में नहीं देखे, मैं बिल्कुल सब कुछ लाइव देख रहा था वहां पे। एक बेटी का ये बोलना कि जब बाप की चिता सामने जल रही हो, कि ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, तो आप मानिए कि जब हम सारी क्रिया करने लग रहे हैं तो बच्चियों का ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, ये मतलब एक बहुत बड़ी क्रूरता है।
2: आजकल जो आज की पीढ़ी है वो मोबाइल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में उलझी हुई, रील में उलझी हुई, लेकिन जो बुजुर्ग थे इनकी बेटियां तो उम्र दराज हैं, बड़ी उम्र की हैं, नेपाल में रहती है, बॉम्बे में रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी।
3: कहते कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं। मैंने ये जरूर सुना था कि लड़के अपने माँ बाप से विमुख हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो आधी रात को भी आवाज दो तो भागी आती है। कैसी विडंबना इस कार्य के अंदर जो कल घटित है, सारा शहर क्या जिस आदमी से बात होती है कि ये ऐसा कलयुग आया जरूर था, लेकिन तो घोर कलयुग आ गया है।
4: आपका भी दिल शायद भारी हो गया होगा इस खबर को देखकर। कई लोग ये लिख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है। अब ये इस तरह की कोई पहली आखिरी घटना नहीं है। इसी साल 21 जुलाई को अमरोहा में एक बुजुर्ग पिता का अंतिम संस्कार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके चारों बेटे संपत्ति के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। यही नहीं, इन लोगों ने अपने पिता के शव को तब तक अर्थी नहीं चढ़ने दिया जब तक पंचायत बुलाकर संपत्ति के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ। पैसा कितना बड़ा हो जाता है। इसी साल फरवरी महीने में जालौन में भी एक बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार को इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि उनके दोनों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था और इन दोनों बेटों ने इस विवाद के कारण अपने पिता की अर्थी उठाने से इनकार कर दिया। 15 मई 2025 को तो राजस्थान के कोटपुतली में सारी मर्यादाएं टूट गई थी। एक बेटे ने इसलिए अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया क्योंकि वो उनके चांदी के कंगन मांग रहा था। सोचिए हमारे देश में हुआ, उस देश में जिसे श्रवण कुमार का देश कहा जाता है। अरे श्रवण कुमार ना बन पाइए तो मत बनिए, लेकिन कम से कम आंखों का पानी इतना तो रखिए कि उनके चले जाने के बाद ये सब ना करना पड़े। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जिन्हें बताने के लिए ये शो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हाँ इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बागवान जैसी फिल्म जाकर देखकर बहुत लोग उस पर आंसू बहाते हैं। अब देखिए इन घटनाओं में सबसे दुखद बात जानते हैं, अपने बूढ़े माता पिता का वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार करना। क्या आप यकीन करेंगे कि आज हमारे देश में इसका पूरा बाजार बन चुका है? हमने इस खबर को देखने के बाद इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को समझने की कोशिश की तो जो हमारे सामने आया उस वो हमें हैरान कर रहा है। अलग अलग शहरों में ऐसी कई कंपनियां काम कर रही हैं जो वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कराने का काम करती हैं। ये कंपनियां अंतिम यात्रा, शव वाहन, फ्रीजर बॉक्स, शमशान बुकिंग, धार्मिक अनुष्ठान, ऑनलाइन श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार की लाइव स्ट्रीमिंग, विदेश से पार्थिव शरीर लाने जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सहूलियत की भी हैं, लेकिन जब अपने ही बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉल पर अपने पिता, अपनी माँ का अंतिम संस्कार देखें, इससे दुखद क्या हो सकता है। पैकेज बने हुए हैं इन लोगों के, दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, ऐसे शहरों में कई लोग इन कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी, किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते, और इसके लिए ये लोग इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। उन्हें हजारों रुपए देकर एक पैकेज खरीदते हैं जिसमें अंतिम संस्कार इन कंपनियों द्वारा किया जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग उनके बच्चों को दिखा दी जाती है। सोचिए ये वो चीजें हैं जो हमारे समाज में हो रही है और लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें ये चीजें अब विचलित भी नहीं करती। और ये भी तब हो रहा है जब हमारे देश में अभी बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में 15 से 59 साल के लोगों की आबादी 64.8% है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी लगभग 11.5%। यानी जब इस देश में बुजुर्गों की आबादी कम है तब कई लोग उनका वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं या उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेज रहे हैं। सोचिए आज से 10 साल बाद 2036 में जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी तब हमारे देश में क्या होगा। इस स्थिति को देखते हुए केरल में पहली बार बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाया गया है। इसका नाम है एल्डरली वेलफेयर डिपार्टमेंट और यह विभाग इसलिए बनाया गया है क्योंकि केरल में बुजुर्गों की आबादी 20% हो चुकी है जबकि भारत में ये लगभग 12% है। केरल में कई माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, वो वीडियो कॉल्स पर ही उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। और पता है इन कंपनियों की सेवाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये कंपनियां कहती हैं कि दूर कहीं से आकर अंतिम संस्कार करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, वक्त ज्यादा लगता है, काम से छुट्टी नहीं मिलती या लेनी पड़ती है। यही देखते हुए अब भारत जैसे देश में वीडियो कॉल पर दूर से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी में कई बुजुर्ग तो इतने ज्यादा, मतलब क्या ही कहा जाए उनके बारे में, दुखद स्थिति में रहते हैं कि उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। एम्स के मुताबिक भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा ऐसे शवों का अंतिम संस्कार होता है जो लावारिस होते हैं या जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इस वक्त देश में 1,658 वृद्धाश्रम सरकारी मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम है, 600 से ज्यादा निजी वृद्धाश्रम है जिनमें अधिकतम 21,525 बुजुर्ग रह सकते हैं। यानी जो बुजुर्ग अपने घरों को छोड़ देते हैं उनमें कईयों को तो रहने का भी ठिकाना नहीं मिलता, कई मामलों में संपत्ति लेकर माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। और ये फैसला क्यों जरूरी था उसके लिए आप साल 2021 की इन तस्वीरों को भी देखिए। आगरा में जब एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो कुछ रिश्तेदार उनकी संपत्ति हड़पने के लिए एक वकील लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब उन्होंने इस बुजुर्ग महिला का शव इस एम्बुलेंस में देखा तो जमीन के कागजातों पर उनका अंगूठा लगवाने के लिए इन लोगों ने शव को नहीं बख्शा, मृत हालत में एक वकील ने शव का अंगूठा पकड़कर कई जमीनें उनके रिश्तेदारों के नाम करा ली। और जब ये तस्वीरें लोगों ने देखी तो उनके मन में एक बात आई कि ये कैसा कलयुग है। खैर इस कलयुग को देखना हो तो ये घटना भी कम विचलित कर नहीं करती। दक्षिणी दिल्ली में रहने वाला एक पिता अपनी 18 साल की अविवाहित गर्भवती बेटी को आगरा लेकर गया। सबको यह बताया गया कि उसका इलाज कराने के लिए वो आगरा ले जा रहा है, लेकिन वहां जाकर इसने अपनी बेटी को चंबल नदी में डुबोकर जान से मार दिया। यही नहीं, अपनी बेटी की हत्या करने के बाद इस पिता ने उसके पैर छुए, ये कहा कि शादी से पहले गर्भवती होकर इस बेटी ने पाप किया था इसलिए उसे मारना ही उसके लिए उचित था। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें भी आज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज कुछ अंदर झांका जाए, कुछ अपने आंखों से हवा होते पानी को वापस लाया जाए और ये समझा जाए कि जिन लोगों ने दुनिया में लाया उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं और जिन्हें हम दुनिया में लेकर आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गाड़ी पलटने का सच क्या है। ये खबर सुबह से काफी चर्चा में है और बहुत सारे लोग इस सड़क दुर्घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इस घटना को संदिग्ध भी बताया है। लेकिन हम आपको इस घटना से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिनकी पुलिस ने पुष्टि की है और जो बातें खुद चश्मदीदों ने हमें बताई हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अबान अहमद की गाड़ी पलटी कैसे। पुलिस का कहना है कि अबान अहमद अपने चार दोस्तों के साथ एक गाड़ी में प्रयागराज से झांसी की डिस्ट्रिक्ट जेल जा रहा था। ये वही जेल है जहां अबान अहमद के बड़े भाई अली अहमद को 9 महीने पहले प्रयागराज की नैनी जेल से भेजा गया था। पुलिस के मुताबिक 21 साल का अबान अहमद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए झांसी की इस जेल जा रहा था और ये सारे लोग एक सफेद ह्युंडई क्रेटा कार में सफर कर रहे थे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो प्रयागराज से झांसी की ये जेल कितनी दूर है, 650 किलोमीटर। और जिस नेशनल हाईवे से अबान अहमद की एक गाड़ी जा रही थी उसका नाम कानपुर झांसी नेशनल हाईवे है। अब बड़ी बात यह है कि झांसी के जिस पुंछ इलाके में अबान अहमद की गाड़ी पलटी वो जगह झांसी की जेल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच सिर्फ 67 किलोमीटर की दूरी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि अबान अहमद अपने दोस्तों के साथ एक घंटे के अंदर झांसी की इस जेल पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उसकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर एक डिवाइडर से टकराई और इस घटना में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई। इनमें अबान अहमद भी मारा गया और उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई, जबकि कार में मौजूद मोहम्मद जायद, मोहम्मद उमर, फारूक घायल हुए जिन्हें अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया। पुलिस कह रही है कि सड़क दुर्घटना के पीछे कोई साजिश नहीं है, कार ओवर स्पीड कर रही थी और भारी बारिश के कारण सड़क पर भी फिसलन ज्यादा थी और इसी के कारण अबान अहमद, अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी बेकाबू हुई और बाद में डिवाइडर से टकरा कर ये इस तरह पलट गई। यहां जो लोग इस घटना को संदिग्ध बता रहे हैं उनका कहना है कि ये कार उसी इलाके में कैसे पलटी जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन ऐसे सवालों को पुलिस गलतफहमी पैदा करने वाला मान रही है। पुलिस का कहना है कि चश्मदीदों ने खुद बताया कि गाड़ी ओवरस्पीड होने की वजह से पलटी है और अबान अहमद का जो दोस्त मोहम्मद उमर कार में मौजूद था उसने खुद इस घटना के बाद ये कहा कि कार अचानक असंतुलित हुई और इसके बाद डिवाइडर से टकरा गई। यानी जो दोस्त अबान अहमद के साथ इस कार में जा रहा था वो खुद कह रहा है कि एक हादसा है। दूसरी बात, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस गाड़ी को चला कौन रहा था। पुलिस के मुताबिक ये गाड़ी मोहम्मद जायद के नाम पर रजिस्टर्ड थी जो इस सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के नाम पर कई चालान दर्ज हैं जिनमें सबसे ज्यादा चालान ओवरस्पीडिंग के हैं, फिर नो पार्किंग के हैं। इस गाड़ी के नाम पर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने का चालान भी दर्ज किया गया है और इससे ये सवाल भी उठता है कि इस गाड़ी को चला कौन रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं। देखिए

0: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है, और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है, जो सीट है वो बाहर निकली हुई है।
1: अवान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया,
2: सभी लोग घायल हो गए।
1: हाँ, उसके बाद नहीं यार, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए।
3: एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग एक अवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है।
4: बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए।
5: यहाँ ये भी देखिए कि अतीक अहमद के बेटों की मौत का झांसी कनेक्शन क्या है। 13 अप्रैल 2023 को जब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद अहमद को एक एनकाउंटर में मारा था, तब ये एनकाउंटर झांसी के ही पारीछा डैम के पास हुआ था, यानी झांसी में जिस जगह असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था वहां से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर, और 45 किलोमीटर दूर अबान अहमद की आज सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, और इसीलिए कई लोग शक जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है इतनी बड़ी कैसे ये कोइंसिडेंस हो सकता है। यहाँ एक और अहम बात यह है कि झांसी में असद अहमद के एनकाउंटर के सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस घटना के वक्त अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा, ये देखिए ये वो लाइव था जो सिर्फ हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हुआ था, और अतीक अहमद उस वक्त अगर आप देखिए तो छोटा बेटा अबान जिसकी आज मौत हुई है, ये उस वक्त की लाइव तस्वीरें आज तक पर हमारे सहयोगी चूंकि वहां पर मौजूद थे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ये घटना घटी थी तब अबान अहमद नाबालिग हुआ करता था, तब पुलिस ने कहा था कि अतीक अहमद की हत्या के बाद उसने अबान अहमद और एहजम अहमद को लावारिस हालात में घूमते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। ये तब की तस्वीर है। अब ये दोनों भाई पूरे 221 दिनों तक वहां रहे, और इसके बाद इन्हें इनकी बुआ परवीन कुरैशी के पास भेज दिया गया। ये तस्वीरें उसी समय की है जब अबान अहमद और एहजम अहमद बाल सुधार गृह से छूटने के बाद अपने पिता अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे थे, और अब अतीक अहमद की इसी कब्र के पास अबान अहमद को दफनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए
6: हम जहां पर खड़े हैं ये अतीक अहमद के परिवार की कब्रें यहां पर सुपुर्द कब्रें हैं, जहां पर अतीक के परिवार के लोगों को डेथ होने के बाद सुपुर्द खाक किया जाता है। 5 कब्रें नजर आ रही है उसी सड़क हादसे में डेथ के बाद। अब उनके जानने वालों में थोड़ा सा शोक है, संवेदना है, और अब प्रयागराज के जिस कब्रस्तान में हम खड़े हैं ये कसारी मसारी का कब्रस्तान है, और अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोगों को इसी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया जाता है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है अबान अहमद की भी जब डेड बॉडी अगर प्रयागराज पोस्टमार्टम के बाद आएगी तो इसी कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
5: यहाँ एक और सवाल यह है कि क्या 2023 से फरार चल रही शाइस्ता परवीन अपने सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के नमाज़े जनाजे में शामिल होंगी। इस वक्त शाइस्ता परवीन पर कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उमेश पाल की हत्या का मामला भी शामिल है, और पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 2023 में जब अतीक अहमद को दफनाया गया था तब भी शाइस्ता परवीन नमाज़े जनाजे में शामिल नहीं हुई थी, और अब भी पुलिस की गिरफ्तारी के डर से शायद वो अपने सबसे छोटे बेटे को दफन करने की रस्म में शामिल ना हो। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चलकर ये दिखाना चाहती हूँ कि एक जमाने में अतीक अहमद, उसके बेटों और परिवार का जो उत्तर प्रदेश में खौफ माना जाता था, वो कैसे बिल्कुल अलग रूप ले चुका है और शायद इस परिवार के सबसे बुरे दिन आ गए। तो हम अतीक अहमद का जो पूरा परिवार है वो आज आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद की हत्या होती है। अब इनके परिवार में कौन है? सबसे पहले एक तो आप शाइस्ता परवीन को देखेंगे, उनकी पत्नी। अच्छा, 2023 से, साल 2023 से ये फरार चल रही हैं। इन पे ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है जिसकी वजह से सामने आने पर गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप इनका पूरा परिवार देखिए, जिसका एक वक्त पर जबरदस्त रुतबा होता था और एक तरह का रौब होता था, लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे तो उबर अहमद, कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 बेटे। पांच बेटे में सबसे पहले आप देखिए उमर अहमद को। ये अभी कहां है? उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद कहां है? ये झांसी जेल में बंद है। फिर आ जाइए असद अहमद पर। 2023 में एनकाउंटर में अगर आपको याद हो, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, वहां पर मौत होती है। कोलकाता में एहजम अहमद पढ़ रहा है इस वक्त, और अबान अहमद, सड़क हादसे में इसकी आज मौत हुई है। तो आपको एक बार अगर हम ये दिखाएं एक एक करके, तो ये पूरे परिवार के जो लोग हैं, ये देखिए, ये अबान अहमद, इसी की मौत हुई है। और ये दूसरा एक और बेटा एजान अहमद जो कोलकाता में पढ़ रहा है, ये असद अहमद का जहां पर एनकाउंटर हुआ था उसी के पास अबान अहमद की गाड़ी पलटी है। और फिर इधर देखिए, एक झांसी जेल में एक बेटा, और एक अली अहमद और एक उमर अहमद लखनऊ जेल में। अतीक अहमद की तो हत्या 15 अप्रैल को हो ही गई थी। शाइस्ता परवीन पर लेकिन अब सारा फोकस है कि क्या ये अपने बेटे के नमाज जनाजे में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आती हैं तो वहां पर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस परिवार का एक वक्त पर जबरदस्त रुतबा रहता था, जबरदस्त रौब रहता था, वही परिवार आज किस तरह से बिखरा हुआ एक तरह से सामने दिख रहा है। तो यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि अबान अहमद बाल सुधार गृह में रहा जरूर, लेकिन नवंबर 2025 में उसका एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें वो हथियारों की बात कर रहा था। वो वीडियो देखिए।
7: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी।
8: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से पहाड़।
7: तूफान और हम जब भी आते हैं,
8: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
5: खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बारे में बताते हैं जिस पर आज दिन भर हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए ये लिखा कि भारत सरकार अब यात्री विमानों के जेट फ्यूल में इथेनॉल मिलाकर उन्हें उड़ाने जा रही है, जिससे इंजन बंद होने का खतरा होगा। यानी अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि जब यात्री विमानों के फ्यूल में इथेनॉल मिला दिया जाएगा, उसके कारण विमानों का इंजन हवा में ही बंद हो जाएगा, तो क्या लोग विमानों में सफर करने जाएंगे? अब इसको लेकर एक बहस छिड़ गई। अब ये कल्पना सुनने में तो बहुत डरावनी स्थिति लगती है और कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल के इस दावे के बाद चिंता जताई, लेकिन सरकार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेट फ्यूल को लेकर झूठी खबर फैला रहे हैं और वो इसको इनकार कर रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने कहा है कि जेट फ्यूल में सरकार की इथेनॉल मिलाने की कोई योजना नहीं है और ना ही जेट फ्यूल में इथेनॉल मिलाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जिन वैकल्पिक तेल की अनुमति को इथेनॉल से जोड़ा जा रहा है, उसे हकीकत में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं। अब ये क्या है? ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के नाम से ऐसा तो कुछ नहीं है जिससे आने वाले वक्त में भाई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। ये क्या होता है? तो इसका मतलब है ऐसा जेट फ्यूल जो कम कार्बन उत्सर्जन करे, जो कच्चे तेल पर निर्भरता घटाए और जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करे। इसे इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, कचरे, लकड़ी के बायोमास, गन्ने, मक्के और सिंथेटिक फ्यूल की मदद से बनाया जाता है। अब इसमें इथेनॉल एक संभावित रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने जैसा नहीं है। ये बात सरकार कह रही है और ये बात अब इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख दी है। बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने तो अपनी खबर पूरी तरह बदल दी और अब आप देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे पोस्ट पर लिखा है, उसको लेकर अभी भी चर्चा हो रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इस पूरे मामले में यहां इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन खुद कहती है कि अब तक दुनिया में 360,000 से ज्यादा

carbon offsetting and reduction scheme for international aviation के तहत इसके कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए साल 2027 तक जेट फ्यूल में 1%, 2028 तक 2%, 2030 तक 5% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में लाया जाएगा। लेकिन ये इथेनॉल नहीं है और ये दुनिया कहती है, लेकिन इन सब के बीच कई लोगों के मन में इसके बाद आशंका पैदा हो गई। अब लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, क्योंकि हम रांची को नहीं भूले हैं, जैसे हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों के मार्च के बाद से लगातार खबरें की, अब झारखंड की भी बारी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और धांधली का जो आरोप लग रहा है, उन सबके बीच छात्रों का आक्रोश लगातार अब बढ़ रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस आंदोलन का 13वां दिन है, जबकि देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का 5वां दिन। लगातार 1000 से ज्यादा लोग 24 घंटे उनके साथ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि टकराव की स्थिति ना हो। हालांकि आज दोपहर सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की सुगबुगाहट जरूर दिखाई दी, लेकिन अभी संशय बरकरार है। सरकार की ओर से एसडीओ कुमार रजत, एसडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर सीएम और का जो एक संदेश है वो छात्रों तक पहुंचाया था, हमने आपको कल भी दिखाया था, जिसके बाद छात्रों ने अपने प्रतिनिधि मंडल के नाम तय कर दिए हैं। सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के नामों की सूची एसडीओ को सौंप दी है। एसडीओ को इसमें 8 छात्र, 2 तकनीकी जानकार और 1 वकील शामिल है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थिति को संभालने के लिए 4 मंत्रियों की एक विशेष समिति का गठन किया है। उसमें उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये, और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव सभी शामिल किए गए। छात्रों का कहना है कि पिछले आंदोलनों में बंद कमरे की वार्ताओं का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, इसलिए वो इस बार किसी भी छिपे या सीमित दायरे वाली बैठक के पक्ष में नहीं है। फिलहाल छात्रों द्वारा सूची सौंपे जाने के बाद सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों का आंदोलन और तेज होगा, जिसमें विधानसभा का घेराव भी शामिल है। रांची में 13 दिन से जारी छात्रों के इस आंदोलन को अब जोरदार समर्थन मिलने लगा है। देश भर से अलग अलग तरह के से जाहिर कर रहे हैं लोग इसे, कई लोग उनके साथ खड़े हैं। रांची के स्टेडियम में अब देश के अलग अलग शहरों के लोग पेमेंट कर फूड डिलीवरी ऐप के जरिए खाना भी भेज रहे हैं, समोसे कचौरी पिज्जा और अन्य खाना भी भेज रहे हैं। किसान भी छात्रों के समर्थन में पीछे नहीं है। आसपास के जो किसान हैं, आप सोचिए, छात्रों के लिए विशेष तौर पर ताजा खीरे, जो भी मतलब वहां पर खाया जा सकता है। आंदोलन स्थल पर लोकल लोगों ने बिस्किट पानी खाने के साथ साथ मेडिकल कैंप सब कुछ लगा दिया है, ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कई जगहों पर बारिश में भीग रहे हैं, तबीयत खराब होने का डर है।

0: ऑनलाइन खाना ऑर्डर होकर के आने लगा है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता शहर, बैंगलोर, जो लोग भी इस आंदोलन में आ नहीं पाए, इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो खाना ऑर्डर करते हैं, इन बच्चों के लिए यहाँ पहुँच जाता है। आपको पता है फिर खाना कौन भेज रहा है?
1: जी, ये सारे स्टेट से आ रहा है, लाइक दिल्ली, मुंबई, हर जगह से आ रहा है। और वो लोग, बहुत लोग अपना हाइड रखते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद बस ऑर्डर हो जाता है।
0: खाना तो आ ही रहा है, अब तो खीरा वीरा भी आने लगी है, तो कैसे पहुंचे यहाँ पे?
2: 10 किसान आए और उन्होंने कहा 3 एकड़ खेत में हमारा खीरा लगा हुआ है,
0: सारा यहाँ भेज दिया।
2: उन्होंने स्वयं बोला कि आप लोग भी मिलिए और हम लोग सब मिल के तोड़ते हैं। पूरे गांव के लोगों ने खीरा तोड़ा, हम लोग तोड़े और गाड़ी में भर के लाए, और सुबह से खीरा न खत्म होने का नाम ले रहा, न विद्यार्थी खत्म होने का नाम।
0: लोग कहाँ से आए खाना लेके ये, और भेज कौन रहा है पता है? किसके लिए भेजा इन्होंने?
3: यहाँ की कमेटी के लिए भेजा गया है।
0: बता रहे हैं किसको देना है?
3: नहीं बताया, नहीं कुछ
0: कह रहे हैं, किसी को भी दे दो। आप क्या लाए हैं?
3: वही है, साथ में।
0: अच्छा, इनके साथ ही हैं। कौन कौन कहाँ से आ रहा है खाना, कौन भेज रहा है?
3: ऐसे तो देखिए कंफर्म नहीं हुआ, बहुत आदमी धनबाद से भी किया है, बहुत दिल्ली से भी किया है।
0: और ये कब से शुरू हुआ है?
3: अभी तो हम लोग लगभग लगता है 2 हफ्ते से पहुँचा रहे हैं।
4: इस बीच परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही झारखंड CID ने रांची और UP पुलिस के सहयोग से बड़ी छापेमारी कर 5 और

0: आरोपियों को दबोचा है। अब तक इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपको देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सुनवाते हैं। मुंबई में छात्रों के साथ एक खास संवाद के दौरान मोहन भागवत ने युवाओं की खुलकर तारीफ की, कहा कि देश की व्यवस्था को सुधारने में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कहा कि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार है, कहीं ज्यादा देशभक्त है। उन्होंने चेताया कि अगर युवाओं से संवाद में कमी रहती है तभी जंतर मंतर जैसे आंदोलन होते हैं। संवादहीनता ही इन टकरावों की सबसे बड़ी वजह है। आंदोलनों और प्रदर्शनों के मुद्दे पर भागवत ने दो टूक कहा कि अगर जेंजी सड़क पर उतरते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एंटी नेशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन सिस्टम में सुधार के लिए और पूरी मर्यादा में ही होनी चाहिए।
1: इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए। अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर
2: एजुकेशन कर तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
1: जी सर,
2: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए।
3: और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
4: आप क्या मानते हैं?
3: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
4: अरे वाह, बढ़िया है।
3: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
0: ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप हो या फिर किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू, जब वेजिटेरियन इंसान उसमें पनीर की डिश देखता है तो उसके उसको सबसे अच्छा वही लगता है। मेन्यू में पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, पनीर दो प्याजा, पनीर लबाबदार, बहुत सारी चीजें हैं, तुरंत ऑर्डर करता है। लेकिन कभी आपने रेस्टोरेंट में ये नहीं पूछा होगा कि वो जो पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा वाला पनीर है। अब आपने तो सोचा भी नहीं होगा, हर कोई यही मानता है दूध वाला डेयरी वाला पनीर है। आपको हो सकता है इसके बारे में पता ना हो, लेकिन मार्केट में तीन तरह के पनीर बिक रहे हैं। पहला है डेयरी पनीर जो दूध से बनता है, असली पनीर है। दूसरा है टोफू जो सोया मिल्क से बनता है, कई लोग पूछ कर या ऑर्डर करके टोफू खाते हैं, इसे भी आप असली पनीर कह सकते हैं। और तीसरा है एनालॉग पनीर, इसे कई तरह के केमिकल से तैयार करते हैं। यह अलग बात है कि देखने भर से डेयरी पनीर और एनालॉग पनीर में कोई फर्क नहीं किया जा सकता, यही सबसे बड़ा खतरा है, और फर्क ना कर पाना ही आपको बीमार बना रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन तीन राज्यों में एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन राज्यों का कोई भी दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड वेंडर एनालॉग पनीर वाला व्यंजन नहीं बेच पाएगा। इन राज्यों ने एनालॉग पनीर के खतरे को पहचान लिया है। हालांकि FSSAI इसको खतरनाक नहीं मानती है, उसने राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। असली पनीर बताकर एनालॉग पनीर बेचने वाले दुकानदारों पर छापेमारी हो रही है, उसे नष्ट किया जा रहा है। सच यह है कि आप पनीर दूध या खोया के नाम पर जो चीजें बहुत खुश होकर खा रहे हैं उसके असली होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलावट खोरों की लैब में बनाई जा रही हैं। तो सुनिए, वनस्पति तेल, वो भी सस्ता वनस्पति तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर जैसे केमिकल से एनालॉग पनीर बनाया जा रहा है। सोडा वनस्पति घी से नकली दूध बन रहा है। फ्रेंच चौक से नकली खोया तैयार हो रहा है। यानी इस वक्त बाजार में मिलने वाला पनीर, दूध, खोया कितना असली है ये कहना लगभग नामुमकिन है। इस खेल की सच्चाई को उजागर करती है हमारे संवाददाता नितिन जैन की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, देखिए।
5: दूध, पनीर, खोया दिखने में असली लेकिन सेहत के लिए बहुत घातक। डिमांड एंड सप्लाई के खेल में मिलावटी बाल बेचने वाले सस्ते दाम पर जहर बेचकर निकल जाते हैं और आप उनसे हुए नुकसान की भरपाई अस्पतालों के बिल भरकर करते हैं। दिल्ली एनसीआर की ही बात कर दें तो यहाँ पर नकली पनीर या कहें एनालॉग पनीर की सप्लाई का केंद्र है हरियाणा का मेवात, और इसके अलावा नकली दूध और खोए की सप्लाई हो रही है यूपी के शामली और बागपत से। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि कई बड़े संस्थानों के किचन में भी नकली एनालॉग पनीर ही सप्लाई हो रहा है। हमारी टीम हरियाणा के मेवात में ऐसी ही एक फैक्ट्री में पहुंची जहां कई तरह के केमिकल मिलाकर एनालॉग पनीर बनाया जा रहा था। यहां हमारी मुलाकात नकली पनीर बनाने वाले सबसे बड़े सप्लायर हाजी करार से हुई।
6: मुझे दो तरह का माल चाहिए, एक तो मीडियम लेवल का और एक बिल्कुल ही डाउनग्रेड, मुझे उससे मतलब नहीं है।
7: मतलब आप एक तो मीडियम चाहिए, आधी सोयाबीन आधे दूध। दूसरा कौन से, फुल सेपरेट है या थर्ड क्वालिटी वाला?
6: थर्ड क्वालिटी, थर्ड और फोर्थ तो कोई भी हो,
7: मतलब वही एक ही चीज है।
6: लेकिन रेट चाहिए उसको, जिस दिन वो जो जो लो क्वालिटी वाला है जिस दिन चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा 200-300 किलो के करीब।
7: तो मीडियम का माल लगा दे दूंगा जो मैं आपके 140 में, और जो सबसे थर्ड क्वालिटी का माल रख दूंगा, सैंपल देख सको आप, यही माएगा या सो घटिया ना आगे बढ़िया तो आ जाएगा, तो आपको मैं लास्ट 80 रुपए में दे दूंगा।
6: तो रगड़ा कहाँ दे रहे हो?
7: है जी,
6: रगड़ा,
7: रगड़ा मंगलो
6: ये वाला,
7: ये 80
6: नहीं, ये कहाँ दे रहे हो? ये
7: ये सब्जी के जा, जो जा भी पार्टी पे जा रहे हो अब सब एक ही माल जा रहे हो?
6: नहीं, कौन कौन है जैसे?
7: मतलब जैसे वो पार्टी है ना, वो सब तीन चार मेला का बंदे।
5: अब आप सोचिए कि ब्रांडेड कंपनी का पनीर बाजार में 450 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, लेकिन हाजी करार हमें 80 रुपए किलो में पनीर उपलब्ध करवा रहा है। इसे वो रगड़ू पनीर कहता है, और ये पनीर दिखने में तो पनीर जैसा है लेकिन इसे बनाने में दूध का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ये रगड़ू पनीर बनता कैसे है ये हमें दूसरे आदमी ने बताया।
8: दूध प्योर कितने का बन रहा है?
9: प्योर का तो रेट घना महंगा।
8: कितना है
9: का? तो है
8: 290 बाड़ है, लेकिन वो प्योर होगा?
9: वो बिल्कुल प्योर है, 200 होगा, क्रीम क्रीम कुछ नहीं निकलता।
8: और ये रिफाइंड का?
9: ये रिफाइंड वाला इस बताए 200 का,
8: ऐसे तो बहुत महंगा बता रहे हो।
9: इसमें बचे ही ना कुछ, सेपरेट हम बताओ क्या करें, कुछ रिफाइंड डाल देते हैं, कुछ वो सा दूध डाल देते हैं, प्योर बिल्कुल रिफाइंड ही नहीं डाल। जैसे आधा तो दूध चढ़ गया, आधा की जैसे क्रीम निकाल ली, जैसे 10 क्विंटल दूध चढ़ता है एक में, उसमें आधा दूध खींच लेते हैं, आधा नुकनी बिगर क्रीम खींच कर डाल देते।
8: मिल्क पाउडर नहीं मिला रहे?
9: मिल्क पाउडर मिला,
8: और फिर ये रिफाइंड
9: मिल्क पाउडर से ही तो हो रही है पूर्ति, नहीं होते पूर्ति ना हो दूध से तो दूध कितना, दूध में तो माल कितना निकलता है पाउडर गियर के। जब
5: हर दिन करीब 1200 से 1300 किलो नकली पनीर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रहा है। शादियों या त्योहारों के सीजन में तो ये सप्लाई बढ़कर करीब 2500 किलो तक पहुंच जाती है। ये सप्लाई दिल्ली में करीब 15 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर होती है जहां से पूरी दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होती है। हमें लगा कि मेवात में शुद्ध पनीर भी जरूर मिलता होगा, लेकिन हमारी गलत फहमी मुस्तफा ने दूर कर दी। मुस्तफा इसी खेल का पुराना खिलाड़ी है।
10: प्योर तो मिलेगा।
5: हम जब नकली खोए के सबसे बड़े बाजार बागपत में पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात हाशिम से हुई। हाशिम तो नकली बावा बनाने का ओजी चैंपियन था। वो सोप स्टोन जिसे आप सेल खड़ी या फ्रेंच चौक कहते हैं उससे भी खोया बना लेता था।
6: मुझे एक बार ये बताओ कि किस तरह का माल बनता है?
11: सेपरेटर
6: में, और इसके अलावा
11: पानी पाउडर
6: आप तो पानी पाउडर बना रहे हैं ना? देखो हमें चाहिए सस्ता, किफायती
5: सोचिए कि आप होटल में जाकर कढ़ाई पनीर या पनीर बटर मसाला ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो पनीर असली है या पाम ऑयल, स्टार्च और इमल्सीफायर से बना है। जब सोडा और डालडा से दूध बन रहा हो और चौक से खोया, तो आप समझ सकते हैं कि असल में आप किन बड़े खतरों से घिरे हुए हैं। नितिन जैन, आज तक।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे ताकतवर चुंबक मोबाइल फोन में डाला है। एक बार हाथ से चिपक गया तो आंखें बंद होने तक नहीं छूटता। नमस्कार।
10: बात जंजी से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया, जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
3: जो हुआ है, ग्रीवंस तो जेनाइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात। अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
11: बिल्कुल
3: उसको ठीक करना चाहिए।
11: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
3: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
11: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so, तो सर
3: नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना,
11: इसमें
3: मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
11: जी सर।
3: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
11: आप क्या मानते हैं?
3: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
4: अरे वाह, बढ़िया है।
3: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
11: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
3: अब
11: ये सारे विषय के
3: और एक बात
11: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
3: ये जो बातें है ना
11: जी,
3: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
11: जी।
3: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
11: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
3: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
11: बढ़िया है,
3: हम तो
11: बढ़िया
3: एलोकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
10: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
12: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
13: मजाक क्यों कर रहे हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
12: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
14: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
15: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
14: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ दिया, कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
12: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
16: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
12: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
17: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
12: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
10: रोज की तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
12: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
18: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
12: अकेले कांग्रेस ही नहीं बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
19: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
12: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खड़गे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
18: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए।
12: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
20: हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
12: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
10: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू दोनों की जान चली गई।
21: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आदरणीय श्री अतीक अहमद जी जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
22: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
18: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है।
22: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
23: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबकी ली है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
22: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
1: इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
22: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद की बेटी आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
2: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है, और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, कुछ सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
7: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
22: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
8: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
24: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं।
8: तूफान और हम जब भी आते हैं
24: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
22: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
7: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से।
22: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम, जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
25: डिवाइडर में कार जा रही है, जा रहे थे झांसी।
26: आज किस लिए जा रहे थे?
25: भाई से मुलाकात।
26: कौन भाई?
25: अली भाई।
26: कौन कौन था उसमें?
25: अवान भाई थे, हम थे,
0: लड़का फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे, तो जिस बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
3: उसमें अतीब अहमद का लड़का था?
0: हाँ, छोटे वाले।
3: क्या नाम था उनका?
0: अबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
3: जेल में?
0: जी।
4: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि अबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
5: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
6: 100+ थी।
5: 100+ थी।
4: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी?
10: बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
12: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
9: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
12: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
11: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
12: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
11: मैंने जज को बोला, आप लोग तो कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी।
12: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
27: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
12: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
10: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर
1: नहीं,
2: इसमें
1: वो मैं कह रहा हूँ ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
2: जी सर,
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
2: आप क्या मानते
1: हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह, बढ़िया है।
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात,
2: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है,
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीट।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है। जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी हास्यास्पद है, भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताएं किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं, मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली
3: जाए। संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू, दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आदरणीय श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
9: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
14: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए, वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
15: इसी हाथ पे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती। हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
16: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
17: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
18: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
19: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते।
18: तूफान और हम जब भी आते हैं कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
17: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम, जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
20: डिवाइडर में कार जा रहे थे झांसी।
21: आज किस लिए जा रहे थे?
20: भाई से मुलाकात।
21: कौन भाई?
20: अली भाई।
21: कौन कौन था उसमें?
20: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो जिस बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में,
21: उसमें अतीक अहमद का लड़का था।
20: हाँ, छोटे वाले।
21: क्या नाम था उनका?
20: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से
21: जेल में।
20: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
16: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
22: 100 प्लस थी।
16: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अबान का साथी, घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।

0: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for, and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum, that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
0: मामला 2013 का है, जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था, एविडेंस था, उसे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
0: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी।
0: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
3: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
0: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात कावड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
5: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है, तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं, श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी

0: नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है, और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
2: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता बार बार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
3: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
2: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
4: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर आल्सो डिसरप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones, and the area, of course, is at a standstill, as you can see.
2: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ke ek report ne kar diya. Theek yahi baat Bharat bhi keh raha hai.
5: Pakistan adhikrit Kashmir mein yah tathakatit chunav puri tarah se ek dikhawa hai. वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
2: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूर। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं,
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो, तो सर इसमें
1: वो मैं कह रहा हूं ना, इसमें मैं कह रहा हूं कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह बढ़िया है,
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात,
2: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए,
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी,
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है।
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है,
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की ही तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताएं किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उनके उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या है।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चलें।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़गे जी खड़े होते जो लिख के लाते सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रेपुटेशन है और ये रूल
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आर्य श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
14: उस हिसाब को दिलाने में मुकदमा जेल चप्पल जो भी हो जाए उसी का भी हमने परवाह नहीं किया, कभी परवाह नहीं किया।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
15: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितने सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
16: इसी हाई कोर्ट में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद की बेटी आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
17: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
18: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
19: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
20: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं।
19: तूफान और हम जब भी आते हैं
20: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
18: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
21: डिवाइडर में कार जा रही है, जा रहे थे झांसी।
22: झांसी किस लिए जा रहे थे?
21: भाई से मुलाकात।
22: कौन भाई?
21: अली भाई।
22: कौन कौन था उसमें?
21: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
22: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
21: हाँ, छोटे वाले।
22: क्या नाम था उनका?
21: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
22: जेल में?
21: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
17: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
23: 100 प्लस थी।
17: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माशाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस था उसे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी मेरी भी।
3: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
4: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
3: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कावड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई ना कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
23: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है, तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं, तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है, वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है, भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
3: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
5: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
3: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
6: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर आल्सो डिसरप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones, and the area, of course, is at a standstill, as you can see.
3: पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश उसकी ही पसंदीदा मीडिया की एक रिपोर्ट ने कर दिया। ठीक यही बात भारत भी कह रहा है।
7: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
3: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, पर सीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो, तो सर
1: इसमें वो मैं कह रहा हूं ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूं कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह बढ़िया है,
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात,
2: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए,
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ दिया, कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आर्य श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
9: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
14: अब चूंकि आदमियों को एहतियात बरतना चाहिए वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
15: इसी हाथ को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
16: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, कुछ सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
17: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
18: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी।
19: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते।
18: तूफान और हम जब भी आते हैं
19: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
17: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम, जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
20: डिवाइडर में कार जा रही है, जा रहे थे झांसी।
21: आज किस लिए जा रहे थे?
20: भाई से मुलाकात।
21: कौन भाई?
20: अली भाई।
21: कौन कौन था उसमें?
20: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
21: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
20: हाँ, छोटे वाले।
21: क्या नाम था उनका?
20: अबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
21: जेल में?
20: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते कि अबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
16: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
22: 100+ थी।
16: 100+ थी।
1: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल है, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
2: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
22: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना?

0: पास अब विकल्प ही क्या है। मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
1: मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहल का करना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी।
0: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
2: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
0: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात कावड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
4: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
0: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
5: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
0: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके

0: में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
1: Most of the people are not casting their vote because they want to show their solidarity with the people of Ravalakot who have been under siege and many of course have been killed. Internet services throughout the valley are also disrupted. People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones and the area of course is at a standstill as you can see.
0: पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश उसकी ही पसंदीदा मीडिया के एक रिपोर्ट ने कर दिया। ठीक यही बात भारत भी कह रहा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
0: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूर। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
1: वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
2: आप क्या मानते हैं?
1: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह बढ़िया है।
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात
2: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है। जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी हास्यास्पद है, भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है। जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताएं किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं, मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली
3: जाए। संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिप्यूटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू, दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आदरणीय श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
9: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
14: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए, वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
15: इसी हाथों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
16: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
17: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
18: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
19: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते।
18: तूफान और हम जब भी आते हैं
19: माँ कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
17: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
20: डिवाइडर में कार जा रहे थे झांसी।
21: आज किस लिए जा रहे थे?
20: भाई से मुलाकात।
21: कौन भाई?
20: अली भाई।
21: कौन कौन था उसमें?
20: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिस बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
21: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
20: हाँ, छोटे वाले।
21: क्या नाम था उनका?
20: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से
21: जेल में।
20: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
16: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
22: 100 प्लस थी।
16: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथ ही महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5,00,000, that is the maximum, that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस था उसे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की जो पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है।
3: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
22: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
3: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कांवड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
23: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है, तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है, दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं, तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है, वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवा बढ़ रहा है, भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
3: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता बार बार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
4: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
3: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोप आ गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
5: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर ऑल्सो डिस्टरप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones, and the area, of course, is at a standstill, as you can see.
3: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ki ek report ne kar diya. Theek yahi baat Bharat bhi keh raha hai.
6: Pakistan adhikrit Kashmir mein yah tathakatit chunav puri tarah se ek dikhawa hai. वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
3: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम को।
0: आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूर। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
1: वो मैं कह रहा हूं ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूं हाँ। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह बढ़िया है,
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: एलिट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात
2: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए,
1: ये जो
2: हाँ,
1: बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की ही तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उनके उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या है।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़गे जी खड़े होते जो लिख के लाते सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रेपुटेशन है और ये रूल
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आर्य श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
14: उस हिसाब को दिलाने में मुकदमा जेल छप्पर जो भी हो जाए उसी का भी हमने परवाह नहीं किया, कभी परवाह नहीं किया।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
15: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितने सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
16: इसी हवाई पर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
17: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
18: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
19: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
20: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं।
19: तूफान और हम जब भी आते हैं
20: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
18: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
21: डिवाइडर में कार जा रहे थे झांसी।
22: झांसी किस लिए जा रहे थे?
21: भाई से मुलाकात।
22: कौन भाई?
21: अली भाई।
22: कौन कौन था उसमें?
21: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
22: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
21: हाँ, छोटे वाले।
22: क्या नाम था उनका?
21: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
22: जेल में?
21: जेल।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
17: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
23: 100 प्लस थी।
17: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माशाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस उसको पीछे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या हो रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी मेरी भी।
3: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
4: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
3: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात

0: प्यासा सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
1: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तानी से ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
2: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
3: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2.0 का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
2: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
4: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हू हैव बीन अंडर सीज and many of course have been killed. Internet services throughout the valley are also disrupted. People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones. And the area of course is at a standstill as you can see.
2: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ke ek report ne kar diya. Theek yahi baat Bharat bhi keh raha hai.
5: Pakistan adhikrit कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
2: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है।

अगर मुझे इतिहास का कोई एक पल कवर करने का मौका मिलता तो मैं 1999 का करगिल युद्ध चुनती। वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो देश के जज्बे की कहानी थी। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक लम्हों की गवाह रही है इंडिया टुडे। 7 अगस्त को PVR INOX में आई विटनेस टू अ नेशन जरूर देखिए। मिलते हैं महीने।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूर। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं,
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
1: वो मैं कह रहा हूँ ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
2: जी सर,
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह बढ़िया है,
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात,
2: हाँ आपको आपका क्या मानना है, ये होना चाहिए,
1: ये जो
2: हाँ,
1: बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी,
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। तो 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास, इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है। जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की ही तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया, और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उनके उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या है।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चलें।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़गे जी खड़े होते जो लिख के लाते सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिप्यूटेशन है और ये रूल
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आर्य श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
14: उस हिसाब को दिलाने में मुकदमा मुकदमा जेल चप्पल जो भी हो जाए उसी का भी हमने परवाह नहीं किया, कभी परवाह नहीं किया।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
15: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितने सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा रक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
16: इसी हाई कोर्ट में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद की बेटी आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
17: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
18: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
19: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
20: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं।
19: तूफान और हम जब भी आते हैं
20: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
18: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
21: डिवाइडर में कार जा रही है, जा रहे थे झांसी।
22: झांसी किस लिए जा रहे थे?
21: भाई से मुलाकात।
22: कौन भाई?
21: अली भाई।
22: कौन कौन था उसमें?
21: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिस बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
22: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
21: हाँ, छोटे वाले।
22: क्या नाम था उनका?
21: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
22: जेल में?
21: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
17: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
23: 100 प्लस थी।
17: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अबान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवे बेटे अबान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माशाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस था उसे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है।
3: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
4: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
3: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कावड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
23: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है, तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है, भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
3: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
5: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
3: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
6: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर आल्सो डिसरप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones, and the area, of course, is at a standstill, as you can see.
3: पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश उसकी ही पसंदीदा मीडिया की एक रिपोर्ट ने कर दिया। ठीक यही बात भारत भी कह रहा है।
7: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
3: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, पर परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
2: बिल्कुल,
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
1: वो मैं कह रहा हूँ ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
2: जी सर,
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
2: आप क्या मानते हैं?
1: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह, बढ़िया है।
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात,
2: हाँ आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए?
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी।
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट The government should pay more attention to education, sir.
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट करके भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ, जब कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है। जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताएं किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष की मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चल।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू, दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आदरणीय श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
14: ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
15: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
16: इसी हाल में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद की बेटी आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
17: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
18: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
19: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी।
20: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से भागते।
19: तूफान और हम जब भी आते हैं माँ कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
18: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
21: डिवाइडर में कार जा रहे थे झांसी।
22: आज किस लिए जा रहे थे?
21: भाई से मुलाकात।
22: कौन भाई?
21: अली भाई।
22: वन कौन था उसमें?
21: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
22: उसमें अतीक अहमद का लड़का था?
21: हाँ, छोटे वाले।
22: क्या नाम था उनका?
21: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से।
22: जेल में?
21: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
17: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
23: 100 प्लस थी।
17: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अवान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवे बेटे अवान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटेरियल था एविडेंस था उसको किसी नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा है।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार बढ़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है।
3: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
4: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
3: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई न कोई ऐसी अनोखी कांवड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
23: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर

0: कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है, वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है, भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
2: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
3: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2.0 का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
2: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
4: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज एंड मेनी ऑफ कोर्स हैव बीन किल्ड। इंटरनेट सर्विसेज थ्रू आउट द वैली आर ऑल्सो डिस्ट्रप्टेड। People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones, and the area, of course, is at a standstill, as you can see.
2: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ke ek report ne kar diya. Theek yahi baat Bharat bhi keh raha hai.
5: Pakistan adhikrit Kashmir mein yah tathakatit chunav puri tarah se ek dikhawa hai. वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
2: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

सावन के पावन महीने में महाकाल की दिव्य धरती उज्जैन से आस्था का सबसे बड़ा मंच, जहां जुटेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित संत और मुख्यमंत्री। देखिए धर्म संसद 7 अगस्त दिन भर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूर। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात है। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं,
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो, तो सर
1: नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूं ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूं हाँ, कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता,
2: आप क्या मानते
1: हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह बढ़िया है,
1: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
2: पैलेट गन फायरिंग हुआ था तो ये सारे,
1: अब
2: ये सारे विषय के
1: और एक बात
2: हाँ, आपको आपका क्या मानना है ये होना चाहिए,
1: ये जो बातें है ना
2: जी,
1: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
2: जी,
1: लेकिन इसको देख के कहां गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा।
2: कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है, तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
1: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
2: बढ़िया है,
1: हम तो
2: बढ़िया
1: एडुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चलाए, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं, स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
0: और अब बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में, जहां 2027 चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कसी हुई है, नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, तो वहीं एजेंडे के हिसाब से रणनीति को तैयार किया जा रहा है।
3: यूपी में 2027 की सियासी पिच तैयार है। अखिलेश ने पीडीएम में पंडित की एंट्री की तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।
4: मजाक क्यों कर रहे हैं? कभी कहा कि पी का मतलब पीड़ित है, कभी कहा कि पी का मतलब पिछड़े हैं, कभी कहा कि पी का मतलब पासवान है, कल उन्होंने एक कार्यक्रम किया और कहा कि पी का मतलब पंडित है। अखिलेश जी, ब्राह्मण समाज इतना नादान नहीं है, बहुत होशियार समाज है।
3: कल समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन किया, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी का ऐलान किया। सीट चुनी अयोध्या की और टिकट दिया ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को।
5: ब्राह्मण हमेशा समाजवादी रहा है, ब्राह्मण हमेशा सबको साथ लेकर चलने का परिचायक रहा है,
6: लेकिन वोट तो उसने बीजेपी को किया है।
5: ऐसा नहीं है, ये गोदी मीडिया का सेटिंग चलता रहता है। ब्राह्मण ने हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ दिया, कितने टिकट समाजवादी पार्टी देती, कौन सा जिला जहां टिकट नहीं देती।
3: उधर योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इस समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
7: कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, उसको हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसकी पूजा की है, क्योंकि हमारे लिए जनता जनता केवल वोट बैंक नहीं है।
3: इस बीच लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का नया रास्ता खोल रहा है, जहां सड़क पर हो रही मरम्मत के दौरान पंखों से सुखाने की तस्वीरें अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए सरकार पर तंज कसा। ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो, उस सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी हास्यास्पद है। भाजपा सरकार में हर निर्माण चलता कम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। वहीं प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है, जहां पेपर लीक को लेकर 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करना था, लेकिन कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अचानक से कार्यक्रम की परमिशन रद्द कर दी गई। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट की ओर से बारिश की वजह से जगह खराब होने का हवाला दिया गया, जिस पर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है।
8: भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए।
3: बहरहाल यूपी की 2027 की सियासी पिच पर हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बल्लेबाजी कर रही है। आज तक ब्यूरो।
0: रोज की तरह गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, और सदन के बाहर विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। गृहमंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा गया।
3: आज संसद भवन के बाहर बादल भी बरस रहे थे और विपक्षी सांसद भी। बरसात के बीच विपक्षी सांसद हाथों में छाता लेकर पहुंचे थे, मगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बगैर छाते के बारिश के बीच बातचीत करते दिखे। इधर विपक्षी सांसदों के एक हाथ में छाता था, दूसरे हाथ में बैनर जिस पर लिखा था अमित शाह जवाब दो। समाजवादी पार्टी के सांसद रोज की तरह चढ़ावा चोरी के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, ऐसा ही शोर सदन के भीतर था। राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से खड़गे मांग कर रहे थे कि अमित शाह छात्रों पर हुई हिंसा के मामले में जवाब दें।
9: होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताएं किसने लाठी चलाने के लिए बोला, क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट हाउस में आकर देने में क्या मजबूरी है।
3: अकेले कांग्रेस ही नहीं, बाकी के विपक्षी दल भी अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमित शाह संसद में अपने दफ्तर तो आते हैं, मगर सदन के भीतर क्यों नहीं आते और जवाब क्यों नहीं देते।
10: अरे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उनपे पैलेट गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी, तो सवाल तो इस बात का है।
3: विपक्ष के मुख्य तौर पर दो मांगे हैं, खरगे से सुनिए वो दोनों मांगे क्या हैं।
9: प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीजें चली जाए।
3: संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से रोज हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष एक ही बात पर अड़ा है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
11: हर दिन खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है, बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर और खड़गे सर सेम चीज बोलते हैं, ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपरेशन के लिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल।
3: सदन सुचारू रूप से चले इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण विधेयक रहा। अब इस बातचीत का क्या हासिल होता है वो देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे यूपी के झांसी में हुए उस हादसे के बारे में जिसका रिश्ता माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। दरअसल झांसी में एक कार हादसे में मरहूम माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की जान चली गई। अबान अपने चार दोस्तों के साथ झांसी जेल में अपने बड़े भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन झांसी से 70 किलोमीटर पहले उसकी क्रेटा कार अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई और अबान के साथ उसका एक और दोस्त सोनू, दोनों की जान चली गई।
12: एक नाम है जो प्रयागराज नहीं बल्कि पूर्वांचल में बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाता है, आर्य श्री अतीक अहमद जी, जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं।
13: तीन साल पहले तीन दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के रास्ते से अपराध की राह तक पर सबसे बड़ा नाम बनकर रहा अतीक अहमद। अतीक अहमद जिसे न कभी जेल जाने से डर लगा,
9: माहौल पैदा करेंगे कि अगर मैं इलाहाबाद में भी रहूं तो आपको लगेगा अतीक मेरे चौखट पे खड़ा है, मेरे दरवाजे पे खड़ा है।
13: वो अतीक अहमद जिसे कभी अपराध करते हुए मौत का डर नहीं था।
14: अब चूंकि आदमी को एहतियात बरतना चाहिए, वरना तो सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने सबके लिए है, वरना इस देश में दुनिया में कितना सुरक्षा में लोग रहे और मार दिए गए, तो सुरक्षा की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं है।
13: वो अतीक अहमद जिसने 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या करवा के उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था को चौंका दिया, जिसके बाद अतीक के चले बमों के बदले माफिया को मिटा देने की गूंज उत्तर प्रदेश ने सुनी।
15: इसी हाल में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।
13: इसके तीन साल के भीतर सबसे पहले 13 अप्रैल 2023 को 50 दिन तक फरार रहा अतीक अहमद का बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया। फिर दो दिन के भीतर 15 अप्रैल 2023 को खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तीन हमलावर गोली मारकर ढेर कर देते हैं। और अब 6 अगस्त 2026 को अतीक अहमद का पांचवें नंबर वाला सबसे छोटा बेटा आबान अहमद झांसी जाता है, तभी कार पलट जाती है। हादसे में अतीक अहमद के बेटे आबान समेत दो लोगों की मौत हो जाती है। तीन साल में बिखर गया अतीक अहमद का कुनबा। असद से अतीक और अशरफ से आबान तक खत्म। अतीक का परिवार कोई ढेर, कोई जेल, कोई फरार।
16: इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहां पर डिवाइडर से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है। और आगे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, कुछ सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है।
17: 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग एक मोहम्मद जायद उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं।
13: अतीक अहमद का ये वही 5वें नंबर का बेटा है जिसकी पिछले साल एक रील वायरल होती है जिसमें वो दिल और असलहा दोनों रखने वाला डायलॉग लगाता है।
18: सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी।
19: हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं।
18: तूफान और हम जब भी आते हैं
19: मां कसम फाड़ के जाते हैं।
13: जैसे ही अब 6 अगस्त को आबान की गाड़ी पलटी और मौत की खबर झांसी से आई, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आया कि आबान की मौत का सच क्या है। कहीं माफिया अतीक के साथ कोई पुरानी दुश्मनी में बेटे आबान की मौत में साजिश तो नहीं, जब अतीक का राज खत्म हो चुका है, या फिर कोई और वजह।
17: कदम दुशा ये लोग उनसे पूछताछ करना और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेजी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ये मुलाकात के थ्रू और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से।
13: अतीक का बेटा आबान गाड़ी के आगे बैठा था। गाड़ी की हालत आगे से बताती है कि आगे बैठने वाले का क्या हुआ होगा, हादसा कैसे हुआ। गाड़ी में 5 लोग थे, आगे बैठे अतीक के बेटे आबान, आबान के साथ ही सोनू की मौत होती। 3 लोग पीछे थे, उमर अहमद, मोहम्मद जैद और एहजाम जो जख्मी हुए। आज तक गाड़ी में पीछे बैठे उमर तक पहुंचा ताकि पता चले हुआ क्या है।
20: डिवाइडर में कार जा रही है, जा रहे थे झांसी।
21: आज किस लिए जा रहे थे?
20: भाई से मुलाकात।
21: कौन भाई?
20: अली भाई।
21: कौन कौन था उसमें?
20: आबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो जिस बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में,
21: उसमें अतीक अहमद का लड़का था।
20: हाँ, छोटे वाले।
21: क्या नाम था उनका?
20: आबान। जा रहे थे मिलने भाई से
21: जेल में।
20: जी।
13: इसके बाद प्रत्यक्षदर्शी भी बताते हैं कि आबान की गाड़ी की रफ्तार तेज थी।
16: कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है?
21: 100 प्लस थी।
16: 100 प्लस थी।
13: इस तरह अवान का साथी घटना के चश्मदीद और पुलिस की शुरुआती जांच कहती है अतीक अहमद के पांचवें बेटे अवान की मौत में किसी तरह की साजिश नहीं है, ये सड़क हादसा है। लेकिन अब सवाल, जो माँ शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद की कब्र पर 2023 में नहीं पहुंची, जो शाइस्ता परवीन अतीक और अशरफ की मौत के बाद 2023 में सामने नहीं है, क्या वो 3 साल से फरार शाइस्ता अब अपने सबसे छोटे बेटे को जब प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा तब आखिरी बार देखने पहुंचेगी, या फिर कानून की गिरफ्त से बचने के लिए 3 साल से फरार शाइस्ता अब भी फरार ही रहेगी।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है और उन्हें 10 साल जेल और 5,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा है।
3: तरुण तेजपाल जब अदालत के अहाते से निकल रहे थे तो उनके कदम तो बढ़ रहे थे मगर दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को साथी महिला पत्रकार के साथ रेप का दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 हफ्ते के भीतर तरुण तेजपाल को सरेंडर करना होगा।
1: So he's been convicted for all the offences that he was charged for and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5,00,000, that is the maximum, that because it has to be done concurrently. He has been given 2 weeks time to surrender.
3: मामला 2013 का है जब तहलका मैगजीन की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल के लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस पूरे मामले में मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और आज हाईकोर्ट ने तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है।
2: हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो एक्चुअल मटेरियल था एविडेंस था उसे नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या हो रहा।
3: सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा तेजपाल के पास अब विकल्प ही क्या है, मगर इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है।
2: मैंने जज को बोला, आप लोग कोर्ट में थे, आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूं, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी, मेरी भी।
3: तरुण तेजपाल पर आए इस फैसले से गोवा की सरकार खुश है।
22: तरुण तेजपाल की जो केस के आज गोवा ब्रांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आज निकाल दिया है, तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है।
3: निचली अदालत से राहत पाने के बाद तरुण तेजपाल को भरोसा था कि हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, मगर उन्हें करारा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कावड़ यात्रा की करेंगे। रौनक जबरदस्त है इस बार और श्रद्धा के साथ साथ सृजन और कला का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई ना कोई ऐसी अनोखी कावड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर बरबस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त।
23: भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है, कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है, तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देखकर पहली नजर में लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही हो, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। जहाँ जहाँ ये कांवड़ पहुँचती है वहाँ कदम ठहर जाते हैं और हर कोई भोले के इस अनोखे दरबार के साथ एक तस्वीर कैद करना चाहता है। दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर इसे तैयार किया है। भक्त बताते हैं ये कांवड़ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बेहद मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं, तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी ये हाइड्रोलिक कांवड़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में कदम भले ही आगे बढ़ रहे हों, लेकिन हर नई कांवड़ आस्था की कल्पना को भी नई उड़ान दे रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा में जहां श्रद्धा है, वहीं सृजन भी नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्तों का कारवां बढ़ रहा है, भक्ति के तमाम अनोखे रंग भी नजर आ रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, जहां पर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ अवाम ने विद्रोह कर डाला है और वहीं अब इस पाकिस्तान इसे ऑपरेशन सिंधु 2.0 बता रहा है।
3: पीओजेके में पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ जनता बार बार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें ऑपरेशन 2.0 की साजिश नजर आ रही है।
4: उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
3: जिस चुनाव की बात पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, वो चुनाव पीओके की आवाम पर थोपा गया। अल जजीरा ने जब पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी।
5: मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कास्टिंग देयर वोट बिकॉज़ दे वांट टू शो देयर सॉलिडैरिटी विद द पीपल ऑफ रावलकोट हु हैव बीन अंडर सीज and many of course have been killed. Internet services throughout the valley are also disrupted. People are not able to use their internet. They are not able to reach out to their loved ones. And the area of course is at a standstill as you can see.
3: Pakistan ke pakhand ka pardafash uski hi pasandida media ke ek report ne kar diya. Theek yahi baat Bharat bhi keh raha hai.
6: Pakistan adhikrit कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है।
3: बहरहाल पीओके में पाकिस्तान की हालत खराब है, जहां आवाम की बगावत को वो गोलियों से शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

अगर इतिहास में जाकर इंडिया टुडे की तरह मुझे किसी खबर को कवर करने का मौका मिला तो मैं इमरजेंसी कवर करना चाहूंगा। 7 अगस्त को PVR INOX में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विटनेस टू अ नेशन।

0: युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जेंजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, बोले संवाद को लेकर कहीं ना कहीं हुई गलती, शिक्षा में सुधार को बताया जरूरी। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 8 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, फिलहाल वार्ता की तारीख तय नहीं, राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार से की कार्रवाई की मांग। संसद में गतिरोध खत्म होने पर किरण रिजिजू और राहुल गांधी में बात, परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रुख साफ करेगी कांग्रेस। FCRA संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा, अमित शाह से मिलने के बाद मिजोरम के सीएम ने जानकारी दी, ईसाई समुदाय ने भी की मुलाकात। और कई राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, उत्तराखंड में उफान पर अलकनंदा, हिमाचल में अब तक 64 लोगों की मौत, तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी। बात जंजी से, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद शुरू किया जिसमें सरकार की कार्रवाई को लेकर पैलेट गन के इस्तेमाल तक के सवालों का मोहन भागवत ने जवाब दिया।
1: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना बात की बात। अगर जेंजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
2: बिल्कुल
1: उसको ठीक करना चाहिए।
2: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं।
1: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी।
2: लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर
1: नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना,
2: इसमें
1: मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं जी, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
2: जी सर।
1: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
2: आप क्या मानते हैं?
1: विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह, बढ़िया है।
1: और देशभक्ति और सेवा का